नमस्कार, FM 102.5 MHz पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आश्विन मास की चौथी तिथि, तदनुसार 26 सितंबर सन 2026, सुबह के 5:50 और ठीक 55 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार के लिए लिखित प्रस्ताव पर आधारित वार्ता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बिना किसी लिखित प्रस्ताव के बातचीत केवल सुधार प्रक्रिया को टालने के समान होगी। सुधार का विरोध करने वाले देश संस्था को मजबूत करने के बजाय केवल उसका शोषण कर रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से अलग रप्चर्स एंड रैम्पार्ट्स, बदलती दुनिया के लिए सेतु निर्माण विषय पर आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। इसके अलावा विदेश मंत्री ने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा पर मित्र समूह की उद्घाटन बैठक में कहा कि खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमले चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि ये हमले अब कोई अपवाद नहीं रह गए हैं। डॉक्टर जयशंकर हाल ही में ओमान की खाड़ी में एंटीगा और बारबुडा के ध्वज वाले मालवाहक पोत MV कैप डाउ पर हमले का जिक्र किया, जिसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई थी। उन्होंने पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर पर एलगाइया के हमले का भी जिक्र किया, जिस पर होर्मुज जलडमरू मध्य में हमला हुआ था और एक भारतीय चालक दल का सदस्य लापता हो गया था। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने विनाशकारी बाढ़ के बाद हिमालयी क्षेत्र में जलवायु अनुकूल तंत्र बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे नेपाल, भारत और चीन के संयुक्त नेतृत्व में

0: स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि बढ़ता तापमान हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को अस्थिर कर रहा है। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि इस तंत्र के माध्यम से तीनों देशों के उपग्रह से प्राप्त डेटा, तकनीकी विशेषज्ञता और आपदा की पूर्व चेतावनी संबंधी सूचनाओं को साझा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हाल की आपदा ने चीन नेपाल सीमा के दोनों ओर बड़े पैमाने पर तबाही मचाई, जबकि बाढ़ का पानी आगे बहकर भारत तक पहुंचा। श्री शाह ने आपदा के बाद सहायता प्रदान करने वाले देशों, विशेष रूप से भारत के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के प्रभावित क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश से कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। लखनऊ सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों से चक्रवाती परिस्थितियों के कारण तेज बारिश हो रही है। जनजीवन और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से बारिश से संबंधित कई दुर्घटनाओं की सूचना मिली है। राहत आयुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद ने रेड और ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों के मजिस्ट्रेट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मौसम की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने, स्थानीय परिस्थितियों पर लगातार नजर रखने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार और रविवार को भी राज्य में मौसम की स्थिति ऐसी ही बनी रहने की संभावना है। और जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीत लिए हैं। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक अपने नाम किया। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एलंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

आज का चिंतन स्वामी विवेकानंद ने कहा है, कभी कमजोर नहीं पड़ें, आप अपने आप को शक्तिशाली बनाएं, आपके भीतर अनंत शक्ति है। आइए सुने भक्ति संगीत।

ये विविध भारती है, झरोखा में लीजिए सुनिए हमारे आज के शेष प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। अब से थोड़ी देर में ठीक 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस का भाग 323। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रृंखला ख्याल और तरानों की विशेषताएं। आज आप सुनेंगे इस श्रृंखला की 11वीं कड़ी। कलाकार हैं गायक डॉक्टर पंडित गोकुलोत्सव महाराज, प्रस्तुति छाया गांगुली की, और इसी कार्यक्रम का पुनः प्रसारण हम करेंगे संध्या 6:45 पर। सात बजे सुनवाए जाएंगे भूले बिसरे गीत। 7:30 पर आप सुनेंगे युगल गीतों का कार्यक्रम हम है राही प्यार के। 8:15 पर सुनिएगा त्रिवेणी। 8:30 पर होगा कार्यक्रम चित्रलोक और 9:30 पर आज के फनकार। ये कार्यक्रम आज केंद्रित है फिल्मकार देवानंद पर। दिन में 10 बजे आप सुनेंगे पिटारा में गीतों भरी कहानी दो दीवाने शहर में, लेखिका नासिरा शर्मा, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। 11 बजे मैटिनी शो, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे अभिनेता स्टैंड अप कॉमेडियन उदय दाहिया से यूनुस खान की बातचीत आप सुनेंगे, संपादन सहयोग काजल भद्रज्ञ का, प्रस्तुति जुबैर खान की। 12:05 पर यादों की महफिल, ये कार्यक्रम होगा सुरीला सफर, कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दिन में 1 बजे। दो बजे सुनिएगा त्रिवेणी। 2:30 पर सदाबहार नगमे आप सुनेंगे। 3 बजे कार्यक्रम होगा मन चाहेगी। 3:30 पर नाट्य तरंग में सुनिएगा नाटक बांदी, लेखक इस्मत चुगताई। 4 बजे पिटारा लाएगा बॉम्बे टॉकीज गायिका पूर्णिमा यानी सुषमा श्रेष्ठ से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। 5 बजे आप सुनेंगे छायागीत। 5:30 पर तराने नए पुराने, और 6:30 पर आप सुनेंगे झरोखा। 6:35 पर संध्या रंजन कार्यक्रम प्रसारित होगा। शाम 7 बजे पार्श्व गायिका लता मंगेशकर द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिएगा ज्ञान विज्ञान का कार्यक्रम जिज्ञासा। 8 बजे हवा महल कार्यक्रम में सुनो कहानी आप सुनेंगे, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी गूंगी का दूसरा भाग। 8:15 पर सुनिएगा चित्रलोक। 9 बजे होगा कार्यक्रम आपके लिए।

9:30 पर आज के फनकार ये कार्यक्रम केंद्रित है संगीतकार और पार्श्व गायक हेमंत कुमार पर। दस बजे आप सुनेंगे छाया गीत और 10:30 पर होगा कार्यक्रम ढलती जाए रात। झरोखा में श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे हमारे आज के शेष प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

शक्तिवान लगने से मूर्छित लक्ष्मण के उपचार के लिए हनुमान लंका के वैद्य सुषेण को उनके घर समेत उठा लाए हैं। औषधि है संजीवनी बूटी। पर्वत का जहां वो मिलेगी नाम सुनकर पवन पुत्र हनुमान श्री राम का स्मरण कर प्रस्थान करते हैं। गुप्तचरों से ये संवाद सुनकर रावण चिंतित हो जाता है और कालनेमी नामक राक्षस को हनुमान के मार्ग में बाधा डालने के लिए भेजना चाहता है। कालनेमी पहले तो रावण को सद्बुद्धि देने का प्रयास करता है, मदांधता त्याग कर महामोह की निद्रा त्यागने की बात कहता है, किंतु फिर रावण के हाथों मरने की अपेक्षा श्री राम के दूत द्वारा मरना श्रेयस्कर जान मुनि रूप धारण करके पवन पुत्र के मार्ग में माया रचना करता है। प्यास बुझाने के लिए हनुमान मुनि के संकेत पर सरोवर पहुंचते हैं, जहां मगरी के रूप में उपस्थित अप्सरा उनके पैर पकड़ लेती है। हनुमान उसका वध कर देते हैं।

स्वर्गारोहण से पूर्व वो मुनि रूपी कालनेमी की वास्तविकता उन्हें बता देती है। कालनेमी का वध करके हनुमान पर्वत पर जड़ी न पहचान सकने की स्थिति में पूरा पर्वत ही उठाकर लंका जाते हुए अयोध्या के आकाश में पहुंचते हैं।

0: संगीत सरिता में आजकल जो श्रृंखला प्रस्तुत की जा रही है उसका शीर्षक है ख्याल और तराने की विशेषताएं। प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज द्वारा दी गई जानकारी और उन्हीं के गायन के उदाहरणों पर यह श्रृंखला तैयार की गई है, लीजिए सुनिए।
1: संगीत सरिता के समस्त श्रोताओं को गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज का अभिवादन। अब मैं आपको उस्ताद आमिर खान साहब के द्वारा रचित राग दरबारी में तराना सुना रहा हूं, जिसमें हजरत अमीर खुसरो की रुबाई है। हजरत अमीर खुसरो की जो रुबाई है वह खास रुबाई इसमें प्रयुक्त की हुई है। उसकी मानी है, बलबम रसीद जानम तो बिया के जिंदा मानम पसजा के मन न मानम बचकार खाही आमद। उसका मतलब है कि मेरे लबों तक जान पहुंच चुकी है, तू जल्दी आ ताकि मैं जिंदा रह जाऊं।

0: राग मधुवंती में तराना अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुतकर्ता थे प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज। इनके साथ हारमोनियम पर पुरुषोत्तम वालावलकर ने संगत की और तबले पर इनका साथ दिया ओमकार गुलवाड़ी ने। ख्याल और तराने की विशेषताएं, शास्त्रीय संगीत की इन शैलियों पर आधारित कल की 12वीं और अंतिम कड़ी में आप सुनेंगे ख्याल नुमा ठुमरी की कुछ रचनाएं। संगीत सरिता कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो है जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था कहानी।

0: की काया और फिल्म की छाया, उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
1: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से।
3: यादों की बारात निकली है आज तेरे द्वार।
2: मिलिए जाने माने गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में बॉम्बे टॉकीज में।
4: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना, रखना भरोसा उस पे सदा।
2: 26 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एक विलक्षण गायक।
5: अरे ओरे हे।
2: संगीत के साधक।
5: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
2: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भाव

0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं। अभी मेरे तो
2: नमस्कार, यह है आकाशवाणी उज्जैन। समय हुआ है सुबह 7 बजे का और हम आपके लिए लेकर आए हैं राजाधिराज बाबा महाकाल के चरणों में समर्पित हमारी विशेष प्रस्तुति महाकाल वंदन।

जय श्री महाकाल। अवंतिका की इस पावन धरा पर आज की सुबह बहुत ही मंगलकारी है। आइए अपने दिन की शुरुआत उस परमपिता के चरणों में ध्यान लगाकर करें, जो कालों के काल हैं और समस्त जगत के आधार।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी उज्जैन केंद्र से प्रसारित हमारा विशेष कार्यक्रम महाकाल वंदन। बाबा आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें और आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री महाकाल।

FM 102.5 MHz पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आइए हम आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। सुबह 7:20 पर होगा प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन। ₹8:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का विशेष प्रोग्राम उज्जैनी आरजे। नए फिल्मी संगीत का विशेष प्रोग्राम बॉलीवुड बीट्स आप सुनेंगे 9:30 पर। ₹10 सुनिए आपकी फरमाइश। मुंबई से रंग तरंग कार्यक्रम होता है सुबह 11:00। दिन में 12:05 पर सुनिए यादों की महफिल। दोपहर 1:00 सुनिए सुरीला सफर। ₹2 सुनिए फिल्म संगीत। 7:30 नगमे पेश किए जाते हैं दोपहर 2:30 पर। ₹3:30 पर सुनिए नाट्य तरंग। 4:00 आप सुनेंगे बॉम्बे टॉकीज। 5:00 सुनिए युवा श्रोताओं की अपनी पसंद का कार्यक्रम युवाणी। शाम 6:00 भजन संध्या का कार्यक्रम होगा। ₹6:30 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति। दिल्ली से समाचार आप सुनेंगे शाम 7:00। भोपाल से 7:10 पर सुनिए प्रादेशिक समाचार।

7:21 पर अपने उज्जैन केंद्र से लेकर आएंगे आपके लिए मालवी की तारी गूंज। रात 8 बजे सुनिएगा विशेष प्रोग्राम जन सेवा से देश सेवा के। 8:35 पर सुनिए फिल्म संगीत। उर्दू समाचार सुनिए 9:15 पर। रात को 9:30 पर प्रोग्राम होगा विज्ञान भारती, जबकि रात के 10 बजे सुनिए 20th edition ऑफ एशियन गेम्स 2026 विशेष कार्यक्रम दिल्ली हाइलाइट्स कैप्सूल। रात के 10:20 पर संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा। अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रमों की जानकारी। यह आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। 7:10 होने को है। अब प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण हम भोपाल केंद्र से करेंगे।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भजन क्लबिंग कार्यक्रम में लिया हिस्सा। प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू। 7 शहरों में 351 बसों को दिखाई गई हरी झंडी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा की। और प्रदेश में अगले 48 घंटे तेज बारिश का दौर। 18 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय पार्क में आयोजित भजन क्लबिंग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 110वीं जयंती के मौके पर आयोजित किया गया था। भजन क्लबिंग में युवा कॉन्सर्ट जैसे माहौल में भजन गाते, तालियां बजाते और नाचते हैं, जिसमें पारंपरिक भजनों को आधुनिक संगीत के साथ पेश किया जाता है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री भजन सुनते, तालियां बजाते और मंजीरा बजाते नजर आए। इससे पहले प्रधानमंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि देते हुए उनके अंत्योदय के विचार को जन कल्याण और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल भोपाल के भेल दशहरा मैदान से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत की। करीब 21 साल बाद प्रदेश में सरकारी नियंत्रण में गांव से शहरों तक लोक परिवहन व्यवस्था नए स्वरूप में लौट रही है। इस मौके पर 7 शहरों की 351 इंटरसिटी और इंट्रासिटी बसों को हरी झंडी दिखाई गई। श्री गडकरी ने बताया कि ट्रांसपोर्ट में सुधार के लिए 5 एजेंडा तय किए गए हैं, जिनमें पहला क्लीन ट्रांसपोर्ट है। श्री गडकरी ने कहा,
1: जो गरीब लोग हैं, गांव, गरीब मजदूर, किसान प्राइवेट टैक्सी में नहीं जा सकते, ऐसे लोगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने जो पहल की है, ये टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सुरक्षित, किफायती और जवाबदेह सार्वजनिक बस परिवहन व्यवस्था का निर्माण और उसका शुभारंभ के इस ऐतिहासिक दिन में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है।
0: मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के पहले चरण में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, देवास, कटनी और भिंड को इस सेवा से जोड़ा गया है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2031 तक प्रदेश में 15,000 बसें चलाने का है और 75% ग्राम पंचायतों तक परिवहन सेवा पहुंचाने की योजना है। बसों में सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन, लाइव लोकेशन ट्रैकिंग और रियल टाइम मॉनिटरिंग जैसी सुविधाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क के साथ एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसके अलावा एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल्स पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल भोपाल में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा बैठक ली। बैठक में सड़कों की गुणवत्ता, सड़क सुरक्षा और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर जोर दिया गया। सिंहस्थ 2028 को देखते हुए उज्जैन से जुड़ने वाली सड़कों का काम तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की नागपुर, जबलपुर और रायपुर से कनेक्टिविटी बढ़ाने और बालाघाट में बेहतर सड़क नेटवर्क की कार्ययोजना बनाने को भी कहा गया। वहीं जबलपुर के शहपुरा आरओबी के क्षतिग्रस्त होने के कारण शाहपुरा टोल प्लाजा पर टोल वसूली फिलहाल स्थगित करने के निर्देश दिए गए हैं। सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वाराणसी से वडनगर और वडनगर से वाराणसी की यात्रा कर रहे यात्रियों से सीधा संवाद किया। प्रधानमंत्री ने सागर जिले के बंडा पहुंचे यात्रियों से भी बातचीत की और यात्रा के अनुभव जाने। यात्रियों ने आयुष्मान भारत, स्वच्छता, सड़क और पीएमश्री स्कूल जैसी योजनाओं से हुए बदलावों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने यात्रियों से युवाओं को सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करने की भी अपील की। बंदा में उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि ऐसी यात्राओं से देश की संस्कृति, विचारों को समझने के साथ राष्ट्रीय एकजुटता भी मजबूत होती है। पत्रकार स्वास्थ्य और दुर्घटना समूह बीमा योजना में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। पत्रकारों की मांग को देखते हुए अब आवेदन की तारीख 25 सितंबर से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। पत्रकार अब 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ लेने के लिए शामिल हो सकते हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर चल रहे सेवा संकल्प अभियान के तहत आज से आंगन मिलन कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। ये कार्यक्रम प्रदेश के सभी 97,882 आंगनवाड़ी केंद्रों पर एक साथ आयोजित किया जाएगा। 10 दिवसीय इस कार्यक्रम के दौरान आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों और माताओं के स्वास्थ्य की जाँच की जाएगी और पोषण, स्वच्छता तथा टीकाकरण को लेकर जागरूक किया जाएगा। 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी बैंक हड़ताल के बीच SBI ने किसी भी बैंक के ATM से पैसे निकालने या दूसरे ATM से लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगाने की घोषणा की है। ग्राहकों की सुविधा के लिए SBI की सभी शाखाएं 27 सितंबर रविवार को भी खुली रहेंगी। UPI, IMPS, RTGS और NEFT जैसी डिजिटल सेवाएं भी सामान्य रूप से चलती रहेंगी। आज से पितृपक्ष की शुरुआत हो गई है। इसका समापन 10 अक्टूबर को सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के साथ होगा। इस बार अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन पड़ने की वजह से पितृपक्ष 15 दिनों का रहेगा। इस दौरान लोग अपने पूर्वजों की तिथि के अनुसार श्राद्ध, तर्पण और दूसरे धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं। प्रदेश में कक्षा छठी से आठवीं तक के विद्यार्थियों की पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए माध्यमिक शिक्षकों को नई NCERT पाठ्य पुस्तकों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण 28 सितंबर से शुरू होगा। ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पश्चिम मध्य रेलवे ने विशेष अभियान शुरू किया है। जबलपुर, भोपाल और कोटा मंडल के 284 स्टेशनों पर पिछले एक महीने से पानी की गुणवत्ता की निगरानी की जा रही है। इस दौरान करीब 10,000 नलों और वाटर बूथों की साफ सफाई की गई है। एशियन गेम्स में प्रदेश के निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने नीरज कुमार और रुद्राक्ष पाटिल के साथ मिलकर 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम इवेंट में रजत पदक जीता है। उनकी इस उपलब्धि पर खेल मंत्री विश्वास सारंग ने बधाई दी है। वहीं आज इसी स्पर्धा में प्रदेश की आशी चौकसे पर भी सभी की निगाहें रहेंगी। प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक और पद्मश्री से सम्मानित सत्येंद्र सिंह लोहिया ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने यूके के डोवर में डोवर से फ्रांस तक करीब 36 किलोमीटर लंबे इंग्लिश चैनल को तीसरी बार सफलतापूर्वक पार किया है। इसके साथ ही वे इंग्लिश चैनल को 3 बार पार करने वाले भारत के पहले तैराक बन गए हैं। और अब बात मौसम की। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में अगले 48 घंटे तेज बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने आज जबलपुर, रीवा समेत 18 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर और सतना में ऑरेंज अलर्ट है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जिले में नमामि भारतम कार्यक्रम के तहत विभिन्न स्थानों पर सामूहिक गायन किया गया। आगर मालवा कलेक्टर ने कल जिले के ग्राम जमुनिया स्थित 120 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क का निरीक्षण किया। सेवा संकल्प अभियान के तहत शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय नर्मदापुरम में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर आयोजित किया जा रहा है। जबलपुर और आसपास के कैचमेंट एरिया में लगातार हो रही भारी बारिश से बरगी बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। मंडला में सेवा संकल्प अभियान के तहत शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मेरे सपनों का भारत विषय पर भाषण, निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। दमोह में सेवा संकल्प अभियान के तहत मगरोन में यात्रा दल का प्रदेश के आनंद विभाग राज्य मंत्री लखन पटेल ने आत्मीय स्वागत किया। डिंडौरी में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत महिला बाल विकास विभाग द्वारा जिले के प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र पर आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। गुना में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत कल आरून विकासखंड की ग्राम पंचायत रामपुर में जिला स्तरीय जनविश्वास शिविर आयोजित किया गया। विदिशा में महिला और बाल विकास विभाग की सचिव ने कल जिले का भ्रमण किया। धार में अनंत चतुर्दशी पर गणपति विसर्जन के साथ 10 दिवसीय गणेश उत्सव का समापन हुआ। वहीं भोपाल में भी अनंत चतुर्दशी के मौके पर कल 10 दिवसीय गणेश उत्सव का समापन हो गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: नमस्कार उज्जैन FM 102.5 MHz पर मैं हूं आपकी उद्घोषिका हिमानी और आप सुन रहे हैं आपका प्रिय कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन।

बाबा महाकाल की पावन अलौकिक और अवंतिका नगरी से आप सभी प्रिय श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। शनिवार की ये पावन सुखद और ऊर्जावान सुबह आपके जीवन में नया उत्साह, उत्तम स्वास्थ्य और अपार प्रसन्नता लेकर आए। श्रोताओं, आज 26 सितंबर का दिन भारतीय इतिहास, शिक्षा, समाज सुधार और जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज जहां एक और हम नमन कर रहे हैं महान समाज सुधारक, शिक्षाविद और नारी सशक्तिकरण के पुरोधा ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को उनकी जयंती पर, वहीं दूसरी ओर आज विश्व गर्भ निरोधक दिवस भी है जो परिवार नियोजन और स्वास्थ्य जागरूकता का संदेश देता है। तो चलिए बाबा महाकाल के पावन चरणों में वंदन करते हुए करते हैं आज के इस खूबसूरत और ज्ञानमयी सफर की शुरुआत इस मधुर शिव भक्ति गीत के साथ।

श्रोताओं, अब वक्त हो चला है हमारे विशेष सेगमेंट समाचार पत्रों से का। आइए उज्जैन और आसपास की महत्वपूर्ण खबरों पर एक नजर डालते हैं। वंदे मातरम के 150वें वर्ष पर देशभर में सामूहिक गायन। वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उपलक्ष्य में शुक्रवार को देशभर में पहली बार एक साथ सामूहिक गायन का आयोजन किया गया। नमामि भारतम कार्यक्रम के तहत देश के 25,000 से अधिक स्थानों पर 1 करोड़ से ज़्यादा विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों और समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने एक समय, एक स्वर और एक लय में संपूर्ण वंदे मातरम का गायन किया। इस सामूहिक आयोजन में स्कूलों, शैक्षणिक संस्थाओं और विभिन्न स्थानों पर लोगों ने एक साथ राष्ट्रगीत का गायन किया। महाकाल लोक में लगेंगी 92 नई स्थायी प्रतिमाएं। उज्जैन के महाकाल लोक में आने वाले श्रद्धालुओं को जल्द ही प्रतिमाओं का नया स्वरूप देखने को मिलेगा। कॉरिडोर में अभी स्थापित प्रतिमाओं की जगह अब पत्थर और मेटल से तैयार की जा रही स्थायी प्रतिमाएं लगाई जाएंगी। इसके लिए उज्जैन के विक्रमनगर मार्ग स्थित कार्यशाला में तेजी से काम चल रहा है। प्रशासन के अनुसार कुल 92 नई प्रतिमाएं तैयार की जा रही हैं। इनमें 35 पत्थर और 57 मेटल की प्रतिमाएं शामिल हैं। प्रतिमाएं तैयार होने के बाद इन्हें महाकाल लोक में स्थापित किया जाएगा। उज्जैन दर्शन के लिए शुरू होगी बस योजना। महाकाल लोक बनने के बाद उज्जैन में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ साथ शहर के अन्य प्रमुख मंदिरों और पौराणिक स्थलों तक श्रद्धालुओं को आसानी से पहुंचाने के लिए अब उज्जैन दर्शन बस योजना शुरू की जा रही है। इस योजना के तहत श्रद्धालुओं के लिए 20 ऐसी बसें अगले महीने उज्जैन आने की जानकारी है। इन बसों के माध्यम से शहर के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक पहुंचने की सुविधा उपलब्ध करवाने की योजना है। आज से शुरू हुआ श्राद्ध पक्ष। उज्जैन में पितरों के तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध के लिए श्राद्ध पक्ष आज 26 सितंबर से शुरू हो रहा है। श्राद्ध पक्ष के दौरान देशभर से श्रद्धालु उज्जैन

0: पहुंचकर सिद्धवट, रामघाट और शिप्रा नदी के अन्य घाटों पर तर्पण और पिंडदान करते हैं। श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए घाटों की सफाई और अन्य व्यवस्थाओं का काम किया जा रहा है। वहीं शिप्रा नदी में पानी की स्थिति पर भी नजर रखी जा रही है। अनंत चतुर्दशी पर गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू। उज्जैन में कल अनंत चतुर्दशी के अवसर पर गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू हुआ। शिप्रा नदी के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं ने गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन किया। वहीं बड़े गणेश पांडालों की प्रतिमाओं को चल समारोह के लिए निकाला गया। रात करीब 8 बजे से शहर के बड़े गणेश पांडालों की प्रतिमाएं चल समारोह में शामिल हुई। गणपति प्रतिमाओं के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी जुलूस में शामिल हुए। ये चल समारोह पूरी रात चलता रहा। श्रद्धालुओं ने भक्ति और उत्साह के साथ गणपति बप्पा को विदाई दी। सांदीपनी विद्यालय में विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण। सांदीपनी विद्यालय में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य शिविर लाया गया। शिविर के दौरान विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और उनके स्वास्थ्य कार्ड भी बनाए गए। शिविर में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरी जांच की गई और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी गई। श्रोताओं, तो ये थी आज के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित उज्जैन की महत्वपूर्ण खबरें। शहर से जुड़ी इन्हीं खबरों के साथ समाचार पत्रों से मैं फिलहाल इतना ही। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन FM 102.5 MHz पर।
1: चुचू चिड़िया बड़ी उदास, कैसे बुझाए अपनी प्यास। बहुत कम है कुएं में पानी, तालाबों की भी यही कहानी। धरती का है सूखा पेट, हैंड पंप भी उगले रेत। चुचू रोए नदी किनारे, इसका पानी कहाँ गया रे। बादल आते खाली हाथ और कह जाते पते की बात। हरे भरे मत काटो जंगल, जंगल ही तो लाता मंगल। पेड़ लगाओ तुम सब मिलकर, बरसेगा फिर पानी जमकर। नदी ताल में होगा पानी, फुर्र होगी चूचू की परेशानी। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
0: श्रोताओं, सुप्रभात उज्जैन में आप सभी का पुनः स्वागत है। 26 सितंबर 1820 को जन्मे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी भारतीय पुनर्जागरण के उन प्रकाश स्तंभों में से हैं जिन्होंने समाज में विद्या, करुणा और सुधार की नई अलग जगाई। जब हम शिक्षा और ज्ञान की बात करते हैं तो हमारी उज्जैनी का इतिहास सबसे स्वर्णिम नजर आता है। ये वही अवंतिका नगरी है जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने महर्षि सांदीपनी के आश्रम में 64 कलाओं और विद्याओं का अर्जन किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का मानना था कि शिक्षा ही समाज की कुरीतियों को मिटाने का सबसे सशक्त माध्यम है। आज का दिन हमें अपनी प्राचीन ज्ञान परंपरा पर गर्व करने और शिक्षा के महत्व को समझने की प्रेरणा देता है। आइए सुनते हैं आज का अगला सुरीला गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन FM 102.5 MHz पर। श्रोताओं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ महिलाओं के अधिकारों के लिए ऐतिहासिक संघर्ष किया। उन्हीं के भागीरथ प्रयासों का परिणाम था कि वर्ष 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, हिंदू वीडोस रीमैरिज एक्ट पारित हुआ, जिसने समाज में महिलाओं को सम्मानपूर्वक जीने का एक नया अवसर दिया। उज्जैन हमेशा से शक्ति उपासना और नारी सम्मान की भूमि रही है। चाहे देवी हरसिद्धि का पावन धाम हो या यहाँ की विदुषी नारियाँ, अवंतिका ने हमेशा प्रगतिशील सोच को अपनाया है। आज जब हम विद्यासागर जी को याद करते हैं तो हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम बेटियों की शिक्षा और उनके अधिकारों के प्रति हमेशा सजग रहेंगे। आइए सुनते हैं ये सुंदर और भावपूर्ण गीत।

एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज पर जानकारी और सुरों का सफर लगातार जारी है। साथियों, आज 26 सितंबर को दुनिया भर में विश्व गर्भ निरोधक दिवस वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे के रूप में भी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा समर्थित इस दिवस का मुख्य उद्देश्य परिवार नियोजन, मातृ स्वास्थ्य और जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। एक सशक्त और समृद्ध समाज की नींव तभी मजबूत होती है जब हर नागरिक अपने स्वास्थ्य, परिवार के आकार और भावी पीढ़ी के भविष्य के प्रति जागरूक और जिम्मेदार निर्णय ले। सही जानकारी, परामर्श और स्वास्थ्य सेवाओं का सही उपयोग ही एक खुशहाल परिवार का आधार है। आइए इसी सकारात्मक और स्वास्थ्य संदेश के साथ सुनते हैं अगला गीत।

श्रोताओं सुप्रभात। उज्जैन में आज हमने जाना कि कैसे शिक्षा, समाज सुधार और स्वास्थ्य जागरूकता मिलकर एक आदर्श समाज की रचना करते हैं। ईश्वरचंद विद्यासागर जी का जीवन हमें याद दिलाता है कि निस्वार्थ सेवा और समाज कल्याण से बड़ा कोई धर्म नहीं है। एक सजग नागरिक के रूप में हमारा दायित्व है कि हम अपने उज्जैन को न केवल स्वच्छ और सुंदर बनाएं, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अपने आसपास के लोगों को जागरूक रखें। जब समाज का हर व्यक्ति शिक्षित और स्वस्थ होगा, तभी हमारी अवंतिका प्रगति के नित नए कीर्तिमान रचेगी। साथियों, समय का चक्र लगातार आगे बढ़ रहा है और बातों ही बातों में आज का सुप्रभात उज्जैन अब अपने समापन की ओर पहुंच गया है। आज हमने ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की जयंती पर उनके महान समाज सुधारों, बालिका शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम और विश्व गर्भ निरोधक दिवस के माध्यम से स्वास्थ्य चेतना पर सार्थक चर्चा की। उम्मीद है कि आज के संक ने आपकी शनिवार की सुबह को विचारशील, ऊर्जावान और

प्रेरणादायक बनाया होगा। बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि वे आप सभी के जीवन में उत्तम स्वास्थ्य, सफलता और खुशहाली प्रदान करें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सुनते हैं आज के कार्यक्रम का अंतिम और प्रेरणादायक गीत।

साथियों, इसी के साथ सुप्रभात उज्जैन का आज का ये विशेष अंक यहीं संपन्न होता है। अब मुझे दीजिए अनुमति, मैं आपकी उद्घोषिका हिमानी आपसे लेती हूँ विदा। कल सुबह ठीक 7:20 पर फिर होगी मुलाकात आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन में, सिर्फ आकाशवाणी उज्जैन FM 102.5 MHz पर। आप हमें न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने उज्जैन को स्वच्छ और गौरवशाली बनाइए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा, तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिन से लगातार वर्षा के कारण राज्य के सभी स्कूल आज बंद। भारत ने खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार होने वाले हमलों पर चिंता व्यक्त की। सावन बरवाल ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की मैराथन का रजत पदक जीता और समरकंद में शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ है। उन्होंने ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सार्थक सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ा है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वाराणसी से वडनगर की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत में प्रधानमंत्री ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य सभी की भागीदारी और योगदान से ही हासिल किया जा सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि वडनगर से प्राप्त मूल्यों ने उनके जीवन को आकार दिया है, जबकि काशी से उन्हें जीवन में सेवा मूल्य प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में यात्रियों ने अपने अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने यात्रियों से अपने अनुभवों को डायरी में दर्ज करने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा तथा निर्बाध प्रतिबद्धता के भाव से सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण से प्रेरणा लेकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की जानकारी दे रहे हैं। नए श्रम संहिताएं सरकार की इस प्रतिबद्धता के साक्षी हैं।
2: नई श्रम संहिताएं कई वर्तमान कानूनों को एकीकृत आधुनिक ढांचे में समाहित करती हैं, जिन्हें कार्यबल में स्पष्टता, स्थिरता और समानता को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार इन सुधारों के अंतर्गत 29 केंद्रीय कानूनों को 4 संहिताओं में समाहित किया गया है। वेतन संहिता न्यूनतम वेतन को सार्वभौमिक बनाती है और समय पर भुगतान सुनिश्चित करती है। औद्योगिक संबंध संहिता विवाद समाधान को सरल बनाती है और नियुक्ति में लचीलापन बढ़ता है। वही सामाजिक

0: सुरक्षा संहिता गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म कर्मियों और संगठित क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। इसी तरह व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियां संहिता कार्यस्थल की सुरक्षा और कल्याण मानकों को बेहतर बनाती है। ट्राई सिटी बिल्डिंग कामगार यूनियन चंडीगढ़ के प्रधान रामप्रीत शर्मा ने कहा कि नए श्रम कानून श्रमिकों के हित में है।
1: एक यूनियन लीडर के रूप में मेरा अनुभव है कि अच्छी पॉलिसी वही है जिसमें श्रमिक और इंडस्ट्री दोनों साथ साथ विकास करें। उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि वर्किंग अरेंजमेंट में अधिक फ्लेक्सिबिलिटी आई है।
0: ये चार श्रम संहिताएं भारत के श्रम पारिस्थितिकी तंत्र को आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखती हैं, जिससे श्रमिकों और नियोक्ताओं को एक समान नियमों के अंतर्गत लाया जा सका है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
2: उत्तर प्रदेश में कई जिलों में तेज वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद हैं। लखनऊ सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों में तूफान के कारण तेज वर्षा हो रही है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से वर्षा से संबंधित कई दुर्घटनाओं की भी सूचना मिली है। उत्तराखंड में आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों और पर्यटकों से इस दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि चार धाम यात्रा फिलहाल जारी रहेगी।
3: मौसम विभाग के अनुसार आज बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देहरादून, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के 4000 मीटर और अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी का भी अनुमान है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों और पर्यटकों से मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने और रेड अलर्ट के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने और राहत एवं बचाव की व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
2: छत्तीसगढ़ में पिछले दो दिन से लगातार हो रही वर्षा के कारण राज्य के सभी स्कूलों में आज छुट्टी घोषित कर दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बाढ़ और जल भराव की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारियों को सतर्क रहने और राहत बचाव कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उड़ीसा में उत्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के चलते कई हिस्सों में तेज वर्षा हो रही है। भूस्खलन और जल भराव से सड़क संपर्क प्रभावित है। एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: उड़ीसा में डिप्रेशन कमजोर पड़ गया है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर, खासकर उत्तरी और पश्चिमी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और संवेदनशील इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी वर्षा की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
6: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा पर मित्र समूह की बैठक में कहा कि खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमले चिंता का विषय हैं। डॉक्टर जयशंकर हाल ही में ओमान की खाड़ी में एंटीगा और बारबुडा के ध्वज वाले मालवाहक पोत MV केप डाउ पर हमले का जिक्र किया। इसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई थी। उन्होंने पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर एल गाइया के मामले का भी जिक्र किया। इसमें भारतीय चालक दल का एक सदस्य लापता हो गया था। विदेश मंत्री जयशंकर ने न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव से मुलाकात की और द्विपक्षीय मुद्दों के साथ साथ कई मौजूदा मुद्दों पर चर्चा की। सत्र के दौरान उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने खाड़ी संघर्ष से संबंधित नवीनतम घटनाक्रम पर चर्चा की। ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात वाले इस समूह का उल्लेख करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों के नेताओं ने ब्रिक्स सहयोग की समीक्षा की। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ के बाद हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल तंत्र बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे नेपाल, भारत और चीन के संयुक्त नेतृत्व में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि जल सुरक्षा सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है, उसमें नागरिक, सरकार और उद्योग भी शामिल हैं। श्री पाटिल ने नई दिल्ली में कल 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह के समापन सत्र में ये बात कही। श्री पाटिल ने जल संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान देशों और संस्थानों के बीच सहयोग के माध्यम से ही किया जा सकता है।
7: जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं बाढ़ की चुनौती बढ़ रही है, कहीं सूखे और पानी की कमी का दबाव हो, ऐसे समय में हमें जल प्रबंधन को केवल आज की आवश्यकता नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा से जोड़कर देखना होगा। तीन बातें विशेष रूप से सामने आई हैं। पहली, जल संरक्षण से जन भागीदारी सबसे जरूरी है। दूसरी, विज्ञान और नई तकनीक का लाभ जमीन तक पहुंचना चाहिए। और तीसरी, जल की चुनौतियों का समाधान देशों और संस्थाओं के बीच निरंतर सहयोग से ही मजबूत होगा।
2: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं हिमांशु कांडपाल।
8: पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीत कर इतिहास रच दिया है। इस स्पर्धा में भारत ने 44 साल बाद पदक जीता है। बरवाल ने 2 घंटा 11 मिनट और 37 सेकंड का समय निकालकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया। आज महिला और पुरुष वर्ग में भारत की कबड्डी टीमें अपने अपने फाइनल मैच खेलेंगी। फाइनल में दोनों वर्गों में भारत का मुकाबला ईरान से होगा। बैडमिंटन में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु सिंगल्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला पूर्व विश्व चैंपियन सिंगापुर के लो की यू से होगा। एथलेटिक्स में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर में रजत पदक जीतने के एक दिन बाद अब 1500 मीटर स्पर्धा में भाग ले रहे हैं। पारुल चौधरी और पूजा महिलाओं के 1500 मीटर फाइनल्स में उतरेंगी। एशियाई खेलों के 7वें दिन कल भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 10 रजत और 12 कांस्य पदकों सहित कुल 24 पदक जीतकर 12वें स्थान पर बना हुआ है। 99 स्वर्ण पदकों के साथ चीन शीर्ष पर है। जापान दूसरे स्थान पर है, उसने अब तक 29 स्वर्ण पदक जीते हैं। दक्षिण कोरिया 13 स्वर्ण पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। उधर उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में विश्व चैंपियन डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को पराजित किया। इस जीत के बाद भारतीय पुरुष टीम दूसरे स्थान पर आ गई है। अब 10वें दौर में भारत का मुकाबला उज्बेकिस्तान से होगा। महिला वर्ग के 9वें दौर में भारतीय टीम उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर दूसरे स्थान पर आ गई है। अगले दौर में भारतीय टीम का मुकाबला चीन से होगा।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज की कड़ी में पद्मश्री से सम्मानित बसंती देवी से बातचीत प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आज दोपहर 1:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
2: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
9: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री मोदी के भजन क्लबिंग में शामिल होने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मोदी जेंजी के साथ भजन क्लबिंग में हुए शामिल। नवभारत टाइम्स के अनुसार जेंजी के साथ पीएम की भजन क्लबिंग। अमर उजाला के अनुसार भजन क्लबिंग में युवाओं संग झूमे प्रधानमंत्री मोदी। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री मोदी का बयान देते हुए लिखा है, देश में दिखा बदलाव, मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे, पीएम ने गिनाई उपलब्धियां, निवेश, रक्षा उत्पादन, विनिर्माण और निर्यात में हुई उल्लेखनीय वृद्धि। हिंदुस्तान के अनुसार देश का विकास इंजन बना यूपी। गृहमंत्री अमित शाह बोले, डेड इकोनॉमी कहने वालों की सोच ही डेड। दैनिक जागरण लिखता है गृह मंत्री ने यूपी में इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन समारोह में विपक्ष पर साधा निशाना। पंजाब केसरी के अनुसार तमंचों की फैक्ट्री की जगह बन रही ब्रह्मोस। दैनिक भास्कर की सुर्खी है भारत

0: की पहल, जहाजों नाविकों पर हमले रोकने के लिए बना ग्लोबल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, समुद्र में हमले वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा। जनसत्ता के अनुसार न्यूयॉर्क में ईरान के विदेश मंत्री ने कहा, होर्मुज खोलने के लिए 7 दिनों का प्रस्ताव। अमर उजाला का शीर्षक है, स्वर्णिम निशाना, सुरुचि और कमल ने देश को दिलाया दूसरा गोल्ड, एक ही दिन में भारत को 2 रजत सहित 6 पदक। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अंतरिक्ष में AI डेटा सेंटर बनाने की तैयारी में गूगल, सौर ऊर्जा से चलेगा AI कंप्यूटिंग सिस्टम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा, तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश के कारण राज्य के सभी स्कूल आज बंद। भारत ने खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार होने वाले हमलों पर चिंता व्यक्त की। सावन बरवाल ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की मैराथन का रजत पदक जीता। और समरकंद में शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज गैप बिटवीन सिटीज एंड विलेजेस इन इंडिया हैज नैरोड सिग्निफिकेंटली ओवर पास्ट 12 ईयर्स। Heavy rain slashed several districts of Uttar Pradesh. Schools closed in many districts following alert for heavy downpour. Chhattisgarh government declares holiday today for all schools in the state due to continuous rain over past 2 days. India raises concerns over repeated attacks on commercial shipping and seafarers in Gulf, Red Sea and Black Sea. Savan Barwal wins silver medal in men's marathon event at Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. And D. Gukesh secures India's victory over Germany in 9th round of FIDE Chess Olympiad in Samarkand. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past 12 years, the gap between cities and villages in India has narrowed significantly. He highlighted the considerable improvement in rural infrastructure and noted that women across the country have also become increasingly self-reliant and economically empowered. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Varanasi to Vadnagar under Seva Sankalp Abhiyan. He emphasized the importance of social service, social reform and positive change. He said Viksit Bharat can be realized only with the contribution and participation of everyone. Mr. Modi highlighted that Vadnagar gave him the values that shaped his life, while Kashi added countless colors of service to those values. He expressed happiness that young people are also enriching this journey with the many colors of service.
3: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
2: During the interaction, these Yatris shared their experiences with the Prime Minister. Mr. Modi also urged the Yatris to maintain a diary and record their experiences during the Yatra. In Uttar Pradesh, heavy and incessant rain has thrown life out of gear in many districts. Schools till 12th will remain closed in several districts due to heavy rain alert. Many districts, including state capital Lucknow, are witnessing heavy rain due to cyclonic conditions from last 24 hours, normal life disrupted badly, and road traffic also affected due to heavy rain. Many rain-related accidents have also been reported from different parts of the state. In eastern Uttar Pradesh, a warning of very heavy rainfall has been issued, along with heavy rainfall, thunder and lightning, and strong winds. In western Uttar Pradesh as well, heavy rainfall and thunder and lightning are likely till 27th

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
0: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दीप
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा
2: RBI कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: वेलकम बैक दोस्तों, FM 102.5 MHz पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अज्ञानी आरजे अपनी दोस्त हिमानी के साथ। श्रोताओं आज 26 सितंबर का दिन भारतीय सिनेमा के पन्नों में बहुत खास है। आज हम याद कर रहे हैं बॉलीवुड के उस चमकते सितारे को जिसकी झुकी हुई गर्दन, चेहरे पर वो खास मुस्कान, सिर पर हैट और चलने का अनोखा स्टाइल, पूरा देश दीवाना था। जी हाँ हम बात कर रहे हैं सदाबहार देवानंद जी की। उन्होंने हमें सिखाया कि जिंदगी में उम्र चाहे जो भी हो दिल हमेशा जवान रहना चाहिए। आइए देव साहब के जन्मदिन पर सुनते हैं उनका ये खूबसूरत और अमर गाना।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन 102.5 मेगाहर्ट्ज़। दोस्तों, देव साहब की फिल्मों के गाने की सबसे बड़ी खासियत ये होती थी कि उनमें एक प्यारा सा नटखटपन और रोमानियत भरी नोकझोंक होती थी। जब वो पर्दे पर मुस्कुराकर प्यार भरी शिकायतें करते थे तो हर सुनने वाला बस देखता ही रह जाता था। वो दौर आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में ताज़ा है। आइए देव साहब के जन्मदिन के इस जश्न को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं ये बेहद नटखट और सदाबहार नगमा।

0: छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल सकोगे समझे।

0: हो रहना किसी के
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के

0: प्रदूषित पानी पीने से हम हो सकते हैं बीमार,
1: फैल सकती है महामारी, खतरे में पड़ सकती है जिंदगी,
0: छीन सकती है खुशियाँ हमारी। इसलिए पानी के स्रोत को रखें हम साफ,
1: फैलाएं नहीं गंदगी उसके आसपास,
0: पानी को रखें हम हमेशा ढककर
1: और उसको पिएं छानकर उबालकर,
0: पीने के पानी में हम हाथ नहीं डालें,
1: लंबी डंडी वाले बर्तन से पानी निकालें।
2: पानी रे पानी,
3: पानी पानी रे पानी,
0: आओ मिलकर करें प्रयास,
1: शुद्ध पानी हो सबके पास।
4: FM 102.5 MHz पर हिमानी आपके साथ है। दोस्तों, देवानंद जी की फिल्मों में सिर्फ अभिनय ही नहीं बल्कि संगीत और शायरी का भी अद्भुत संगम देखने को मिलता था। SD बर्मन साहब का संगीत, नीरज जी के लिखे बोल और देव साहब का वो जादुई अंदाज, जब फूलों और रंगों की बात गानों में होती थी तो वो नगमे इतिहास बन जाते थे। आइए देवानंद जी के जन्मदिन पर सुनते हैं उनकी फिल्म का ये बेहद सुरीला और काव्यात्मक गाना।

दोस्तों, अगर मुझसे कोई पूछे कि जिंदगी जीने का सबसे अच्छा अंदाज क्या है, तो मैं देवानंद जी के गानों की मिसाल दूंगी। हर फिक्र को धुएं में उड़ाना और हर परिस्थिति में मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना ही देव साहब की असली पहचान थी। उनकी ये बेफिक्री और पॉजिटिविटी आज भी हम सभी को मुस्कुराकर जीने का हौसला देती है। आइए सुनते हैं देवानंद जी की फिल्म का ये लाइफ चेंजिंग और आइकॉनिक गाना।

FM 102.5 MHz पर सुरों का ये कारवां लगातार जारी है। दोस्तों, देवानंद जी के बेहद खास गानों का सफर में अगला गाना अब हमारे सामने है। जब रात की खामोशी में चांदनी बिखरती थी तो देव साहब की अदायगी और गानों के बोल हर प्रेमी के दिल की धड़कन बन जाते थे। देवानंद जी आज भले ही हमारे बीच भौतिक रूप से ना हो, लेकिन अपने इन अमर गानों के जरिए वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। आइए सुनते हैं देव साहब का ये आइकॉनिक और मखमली गाना।

0: खोया क्या, खोया खोया क्या।
1: FM 102.5 MHz पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम उज्जैनी आरजे। दोस्तों, जहां अभी हमने बॉलीवुड के एवरग्रीन स्टार देवानंद जी के अमर गानों का मजा लिया, वहीं अब वक्त हो गया है आज के दौर की उस सुरीली गायिका का जन्मदिन मनाने का जिसकी आवाज़ सीधे रूह में उतर जाती है। जी हां, आशीष कौर। बहुत ही कम समय में आशीष कौर ने अपनी रूहानी और भावनात्मक आवाज़ से हर दिल में अपनी खास जगह बना ली है। आइए आशीष कौर जी के जन्मदिन के इस मौके पर सुनते हैं उनकी आवाज़ में ये बेहद खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला रोमांटिक गाना

FM 102.5 MHz पर हिमानी आपके साथ है। दोस्तों, असीस कौर की गायकी का सबसे सुंदर पहलू ये है कि जब वो कोई दर्द या मोहब्बत से भरा गाना गाती हैं तो ऐसा लगता है जैसे दिल के जज्बात सीधे सुर बनकर बह रहे हों। उनकी आवाज़ में वो कशिश है जो हर सुनने वालों को ठहराव देती है। असीस जी के जन्मदिन के सफ़र में आइए सुनते हैं उनकी आवाज़ का ये बेहद गहराई और मोहब्बत से भरा सुरीला नगमा।

आरजे हिमानी के साथ आप जुड़े हुए हैं प्रोग्राम उज्जैनी आरजे में। दोस्तों, असीस कौर सिर्फ इमोशनल गानों में ही नहीं बल्कि पंजाबी फ्लेवर और सॉफ्ट रोमांटिक बीट्स वाले गानों में भी कमाल का जादू बिखेरती हैं। जब भी उनका कोई गाना आता है तो वो प्लेलिस्ट में टॉप पर पहुंच जाता है। असीस कौर के जन्मदिन के इस जश्न में आइए सुनते हैं उनकी सुरीली आवाज से सजाइए अगला हिट रोमांटिक गाना।

गानों का सफर जारी है। दोस्तों, असीस कौर जी ने बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक चार्टबस्टर गाने गाए हैं, चाहे कोई नया सिंगल हो, पार्टी ट्रैक हो या फिर दिल को सुकून देने वाला मेलोडी सॉन्ग। उनकी आवाज हर अंदाज में फिट बैठती है। आइए असीस कौर जी के जन्मदिन के सिहाने पड़ाव पर सुनते हैं उनकी आवाज का एक और बेहद खास गाना।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन FM 102.5 MHz पर। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जब मन करता है कि सब कुछ थोड़ी देर के लिए भूल जाएं और उस पल को खुलकर जी लें। आखिर जिंदगी की खूबसूरती ही तो इन्हीं छोटे छोटे पलों में छुपी होती है। तो चलिए ऐसे ही एक खूबसूरत एहसास को संगीत के साथ महसूस करते हैं।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन FM 102.5 MHz और कार्यक्रम है उज्जैनी आरजे। दोस्तों, कभी किसी के साथ होना ही अपने आप में खूबसूरत एहसास बन जाता है। उसकी मौजूदगी में सुकून मिले, उसकी बातें चेहरे पर मुस्कान ले आए और दिल बस उसी के करीब रहना चाहे। तो आइए प्यार के इसी खूबसूरत एहसास को थोड़ा और महसूस करते हैं संगीत के साथ।

पर आ पहुंचा है। आज हमने बॉलीवुड के एवरग्रीन स्टार देवानंद जी के अमर गानों को याद किया और साथ ही आज की सुरीली गायिका असीस कौर जी के गानों से उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया। जीवन में बस एक ही दुआ होना चाहिए कि सब खुश रहें, मुस्कुराते रहें और सबका भला हो। आइए इसी पॉजिटिविटी और हैप्पी एंडिंग के साथ सुनते हैं आज का ये आखिरी और खुशनुमा गाना।

दोस्तों, देवानंद जी की सदाबहार यादें, असीस कौर के सुरीले नगमे और ढेर सारी बातें करते करते ये एक घंटा कब पलक झपकते ही बीत गया पता ही नहीं चला। उम्मीद है कि आज का उज्जैनी आरजे प्रोग्राम आपके शनिवार को एकदम ताज़ा, पॉजिटिव और सुरीला बना पाया होगा। खुद भी मुस्कुराते रहिए, अपनों का ख्याल रखिए और संगीत का मजा लेते रहिए। अब अपनी दोस्त आरजे हिमानी को दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे आकाशवाणी उज्जैन 102.5 MHz पर। तब तक सुनते रहिए अपना पसंदीदा स्टेशन। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।

नमस्कार उज्जैन FM 102.5 MHz पर मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे मानी और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम बॉलीवुड बीट्स। आज 26 सितंबर है और शनिवार की इस खूबसूरत और ताज़ा तरीन सुबह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीकेंड की शुरुआत हो और साथ में बॉलीवुड के ऑल टाइम फेवरेट मेलोडियस और एनर्जेटिक गाने मिल जाएं तो पूरे दिन का मूड एकदम सेट हो जाता है। अगले आधे घंटे तक हम बॉलीवुड के ऐसे सदाबहार और जोशीले गानों का मजा लेंगे जो आपकी शनिवार की सुबह को मिठास और एनर्जी से भर देंगे। तो बस अपने रेडियो का वॉल्यूम बढ़ाइए और एंजॉय कीजिए। शुरुआत करते हैं फिल्म डंकी के इस बेहद लोकप्रिय और दिलकश गाने के साथ।

0: बधाई हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है।
1: सच?
0: हाँ हाँ सच। लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके कंधों पर। आपको माँ और उसके होने वाले बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा और जल्दी से जल्दी HIV की जांच भी करवाना, क्योंकि HIV का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
1: डॉक्टर, अगर HIV पॉजिटिव आए तो
0: बिना कोई देरी किए ART केंद्र से ART ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
1: डॉक्टर, हम आज ही जाकर HIV की जांच कराते हैं।
0: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
2: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, चलिए शनिवार की सुहानी सुबह को थोड़ा और चुलबुला और सुरीला बनाते हैं। अब जब बात हो विंटेज लव, पुरानी गलियों की रोमानियत और दिल को सुकून देने वाली धुनों की, तो ये गाना सीधे चेहरे पर मुस्कान ले आता है। फिल्म लुटेरा से सुनिए ये खूबसूरत और मनमोहक गाना।

0: रितेश, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है?
1: डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा शायद, लेकिन मुझे डर है कि हॉस्पिटल का ब्लड सेफ है या
2: अगर लाइसेंस हॉस्पिटल या लाइसेंस ब्लड बैंक है तो सेफ ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड स्टोर करने की अथॉरिटी सिर्फ लाइसेंस ब्लड बैंक और लाइसेंस हॉस्पिटल के पास ही है। और ये भी सुनिश्चित कर लेना कि ब्लड HIV टेस्टेड है या नहीं, क्योंकि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से HIV/AIDS जैसे कई बीमारियों की संक्रमण का भी डर रहता है।
1: अच्छा, अब तो मैं लाइसेंस ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से ही ब्लड लूंगा।
3: हाँ, और इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 1097 पर कॉल कर लेना।
4: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
5: आप जुड़े हुए हैं हिमानी के साथ बॉलीवुड बीट्स में FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोस्तों, गानों का ये सुहाना सफर आगे बढ़ रहा है। अब वक्त है एक ऐसे गाने का जो जिंदगी को बेफिक्र होकर जीने, अपने पंख फैलाने और नई उम्मीदों के साथ सूरज की बाहों में समा जाने का हौसला देता है। फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का ये सुपरहिट गाना आपकी सुबह को एक अलग ही ताजगी और लय देगा। सुनिए

0: बेटा,
1: सड़क पर पैदल चलते समय रखें हम कुछ बातों का ध्यान।
0: हमेशा सड़क के किनारे बनी पटरियों पर ही चलें।
1: सड़क पार करने के पूर्व दाएं और बाएं अवश्य देख लें।
0: तेज गति से आ रहे वाहन के सामने से निकलने की भूल न करें।
1: सड़क पार करते समय मोबाइल पर बात न करें।
0: चौराहे पर हमेशा ज़ेब्रा क्रॉस से ही सड़क पार करें।
1: हम रहेंगे अगर सावधान, राह हो जाएगी आसान।
2: ए भाई, दर देख के

श्रोताओं, गानों की इस प्लेलिस्ट में थोड़ा सा रोमांटिक और रूहानी रंग घोलते हैं। जब मोहब्बत का जिक्र होता है तो राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की जादुई आवाज़ का यह नगमा हर दिल की धड़कन बन जाता है।

FM 102.5 MHz पर गानों का ये सुहाना कारवां यूं ही आगे बढ़ रहा है। श्रोताओं, अब बारी है अपनी प्लेलिस्ट में थोड़ा सा मासूम प्यार और इमोशनल टच जोड़ने की। फिल्म क्रुक का ये बेहद लोकप्रिय गाना मोहित चौहान की मखमली आवाज़ में हर आशिक के दिल की बात बयां करता है। सुनिए ये शानदार गाना।

होना चाहिए। फिल्म पीके का ये आइकॉनिक डुएट गाना आपकी सुबह को यादगार बना देगा। शान और श्रेया घोषाल की सुरीली आवाज में सुनिए ये मासूमियत से भरा गीत।

क्या शानदार और सुरीला समापन था आकाशवाणी उज्जैन FM 102.5 MHz पर। शनिवार का ये आधा घंटा आपके साथ इन खूबसूरत गानों के बीच कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। उम्मीद है बॉलीवुड बीट्स ने आपके वीकेंड की सुबह को एकदम तरोताज़ा और खास बना दिया होगा। अब अपने दोस्त आरजे हिमानी को दीजिए इजाज़त, अपने शनिवार को मुस्कुराते हुए इंजॉय कीजिए और सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन। नमस्कार।

नमस्कार उज्जैन FM 102.5 MHz पर मैं हूँ आपकी आरजे हिमानी और वक्त हो गया है आपके सबसे पसंदीदा और सदाबहार शो आपकी फरमाइश का। श्रोताओं, आज 26 सितंबर है, शनिवार की इस खूबसूरत वीकेंड सुबह आपके खतों, संदेशों और फरमाइशों का पिटारा लेकर मैं हाजिर हो चुकी हूँ। आज की पहली फरमाइश हमें भेजी है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिंपल देवांगन, डोंगर

कौ जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, तन्मय बेबी अनिष्का, राधिका गजबिये। साथ ही इस गाने को सुनना चाहते हैं ऊपर कोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अरजान और अदान अब्बासी और नानाखेड़ा बस स्टैंड से लोकेंद्र वर्मा। आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गाना।

श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अगली फरमाइश हमें भेजी है महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लाहौरी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे और गायत्री धनजे ने। साथ ही इस गाने को सुनना चाहते हैं खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और

5 मेगाहर्ट्ज पर फरमाइशों का सिलसिला जारी है। अगली फरमाइश हमें भेजी है कृष्णानगर टीवी टावर सेमिनार हिल्स नागपुर महाराष्ट्र से नाना डोंगर दिवे, रमाताई डोंगर दिवे, सीमाताई डोंगर दिवे, रीमाताई डोंगर दिवे, दीक्षाताई डोंगर दिवे और राहुल डोंगर दिवे ने। साथ ही इस गाने को सुनना चाहते हैं बरेडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सब्बासेरे। आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गाना।

श्रोताओं, अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर, जो हमें मिली है आशा रेडियो श्रोता संघ मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गम्हाड़कर, श्रीमती सरिता गम्हाड़कर, प्रिंस और एकांश गम्हाड़कर की। साथ ही इस गाने को सुनना चाहते हैं आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से श्रीमती वैशाली शैलेश गम्हाड़कर, श्वेता सुमित गम्हाड़कर, कुंवारी ध्वनि गम्हाड़कर और बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गम्हाड़कर, प्रणीता गम्हाड़कर और टुक टुक गम्हाड़कर। आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर, जो हमें भेजी है नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर और मोहम्मद उमर डावर ने। साथ ही इस गाने को सुनना चाहते हैं अम्बेडकर चौक खुराई से राम सखी, परमानंद, सौरभ, गौरव, एलपी रोहित, लल्लूराम, पूरन रोहित, छोटू डुंडुन और समस्त परिवार। आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गाना।

श्रोताओं, अगली फरमाइश हमारे पास आई है कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार की। मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता की। साथ ही इस गाने को सुनना चाहते हैं बरेड़ी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची करमरकर और तनु करमरकर। आइए सुनते हैं इनकी पसंद का गाना।

श्रोताओं, सफर को आगे बढ़ाते हुए आइए चलते हैं अगली फरमाइश की ओर, जो हमें मिली है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया की। साथ ही इस गाने को सुनना चाहते हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गाना।

श्रोताओं, फरमाइशों का सिलसिला लगातार जारी है। अगली फरमाइश हमारे पास आई है मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमीलागंज आलोड जिला रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा, ऋषि वर्मा की। साथ ही इस गाने को सुनना चाहते हैं बोरखेड़ा पीपरामल जिला उज्जैन से विनोद मुड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मुड़त, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा और कुश मुड़त। आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश पर ये गाना।

श्रोताओं, अगली फरमाइश हमारे पास आई है विद्यापति नगर उज्जैन से अशोक मालवीय, मोहित मालवीय, माया मालवीय, किवी और शिवी की। साथ ही इस गाने को सुनना चाहते हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा और कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गाना।

श्रोताओं, अगली फरमाइश हमारे पास आई है भंडार सिवनी कोंडा गांव छत्तीसगढ़ से सुभाष चक्रधारी, श्रीमती कविता चक्रधारी, मुस्कान अनुष्का चक्रधारी की। साथ ही इस गाने को सुनना चाहते हैं शालार पहलगाम कश्मीर से परिजादा, मेहरजुद्दीन, केशरदीन और नजमदीन, और भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुंवर, दीपक श्याम कुंवर, श्रीमती प्रमिला और ज्योति श्याम कुंवर। आइए सुनते हैं इनकी पसंद का गाना।

0: FM 102.5 MHz पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, अगली फरमाइश हमारे पास आई है ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार, मोहम्मद हसनैन पवार। साथ ही इस गाने को सुनना चाहते हैं बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनीता गंगराड़े, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका गंगराड़े। साथ ही इस गाने को सुनना चाहते हैं ग्राम छेंगा व देवी जिला खंडवा से अशोक कुमार वागे, वंदना वागे, भूपेंद्र वागे, झवर वागे, तनुश्री, आरोही और काना वागे। आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गाना।
1: टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन लेट्स स्टार्ट द फन।

श्रोताओं, अब हम हमारी आखिरी फरमाइश की ओर पहुंच गए हैं जो हमें भेजी है शीतल रेडियो श्रोता संघ ग्राम बहरामपुर टेमा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से। डॉक्टर तिलोक चंद्र वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक, सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन वर्मा, समर, राज, आर्यन वर्मा, बेबी आरोही, इशिका वर्मा और अंजलि वर्मा। साथ ही इस गाने को सुनना चाहते हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतेक बिरक और मीका बिरक। आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गाना।

श्रोताओं, तो ये था आज का आपकी पसंद और आपकी यादों से सजा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। उम्मीद है सुरीले गानों ने आप सभी श्रोताओं के शनिवार को बेहद खास बना दिया होगा। जिन श्रोताओं की फरमाइशें आज समय की कमी की वजह से रह गई हैं, उनसे माफी चाहेंगे। अगले अंक में उन्हें जरूर शामिल किया जाएगा। अब विदा लेने का समय है। मैं थी आपकी उद्घोषिका हिमानी, आकाशवाणी उज्जैन FM 102.5 MHz पर। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के उज्जैन केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में अगला कार्यक्रम विविध भारती मुंबई से होगा।
1: लेखक, निर्देशक और अभिनेता,
2: हमें तुम्हारा लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा।
1: इंतजार कीजिए।

0: मैटिनी शो दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं हास्य कलाकार उदय सिंह दहिया से यूनुस खान की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और इस समय हमारे स्टूडियो में हैं उदय दहिया, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, जाने माने कॉमेडी आर्टिस्ट हैं। उदय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: बहुत धन्यवाद यूनुस जी, और विविध भारती जो कि हमारे बचपन से हमने इसको सुना,
1: बिल्कुल,
2: और जब सुनते थे तो कभी सपने में सोचते थे कि क्या हमारी आवाज भी यहाँ पर सुनाई देगी,
1: और आज आ रही है,
2: और आज आ रही है तो एक सपना साकार हो रहा है।
1: जब आपने बचपन का जिक्र किया तो चलिए फिर बचपन में चलते हैं
2: जी।
1: तो कहाँ आपका बचपन बीता था और कैसा था आपका बचपन?

0: बचपन बड़ा मजेदार था। कारण ये है कि पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट थे,
1: हाँ
0: तो अलग अलग शहरों में ट्रांसफर होते थे, तो
1: हाँ
0: एक ही शहर नहीं बहुत सारे शहर
1: बहुत
0: देखे।
1: सारे शहरों वाला बचपन है।
0: जी जी
1: जैसे
0: जैसे मेरा जन्म हुआ मध्य प्रदेश के इटारसी शहर में,
1: बताओ
0: फिर पिताजी का ट्रांसफर हो गया भोपाल,
1: तो भोपाल आ गए
0: फिर भोपाल से ट्रांसफर हो गया रायसेन।
1: लो।
0: तो ऐसे शहर बदलते रहे बदलते रहे, ऐसे 5-7 शहरों में बदल के फिर हम लोग, अब नर्मदापुरम हो गया, पहले नाम होता था होशंगाबाद।
1: होशंगाबाद जी
0: तो उसमें एक कस्बा है, तहसील प्लेस है पिपरिया,
1: हाँ।
0: वहां मेरा ज्यादा लॉन्ग टाइम बीता है।
1: अच्छा पिपरिया यानी पचमढ़ी जाने के रास्ते वाली
0: जी
1: जगह।
0: बिल्कुल, पचमढ़ी का मुख्य द्वार।
1: क्या बात है। तो मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बुंदेलखंड से ताल्लुक है
0: हाँ जी बिल्कुल है
1: आपका
0: क्योंकि बुंदेलखंड में मेरा ननिहाल है।
1: अच्छा
0: हाँ
1: कहां पर।
0: ये है सतना पन्ना। हाँ जी,
1: पन्ना तो टाइगर रिजर्व के लिए बड़ा
0: टाइगर रिजर्व
1: मशहूर
0: है जहां पर हीरे और पन्ने निकलते
1: है क्या
0: हैं
1: बात है। मुझे ये बताइए कि बचपन से जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो परफॉर्मेंस की दुनिया कहां से शुरू होती है।
0: ये शुरू होती है 1987 में, जब हमारे एक ऐसे कलाकार जो गायक भी एक्टर भी कॉमेडियन भी राइटर भी डायरेक्टर भी, तमाम खूबियां जिनके अंदर हैं,
1: किशोर
0: किशोर
1: कुमार
0: कुमार जी।
1: जी।
0: तो उस समय वो नहीं रहे थे 1987 में, तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर लगातार उनकी फिल्में आती थी और मैं उस समय कुछ 6वीं 7वीं पढ़ता था।
1: जी
0: तो उनको जब मैं देखता था तो मैं सोचता था यार ये कौन है, क्योंकि बचपन में इतना ज्यादा हम जानते नहीं
1: पता
0: थे,
1: नहीं होता।
0: बस इतना मालूम था कि कोई बहुत अच्छे कलाकार हैं। और जब मैं उनको देखता, उनकी भाव भंगिमाएं जो एक जगह कभी टिकते नहीं थे, आप स्क्रीन पे उनको देखो तो पूरा बॉडी लैंग्वेज उनका हिलते ही रहता था, कभी एक भंग ऊपर जा रही है। मैं सोचता था ये क्या कर रहे, ऐसा मैं भी कुछ करूंगा कि लोग हंसे और खुश हों, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आए।
1: वाह वाह वाह।
0: तो वहां से मैं प्रेरित हुआ और फिर मैंने एक विधा सीखी। वैसे मैं चाहता था कि मैं जिंदगी में गायक बनूं,
1: अच्छा
0: लेकिन इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, घर के हालात ऐसे नहीं थे कि हमको अलग से कोई तालीम दी जाए, सिखाया जाए, कहीं भेजा जाए। तो फिर मैंने सोचा एक ऐसी विधा जिसका कहीं कोई स्कूल नहीं होता, और वो है कॉमेडी।
1: बिल्कुल
0: कॉमेडियन बनाने का कहीं कोई स्कूल नहीं होता,
1: सही है।
0: मतलब आपको एक्टिंग का स्कूल मिल जाएगा, सिंगिंग का मिल जाएगा, डांसिंग का मिल जाएगा, लेकिन कॉमेडी का स्कूल नहीं मिलता।
1: यस
0: कॉमेडी खुद सीखी जाती है, ये एक लव की तरह सीखी जाती है।
1: बिल्कुल
0: बहुत सारे द्रोण आपके सामने होते हैं, अलग अलग सीनियर कलाकार, किसी का बोलने का ढंग सीखते हैं हम, किसी से बॉडी लैंग्वेज सीखते हैं, किसी से आवाज का थ्रो सीखते हैं। तो मैंने भी ऐसे फिर ये सीखना शुरू किया और फिर धीमे धीमे करके मैं मंचों पे आने लगा।
1: क्या बात है।
0: और मैं सबसे पहले मैंने मिमिक्री सीखी, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी का पहला जो पायदान होता था वो मिमिक्री होता था, किसी की नकल कर लेना।
1: और जिन दिनों की आप बात करें उन दिनों तो स्टैंड अप कॉमेडी जैसा कॉन्सेप्ट नहीं था,
0: नहीं था
1: पर
0: बिल्कुल नहीं
1: मिमिक्री
0: था।
1: बहुत होती थी। और मध्य प्रदेश में मिमिक्री के राजा कौन हुआ करते थे।
0: अरे नायकर साहब
1: जबलपुर के नायकर
0: जी
1: साहब।
0: जी जी तो बस ऐसे बड़े सीनियर कलाकारों को हम मंचों पे सुनते थे, उनको सुनकर सीखते थे कि कैसे बोलना है, और फिर हमने कुछ अपना भी सीखा, अपना कुछ बनाया। जैसे मैंने कुछ अलग तरह की मिमिक्री सीखी। उस समय टेलीविजन पर महाभारत सीरियल आता था,
1: हाँ।
0: तो उनके कुछ कलाकारों की आवाज की कॉपी करने लगा।
1: यहां से शुरुआत हुई जैसे भीष्म पितामह।
0: भीष्म पितामह मैं करता था, मैं दुर्योधन करता था मैं।
1: अच्छा कड़क आवाज वाला जो।
0: तो लोगों को बहुत पसंद आता था वो, लोगों को लगता अरे महाभारत हमारे घर में आता और उसका कलाकार सामने खड़ा है तो बहुत लोगों का प्यार मिला उससे मुझे।
1: कुछ करके बताएं।
0: जैसे मैं महाभारत का एक सीन आपको सुनाता हूं जिसमें दुर्योधन कुछ कह रहे हैं और बीच में फिर मुकेश खन्ना भीष्म पितामह को समझाएंगे, तो आप सुनिएगा।
1: जी जी जी
2: आप चाहे कुछ भी कहें मामा श्री, लेकिन मैं उस ग्वाला कृष्ण को मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा। यदि उसने भरी सभा में कोई उल्टी सीधी बात कही तो उसी वक्त उसे बंदी बना लूंगा, समझे।
1: क्या बात है, बिल्कुल पुनीत इसर वाली आवाज है।
0: आप भीष्म पितामह समझा रहे
1: वो कड़क आवाज
0: वो समझा रहे हैं। कुछ कहने से पहले तनिक सोच तो लिया करो वत्स, कुछ सोच तो लिया करो। अरे धृतराष्ट्र समझाओ अपने इस पुत्र दुर्योधन को। अरे कहने से पहले तनिक सोचता भी नहीं है। अरे इस तरह से तुम कहते रहे वत्स तो बताओ, क्या हमारी बूढ़ी छाती अर्जुन के वाणों को झेल सकेंगी वत्स।
1: क्या बात है।
0: तो इस तरह से
1: वो जमाना याद आ गया जब
0: बचपना
1: कर्फ्यू लग जाता था।
0: जी जी
1: रविवार को लोग महाभारत दिखा करते थे।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो ये स्कूल में आप करने लगे।
0: ये

0: स्कूल में करने लगा था।
1: फिर आगे
0: मैं धीरे से बढ़ा तो अपने शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से राजधानी भोपाल, फिर आसपास के और बड़े
1: लोग
0: शहर
1: बुलाने लगे
0: ऑर्केस्ट्रा में, नवरात्रि में, फिर ये सोशल वाले जो क्लब्स होते हैं जो इस तरह के सोशल वाले प्रोग्राम कराते हैं,
1: हाँ।
0: उन्होंने मुझे बुलाना शुरू किया।
1: मतलब आप शुरू से ही बिजी हो गए।
0: जी बिल्कुल, मैं 10वीं क्लास में आते आते प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन गया था।
1: घर से डांट पड़ती थी
0: मुझे? हाँ, घर से डांट पड़ती थी,
1: पढ़ लिख लो।
0: लेकिन वो डांट इसलिए नहीं पड़ती थी ज्यादा कि मैं स्कूल अटेंड करता था बराबर।
1: अच्छा।
0: और शाम को 5 बजे छुट्टी हुई स्कूल की, मैं घर आया, मैंने अपनी ड्रेस चेंज की, सब अपने रंगीन कपड़े पहने प्रोग्राम वाले, और किसी ट्रेन में बैठकर आसपास के किसी शहर में पहुंच जाता था, प्रोग्राम करता था, और रात की किसी ट्रेन से वापस आ जाता था।
1: अरे,
0: और सुबह बराबर स्कूल अटेंड करता था।
1: इतना डिसिप्लिन, इतनी मेहनत।
0: तो हमारे टीचर मन में सोचते थे क्या है, बोले ये लड़का कल भी स्कूल आया था, आज भी आया है, और आज इसका अखबार में फोटो छपाई, कल ये वहां प्रोग्राम कर रहा था,
1: ये कैसे हो गया,
0: ये कैसे संभव होता है। तो बड़े खुश होते थे इसको देखकर कि चलो कोई एक लड़का है जो अच्छा काम कर रहा है, जिसकी फोटो आती है अखबारों में, तो प्रसन्न होते थे बहुत वो।
1: वाह वाह।
0: और मैं पढ़ने में तेज तो नहीं था, लेकिन एवरेज था, लेकिन ठीक था मैं।
1: हाँ, बढ़िया है। तो कॉमेडी का जो दौर नहीं था, मतलब मिमिक्री करनी होती थी और अलग अलग शहरों में जाके आप अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे थे, वहां से आगे के रास्ते किस तरह से खुले?
0: देखिए, मैं अपने मध्य प्रदेश में सब जगह प्रोग्राम कर रहा था और ये बहुत अच्छे से चल रहा था। तब तक करते करते अपना हाई स्कूल कंप्लीट करके मैं कॉलेज में भी आ गया था, और कॉलेज में जो यूथ फेस्टिवल होते हैं, युवा उत्सव,
1: बिल्कुल,
0: उसमें हम प्ले में भाग लेते थे। कभी कहीं भाषण हो रहा है, कहीं वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही है, जो भी हो रहा है उसमें हमको उसमें पार्टिसिपेट करना है, ये सब चलता था। उसमें मैं जीत कर एक शहर से दूसरे शहर, फिर कॉलेज के प्रोग्राम होते थे,
1: फिर राज्य स्तरीय,
0: हाँ, तो उन सब में मैं जाता था। फिर कॉलेज के फाइनल ईयर के बाद मैं सोचा था अब कहीं नौकरी के लिए अप्लाई करूंगा, तभी मेरे घर एक फोन आया।
1: अच्छा।
0: उस समय टेलीफोन होता था, मोबाइल आया नहीं था, आया होगा तो बड़े शहरों में आया था, हमारे यहाँ पहुंचा नहीं था। एक फोन आया, हम स्टार टीवी से बात कर रहे हैं,
1: अरे बाप,
0: एक कार्यक्रम बन रहा है द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, इसमें उदय दहिया साहब को हम बुलाना चाहते हैं।
1: उन तक आपका नाम पहुंच गया था?
0: हाँ, वो टीम जब मध्य प्रदेश आई तो उन्होंने पता किया, जो मैंने आपको बताया सोशल जो प्रोग्राम कराते हैं, इस तरह की समितियां कमेटियां होती है, तो उन्होंने बताया एक उदय दाहिया है,
1: वो अच्छा करते हैं,
0: वो बहुत अच्छा कॉमेडी करते हैं। तो उन्होंने मुझे फोन किया घर पे, मैं इत्तेफाक से घर में नहीं था, मेरी माँ ने, अम्मा जिनको बोलते हैं, उनने फोन उठाया, बोले बेटा वो तो भोपाल गए हैं शो करने, तो कल आएंगे। बोले ठीक है, कल हम बात करेंगे। अगले दिन उनका फोन आया तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा प्रोग्राम बन रहा है, आप आइए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊंगा, लेकिन मेरे प्रोग्राम चल रहे हैं, मेरा नुकसान हो जाएगा, और इस प्रोग्राम में आके मैं करूंगा क्या? आप तो कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, कॉमेडी में कोई कॉम्पिटिशन होता नहीं है। तो बोले आप कितने पैसे लेते हैं प्रोग्राम के? मैंने कहा मैं 5,000 रुपये बोलता हूँ, मुझे 3-4 हज़ार रुपये मिल जाते हैं।
1: तो मेरा इतने ऑनेस्टली बता दिया।
0: हाँ, तो वो बोले कि एक काम करते हैं, हम आपको एक प्रोग्राम का पैसा देते हैं, आपका नुकसान नहीं होने देंगे, आप आइए। तो मैं फिर जबलपुर गया, ऑडिशन हुआ, और तुरंत उनने कहा कि आप मुंबई आ रहे हैं।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: और ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था,
1: क्योंकि उस वक्त लाफ्टर चैलेंज इतनी बड़ी चीज थी
0: जी,
1: कि उसमें जितने लोग शामिल हुए
0: जी,
1: सब जो हैं वो अलग अलग तरह से आज भी सक्रिय हैं
0: जी, बिल्कुल,
1: और बहुत ज्यादा नाम उन लोगों ने कमाया।
0: सच्ची बात है, पूरी दुनिया में नाम हुआ उससे,
1: बिल्कुल। तो हाँ, जो लाफ्टर चैलेंज का जो पहला सीजन था
0: जी,
1: उसमें आप शामिल थे।
0: साहब, ये एक मेरी खुशकिस्मती है कि जैसा मेरा नाम है उदय
1: जी,
0: जिसका मतलब ही होता है आरंभ होना,
1: और आरंभ से आप थे,
0: और मैं पहले सीजन के पहले एपिसोड का पहला कंटेस्टेंट था।
1: मतलब आप ही से शुरू हो रहा
0: है? मुझसे लाफ्टर चैलेंज शुरू हुआ था।
1: अरे गजब। और कौन कौन लोग थे उस
0: उसमें? राजू
1: थे,
0: राजू श्रीवास्तव थे, सुनील पाल थे, एहसान कुरेशी थे,
1: हाँ।
0: और जो अभी सीएम साहब हैं पंजाब के, भगवंत मान साहब थे।
1: गजब गजब।
0: तो ये सारी
1: मजेदार कॉमेडी करते थे वो,
0: बहुत मजेदार कॉमेडी होती थी।
1: गजब। उसको तो लोग बहुत देखा करते थे और लोग इंतजार करते थे, कोई एपिसोड चूकता नहीं था।
0: सच्ची बात।
1: लेकिन मुकाबला कितना सख्त था, एक से बढ़ के एक दिग्गज, सबकी अपनी अपनी शैली।
0: हाँ,
1: सुनील पाल की अपनी शैली, एहसान भाई की वो जो खींच कर बोलने की शैली
0: जी,
1: है ना, जो वो कहाँ के हैं एहसान भाई?
0: वो मध्य प्रदेश के हैं,
1: सिवनी के,
0: सिवनी के हैं।
1: हाँ, तो वो अपनी शैली लेके आए।
0: जी हाँ,
1: आपकी अपनी शैली।
0: जी बिल्कुल।
1: तो अपनी पहचान बनाने के लिए और इन दिग्गज लोगों से मुकाबला करने के लिए कितना जिगरा चाहिए था?
0: नहीं, हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं, और हम कुछ मुकाबले के लिए या उसके लिए तैयार नहीं थे।

0: हम तो ये था कि हमें जो आता है वो हमको करना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: अब जो सुनने वाले हैं, जो निर्णय करने वाले हैं, वो देखेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। हम तो सब अपना अपना फन लेकर आए थे, और ना तो हम किसी सामने वाले को देखकर अपना कोई अस्त्र शस्त्र बदल सकते थे,
1: जी
0: क्योंकि था ही उतना,
1: बिल्कुल
0: कोई एक्स्ट्रा कुछ था नहीं कि यार इन्होंने ये सुनाया तो अब मैं ये सुना दूंगा। हमारे पास अपना था, हमको ये सुनाना है।
1: क्या बात है।
0: अब ये अच्छी बात है कि जो सुनने वाले हैं, दर्शक हैं, श्रोता हैं, जज हैं, उनको पसंद आ गया।
1: लेकिन एक मजेदार बात मुझे समझ आ रही है कि ये लाफ्टर चैलेंज सीजन 1 एपिसोड 1 आप परफॉर्म कर रहे हो, कितना दबाव था और क्या परफॉर्म किया था आपने?
0: वहां पर ऐसा था कि कुछ फिक्स तो था नहीं। उन्होंने कहा कि आप क्या क्या सुनाते हैं सुनाइए, तो हमने अपना सुनाया आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा। तो
1: अच्छा,
0: उन्होंने उसमें किया कि ये रख लीजिए आप,
1: वाह,
0: और ये आपको एक एपिसोड में 4 अलग अलग दौर होंगे, पहला, दूसरा,
1: हाँ
0: तीसरा। तो पहले दौर में ये सुनाइए, दूसरे दौर में ये सुनाइए, और फाइनल में ये सुनाइए।
1: करेक्ट है,
0: तो पहले दौर में उन्होंने जो था हमारा ही माल पूरा, बस
1: बिल्कुल
0: उनने
1: बिल्कुल।
0: सिलेक्ट किया कि ये सुनाइए, और वो हमने सुनाया और वो पसंद आया लोगों को।
1: क्या था वो?
0: वो उस समय वो बात हो गई 20 वर्ष पुरानी, 2005 में आया था ये। तो पहले एपिसोड में मैंने जो सुनाया था वो कुछ लोगों की फिजिकल बॉडी के ऊपर था, वो कि अलग अलग तरह के लोग होते हैं, दुबले पतले मोटे अलग अलग तरह के लोग, तो
1: हाँ
0: उनको किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या उनको फायदे होते हैं। तो एक बहुत मोटा आदमी जूते की दुकान में गया, और जूते वाला उसके सामने जूते रखते जा रहा, और उसको क्या पेट इतना बड़ा था कि नीचे पैर दिखते नहीं थे उसको, तो वो ऐसे पैर करता था और बोलता था ये बन नहीं रहे, ये भी ठीक नहीं है, ये नहीं बन रहे। दुकान वाला परेशान, पसीना पोछड़ा, जूते का ढेर लगा हुआ है, बोल रहा कहां से ऐसे लोग आ जाते हैं। अचानक वो बोला यार ये एकदम सही है, ये एकदम फिक्स आ रहा, ये कितने का है? दुकान वाला बोला ध्यान से नीचे देख, वो जूता नहीं है, जूता रखने का डब्बा है जिसमें पैर फंसा दिया आपने।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: तो इस तरह का मैंने कुछ सुनाया था कि मैं एक कार्यक्रम से आ रहा था,
1: हाँ
0: ट्रेन से आ रहा था, मेरी स्टेशन आने के 4 स्टेशन पहले एक बहुत मोटी सी बहन जी मेरे पास आ गई और बोली भाई साहब मुझे अगले स्टेशन पे उतार दोगे? तो मैंने कहा क्यों बहन जी, आपसे क्या उतरते नहीं बनता? बोले ये बात नहीं है भाई साहब, दरअसल मैं बहुत मोटी हूं तो मुझे सामने नीचे का दिखता ही नहीं है, तो मैं सीधे उतर नहीं पाती हूं, तो मैं ऐसे घूम के उतरती हूं, तो लोग समझते मैं चढ़ रही हूं, धक्का देकर ऊपर कर देते हैं। मैं 4 स्टेशन से ट्राई कर रही हूं उतरने का, अभी तक नहीं उतर पाई।
1: कहां से सोचते हैं
0: तो
1: आप?
0: इस तरह का कुछ मैंने सुनाया था वहां पर।
1: अच्छा,
0: जी
1: लेकिन लगातार जब मामला आगे बढ़ता चला गया तो जाहिर है कि मुकाबला भी सख्त हुआ, और जो अपने कमान के तीर हैं वो तो
0: जी
1: खर्च होते जा रहे थे,
0: हाँ जी हाँ
1: तो
0: जी।
1: फिर कैसे सस्टेन किया?
0: देखिए एक फसल कटती है तो दूसरी फिर
1: दूसरी
0: आ
1: तो आ
0: जाती है,
1: जाती है।
0: तो वही चल रहा था कि जो पुराना था वो भेज दिया, अब कुछ नया बनाइए, और
1: हाँ
0: जो नया बनाते हैं, नया क्रिएशन करते हैं, वही मार्केट में चल पाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: एक निश्चित मात्रा में कोई लेकर अगर चल रहा है तो वो तो एक दिन खर्च हो जाएगा, फिर वो आदमी क्या करेगा? तो
1: बिल्कुल।
0: हम हमेशा कुछ ना कुछ नया बनाते हैं।
1: देखिए इतने साल हो गए, कितना आपने गिना? 20 साल,
0: 20 वर्ष हो गए,
1: 20 बरस में तो कितनी फसल उगा देनी पड़ी होगी।
0: बहुत सारी। अब आपने याद दिलाया तो मैं याद कर रहा हूं 20 साल पहले क्या सुनाया था। ये हम स्टेज पर सुनाते ही नहीं है आजकल, कुछ और ही
1: हाँ,
0: सुनाते हैं, कुछ और चलते रहता है,
1: क्योंकि सब बदल गया है,
0: सब
1: मामला
0: जमाना बदल रहा है पूरा।
1: उस वक्त जो कंटेस्टेंट थे उनके साथ किस तरह के रिश्ते थे, क्योंकि मुकाबला भी तो हो रहा था।
0: जी बिल्कुल, कलाकारों का आपस में कोई मुकाबला नहीं था, सब आपस में एंजॉय करते थे।
1: तो बैक स्टेज क्या चलता रहता था? इतने सारे कॉमेडियन एक साथ अलग अलग इलाकों के जुड़ रहे हैं,
0: बहुत मजे करते थे, मतलब जो वहां नहीं होता था
1: हाँ,
0: उसकी बातें चलती थी
1: अच्छा,
0: और उसको लेकर कॉमेडी की जाती थी, और चूंकि मिमिक्री आर्टिस्ट थे तो साथ वालों की, कलाकारों की मिमिक्री की जाती थी,
1: हाँ
0: तो बहुत मजेदार होता था।
1: एक दूसरे की भी करते
0: एक
1: थे
0: दूसरे की भी
1: जैसे?
0: करते थे, तो बुरा मानेंगे अगर सुनेंगे तो,
1: नहीं
0: हमारे
1: मानेंगे।
0: आप नायकर साहब को सुनते हैं?
1: अरे नायकर साहब हमारे शहर के
0: तो
1: हैं।
0: वो जब बात करते थे बोलते थे अरे दहिया ये देखो भैया हमारा तो ऐसा है कि हम जो हैं तो कभी ये भीड़ भाड़ के चक्कर में पड़ते नहीं हैं, हम अपना जबलपुर में रहते हैं, वहीं से प्रोग्राम करते हैं, बम्बई आते हैं, अपना प्रोग्राम किए और भैया चले गए जबलपुर, ये भीड़ भाड़ का चक्कर अपने को नहीं जमता।
1: बिल्कुल यही स्टाइल है उनकी, और वो जो चेहरे के निष्प्रिय भाव।
0: जी। तो ऐसे हम लोग एक दूसरे का भी करते थे।
1: अरे वाह, क्या बात है। एक कॉमेडियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है पैनी नजर रखना और दुनिया की धड़कनों को पहचान।

0: बताते रहना। इन दिनों आप कौन कौन से आइटम्स कर रहे हैं और उनमें से कुछ हमारे लिए पेश कीजिए।
1: जरूर, इस समय मैंने जो अपना एक कार्यक्रम बनाया है जो खास तौर से बहुत पसंद भी किया जा रहा है, मैं स्कूल में जो बच्चे हैं और जो परीक्षा को लेकर उनके मन में एक डर होता है और कम परसेंट ना जाएं, बहुत दबाव होता है बच्चों के
0: बहुत ज्यादा
1: और कई बार अनहोनी घटनाएं भी हो जाती हैं, तो उनको लेकर मैंने एक प्रोग्राम बनाया है। वो मुझे उसमें स्कूल वाले और कॉलेज वाले अपने स्कूलों में बुलाते हैं और मैं अपनी बातों से बच्चों को हंसाते हुए, हल्का फुल्का मनोरंजन करते हुए उनको उस फियर से बाहर करता हूं।
0: अरे गजब।
1: और उनको ये समझाता हूं कि जिंदगी में पढ़ाई तो जरूरी है लेकिन सबसे जरूरी कोई अगर चीज है तो वो है आपकी जिंदगी।
0: वाह वाह वाह।
1: आपका जो जीवन है उससे बड़ा कुछ भी नहीं है।
0: कितनी प्यारी बात है।
1: तो ये कॉन्सेप्ट लेकर मैं चल रहा हूं और इसको लेकर मैं बच्चों के बीच में कॉमेडी भी करता हूं, उनके स्कूल की बातें करता हूं, फिर अपने स्कूल की बातें उनको बताता हूं, हमारे पेरेंट्स क्या करते थे, हमारे टीचर क्या करते थे, आज के पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, आपके टीचर आपको क्या दे रहे हैं और आपको क्या सुविधाएं मिल रही हैं, और ये सब बताते हुए मैं उनको बताता हूं तो वो बच्चों को बड़ा मोटिवेट होते हैं। और मैं समझता हूं कि अगर मेरी बातें सुनकर बच्चे थोड़ा भी सीख जाएं या एक दो बच्चे भी सुधर जाएं, वो ना करें जो वो कर लेते हैं, तो मैं समझूंगा कि मैं अपने मिशन में सफल हो गया हूं।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बात है ये। लाफ्टर चैलेंज में शामिल होने के बाद जाहिर है कि अपना शहर छूट गया
1: जी,
0: है ना, और आप मुंबई के हो गए
1: जी।
0: जिंदगी कितनी बदल गई?
1: जिंदगी बदली तो है लेकिन बदलाव ही प्रकृति का नियम है, जो बदलता है वही सर्वाइव करता है, आगे जाता है। थमा हुआ पानी तो एक दिन दुर्गंध मारने लगता, जो बहता है वो साफ निर्मल होता जाता है। तो हम लोग बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे करके हमारे अंदर भी कुछ बुराइयां रही होंगी, वो पीछे छूटती जा रही हैं और अच्छा साफ होके उजले होते आगे बढ़ते जा रहे हैं।
0: क्या बात है। एक के बाद एक लगातार आपने बहुत सारे टेलीविजन पर काम किए और उसके जरिए आपकी लोकप्रियता भी लगातार बढ़ती चली गई। सबसे ज्यादा एंजॉय किस प्रोग्राम में किया आपने?
1: देखिए, काम तो बहुत सारा किया लेकिन जो शुरुआत कहते हैं ना, जब शुरू होता है वो आनंद एक अलग ही होता है। वो जो लाफ्टर चैलेंज किया था हम लोग, उसके बाद तो फिर क्या, वो पहली बार था, पहली बार हवाई जहाज में बैठना, पहली बार फाइव स्टार होटल में बैठना, पहली बार कैमरे के सामने किसी बड़े मंच पर सामने सेलिब्रिटी बैठे हुए हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो वो जो अनुभव था वो अद्भुत था। उसके बाद तो फिर वो एक आदत में आ गया कि भाई अब कोई और दूसरा सेलिब्रिटी आएगा, अब कोई दूसरा मंच होगा, लेकिन जो पहला मंच था उसका अपना एक अलग मजा था।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अब जो आपके पेरेंट्स हैं उनकी किस तरह की रिएक्शंस होती हैं आपके करियर को लेके? और क्योंकि जाहिर है कि जब आप अपने मध्य प्रदेश में परफॉर्म कर रहे थे तो उनकी एक चिंता आपके करियर को लेकर रही
1: जी। पहले तो ऐसा था कि पहले उनको स्टार्टिंग में डर लगता था कि ये क्या कर रहा है, हमारे पूरे खानदान में आसपास दूर दूर तक कोई कलाकार नहीं,
0: परफॉर्मर नहीं था,
1: और अगर वहां छोटी जगह में जो कलाकार होते भी हैं तो वो पार्ट टाइम में कलाकारी करते हैं, बाकी या तो कहीं नौकरी कर रहे होते हैं या कोई दुकानदारी कर रहे होते हैं। क्योंकि कलाकारी करके कोई अपना घर चला लेगा, जीवन चला लेगा, ये वहां कोई सोच भी नहीं सकता। तो वो यही कहते थे कि बेटा ये क्या चल रहा है तुम्हारा। तो हम बोलते थे कि अभी स्कूल चल रहा है, पढ़ रहे हैं, आगे चल के नौकरी करेंगे, काम करेंगे, ये शौक है हमारा। लेकिन जब उससे पैसे मिलने लगे, अखबारों में फोटो छपने लगी और पैसे आने लगे, तो उनको लगा कुछ तो अच्छा कर रहा है।
0: जब टेलीविजन पर आपको देखा मम्मी पापा ने
1: जी,
0: तो वो कैसा मोमेंट था?
1: वो तो अद्भुत था। वो बड़ी मजेदार घटना है। मेरे पिताजी तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे, बिजली विभाग में लाइनमैन की पोस्ट पर थे वो
0: जी जी।
1: तो बड़े अधिकारी ऊपर होते हैं साहब, बड़े बड़े, और काम बताते हैं, मिस्टर दाहिया यहाँ, मिस्टर दाहिया वहां जाओ, मिस्टर दाहिया। बाबूजी बोले, एक दिन मेरे कान में आवाज आई, दाहिया साहब। तो बोले, यार साहब मुझे दाहिया साहब क्यों बोल रहे हैं? बोले जी सर, दाहिया साहब ये उदय दाहिया कौन है? तो बोले साहब मेरा लड़का है दूसरे नंबर का। अरे बोले, उनको कभी आते हैं यहाँ? बोले हाँ आते हैं। बोले आए तो एक बार घर भेज देना, हमारे बच्चे मिलना चाहते हैं।
0: अरे गजब गजब।
1: तो वो मोमेंट इतना अच्छा था कि पिताजी ने बताया, बोले बेटा तुम्हारे कारण आज मेरे साहब ने मुझे साहब कहा।
0: कितनी प्यारी बात है, मतलब उन्हें कितना अच्छा लगा होगा,
1: बहुत अच्छा लगा
0: कि बेटे ने कोई तो उपलब्धि हासिल की है।
1: जी जी।
0: अब तो ये ट्रैवल करना, परफॉर्म करना एक रूटीन बन गया है, लेकिन अपने काम में नवीनता बनाए रखने के लिए क्या करते हैं आप?
1: मैं देखो आपको बताऊं, मैं एक तो पढ़ने का बड़ा शौकीन हूं।
0: हाँ हाँ।
1: और मैं चूंकि एक हास्य अभिनेता हूं,

0: तो मैं व्यंग बहुत पढ़ता हूँ, मैंने परसाई जी को खूब पढ़ा हुआ है।
1: क्या बात है,
0: उनका पूरा जितना भी साहित्य है छह खंड में वो मेरे पास है।
1: हाँ।
0: शरद जोशी जी हैं, जितने भी बड़े बड़े व्यंगकार हैं उनकी किताबें मेरे पास हैं, उनको सबको मैं पढ़ता हूँ। और एक बड़ी अच्छी चीज ईश्वर ने मुझे दी है कि मैं जो पढ़ता हूँ या जो देखता हूँ वो मुझे याद हो जाता है और बरसों बरस तक याद रहता है।
1: वाह वाह वाह।
0: तो मैं जो भी पढ़ता हूँ वो याद रहता है और कभी कभी मौका आने पर मैं उनको मंच पे सुना भी देता हूँ, जैसा मौका आ जाए।
1: क्या बात है।
0: तो वो बाद में नाम भी बोलता हूँ उनका कि इनकी रचना है ये।
1: हाँ हाँ।
0: क्योंकि वो उनका अधिकार है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी रचना सुनाता हूँ,
1: जरूर,
0: ये परसाई जी की, मैं उनकी रचना है घंटों सुना सकता हूँ, इतनी याद है मुझे।
1: वाह वाह।
0: एक छोटी सी रचना सुनाता हूँ
1: जरूर।
0: लोग कुत्ते पालने के बड़े शौकीन होते हैं और आजकल बड़ा मीडिया में छाया भी है, हमारे यहाँ से कोर्ट से भी निर्देश होते हैं, डॉग के ऊपर बड़े केसेस होते रहते हैं। लोग कुत्ते पालते हैं, अलग अलग तरह के कुत्ते पालते हैं, क्या शौकीन लोग होते हैं। एक आदमी अपने कुत्ते को लेकर यहां से निकला, दूसरा आदमी कॉलोनी के उस तरफ से निकला, ये दोनों आमने सामने से निकल रहे थे, क्रॉस हो रहे थे, अचानक इस आदमी के कुत्ते ने उस आदमी के कुत्ते को भौंक दिया।
1: याद आ गई मुझे ये रचना।
0: तो वो साहब बोले, बताओ कैसा कुत्ता है? मैनर्स लेस कुत्ता है। मैनर्स ही नहीं है, बताओ भौंक रहा है, भौंका जाता है क्या? तो ये साहब बोले, मैनर्स लेस किसको बोला है? मेरा कुत्ता बहुत अच्छी नस्ल का है, एक नंबर का कुत्ता है, और ये जो तुम बोल रहे हो ना नस्ली कुत्ता, तुम्हारा होगा ऐसा रोड छाप। हमारा नस्ली कुत्ता? बोले, रोड छाप हमारा नहीं है, रोड छाप आपका कुत्ता है। अगर हमारा कुत्ता रोड छाप होता तो भौंकता, आपका कुत्ता भौंका है, आपका कुत्ता रोड छाप है। बोले, मैं आपको जानता हूं बहुत अच्छे से, आपका कुत्ता भी रोड छाप है और आप भी रोड छाप हो, पिछले साल ऑफिस में रिश्वत लेते पकड़े गए थे। हाँ, तो बोले, आपको भी मैं जानता हूं, उसके एक साल पहले आप भी थाने गए थे। किसी ने पूछा, क्या हो गया? बोले, कुछ नहीं, कुत्तों की लड़ाई हो रही।
1: क्या बात है। परसाई जी की जो निगाह है वो बहुत तेज, और वो जो समाज पर जो चिकोटी काटते हैं वो बहुत तेज होती है
0: जी,
1: बहुत तीखी होती है
0: जी।
1: तो देखिए कितने सुंदर तरीके से आपने पेश किया। इतनी सारी बातें हो रही हैं, अब हम चाहते हैं कि थोड़ा परफॉर्म कर दें आप हमारे लिए, लोग इंतजार कर रहे होंगे।
0: जी जरूर जरूर। मैं आपको अपनी एक रचना सुनाता हूं
1: जी,
0: जिसको सुनाकर स्टार टीवी पे मेरा चयन हुआ था।
1: अच्छा।
0: इसको सुनने के बाद उस टीम ने कहा था कि एक ऐसी कॉमेडी है जिसे बोलकर सुनाना बहुत कठिन है, इसको पिक्चराइज तो किया जा सकता है लेकिन कोई बोल के बताए और वो पिक्चर सामने बन जाए, ऐसा हम पहली बार देख रहे हैं।
1: ओके।
0: तो ये कहानी है कि भगवान ने इंसान को दिमाग दिया है तो इसलिए दिया है ताकि वो किसी काम को करे तो वो काम को अच्छे से कर ले, मुसीबत में ना फंसे और थोड़ा जल्दी कर ले दिमाग लगा के। लेकिन इंसान की आदत है कि उसके पास दिमाग है तो ज्यादा चलाता है उसको, और जब ज्यादा दिमाग चलाता है तो किस मुसीबत में फंसता है वो। तो एक आदमी को डॉक्टर के पास लाया गया, डॉक्टर ने देखा उस आदमी का सर फूटा है, दांत टूटे हैं, पसलियां टूटी हैं, हाथ टूटे, कमर टूटी, पैर भी टूटे हैं। तो डॉक्टर ने पूछा, यार एक चीज बताओ, आदमी का एक्सीडेंट होता है तो वो एक दो जगह से टूटता है, तुम ये ऊपर से नीचे तक कैसे टूट गए? तो उसने क्या बताया, बोले, डॉक्टर साहब ये सब होशियारी के चक्कर में हुआ है। बोले, कैसे? बोले, डॉक्टर साहब क्या हुआ कि एक 10 मंजिल ऊंची बिल्डिंग में सबसे ऊपर काम चल रहा था, शाम के टाइम ठेकेदार आया और बोला, ये जितनी ईंट रखी हैं ये पूरी ले जाकर नीचे रख के आओ, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी। तो मैंने मन में सोचा कि अगर एक एक दो दो करके ये नीचे ले जाऊंगा ईंटों को तो मेरा तो सवेरा यहीं हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, मैं होशियार आदमी, मैंने दिमाग लगाया, वहां एक ऐसी गर्री लगी थी ऊपर, उस पे मैं ऐसे सामान खींच खींच के ऊपर लाते थे हम, तो मैंने एक अच्छी लंबी रस्सी उठाई और वो घिर्री में यूं फंसाया तो उसके दोनों छोर चले गए नीचे। अब डॉक्टर साहब, मैं नीचे उतर के आया, मैंने उसके एक छोर पे खाली ड्रम बांध दिया, खाली ड्रम 15 किलो का और मेरा वजन 50 किलो का, और मैंने दूसरे छोर को खींच खींच के ड्रम पहुंचा दिया ऊपर। अब दूसरे छोर को मैंने खंबे से बांध दिया, अब मैं ऊपर चढ़ के आया डॉक्टर साहब, और मैंने सारी ईंट उठा के वो ड्रम में डाल दी। अब ड्रम हो गया 400 किलो का और मेरा वजन तो 50, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब मैं नीचे उतर के आया डॉक्टर साहब, और मैंने मन में सोचा कि खंबे से रस्सी खोल के और धीरे धीरे छोड़ता जाऊंगा तो ड्रम नीचे आता जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं ये भूल गया कि ड्रम 400 किलो का और मैं 50 किलो का। तो जैसे ही मैंने खंबे से रस्सी खोली डॉक्टर साहब, सट से मेरे दोनों पैर जमीन से

0: मैं सरसराता ऊपर जा रहा, ड्रम सरसराता नीचे आ रहा, सरसराते चले जा रहे, सरसराते चले आ रहे। और जैसे ही मैं पांचवी मंजिल पे पहुंचा तो ड्रम आके मेरी खोपड़ी में लगा, खोपड़ी फूट गई। मैंने कहा रस्सी नहीं छोड़ना, अपन बहुत होशियार आदमी है। पांचवी मंजिल पे आ गए, यहां से अगर रस्सी छोड़ेंगे तो खोपड़ी फूट चुकी, नीचे गिरेंगे, हाथ पैर सब टूट जाएंगे। तो मैं रस्सी जोर से पकड़ा रहा डॉक्टर साहब। अब मैं सरसराता ऊपर जाऊं, ड्रम सरसराता नीचे जाए, सरसराते चले जा रहे, सरसराते चले आ रहे। और जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा तो मेरे दोनों हाथ वो गर्री में चले गए, तो दोनों हाथ टूट गए।
1: लो भैया,
0: मैंने कहा खोपड़ी पहले ही फूट चुकी, हाथ इसमें टूट गए, अगर यहां से रस्सी छोड़ दी तो नीचे गिरूंगा तो साफ ही हो जाऊंगा। तो मैं जोर से रस्सी पकड़ा रहा डॉक्टर साहब। अब हुआ क्या कि जैसे ही ड्रम जमीन पर गिरा तो वो वजन के कारण फट गया, और जैसे ही फटा तो उसी ईंट गिर के हो गई खाली, तो वो हो गया 15 किलो का और मैं 50 किलो। अब डॉक्टर साहब मैं ऊपर से सरसराता नीचे आऊं, ड्रम सरसराता ऊपर जाए, और सरसराते चले जा रहे, सरसराते चले आ रहे। और जैसे ही मैं पांचवी मंजिल पे पहुंचा तो वो खाली ड्रम आके मेरे पैर में लगा, तो दोनों पैर टूट गए। मैंने कहा रस्सी नहीं छोड़ना, नहीं तो अपने हाथ पैर सब टूट गए, यहां से नीचे गिरे तो साफ ही हो जाएंगे। तो मैं जोर से रस्सी पकड़ा रहा डॉक्टर साहब। अब मैं सरसराता नीचे जाऊं, ड्रम सरसराता ऊपर जाए, और मैं जैसे ही नीचे पहुंचा तो वो ईंट के ढेर में गिरा। तो मेरी कमर टूट गई डॉक्टर साहब। और जैसे ही कमर टूटी तो मुझे चक्कर आ गया, और जैसे ही चक्कर आया तो मेरे हाथ से रस्सी छूट गई, और जैसे ही रस्सी छूटी तो 15 किलो का ड्रम 10वीं मंजिल से सरसराते आया और आकर मेरे ऊपर गिरा, पसलियां टूट गई, दांत टूट गए। अपन बहुत होशियार आदमी।
1: क्या बात है, ये तो विडंबनाओं का जो आपने दृश्य खींचा है वो बहुत ही कमाल है।
0: जी जी,
1: तो इस तरह से आप जो है कहानियां सुनाते हैं, अपने जीवन की सबसे यादगार घटना, सबसे यादगार शो हमें बताएं।
0: शो तो यादगार बहुत सारे हुए हैं, कई जगह गए हैं, अलग अलग तरह के मंच मिलते हैं। कभी कोई आध्यात्म का मंच होता है, कभी कोई राजनीतिक मंच होता है, कभी कोई फिल्मी सितारों का मंच होता है। तो हम जहां जाते हैं लोग हमसे अपेक्षा करते हैं कि वहां से रिलेटेड कोई बात करें। तो एक बार मैं प्रोग्राम करने गया था ब्रह्म कुमारी माउंट आबू, तो दादी ने मुझे बुलवाया और कहा, उस समय तक कुछ वैसे कॉमेडियन आ गए थे जो आजकल बहुत छाए हुए हैं, जो थोड़े से बिलो द बेल्ट बात करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो उन्होंने मुझे कहा, बेटा ये आध्यात्म का मंच है और आप लोग कॉमेडी वाले हैं, तो थोड़ा सा मंच की गरिमा बनाए रखिए। तो मैंने कहा जी दादी। अगले दिन जब मैं मंच पे आया तो मैंने प्रोग्राम किया ही नहीं, मैंने पहले एक छोटा सा प्रवचन सुनाया।
1: अरे गजब,
0: 1-1.5 मिनट की बात थी। वो इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा कि अब इस लड़के को जो करता है करने देना, ये बहुत अच्छा करने वाला है।
1: वाह वाह वाह।
0: वो चूंकि शिव बाबा को मानते हैं, तो मैंने जाके शुरू ही ऐसे किया कि शिव बाबा ने ही सब कुछ बनाया है, जितने भी रस हैं, श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, सारे रस बाबा ने ही बनाए हैं। और जब जब शिव बाबा ने कोई रस बनाया तो उसके साथ एक कैरेक्टर बनाया। जब श्रृंगार रस बनाया तो रति और कामदेव को बनाया, जब वो हमारे हृदय में आघात करते हैं तो प्रेम जागता है। ऐसे अलग अलग रस बनते गए, एक एक कैरेक्टर आते गए। फिर उन्होंने हास्य रस बनाया, तो हास्य रस के साथ उन्होंने भगवान श्री गणेश की रचना की। उदाहरण के तौर पर हम जब आरती गाते हैं तो गणेश जी की आरती में एक लाइन आती है, पग खंबासा उदर पुष्ट है, देख चंद्रमा हास्य करे, दे श्राप श्री चंद्रदेव को कलाहीन तत्काल करे।
1: वाह।
0: जब चंद्रदेव ने पहली बार गणपति जी को देखा तो उनका बड़ा सा पेट, खंबे जैसे बड़े बड़े कान, तो उनको उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, थोड़ा सा हंस दिए। लेकिन अगली लाइन में कहा है, दे श्राप श्री चंद्रदेव को कलाहीन तत्काल करे। गणेश जी को गुस्सा आ गया कि मुझे देख के कोई हंसेगा, मैं तुझे श्राप देता हूं, सारी कलाओं से विमुक्त करता हूं। तब ये बात आई कि देवता हास्य के लिए नहीं होते, देवता पूजनीय होते हैं।
1: वाह वाह।
0: उस दिन के बाद गणेश जी को देखकर कोई नहीं हंसा, वो प्रथम पूज्य बन गए। लेकिन भगवान शंकर जी ने ये रस तो बना ही दिया था, तो इसको बिखेरने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए था। तब भगवान श्री गणेश ने हम जैसे गणों की उत्पत्ति की और अब हमारी रचना करके हमको आदेश दिया कि जाओ इस संसार में मेरे बनाए हुए हास्य रस को बिखेर दो।
1: वाह।
0: तो उनके आदेश से मैं मंच पे आपके सामने खड़ा हूं और अब मैं यहां से उनके हास्य रस को बिखेरूंगा।
1: क्या बात है।
0: तो ये बात जब मैंने वहां कही तो बड़े खुश हो गए वो दादी माँ, और बोली ये लड़का जो है ये जो कॉमेडी सुनाता है इसको सुनाने देना।
1: वाह वाह वाह वाह। मतलब प्रॉपर मंच की गरिमा का आपने पालन किया।
0: जी बिल्कुल।
1: उदय जी, इतनी सुंदर बात आपने कही कि कॉमेडी के मंच पर गरिमा

0: कायम रखनी कितनी जरूरी है। ब्रह्म कुमारी जब आप गए और वहां परफॉर्म किया, आज जो कॉमेडी मंचों की हालत है, और दोनों तरह की कॉमेडी हो रही है, एक वो जो बहुत शालीन है और एक वो जिसमें शालीनता के तत्व कम है, तो क्या राय है आपकी?
1: देखिए, हर दौर में एक दर्शक वर्ग रहा है। अच्छी फिल्में, अच्छी कहानियां, अच्छे सीरियल पहले भी थे, बुरी कहानियां, बुरे सीरियल, बुरे दृश्य एडल्ट फिल्में पहले भी थी। सब जगह एक दर्शक वर्ग होता है। इनका भी एक दर्शक वर्ग है, वो इनको सुन रहा है, देख रहा है, लेकिन ये दौर ज्यादा लंबा कभी चलता नहीं है। एक जमाना था जब बड़ी खराब सी किताबें पढ़ने की रेलवे स्टेशनों के आसपास खूब बिकती थी, आज वो कहीं दिखाई नहीं देती है। ये इस तरह की जो चीजें होती हैं, ये कुछ समय के लिए होती हैं, इनकी उम्र लंबी नहीं होती है। ये लोगों के लिए कौतूहल का विषय तो होती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये जहन से बाहर भी बहुत जल्दी होती है। लेकिन जो अच्छा साहित्य, अच्छी फिल्में, अच्छा सामाजिक चीजें होती हैं, इनकी उम्र बहुत लंबी होती है, चलती रहती हैं। अब नायकर साहब को देखिए ना, हमारे मध्य प्रदेश के जो हैं, वो पिछले 60-65 सालों से मंचों पे हैं और आज भी हैं वो।
0: बिल्कुल,
1: आज वो 80 प्लस की एज में है
0: जी,
1: और अभी भी वो मंचों पर दो दो ढाई ढाई घंटे, तीन तीन घंटे परफॉर्म कर लेते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और जो आज के नए कॉमेडियन जिस तरह से कर रहे हैं, पहली चीज तो मैं उनको कॉमेडियन नहीं मानता हूं। और उनका एक दर्शक वर्ग है, वो कभी किसी के घर के शादी विवाह के कार्यक्रम में, किसी सामाजिक संस्था में जहां बहुत भीड़ हो, वो वहां परफॉर्म नहीं कर पाते। वो ऐसे 25-50-20 लोग बैठ गए सामने और उनको किस्सा गोई जैसा सुनाते हैं, तो वो अलग तरह का है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। आपकी जो पूरी यात्रा है उसमें एक पक्ष जो है बहुत बड़ा, वो अभिनय की दुनिया का है
1: जी।
0: ये कहां से शुरुआत होती है और इसमें कितना एंजॉय किया है आपने अभिनय की अपनी यात्रा में?
1: इसमें मैंने बहुत एंजॉय किया है, और अभिनय करना तो मैं चाहता था शुरू से, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए ना तो सुविधाएं थी, ना साधन थे, ना तो घर से इतने संपन्न थे कि घर से पैसे लेकर आ जाएं, ना मुंबई शहर में कोई रिश्तेदार था जिसकी सहारा हो कि इनके पास चले जाएं। तो हमारे लिए सपना ही था, लेकिन कहते हैं कि सपना अगर अच्छे से देखो तो वो भी पूरा हो जाता है। और जो एक 15-16 साल की उम्र का सपना होता है ना, वो पूरा जरूर होता है।
0: क्या बात है।
1: वो जो उम्र होती है 10वीं 11वीं जब पढ़ रहे होते हैं, उस समय सपने में ज्यादातर हमें अपने क्लास की कोई खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। वो उम्र ऐसी होती है, ज्यादातर लड़कों को यही होता है, वो फिलॉसफी है, उम्र ऐसी होती है। मुझे उस समय सपने में दिखाई देता था कि एक मंच है और सामने सेलिब्रिटीज बैठे हुए हैं, मैं मुंबई में खड़ा हूं और मैं प्रोग्राम कर रहा हूं।
0: वाह वाह वाह।
1: ये सपना मैं 15-16 साल की उम्र में देखता था
0: और वो पूरा हुआ।
1: इसलिए वो पूरा हुआ कि उस उम्र में जो सपना देखा जाता है वो पूरा होता है। मेरे साथ के लड़कों ने अपनी गर्लफ्रेंड का सपना देखा तो उसके साथ शादी करके अपने शहर में रह रहे हैं, उनका सपना ही पूरा हुआ है। मेरा अपना पूरा हुआ है।
0: जी जी
1: जी। सबका अपना अपना प्यार था, मेरा प्यार मंच था तो मुझे मंच मिल गया।
0: बिल्कुल। और बाद में एक्टिंग की दुनिया में चले आए और आपकी अपनी एक अलग पहचान एक्टिंग को लेकर बनी।
1: जी, मैंने कुछ सीरियल किए, मैंने लापतागंज किया है।
0: लापतागंज तो जैसे आपके साथ जुड़ गया है।
1: जी जी, लापतागंज किया मैंने, उसमें एक कॉमन मैन का कैरेक्टर किया, जिसमें एक ही एपिसोड में मैंने 5 तरह के कैरेक्टर किए, अलग अलग तरह के। फिर मैंने दूरदर्शन पे एक राशि विला सीरियल आता है वो किया, उसमें मैं लीड कैरेक्टर में था, उसमें उपासना सिंह हमारी बहन बनी थी, राजू खैर हमारे पिताजी बने थे, हेमंत पांडे हमारे बड़े भाई बने थे। ऐसे अलग अलग और भी बहुत से सीरियल किए, कुछ फिल्में की मैंने। एक मैंने ऐसी फिल्म की है जिसका नाम है कड़के कमाल के।
0: वाह वाह वाह।
1: और ये फिल्म है, इसमें नेपाल और हिंदुस्तान दोनों जगह की फिल्मों के कलाकारों ने मिलकर एक फिल्म की है।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो हीरो हीरोइन नेपाल के हैं, आर्यन अधिकारी और नीता धुमाना, ये वहां के बड़े स्टार हैं नेपाल के।
0: जी जी।
1: और कुछ एक्टर वहां के थे और कुछ हमारे यहाँ के, तो उसमें राजपाल यादव हैं, दयाशंकर पांडे हैं, मैं हूँ, मुश्ताक खान है, ऐसे अच्छे कलाकार हैं उसमें काफी। तो वो फिल्म मैंने की है, कुछ और भी फिल्में की हैं मैंने। एक फिल्म मैंने की है लव की अरेंज मैरिज, ये विनोद भानुशाली प्रोडक्शन की फिल्म है
0: जी।
1: और इसमें मैं राजपाल यादव और अन्नू कपूर जी का दोस्त बना हूं।
0: वाह वाह वाह।
1: तो ऐसी कुछ फिल्में की हैं मैंने।
0: कितना डिफरेंट है मंच पर परफॉर्म करना और एक्टिंग करना?
1: बहुत फर्क है, बहुत ही फर्क है। क्योंकि सबसे बड़ा फर्क तो यह है कि मंच पे हम करते हैं एकल अभिनय, उसमें हमें किसी का आपको क्लू नहीं चाहिए होता है, खुद ही कर रहे होते हैं। लेकिन जब एक्टिंग कर रहे होते हैं तो सामने वाले का डायलॉग कम खत्म हो रहा है, उसका डायलॉग किस रेंज पे था, उसने किस टोन में बोला है, वो किस सुर में था, उसके सुर से अपने सुर को मिलाना होता है। वो अगर गुस्से में है, किस भाव में है, तो हमको भी उसी हिसाब से बात करना है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो अभिनय बहुत डिफरेंट चीज है।
0: बिल्कुल, तो अभी अभिनय और कॉमेडी दोनों तरह की चीजें लगातार चल रही हैं। इतनी देर से हम बात कर रहे हैं, अब हम चाहते हैं कि थोड़ा परफॉर्म करें आप हमारे लिए।
1: जी बिल्कुल, मैं अभी जो बच्चों को लेकर कुछ सुनाता हूँ तो उसके ऊपर से मैं सुनाता हूँ कि आज के बच्चे क्या तेज दिमाग के बच्चे हैं। हम लोग तो कैसे थे, हमें तो पता ही नहीं होता था। अगर कोई कुछ बात करता था घर में, कोई आ जाए तो मेहमान के सामने बोलने में थोड़ा सा संकोच करते थे, डरते थे। बोलने से पहले सोचते थे कि हमारे बोलने के बाद हमारे पापा जी का क्या रिएक्शन होगा। लेकिन आज के बच्चे एकदम बिंदास हैं। मैंने एक बच्चे से पूछा, मेरे से बात कर रहा था, तो उससे पूछा मैंने, कहा बेटा एक चीज़ बताओ, जब ये कॉर्न तवे पर फूट कर पॉपकॉर्न बनता है गर्म तवे पर, तो ये उछलता क्यों है? तो बोलता अंकल आप उस पर बैठ के देखो, समझ में आ जाएगा। तो आज के बच्चे इतने हाजिर जवाब हैं, ऐसी बातें हैं उनकी कि जो उनका जवाब होता है वो हमारी समझ से बाहर होता है।
0: जी बिल्कुल, क्या बात है। तो ये जो पूरा परिदृश्य जहां अब चारों तरफ कॉमेडी है, लोग पॉडकास्ट में भी कॉमेडी कर रहे हैं, वीडियोस आ रहे हैं, टेलीविजन पर कंटेंट है, ओटीटी पर कंटेंट है, तो क्या एक कॉमेडियन के तौर पर आपकी चुनौतियां बढ़ गई हैं?
1: हाँ, बढ़ तो गई हैं। एक सबसे बड़ा कारण ये हुआ कि पहले अगर एक आधा घंटे का कंटेंट किसी के पास होता था तो बरसों बरस उसको सुनाते रहता था। एक शहर में सुनाया, कल जाके दूसरे शहर में वही सुना दिया, परसों तीसरे शहर में। आज हमारे साथ ये कि यहाँ हम कुछ सुनाते हैं और वो वीडियो बन जाते हैं और वो रातों रात वायरल हो जाते हैं सब जगह। तो जब हम अगले शहर में पहुंचते हैं तो उनके पास हमारा कंटेंट पहले से पहुंचा हुआ होता है। तो वहां जाके हमें कुछ नया सुनाना होता है,
0: हर बार कुछ
1: तो
0: नया,
1: हमेशा कुछ नया करते रहना
0: पर पुरानी चीजों की जो लोकप्रिय हो चुकी है उनकी फरमाइशें भी आती हैं।
1: हाँ, फरमाइश तो आती है, ये है, ये भी एक फायदा है कि लोगों का एक मनोविज्ञान है कि वो वही सुनना चाहते हैं जो उन्होंने आपसे पहले सुना हुआ है।
0: आपके लिए किस तरह की फरमाइश आती है?
1: मैं अगर मध्य प्रदेश में हूं तो वहां की बुंदेली भाषा के लोग चाहते हैं कि मैं उनको कुछ सुना दूं, और अगर मैं यहां हूं तो मेरा अपना जो स्टाइल है लोग चाहते हैं कि वो सुनाए।
0: तो हम भी चाहते हैं आप बुंदेली में सुना दें।
1: हाँ, क्योंकि हमारा ये रेडियो तो पूरे बुंदेलखंड, पूरी दुनिया में जाता है, तो बुंदेलखंड के लोग भी सुनते हैं इसको। तो बुंदेली में वहाँ के लोगों की एक बड़ी विशेषता होती है, वो जब बात करते हैं तो बड़ा तेज दिमाग होता है और कुछ शब्द ऐसे बोलते हैं जो वहाँ के लोग ही समझ पाते हैं, भाषा का है वो। जैसे एक इंटरव्यू था और एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो कम से कम शब्दों में अपनी बात पूरी करे। अब एक आदमी गया, बोले मैं आई कम इन सर, अरे बोले तुम अंदर आने में इतनी बात कर रहे हो, काम क्या करोगे, जाओ यहां से। तो दूसरा गया, उसने हिंदी में बोला, श्रीमान जी क्या मैं अंदर आ सकता हूं? बोले आप तो उनसे भी ज्यादा बात कर रहे हो, यहां उस आदमी की जरूरत है जो कम बात करे। अब ये हमारे यहां का था, बुंदेलखंड का, उसने दोनों को बुलाया, बोले क्या पूछा? अरे बोले मैंने अंग्रेजी में बोला, मुझे अंदर नहीं आने दिया। बोले मैंने हिंदी में बोला शुद्ध, मुझे भी नहीं आने दिया। अब बोले देखो मैं जा रहा हूं। ये गए, इन्होंने दरवाजे को थोड़ा सा ऐसा धक्का मारा, सर अंदर किया और बोले काय आए। बोले आ
0: जाओ, दो ही शब्दों में निपटा दिया,
1: दो शब्दों में निपटा दिया। तो बोले आ जाओ, तुम्हारी जरूरत थी।
0: क्या बात है,
1: तो
0: क्या
1: ऐसे
0: बात है।
1: लोकल की भाषा के
0: बुंदेलखंड की स्पिरिट को आपने बिल्कुल पकड़ा।
1: जी जी जी,
0: है ना। और कुछ बुंदेली में?
1: अब बुंदेली का मेरा एक सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है जो वहां पर लोग बहुत सुनते हैं और बहुत वायरल है।
0: जी,
1: थोड़ा सा 2-2.5 मिनट का है वो।
0: जरूर।
1: तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में नर्मदा मैया बहती हैं और नर्मदा जी जो है हमारे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। मतलब नर्मदा जी के कारण मध्य प्रदेश पल रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उन्हीं उन्हीं का जो जल आता है उसी से सब खेती सिंचाई सब होती है। तो बड़ी श्रद्धा का विषय है हमारे यहाँ, और लोग अमावस और पूर्णिमा के दिन नर्मदा जी में स्नान करने जाते हैं। और जब वो स्नान करने जाते हैं तो हर बड़े शहर से नर्मदा जी 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर ऐसे गांव-गांव से निकली हैं वो।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो लोग वहां दर्शन करने जाते हैं, नहाने स्नान करने। तो ज्यादा आवागमन के साधन नहीं है, एक सरकारी बस चलती थी, उसके बाद एक 3 पहिए का टेम्पो चलता था जिसमें 15-20 लोगों को वो
0: बिल्कुल,
1: और वो ड्राइवर ऐसा लटक के चला,
0: लंबा वाला।
1: हाँ, तो वो टेम्पो में एक गांव की महिला पहली बार बैठ के नर्मदा जी में स्नान करने जाती है। अब रात को तैयारी शुरू हो गई है, तो हमारे यहाँ जो बच्चों के जो नाम होते हैं वो बड़े गांव के हिसाब से रख देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: शहर जैसे अच्छे नाम नहीं होते। काला देखा तो करिया नाम रख दिया, गोरा देखा तो भूरा रख दिया, थोड़ा हेल्दी देख गया तो लड्डू गोपाल रख दिया। तो उनके बच्चे थोड़ा काला था तो उसका नाम रख दिया था करिया। अब पिताजी को वहां दद्दा बोलते हैं और माँ को बाई बोलते हैं।
0: बिल्कुल,

0: तो करिया के दद्दा यानी करिया के पिताजी और करिया की बाई यानी करिया की
1: अम्मा।
0: माँ। अब दोनों की बात चल रही है, कल नर्मदा जी नहाने जाना है, तैयारी शुरू हुई है। करिया के पिताजी यानी करिया के दद्दा ने बोलना शुरू किया, अरे करिया की बाई उमदा बास्केट में धोतिया लपेट के धल लियो, भुनसारे अपन नर्मदा सपड़वे चल
1: भुनसारे
0: और सकारू जल्दी उड़ जाइयो, लेट हो गए और बस निकल गई तो समस्या हो जाए, फिर कछु साधन नहीं मिले।
1: हो
0: अब सुबह पहुंचे तो इत्तेफाक से बस निकल गई,
1: निकल गई।
0: तो अब करिया की बाई ने पूछा कि अब का हुई है,
1: बस तो गई,
0: अब का हुई है, बस तो गई। तो अब इनकी बात चल रही है, करिया के दद्दा बोले कछु नहीं हो, चुपचाप मेरे पीछे चलिया। अब वो आगे कैसे गए वो पूरा किस्सा लौट के आके वो महिला अपनी एक पड़ोस की महिला को बता रही कि क्या हुआ।
1: ठीक है,
0: बोले कल का भाव आई जी करिया के दद्दा कहने लगे कि चल तेरे का नरब दस पड़े धल ना तो भाई भंसारे हम उठे बनिंदा बास्केट में धोतिया लपेट के धरी और सकारू सकारू उठ के बास्केट हाथ में लेके बस स्टैंड तन चले गए। वहां जान के देखे भाई तो बस निकल गई थी। तो मैंने कही अब भगवान जाने का हुई है। तो भाई जी करिया के दद्दा मुहे आंगे ले गए भाई वे भाई के सो टीन को डब्बा सो ठाड़ो बा को आंग ऐसा सुंगरिया जी सुमो। तो मैंने कही काय करिया एक दद्दा जो का जल थे, तो वो कहने लगे जाको ना टेम्पू है,
1: टेम्पू
0: तो अपन जई से चल हैं आज। तो भाई ये करिया के दद्दा तो उमदा ड्राइवर के बगल में आगे बैठ गए और मेरे का जो पीछे पटिया में बिठा दई।
1: हो
0: अब मैं वहां बैठी बैठी सोच रही अब भगवान जान का हुई है जाम। तो भाई ये के इतो बड़ो करिया से मोड़ा आओ माने बा को ढकना ऊंचो कर दो। और मैं वहां में बैठी बैठी सोच रही कि अब भगवान जान का हुई है। तो भाई वहां ने कोप्पा भर के पानी लिया और वहां में लेके टिको तो माने गट गट गट करके एक कोप्पा पानी पी गो। तो मैंने कहा ये उमीर राम जो के सो टेम्पू जल थे। अब मैं सोच रही अब भगवान जान का हुई है जाम है। तो भाई बाब करिया मोड़ा ने एक रस्सी निकारी और बाकी बोनट में ऐसी लपेट दई। ओबर रस्सी लपेट के जीवन बाकी रस्सी पकड़ के एक पांव बाकी टायर पे धरो। ओबर ड्राइवर से कहने लगो हूं तो भाई ड्राइवर ने भी कह दई हूं। और जैसे ही ड्राइवर ने हूं कही जीवन ने जोर से खींच के तान दो तो फटफटा के चालू होगा। अब वो ऐसो डगमगा रहो। तो मैंने कही काय भैया अब भगवान जाने जा मक्का हुई है। तो जी जी बा ड्राइवर के बगल में एक टीढ़ो सो हैंडल लगो थो बान बाय पकड़ के भीतरे करो फिर बाहर करो फिर भीतरे करो। मैंने कही जो का जल थे। तो बगल वाली बाई कहने लगी जो गेयर है जैसे चला थे जो। अब बाई वो धीरे धीरे आगे बढ़ो और एक रपटा पे धीरे धीरे ऐसो चढ़ रहो। तो मैंने कही काय ड्राइवर भैया जो ऐसो चढ़ा चढ़ा ऐसो न हो जाए
1: पलट तो नहीं जाएगा।
0: तो मैंने कही तू रोक दे तो मैं उतर जाऊं। तो वो कहने लगो रोकत नहीं हूं रोक हूं तो पीछे लुढ़क जे। तो मैंने कही फिर लगे जान दे और आगे जान के जीजी वो एक पानी के डबरा में आड़ो होगा।
1: अरे दद्दा रे
0: फिर काय की नरब दजी जी भाई डबराम सपड़ के लौटे आए।
1: क्या शुद्ध बुंदेली मजा आ गयो। क्या शानदार बुंदेली रचना आपने सुनाई, सच में मजा आ गयो। ये जो बुंदेली लोग हैं वो समझ सकते हैं कि इस भाषा की जो मिठास है
0: जी जी जी
1: है ना, बुंदेलखंड तो बुंदेलखंड है,
0: सच्ची बात।
1: तो जो प्रांतीयता कॉमेडी में आप लेके आते हैं वो कितना काम करती है मंच पर?
0: बहुत काम आती है ये भाषा जो है। पता नहीं क्यों भाषा को लेकर बहुत विवाद देखने को मिलता है, लेकिन मैं समझता हूं भाषा कभी विवाद का विषय होती नहीं है, भाषा सिर्फ संवाद का विषय होती है। हम आपस में बात करते हैं, आप अपनी संवेदनाएं अपने भाव एक दूसरे तक पहुंचाते हैं शब्दों के माध्यम से, वो भाषा है। भाषा के लिए क्या लड़ना। मैं तो सोचता हूं कि सारी भाषाएं सीखना चाहिए,
1: बिल्कुल
0: सारी भाषाएं आनी चाहिए, लेकिन हमारा देश इतना विस्तृत है इतना बड़ा है और इतनी सारी भाषाएं हैं, संभव नहीं है कि कोई सारी भाषाएं सीख पाए। और जब भाषा नहीं आती और जबरन बोली जाए या जबरदस्ती बुलवाई जाए या नहीं आ रही तो भी बोली जाए तो फिर आदमी हास्यास्पद हो जाता है।
1: बिल्कुल
0: हाँ, भाषा नहीं आती बड़ी समस्या होती है। मैं तो नया नया मुंबई में आया था, मुझे मराठी बिल्कुल नहीं आती थी तब। मैं एक बस में चढ़ा, मेरे सामने एक लड़की खड़ी थी, वो बोली लव कर, मैं उसके चक्कर में चार स्टेशन आगे चला।
1: लव कर बोल रही थी
0: मैं समझ में नहीं पा रहा था कि आखिर बोल क्या रही है। भाषा आना बहुत जरूरी, सीखना पड़ता है। मैं लोखंड वाला में रहता था 2005 की बात।

0: बहुत भयंकर बाढ़ आई थी।
1: हो
0: लोगों के घर डूब गए, गाड़ियां डूब गई, इतने लोग डूब गए। 4 महीने बाद मैंने देखा बड़े बड़े पोस्टर लगे, होर्डिंग वहां पर, उस पर लिखा बाढ़ दिवस का शुभेच्छा, बाढ़ दिवस का शुभेच्छा। मैं परेशान कि यार 4 महीने पहले लोग डूब के मर गए, ये कौन है जो बाढ़ दिवस की शुभेच्छा दे रहा है। फिर किसी ने बताया जन्मदिन को बाढ़ दिवस बोलते हैं। तो मैंने कहा यहां रह के सारी भाषा सीखनी पड़ेगी, क्योंकि भाषा आना बहुत जरूरी। फिर मैंने इसका एक सॉल्यूशन निकाला।
1: अच्छा,
0: मेरी जो पत्नी है वो मराठी है।
1: अच्छा, तो आपने ये
0: तो अब मैंने शादी की तो वो मराठी है, उनको सारी मराठी आती
1: क्या
0: है।
1: उनका ताल्लुक कॉमेडी से है या वो आपकी कॉमेडी
0: नहीं
1: है?
0: वो बिल्कुल नहीं है, और इस लाइन से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है उनको। तो इसका फायदा ये हुआ कि मैं चूंकि कलाकार हूं, कोई कुछ बोलता है तो याद कर लेता हूं। अब मुझसे कोई अगर मराठी में कुछ बोलता है तो मैं ध्यान से सुनता हूं, वह घर पे जाके पूछता हूं ऐसा बोला था, ये मेरे लिए ठीक है, कोई गलत बात तो नहीं है। अगर ठीक हुआ तो कोई बात नहीं, नहीं तो अगले दिन उस आदमी से बहस करने पहुंचता हूं।
1: ऐसा है
0: तो वो बोलता है तुम्हारा ट्यूबलाइट का स्टार्टर खराब है क्या, तुमको कल बोलो आज लड़ने आते हो। मैं बोला भाई तुम बोल के रह जाते हो, मुझे घर पे क्लियर करना पड़ता है जाके।
1: बिल्कुल सही है। अब ये बताइए कि लड़ाई किस भाषा में होती है, हिंदी में कि मराठी में?
0: लड़ाई तो देखो इसका एक बड़ा फायदा है,
1: हाँ,
0: दो भाषीय लोग अगर शादी कर लें,
1: हाँ,
0: और ना तो आप उसकी भाषा सीखो और ना वो आपकी सीखे,
1: बिल्कुल
0: उसमें फायदा ये होता है जब लड़ाई होती है तो वो अपनी भाषा में गाली दे, अपन अपनी में, तो ना उसको समझ में आए ना अपने को समझ में आए,
1: तो वो मराठी में शुरू हो जाती है।
0: हाँ, ऐसा होता नहीं है।
1: उनके सामने आपको कितना बोलने को मिलता है, क्योंकि आप मंचों पर इतना सब परफॉर्म करते हैं, पर घर पर आप परफॉर्मर हैं या लिसनर हैं?
0: एक्चुअली एक अंग्रेजी की बड़ी अच्छी कहावत है, अ गुड लिसनर बिकम अ गुड स्पीकर। एक अच्छा सुनने वाला ही आगे चल के बहुत अच्छा वक्ता बन सकता है। तो मैं मंच के ऊपर बोलता हूँ
1: और घर में
0: बाकी टाइम में सिर्फ सुनता हूँ। बाकी टाइम में सिर्फ सुनता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कितना अच्छा वक्ता मुझे मिल जाए और मैं उसको घंटों बैठ के सुन लूं। मैं आज भी बहुत अच्छा लिसनर हूं।
1: आपने अपनी पत्नी पर कोई कॉमेडी बनाई है?
0: बिल्कुल बनाई है।
1: सुनाइए।
0: देखिए मैं
1: लेकिन याद रहे कि घर पे खाना मिले आपको?
0: हाँ बिल्कुल मिलेगा। आप मुझे देख ही रहे हैं मेरा रंग रूप कैसा
1: जी,
0: है
1: जी।
0: लेकिन मेरी पत्नी एकदम गोरी है। अब आप सोचेंगे कि उन्होंने मुझसे शादी कैसे कर ली। अब आप सोचेंगे कि चलो उनका तो वहां जाके माइंड डाइवर्ट हो गया, उनके पिताजी को सोचना चाहिए था कि मैं किससे शादी कर रहा हूं। तो यहां भी मेरी लॉटरी लगी। मेरे जो ससुर हैं वो कोल माइंस में नौकरी करते हैं।
1: लो
0: तो दिन भर वो कोयले की खदान में रहते हैं अंदर, उसी को देखते जब उनने मुझे देखा तो बोले उससे तो यही ठीक है। तो ऐसे मैं अपने पर्सनल लाइफ पे भी कॉमेडी बनाते रहता हूं।
1: क्या बात है, बहुत सही है। अच्छा, कॉमेडी की दुनिया में बहुत सारे छोटे छोटे शहरों के बच्चे हैं जिनके ख्वाब हैं ये सब टेलीविजन सीरियल्स और रियलिटी शोज, कॉमेडी शोज देख करके वो भी एक दिन नाम कमाएं। आप संघर्ष के उसी रास्ते से आते हैं कि एक छोटे से शहर से मुंबई शहर तक का सफर आपने तय किया है, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप कि ये रास्ता कितना आसान, कितना मुश्किल है और कितना धीरज रखना पड़ता है?
0: देखिए मैं एक बात मानता हूं कि हमारी जो फील्ड है कलाकारों की, इसमें मुंबई आने के बाद आपका कला जो है वो 10-20% चलता है और 80-90% भाग्य चलता है। अगर आपका भाग्य प्रबल है तो आप मुंबई नहीं भी आएंगे तो उदय दाहिया की तरह आपको गांव से बुला लिया जाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: मैं मुंबई नहीं आया था।
1: यस।
0: यहां आकर मैंने कोई स्ट्रगल नहीं किया है, मुझे तो मुंबई से लोग जाके गांव से उठाकर लेकर आए।
1: बिल्कुल।
0: वो उसका एक ही कारण है कि मैं जो काम कर रहा था उसको इतनी ईमानदारी से कर रहा था, और मैं कभी सोचता ही नहीं था कि यहां जाऊंगा वहां जाऊंगा, ये तो मुझे लोग खींच रहे हैं मेरे पास आओ यहां आओ। तो बस काम अच्छे से करते रहो, आपसे आपके आसपास के लोग कहने लगे कि भाई तुम यहां के लिए नहीं बने हो, तुम कहीं और जाओ। अपने आप रास्ता बनता जाएगा। लेकिन कभी भी किसी की बातों में आकर अपना शहर मत छोड़िए। एकदम से किसी बड़े शहर में मत पहुंच जाइए। जैसे छत पर चढ़ने के लिए 15-20 सीढ़ियां होती हैं और आप एक एक के चढ़ के फिर आप ऊपर पहुंचते हैं, यही यहां पर लागू होता है। आप पहले अपने शहर में करिए, अपने स्कूल में करिए, घर में करिए, मोहल्ले में करिए, शहर में करिए, आसपास के शहरों में करिए। जब आपको लगे कि हाँ मुझे सब पसंद कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे करके रास्ते खुलते जाएंगे और लोग खुद आपको बुलाएंगे।
1: क्या बात है, बहुत सही सलाह आपने दी है। और इतनी लंबी बातचीत हमने कर ली, आपने किशोर कुमार का नाम भी लिया कि 87 में उनसे आपको प्रेरणा मिली थी, लेकिन किसी गाने का जिक्र अभी तक नहीं हुआ। तो अपनी पसंद का एक गाना बताइए जो अभी हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे।
0: वैसे तो किशोर

0: कुमार जी के इतने सारे गाने हैं जो मुझे पसंद है, और उनमें से कोई एक कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक गाना है जो डुएट है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो गाना, वो है फिल्म डॉन का। क्योंकि इस गाने में ऐसा लगता है जैसे मैं ही अपील कर रहा हूं, जिसका मुझे था इंतजार
1: वो घड़ी आ गई।
0: वाह, तो मेरी जिंदगी में वो घड़ी आ चुकी है, तो इसलिए मैं चाहता हूं वो वाला गाना बजाया जाए।

0: उदय जी, बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके, और आगे भी मिलेंगे और बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती में आने के लिए।
1: बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: मैटिनी शो, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे हास्य कलाकार उदय सिंह दहिया से यूनुस खान की ये बातचीत।

0: 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन। जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: तीन अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन। एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
2: हमें तुम्हारा लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाया।
1: इंतजार कीजिए। एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
3: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
1: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
5: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
4: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
6: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ।
7: अब
6: जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
4: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
8: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। दिन के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वीं उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरिए को सामने रखेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर ने एआई की संभावनाओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरा पेट्रिसिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सह अध्यक्षता कर रहे थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि एआई और समुद्री सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र में भारत की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है।

0: वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थीं। सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात समन्वय, स्वास्थ्यकर्मियों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई है। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। ओडिशा में उत्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के चलते कई हिस्सों में तेज वर्षा हो रही है। भूस्खलन और जलभराव से सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है। एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूल भी बंद किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा में डिप्रेशन कमजोर पड़ गया है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर, खासकर उत्तरी और पश्चिमी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बैतरणी नदी अक्वापदा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और संवेदनशील इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: छत्तीसगढ़ में पिछले 3 दिनों से हुई भारी बारिश के कारण राज्य के बस्तर संभाग सहित मध्य छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में नदियां उफान पर हैं और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में हो रही तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। उत्तराखंड में आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर सिंह ने सार्वजनिक जीवन में पूरी निष्ठा के साथ देश की सेवा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज बंगाल पुनर्जागरण के महान स्तंभ ईश्वर चंद्र विद्यासागर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शिक्षा को सामाजिक बदलाव का एक सशक्त माध्यम बनाया। भारत की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। जापान में खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 से पराजित किया। भारतीय टीम पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही। एशियाई खेलों में भारत का ये तीसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले महिला क्रिकेट टीम और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह फोगाट और कमलजीत की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। भारत की पुरुष कबड्डी टीम का आज फाइनल में ईरान के साथ मुकाबला होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री मांडविया ने मैराथन में रजत पदक जीतने पर सावन बरवाल को बधाई दी है। एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष मैराथन में सावन बरवाल ने रजत पदक जीता। आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बसंती देवी से उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण और कोसी नदी के पुनरुद्धार के क्षेत्र में उनके योगदान के बारे में बातचीत करेंगे। ये कार्यक्रम आज दोपहर 1:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज महान अभिनेता सदाबहार देव आनंद की याद का दिन है। धर्मदेव पिशोरीमल आनंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को हुआ था। एवरग्रीन देव आनंद के फिल्मी सफर का आगाज हुआ था 1946 में आई फिल्म हम एक हैं से। 6 दशकों से अधिक लंबे करियर में उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। तो आइए यादों की महफिल में आज याद करते हैं हिंदी फिल्मों में एक लंबी और सफल यात्रा तय करने वाले पद्मभूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित निर्माता निर्देशक, हिंदी फिल्मों के एवरग्रीन यानी कि सदाबहार निर्माता निर्देशक हीरो और पहले रोमांटिक हीरो देव आनंद की यादों को सुनकर उनके गीत। तो साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन। फिल्म का नाम है गाइड।

साथियों लीजिए सुनिए अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में। नगमा निगार है मजरू सुल्तानपुरी, तर्ज है सचिन देव बर्मन की, फिल्म का नाम है जुएल।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन, यादों की महफिल कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में स्वागत है।
1: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
2: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं, वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
3: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
2: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और उषा खन्ना की आवाजों में। इस गीत को लिखा है इंदिवर ने, संगीत से सवारा है कल्याण जी आनंद जी ने, फिल्म का नाम है जॉनी मेरा नाम।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: यादों की महफिल कार्यक्रम में अगला गीत सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। शब्द रचना नीरज की, संगीत रचना सचिन देव बर्मन की। फिल्म का नाम है तेरे मेरे सपने।

0: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ। जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: यादों की महफिल में आनंद बख्शी का लिखा गीत सुनिए। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने। फिल्म का नाम है हीरा पन्ना।

0: 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाया।
0: इंतजार कीजिए
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे एक बार फिर किशोर कुमार की आवाज में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है राहुल देव बर्मन का और फिल्म का नाम है हरे रामा हरे कृष्णा।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: काला बाजार, इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत लिखा है शैलेंद्र ने, संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: साथियों लीजिए सुनिए मोहम्मद रफी को, नगमा निगार हैं हसरत जयपुरी, धुन है सचिन देव बर्मन की, फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने।

0: तीन अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारा लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाया।
0: इंतजार कीजिए,
2: आइए सुनते हैं अगला गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी, धुन तैयार की है सचिन देव बर्मन ने, फिल्म का नाम है बम्बई का बाबू।

साथियों लीजिए सुनिए अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत है सचिन देव बर्मन का और फिल्म का नाम है तीन देवियां।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आप सुनेंगे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीत है जय देव का और फिल्म का नाम है हम दोनों।

साथियों, यादों की महफिल कार्यक्रम में आज हमने याद किया सदाबहार रोमांटिक हीरो देव आनंद की यादों को। यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

संगीत के इस सुरीले सफर में बन के हमारे हम सफर चलने वाले सभी दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। और कार्यक्रम की शुरुआत में एक बार फिर आपको बता देंगे हम आज की इबारत क्या है। साथियों, देखते ही

मुझे कै उठा दिल, मिल गई है मुझे मेरी मंजिल। तुम मुझसे जुदा हो जाओगे, बोलो कैसे रह पाओगे। हसीन झरनों के साई में अकेला छोड़ जाते हो, न जाओ, तुम्हारे बिना बहारों में खुशी क्या है। ठहरो, मैं दिल को संभालूं जरा, अभी तो आए हो, अब जाते हो क्यों? क्या मेरी चाहत पे तुमको नहीं भरोसा?

जाके फिर आओगे, आके फिर जाओगे, छोड़ो ये आना जाना कि बीच राह में बिछड़ जाएं कहीं हम अगर, तो आओ पास बैठें के कितनी जल्दी ये दिन ढलते हैं और कैसे बीती वो रात सुहानी, तू सुन ले ये कहानी सारे जहान से।

तो सुरीला सफ़र के हमारे बहुत सारे साथी हम सफ़र हमें बहुत सारे संदेशे और संदेश पहले ही लिख चुके हैं, मतलब हम तक भेज चुके हैं और लगातार लिख रहे हैं। तो इन सारी बातों को, संदेशों को हम इस कार्यक्रम में पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे और सुरीला सफ़र में बन के हम सफ़र आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहले हम पढ़ देते हैं आपके कुछ संदेश। हमारे एक साथी ने लिखा है कि मुकम्मल मोहब्बत में खोए महबूब और महबूबा की दीवानगी, मदहोशी का माकूल चित्रण, मोहब्बत के मारों की रुमानी दास्तां, जहां किसी गैर की ज़रूरत नहीं होती, उनकी मंजिल है मोहब्बत, मोहब्बत और सिर्फ मोहब्बत। एक साथी ने लिखा है कि आज की इबारत प्यार में मिलन की दास्तान और साथ बिताने वाले सुनहरे पल को लेकर आई है, जो मोहब्बत में अपने भरोसे को कायम रखता है। नजरों से नजरों का मिलना कुछ इस तरह हुआ, हर नज़ारा एक हंसी ख्वाब जैसा हुआ, जब हम मिले तो सज गया समा, प्यासे दिल की जमी को मिला आसमां। अगला कमेंट है कि आज की सुंदर इबारत प्रेम की उस कहानी को सुर देती है, जिसमें मिलन की खुशी, बिछड़ने की कसक और साथ बिताए पलों की सुहानी यादें एक साथ धड़कती हैं। उसमें कहीं भरोसे की मिठास है, कहीं जुदाई का डर, तो कहीं फिर लौट आने की उम्मीद। अगला एक साथी ने अलग मैसेज लिखा है कि दो दिलों की दास्ता है इस कहानी में, मिलने की खुशी है, बिछड़ने का गम है और वो हमेशा साथ रहे। आज के गीत आने की आशा और बिछड़ने के दर्द से भरे हैं और अपने प्रियतम को पास रोक लेने की कोशिश करते नजर आते हैं। आज की इबारत में मिलन की खुशी भी है और जुदाई का गम भी, तड़प ये दिन रात की, कसक ये बिन बात की, और जब मिले तब देखते ही तुझे मेरे दिल ने कहा, जिंदगी भर तुझे देखता ही रहूं, अच्छा तो हम चलते हैं, चले जाना जरा ठहरो। मोहब्बत में कभी मंजिल मिलती है तो कभी जुदाई का डर सताता है, उसके बिना बहारों की खुशी भी अधूरी लगती है और दिल चाहता है कि वो कुछ पल और ठहर जाए। चाहत और भरोसे के सहारे प्यार के तूफानों को पार करते हुए मन कभी साहिल की तलाश करता है। आना जाना और बिछड़ना जीवन का हिस्सा है, मगर साथ बिताए पल हमेशा दिल में रहते हैं। पास बैठकर बीती रातों की कहानी सुनते सुनते कब दिन ढल जाता है पता ही नहीं चलता। साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत में जो ये गीत आप सुनने जा रहे हैं, इन कलाकारों के नाम लिख दीजिए और इस अभिनेता का देव आनंद के साथ क्या रिश्ता है वो

भी हमें बता दें। इस गीत में आवाज है किशोर कुमार की, संगीत है बप्पी लहरी का, गीतकार हैं अमित खन्ना और फिल्म का नाम है चलते चलते। और साथ ही अपने विचार, अपने जवाब हमें लिख दीजिए।

साथियों, आपने जो जवाब लिखे वो हमें मिल गए। विशाल आनंद अभिनेता, निर्माता, निर्देशक देव आनंद के भतीजे हैं और विशाल आनंद ने इस फिल्म में अभिनय किया था। और साथियों, जो मैसेज मिला है ये है कि इस फिल्म की खास बात ये है कि इसी फिल्म से मशहूर संगीतकार बप्पी लहरी को बड़ा ब्रेक मिला था। और इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे रवि गुप्ता और आशा, यानी कि विशाल आनंद, सिमी ग्रेवाल, नाजनीन और डॉक्टर श्रीराम लागू। साथियों, बिछड़ के फिर मिलेंगे, यकीन कितना है, महज ख्याल है मगर हसीन कितना है। जिंदगी का सफर मुलाकातों और जुदाई का एक ऐसा सिलसिला है, हर मिलन के बाद बिछड़ना पड़ता है, लेकिन दिल के किसी कोने में उम्मीद का दिया जलता रहता है कि हम बिछड़कर फिर मिलेंगे। ये एक ऐसा एहसास है जो उम्मीद और रिश्तों की गहराई को बयां करता है। मिलन की आस बिछड़ने के दर्द को कम करके दिल में नई आशाएं जगाती है। वक्त के साथ दूरियां कम होती जाती हैं और दोबारा मिलने के रास्ते बनते हैं। सच्चे रिश्ते फासलों से कम नहीं होते बल्कि और मजबूत होते हैं। बिछड़ना अंत नहीं बल्कि एक नए और खूबसूरत मिलन की शुरुआत का इंतजार है। साथियों, जब कोई आपसे मिलकर या मुलाकात के बाद जाने लगता है तो आप उन्हें कैसे विदा करते हैं, क्या कहते हैं उन्हें, बताएं हमें भी। और किताबी भाषा की जगह थोड़े आसान भाषा में अपने जवाब लिखें। दोस्तों, स्कूल कॉलेज के दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, जान पहचान वाले मिलकर बिछड़ जाते हैं और उनमें से कुछ लोग दोबारा मिल भी जाते हैं। तो आपके साथ ऐसा कभी हुआ कि अचानक ऐसे लोग सामने आ खड़े हुए या किसी डगर पे दोबारा मुलाकात हो गई तो आपको कैसा लगा? उस खुशी को हमारे साथ बांटिए और साथ में ये भी बताइए कि मुलाकात के बाद, यानी कि टाटा, बाय बाय, सायोनारा जैसे कौन से गीत आपके जहन में और मन में इस वक्त आ रहे हैं, हमें वो भी बताएं। और अब बात होगी 1970 में आई फिल्म आन मिलो सजना की, एक मशहूर बॉलीवुड संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसकी कहानी प्यार, धोखे और रिश्तों के उतार चढ़ाव के इर्द गिर्द घूमती है। कई नाटकीय मोड़ आते हैं जहां अजीत और वर्षा के प्यार की परीक्षा होती है और अंत में सच्चाई सबके सामने आ जाती है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये अजीत, वर्षा, अनिल और सावित्री की भूमिका निभाने वाले कलाकार कौन थे। तब तक आइए सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म का नाम है आन मिलो सजना।

साथियों, आपने जो जवाब लिखे हैं वो हमने देख लिए। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं राजेश खन्ना, आशा पारेख, विनोद खन्ना, अरुणा ईरानी, निरूपा रॉय, सुजीत कुमार, राजेंद्र नाथ और जूनियर महमूद। हमारे साथियों ने हमें बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स और जवाब लिखे हैं। एक साथी ने लिखा है कि कभी कभी किसी का मिलना ही हमारी मंजिल बन जाता है और फिर उसके जाने का ख्याल भी दिल को बेचैन कर देता है। चाहत बस इतनी होती है कि वो थोड़ा और ठहरे, क्योंकि कुछ साथ पल भर के नहीं होते, उम्र भर के लिए अच्छे लगते हैं। और हम कहते हैं कि आपने टॉपिक को बिल्कुल सही पकड़ा है। कुछ रिश्तों में भरोसा इतना गहरा होता है कि जुदाई का ख्याल भी अच्छा नहीं लगता। दिल चाहता है साथ यूं ही बना रहे और ये सुहाने पल कभी जल्दी ना ढले। मोहब्बत शायद यही है, किसी के आने से दिल को मंजिल मिल जाए और उसके जाने का ख्याल आते ही दिल कहे ठहरो, अभी तो कुछ पल और साथ रहो।

एक साथी ने लिखा है कि आज की इबारत में हमें भरोसा भी नजर आया, तो दिल ने कहा भरोसा बहुत नाजुक सा रिश्ता है, उसे बनाने में वक्त लगता है लेकिन एक छोटी सी ठेस भी इसे हिला सकती है। भरोसा वो है जहां शब्द कम पड़ जाएं, फिर भी दिल कहे तुम हो तो सब ठीक है। एक साथी ने लिखा है कि फिल्म अर्पण का गीत परदेस जाके परदेसिया भूल ना जाना पिया इसका इंतजार है। जब मिले हम तो थमी सी रह गई ये जिंदगी, तेरी आंखों ने कहा मैं हूं यहीं पर कहीं, फासले जितने भी हो अब इस जमाने के दरमियां, तेरी धड़कन में धड़कता रहूंगा मैं हर घड़ी। हमारी एक साथी ने लिखा है कि जहां एक तरफ मंजिल पा लेने की खुशी है तो दूसरी तरफ किसी खास इंसान के बिना रहने की बेबसी और अधूरापन भी है। जब इंसान अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत मुकाम पर पहुंच जाता है लेकिन वहां उसके साथ उसका वो खास शख्स नहीं होता तो वो सफलता या मंजिल भी अधूरी सी लगने लगती है। अगला कमेंट है कि आज फिर मैं लंबी यात्रा पर हूँ, ट्रेन में कार्यक्रम का लुत्फ उठाऊंगा, तो ठीक है सुनते रहिए विविध भारती। हमारे एक साथी ने लिखा है कि आज लाइव रहना बड़ा मुश्किल है, हमारे फॉर्म हाउस पर नेट बहुत वीक होता है, अगर सही रहा तो जरूर जुड़ूंगी, तो ठीक है कोशिश कीजिए नेटवर्क में आने की। एक साथी ने लिखा है कि नजरों ने जब से तुम्हें पाया है इस दिल को सिर्फ तुम्हारा ही साथ भाया है, तुम दूर जाने की बात करते हो जरा सोचो तुम्हारे बिना मेरी सुबह और शाम का क्या होगा।

इस हसीन मौसम की हर बूंद मुझसे पूछती है कि तुम कहाँ हो। अभी तो धड़कनों ने संभलना सीखा है। अभी से मुख मोड़कर मत जाओ। मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर पूरा एतबार है, बस इस बात का डर है कि ये वक्त कहीं हमें जुदा ना कर दे। आओ कुछ पल और पास बैठो, ताकि इन ढलती हुई रातों में हम अपनी अधूरी दास्तां को पूरा कर सके। बहुत अच्छा लिखा है आपने। बिछड़ गए तो फिर मिलेंगे हम दोनों एक बार, या इस बस्ती में या इसकी हदों के पार। साथियों, हमारी जिंदगी मुख्तलिफ रास्तों से गुजरती है। दुनिया की इस भाग दौड़ में या हालात की वजह से रिश्ते, नाते, मोहब्बतें, दोस्त एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। फिर वक्त का पहिया घूमता है और बिछड़े हुए लोग दोबारा मिल जाते हैं। कहते हैं कि दिल की लगन हो सच्ची तो रास्ते अपने आप बनते हैं, और मिलकर बिछड़े हुए दोबारा मिलते हैं। रिश्ते और मोहब्बतें वक्त और फासलों से ज्यादा असर रखती हैं, और बिछड़ने के बाद मिलने का मजा ही कुछ और होता है। सदाबहार मेलोड्रामा फिल्म आया सावन झूम के जय शंकर और आरती की कहानी। अनजाने में जय की गाड़ी से एक व्यक्ति की टक्कर और मौत, जो कि आरती के पिता थे। इस भयानक हादसे के बाद एक गहरा अपराध बोध, उसके बाद कहानी में गलत फहमियां, उतार चढ़ाव, सच्चाई का सामने आना और एक समाधान पर कहानी खत्म। तो बताइए कि ये जय आरती कौन थे, और आया सावन झूम के इस फिल्म के निर्माता निर्देशक का नाम भी हमारे FB पेज पर लिख दे। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और फिल्म का नाम है आया सावन झूम के। और आपके जवाबों का हमें है इंतजार।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव है। वो है जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का, 3 अक्टूबर को विविध भारती पर।

0: आ रहा है कौन?
1: साथियों, आपने जो कमेंट्स और जो जवाब लिखे वो हमने देख लिए हैं और उन्हें अभी पढ़ देते हैं। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं धर्मेंद्र, आशा पारेख, निरूपा रॉय, नज़ीर हुसैन, राजेंद्र नाथ, रूना ईरानी, जलाल आगा, और इस फिल्म के निर्देशक थे रघुनाथ झलाई और निर्माता थे जे ओम प्रकाश। अब पढ़ते हैं आपके कुछ और कमेंट्स। आज की इबारत मिलन और बिछड़ने की उम्मीदों को लेकर घड़ी गई है और इस दृष्टिकोण से आज की ये इबारत सराहनीय है। एक साथी ने लिखा है कि प्रेम में बस एक बात समझी जा सकती है कि सरलता ही प्रेम है और ये सरलता ही दो लोगों को जोड़े रखती है। अगर आपके मन में सरलता नहीं है तो बिछड़ना तय है। अगला मैसेज है कि जहां एक पक्ष रोक रहा है और दूसरा पक्ष उसे समझा रहा है और विश्वास दिला रहा है, ये इबारत प्रेम की उस अवस्था को दर्शाती है जहां मिलन की खुशी और बिछड़ने का डर साथ साथ चलते हैं। प्यार में मिलन के हसीन पल वाकई बहुत खास, गहरे और जीवन भर के लिए यादगार पल होते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन ये हसीन पल एक ऐसी अनमोल पूंजी बन जाते हैं जिन्हें इंसान मुश्किल वक्त में भी याद करके मुस्कुरा उठता है। एक साथी ने लिखा है, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, तो हमारी तरफ से आपको भी। अगला एक मैसेज है कि आज तो सिर्फ सुनने का मन है, कोई कमेंट नहीं। हमें ये गाना याद आ रहा है, दिन ढल जाए हाय रात ना जाए। एक साथी ने लिखा है, कभी कभी प्यार का सबसे सुंदर हिस्सा मिलना नहीं बल्कि बिछड़ने के बाद भी किसी का दिल में बने रहना होता है। कुछ लोग जिंदगी में पल भर के लिए आते हैं मगर उनकी यादें उम्र भर साथ चलती हैं। मिलन चेहरे पर मुस्कान छोड़ जाता है और फिर बिछड़न आंखों में नमी। मगर सच्चा प्यार वही है जो दूरियों के बाद भी दिल की धड़कनों में अपनी जगह बनाए रखे। एक साथी ने लिखा है, मगर सच्चा प्यार वही है जो दूरियों के बाद भी दिल की धड़कनों में अपनी जगह बनाए रखे। अगला मैसेज है कि उम्र के इस मोड़ पर बिछड़े कॉलेज मित्र जब सालाना यूनियन मीटिंग में मिलते हैं तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, मानो आयु बढ़ जाती है। हमारे एक साथी ने एक लिस्ट भेज दी है, तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, जाते हुए ये पल छिन क्यों जीवन दिए जाते हैं, आजा रे प्यार पुकारे नैना तो रो रो, बाय बाय मिस गुड नाइट कल फिर मिलेंगे, आना जाना लगा रहेगा, दुख जाएगा सुख आएगा, ये गीत लिखकर इन्होंने भेजे हैं। एक साथी ने लिखा है, आज मैं कमेंट नहीं कर पा रही हूं, परिवार के संग हूं। एक साथी ने लिखा है कि घर में बहू बेटी जब जाती है तो जत्रा निकाला जाता है, उसका कुछ ले जाने वाला सामान एक अच्छे समय पर घर से बाहर कहीं पर रख दिया जाता है और जाते समय उसे भी ले लिया जाता है। एक साथी ने लिखा है कि जब मैं 6 साल का बच्चा था तब बिली मोरा के पास एक कस्बे में मेरा बहुत प्यारा मित्र था, बाद में मेरे पिताजी का ट्रांसफर हो गया कारण इसके बाद संपर्क टूट गया, पर मैंने FB पर उसे ढूंढ निकाला और एक दो बार अच्छी तरह उनसे बात भी हुई, पर बाद में उनसे हमारा संपर्क टूट गया।

साथियों, अमेरिकी साहित्य के एक मशहूर लेखक मार्क ट्वेन की अंग्रेजी कहानी द प्रिंस एंड द पाउपर पर आधारित ये एक नैतिक सीख देने वाली फिल्म है राजा और रंक। एक गरीब लड़का और एक राजकुमार जिनके चेहरे एक जैसे होते हैं, दोनों आपस में मिलते हैं और एक दूसरे की पहचान अपना लेते हैं। राजकुमार को बाहर की दुनिया की गरीबी कठिनाइयों का अनुभव होता है, जबकि रंग को राजमहल के कड़े नियम और षड्यंत्रों का सामना करना पड़ता है। अदला बदली की ये कहानी हमें इंसानियत और दूसरों के दुख दर्द को समझने की सीख देती है। तो बताइए हमें कि ये राजा और रंग की भूमिका निभाने वाले महान अभिनेता कौन थे, और खलनायक और साथी कलाकारों के नाम भी लिख दें।

0: 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाया।
0: इंतजार कीजिए,
2: हमारे साथियों ने संदेश भेज दिए हैं, जवाब हमें मिल गए हैं। सुधीर और विजय यानी के संजीव कुमार, महेश कोठारे, निरूपा रॉय, अजीत कमल कपूर और

और कुमकुम इस फिल्म के निर्देशक थे कोलजी प्रत्यगात्मा और निर्माता थे एलवी प्रसाद। गीत में साथियों आवाज आपने सुनी मोहम्मद रफी की, गीत रचना आनंद बख्शी की, संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की और फिल्म का नाम था राजा और रंक। आवाज की दुनिया के दोस्त हमसे जुड़े हुए हैं और लगातार अपने कमेंट्स लिख रहे हैं, हमें अपने संदेश भेज रहे हैं। एकदम लाइव कार्यक्रम है ये सुरीला सफर, तो हम अपने साथियों के कुछ संदेश पढ़कर आपको सुनवा देते हैं। एक साथी मित्र ने लिखा है कि अगर दिशा भूल में कोई विदा लेता है तो उनकी शुभ यात्रा हेतु पहले ही कोई वस्त्र यात्रा के रूप में अन्य के घर में रख दिया जाता है, फिर यात्रा वाले दिन वहां से लेकर यात्रा करते हैं। ये शुभ मंगल यात्रा का धार्मिक प्रावधान है। एक साथी ने लिखा है कि मेरा प्यारा पालतू लैब्राडोर बीटल नाम था उसका, दो दिन पहले वो गुजर गया हमेशा के लिए मुझसे। उन्होंने लिखा है कि मिलना बिछड़ना रीत यही है, प्यार यही है, प्रीत यही है, मेरा आखिरी गीत यही है। एक साथी ने लिखा है कि फूल खिले हैं तो झड़ेंगे ही, बादल हैं तो खिलेंगे ही, भूख प्यास है तो तड़पेंगे ही, ईर्ष्या है तो जलेंगे ही, तारे हैं तो टूटेंगे ही, अपने हैं तो रूठेंगे ही, और प्रेमी हैं तो बिछड़ेंगे ही। ऐसा क्यों जी?

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। गीतकार हैं शम्सुल हुदा बिहारी, संगीतकार हैं ओपी नैयर। फिल्म का नाम है ये रात फिर ना आएगी। एक रहस्यमयी और पुनर्जन्म पर आधारित क्लासिक फिल्म जिसमें प्यार, धोखा, सस्पेंस का ताना बाना बुना गया, जहां अंत में सारे राजों से पर्दा उठता है। तो इस फिल्म के मुख्य कलाकारों और निर्देशक का नाम लिख दीजिए अपने कमेंट्स में, और किसी को आप कैसे विदा करते हैं, क्या कहते हैं उनसे, वो भी लिख दीजिए।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का, 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
3: साथियों, आपने जो जवाब लिखे हैं वो हमने देख लिए और अब हम उन्हें पढ़ते हैं। ये रात फिर ना आएगी, इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे पृथ्वी राज कपूर, बिस्वजीत, शर्मिला टैगोर, मुमताज और निर्देशक थे ब्रिज सदाना। हमारे एक साथी ने कमेंट लिखा है कि बंद मुट्ठी आए थे जाएंगे खुले हाथ, आए थे अकेले जाएंगे अकेले, इससे जुड़ा गुजराती भजन है, एकला जा आव्या मनवा एकला जवाना साथी विना संगी विना। इस आने जाने के बीच हमें जो मित्र या जीवन साथी मिला, परिवार बना, उसी से बना ये जीवन चक्र यूं ही चलता रहा है और रहेगा। और इस जीवन चक्र में जब विविध भारती जैसा साथी साथ हो तब जीवन का सफर सुरीला मधुर बन जाता है। ये अगला कमेंट है कि अक्सर देखा गया है कि प्यार में कई प्रेमियों के दिल टूट जाते हैं पर उन्हें जीवन में ना उम्मीद नहीं होना चाहिए और अपनी तकदीर पर भरोसा रखना चाहिए। हिंदी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म अराउंड द वर्ल्ड, जो भारत की पहली 70mm टेक्नीकलर फिल्म थी, जिसमें सफर के दौरान रोमांस, कॉमेडी और विदेशी नज़ारों की यात्रा को दिखाया गया है। आखिर में सब साजिशें बेनकाब होती हैं और कहानी का सुखांत तो होता है। साथियों, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस फिल्म में राज कपूर की नायिका कौन थी, जिनके माता पिता भी महान कलाकार हैं, और साथ में इस फिल्म के खलनायक का भी नाम लिख दे। और अब जो गीत आप सुनने वाले हैं इसमें किसकी आवाज़ें हैं वो भी हमें बताएं, और साथ में इस फिल्म की शूटिंग लोकेशन भी लिख दें।

जवाब हमें मिल गए हैं। राज कपूर, राजश्री, प्राण, ओम प्रकाश, महमूद, प्रेम चोपड़ा, अमिता, असला, अचला, सचदेव और राज मेहरा। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक थे पच्छी। गीत में आवाजें थी मुकेश और शारदा की। गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम था अराउंड द वर्ल्ड। और अभिनेत्री राजश्री के पिता मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक अभिनेता वी शांताराम जी और उनकी माता जी जानी मानी खूबसूरत अभिनेत्री जयश्री हैं। और इस फिल्म की शूटिंग भारत के अलावा जापान, अमेरिका, कनाडा, स्पेन में की गई थी। साथियों, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तो सुरीला सफर के बन के हम सफर, आज आप हमारे साथ चले और अपने विचार, बातें, संदेश आपने हमारे साथ साझा किए, आप सभी को हम देते हैं धन्यवाद। आज की तरह कल भी तय कीजिए संगीत का ये सुरीला सफर, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के साथ।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

अंतराल का समय समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं पहला गीत फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से। सुमधुर आवाज़ है लता मंगेशकर की, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है जतिन ललित का।

लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म मोहरा से। स्वर हैं पंकज उदास और साधना सरगम की। इंदिवर के लिखे गीत को संगीत में बनाया है बिजू शाह ने।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि गणेश अनंत चतुर्दशी के पावन अवसर पर लंबे अंतराल के बाद भोपाल विकास योजना 2047 मास्टर प्लान का प्रारूप प्रकाशित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने इसे समृद्ध, सुगम और विकसित भोपाल के संकल्प की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया है। उन्होंने कहा कि यह योजना भोजताल, वन क्षेत्रों और बाघ भ्रमण क्षेत्र जैसे प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण के साथ साथ नागरिकों को बेहतर सुविधाएं, सुगम मोबिलिटी और आर्थिक विकास के अवसर देने के उद्देश्य से तैयार की गई है। योजना में हरित TDR का विशेष प्रावधान है, जिससे हरित क्षेत्र की भूमि स्वामियों को क्षतिपूर्ति और विकासकर्ताओं को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। नागरिक इस प्रारूप पर अपने सुझाव व आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। अनंत चतुर्दशी के दूसरे दिन भी आज गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम जारी रहा। प्रदेश भर में श्रद्धालुओं ने ढोल नगाड़ों और गणपति बप्पा मोरिया के जयघोष के साथ अपने आराध्य को भावभीनी विदाई दी। धार जिले में रात भर झांकियां और अखाड़ों के प्रदर्शन के साथ उत्सव चला। हालांकि बदनावर में विसर्जन के दौरान गहरे पानी में जाने से 3 युवकों की डूबने से दुखद मृत्यु हो गई। खंडवा जिले में नगर निगम द्वारा बनाए गए कृत्रिम कुंडों में शांतिपूर्ण विसर्जन सम्पन्न हुआ, जिसकी व्यवस्थाओं का जायजा जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह और DIG सिमाला प्रसाद ने लिया। यहां नहालदा क्षेत्र में 2 सगे भाइयों की डूबने से मृत्यु की दुखद घटना भी घटी। आज से पितृपक्ष प्रारंभ हो गए हैं। भोपाल की बड़ी झील स्थित शीतलदास की बगिया, प्रमुख नदियों नर्मदा, ताप्ती, बेतवा सहित अन्य प्रमुख स्थानों में पितरों को तर्पण किया जा रहा है। बता दें कि 15 दिनों के इस पवित्र समय में पितरों की आत्मा की शांति के लिए सात्विक रहकर दोपहर के समय दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके तर्पण और पिंडदान करने का विधान है। बात खेल की। एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। इसी क्रम में भोपाल की आशी चौकसे ने निशानेबाजी में रजत पदक हासिल किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर आशी चौकसे और उनकी टीम तिलोत्तमा सेन और विदर्शा विनोद को विशेष रूप से बधाई दी है। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने मिश्रित युगल स्क्वैश में कांस्य पदक विजेता जोड़ी और स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला कबड्डी टीम को भी बधाई दी। दूसरी ओर स्क्वैश में अनाहत सिंह ने जापान की सतोमी वातानाबे के खिलाफ जबरदस्त वापसी की और महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बनाई है। वहीं पुरुष सिंगल्स में अभय सिंह ने पाकिस्तान के मोहम्मद इरफान को 3-0 से हराकर गोल्ड मेडल राउंड में प्रवेश किया। इससे पहले मिक्स डबल्स में जोशना चिन्नप्पा और वेलवन सेंथिल कुमार को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही प्रदेश में बिजली चमकने और आंधी तूफान की आशंका भी जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ जैसे पड़ोसी राज्यों में भी भारी बारिश की संभावना है, जिसका असर मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी देखने को मिल सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले के नलखेड़ा स्थित शासकीय महाविद्यालय में नालसा दान योजना और पाक्सो पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित हुआ। सचिव अश्विनी सिंह ने नशा मुक्ति, पुनर्वास और प्रभावितों को निशुल्क विधिक सहायता देने पर जोर दिया। भिंड जिले के मालनपुर में MSME प्रोत्साहन योजना से न्यूरोइन ग्लोबल कंपनी ने 70 करोड़ का निवेश कर उत्पादन शुरू किया। 40% सब्सिडी से स्थापित ये इकाई 200 से अधिक लोगों को रोजगार दे रही है। डिंडोरी जिले में अत्यधिक वर्षा और जल भराव को देखते हुए कलेक्टर ने 26 सितंबर को कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूलों और आंगनवाड़ियों में अवकाश घोषित किया। नागरिकों ने उफनते नदी नालों से दूर रहने की अपील की गई। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर झाबुआ जिले में नमामि भारतम के तहत सामूहिक गान आयोजित हुआ। झाबुआ, रायपुरिया, मेघनगर और पेटलावत के विद्यालयों में पद्मश्री महेश शर्मा सहित गणमान्य नागरिकों ने सहभागिता की। और मंडला जिले के नैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हीरापुर गांव में शनिवार सुबह गणेश पंडाल में शॉर्ट सर्किट से करंट फैलने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एआई से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने और इससे जुड़े जोखिमों से निपटने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सहअध्यक्षता की। विदेश मंत्री आज न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों को अधिक
1: अधिकार देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार का आह्वान किया। ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। ईरान ने अमरीका द्वारा उसकी शर्तें मानने पर 7 दिन के भीतर होर्मुज जलडबरू मध्य खोलने का प्रस्ताव दिया। अमरीका ने प्रस्ताव खारिज किया। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। महिला निशानेबाजी और पुरुष मैराथन में भी 2 रजत पदक हासिल किए। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एआई की संभावनाओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरा पेट्रिटिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सहअध्यक्षता कर रहे थे। एक रिपोर्ट।
2: डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि एआई और समुद्री सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र में भारत की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा में एआई संसाधनों तक लोकतांत्रिक पहुंच, सुरक्षित और भरोसेमंद प्रणालियों के निर्माण, मानव क्षमता में निवेश तथा आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए एआई के उपयोग पर जोर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि समुद्री क्षेत्र में एआई से समुद्री गतिविधियों की निगरानी, खोज और बचाव, आपदा प्रबंधन तथा संदिग्ध गतिविधियों की पहचान में मदद मिल सकती है। एआई का उपयोग जहाजों, संचार नेटवर्क और समुद्र के भीतर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले साइबर अभियानों के लिए भी किया जा सकता है। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य

0: देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरिए को सामने रखेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों की आवाज और प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G77 के विदेश मंत्रियों की 50वीं वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री मिश्री ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से अल्पविकसित और विकासशील देशों को केवल नियमों का पालन करने वाले देशों की श्रेणी से आगे बढ़कर नियम तय करने में भागीदार बनना होगा। उन्होंने बहुपक्षवाद को जन केंद्रित और विकासोन्मुख बनाने में G77 की निरंतर प्रासंगिकता का भी उल्लेख किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थीं।
1: सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात समन्वय, स्वास्थ्य कर्मियों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई है। उन्होंने कोविड महामारी से मिले अनुभवों को दीर्घकालिक निवेश, मजबूत संस्थागत क्षमता और लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों में बदलने पर बल दिया। उन्होंने आवश्यक स्वास्थ्य उत्पादों तक सभी देशों की समान और उचित पहुँच की आवश्यकता का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि कोविड महामारी के दौरान भारत ने करीब 30 करोड़ वैक्सीन की खुराक लगभग 100 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को उपलब्ध कराई। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र का उद्घाटन किया। ये केंद्र बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के परिसर में स्थापित किया गया है। ये केंद्र विभिन्न अपराधों के पीड़ितों, जिनमें अदृश्य पीड़ित भी शामिल हैं, को एक ही स्थान पर कानूनी अधिकार और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगा। यहाँ पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक सहयोग, परामर्श और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि बच्चों में नशे की लत को केवल जनस्वास्थ्य का मुद्दा नहीं बल्कि बाल संरक्षण के विषय के रूप में भी देखा जाना चाहिए। वे आज पटना में बचपन की पुनर्स्थापना, नशे की रोकथाम और देखभाल तथा संरक्षण की जरूरत विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जोन ए में 16,726 अनधिकृत निर्माणों को सील कर ध्वस्त करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने शहर के 3 अन्य क्षेत्रों में अवैध निर्माण को लेकर भी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के 85वें स्थापना दिवस के अवसर पर तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली और असमिया भाषाओं में 5 नई लोकप्रिय विज्ञान पत्रिकाओं का शुभारंभ किया। इन पत्रिकाओं को CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान ने प्रकाशित किया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 358 तालुकों में से 265 को सूखा प्रभावित घोषित किया है, जो राज्य का 74% हिस्सा है। 32 जिलों में बारिश की कमी और लंबे समय तक सूखे की स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ओडिशा में कम दबाव की वजह से लगातार हो रही बारिश ने राज्य के कई हिस्सों, खासकर उत्तरी जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। मौसम विभाग ने आज ओडिशा में तेज बारिश का अनुमान जताया है। एक रिपोर्ट।
3: लगातार हो रही बारिश ने उत्तरी ओडिशा में तबाही मचा दी है, जिससे बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर में बाढ़ का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। आखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, जिससे भद्रक और जाजपुर के कुछ हिस्सों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश के कारण केंदुझर में जोड़ा के पास राणासाला घाट पर भी सुरक्षा को लेकर चिंता

0: बढ़ गई है, जहां चट्टानों और मिट्टी के गिरने से लोगों और वाहनों को आवाजाही के लिए खतरा पैदा हो गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: बिहार में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने आज कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है।
2: राज्य के विभिन्न जिलों में पिछले चार दिनों से हो रही लगातार बारिश से कोसी, गंडक और बागमती समेत कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। सुपौल में कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए एहतियातन वीरपुर कोसी बैराज के 40 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं पश्चिम चंपारण में गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पटना समेत कई स्थानों पर हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और गोपालगंज जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: उत्तर प्रदेश में बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के 63 जिले तेज बारिश की चपेट में हैं और पूरे राज्य में सिर्फ एक दिन में औसत से 19 गुना ज्यादा बारिश हुई है। सभी जिलों में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी दिन में कुछ स्थान पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के जरिए देश सेवा के मंत्र और अटूट संकल्प के साथ सार्वजनिक सेवा में 25 साल पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी विजन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि कैसे अहमदाबाद स्थित गिफ्ट सिटी जैसी दूरदर्शी पहलों के जरिए इस विजन को हकीकत में बदला गया है। एक रिपोर्ट।
3: वर्ष 2008 में परिकल्पित और भारत के पहले ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में स्थापित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी आधुनिक शहरी नियोजन और वैश्विक वित्त के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। स्वचालित कचरा संग्रहण प्रणाली, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम और समर्पित यूटिलिटी टनल जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ निर्मित गिफ्ट सिटी भारत का पहला कार्यात्मक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बन चुका है। गिफ्ट सिटी की दूरदर्शी नींव और उसके विकास पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
4: 2008 में वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस और रिसेशन का दौर था, लेकिन उस समय गुजरात फिनटेक के क्षेत्र में नए और बड़े कदम बढ़ा रहा था। मुझे खुशी है कि वो आइडिया आज इतना आगे बढ़ चुका है। गिफ्ट सिटी कॉमर्स और टेक्नोलॉजी के हब के रूप में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। गिफ्ट सिटी वेल्थ और विजडम दोनों को सेलिब्रेट करता है। मुझे ये देखकर भी अच्छा लगता है कि गिफ्ट सिटी के जरिए भारत विश्व स्तर पर सर्विस सेक्टर में मजबूत दावेदारी के साथ आगे बढ़ रहा है।
3: इस अनूठे इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल को रेखांकित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
5: माननीय प्रधानमंत्री जी के गुजरात में निर्मित हुआ एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट है गिफ्ट सिटी। आमतौर पर रियल एस्टेट के विकास का एक ट्रेंड होता है कि पहले उद्योग आते हैं, फिर लोग आकर बसते हैं और आवश्यकता अनुसार डेवलपमेंट होता है।
3: आज गिफ्ट सिटी भारत के बढ़ते प्रभुत्व का एक जगमगाता प्रतीक बन चुका है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें 7 दिन के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और क्षेत्र में जारी संघर्ष समाप्त करने की बात कही गई थी। ईरान फिलहाल अमेरिका के आधिकारिक जवाब का इंतजार कर रहा है। ईरान ने प्रस्ताव दिया था कि सभी मोर्चों पर 7 दिन के भीतर संघर्ष समाप्त किया जाए, अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाए, ईरान की जब्त धनराशि जारी करे और उसके तेल पर लगे प्रतिबंधों में छूट दे। इसके बाद होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने की बात कही गई थी। भारत की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 से पराजित किया। एशियाई खेलों में भारत का ये तीसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले महिला क्रिकेट टीम और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह और कमलजीत की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने महिला कबड्डी टीम को खिताब बरकरार रखने पर बधाई दी है। एशियाई खेलों में भारत के सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस स्पर्धा में भारत ने 44 साल बाद पदक जीता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पुरुष मैराथन में रजत पदक जीतने वाले सावन बरवाल को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन, धैर्य, टीम भावना और दृढ़ संकल्प ने देश को गौरवान्वित किया है। भारत की तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की टुकड़ी ने एशियाई खेलों में आज महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीता और तिलोत्तमा व्यक्तिगत स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और कोचालुमकल और आशी चौकसी को बधाई दी है। स्क्वाश में अनाहा सिंह ने जापान की सतोमी वातानाबे को हराकर महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। वहीं पुरुष सिंगल्स में अभय सिंह ने भी पाकिस्तान के मोहम्मद इरफान को हराकर गोल्ड मेडल राउंड में प्रवेश किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एआई से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने और इससे जुड़े जोखिमों से निपटने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्री आज न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों को अधिक अधिकार देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार का आह्वान किया। ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। और भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। महिला निशानेबाजी और पुरुष मैराथन में भी 2 रजत पदक हासिल किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम सदाबहार नखमे। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत है हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम है पतीता।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: आइए अब सुना जाए अगला गीत, जिसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने। संगीत है सचिन देव बर्मन का, आवाज है हेमंत कुमार की। फिल्म का नाम है 16वां साल।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं एक बार फिर हेमंत कुमार की आवाज में। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, तर्ज है सचिन देव बर्मन की, फिल्म का नाम है हाउस नंबर 44।

0: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा
3: हुआ हूँ।
2: जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन, और इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार गीतों का कार्यक्रम सदाबहार नखमे। आइए सुनते हैं अगला गीत हेमंत कुमार की आवाज में। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन। फिल्म का नाम है बात एक रात की।

0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों लीजिए सुनिए साहिर लुधियानवी का लिखा गीत हेमंत कुमार की आवाज में। तर्ज है सचिन देव बर्मन की, फिल्म का नाम है जाल।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तीन अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन? एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
2: हमें तुम्हारा लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा।
0: इंतजार कीजिए
3: साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है गायक और संगीतकार हेमंत कुमार की आवाज में। गीतकार हैं शकील बदायूनी। फिल्म का नाम है 20 साल बाद।
4: जरा नजरों से कह...

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी।
0: मन चाहेगी।
1: ये विविध भारती है, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं आपके खत और आपकी पसंद के फरमाइशी गीत। कार्यक्रम का पहला गीत जिसकी फरमाइश भेजी है आप सभी दोस्तों ने, दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, आकाश कुमार और शिल्पा रानी, सुखजी नगर इंदौर से जगदीश चौहान पेंटर, ललिता चौहान, विशाल, आरुषि, प्रियंका, ख्याति, शक्ति, ऋतिक, शौर्य, बसंती बाई और किशन लाल जी चौहान, रामलीला मैदान सचिंदी से बाबा शिवानंद त्रिपाठी, शशि और शिवांग त्रिपाठी, मनु विजय मिश्रा, गोविंदा साहू, अमन पीए और गोविंद ओमर और अमरजीत सिंह सांगा, बेनीपट्टी मधु बनी बिहार से अरविंद कुमार, निवेश कुमार, नियति कुमारी, मनिया कुमारी और गुड़िया कुमारी, करीमनगर तेलंगाना से लक्ष्मी नारायणा, विजया अभिनय, साई किरण, शेखर श्रीनिवास और पन्ना वेंकटेश, एकलव्य नगर जिला रंगारेड्डी से सुषमा, बाबू अकेला और बिजली। तो लीजिए सुनिए अपने पसंद का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज़ में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है उपहार।

0: 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारी लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा।
0: इंतजार कीजिए।
2: मन चाहे गीत कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी, तर्ज है उषा खन्ना की और फिल्म का नाम है साजन की सहेली। और इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइशी खत लिखे हैं आप सभी दोस्तों ने। जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता निहारिका और सुशांत नायक, तेलीपाड़ा बिलासपुर से रजन साहू, बेबी ईशानी, अनीता श्रीवास और छन्नूलाल श्रीवास, शाहूनगर यवतमाल महाराष्ट्र से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल चेतन, रोशनी और बेबी प्रियांशी, दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा, किशोर कुमार वर्मा और दीपक कुमार वर्मा, छत्तीसगढ़ बेमेतारा जिला से सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत सारथी, रुद्र कुमार सारथी, वीरेंद्र कांत सारथी और ब्रजकांत सारथी, महामाया पाड़ा ग्राम दरचौरा से फिरंता साहू और दोरोलीन साहू, कामेश्वरी कुमारी।

ये विविध भारती है और इस समय आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद है आप सभी। नरेंद्रपुर कोलकाता से गौरी शंकर भट्टाचार्य, सौभाग्यवती रौली शंकर भट्टाचार्य, विष्णु चित्रकार देवदास भट्टाचार्य और कालिदास बाबू मोशाय, ग्राम लोहेडी महुबा उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, अरविंद राघवेंद्र, रिया रेणु, दिव्यांशी रोनिका और रागनी यादव, नवसारी गुजरात से रमेश सूर्यवंशी, मीरा सूर्यवंशी, सिद्धेश माधुरी और गौरी सूर्यवंशी, गोबरेरिया रनकाल हावड़ा से शाहिदा बेगम, रज्जाक अली, दीपक और स्वीटी, और नेवल आर्मामेंट डिपो मुंबई से मिस्टर अनुराग मलियाली। आप सभी की पसंद पर सुनिए मोहम्मद रफी और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा गीत। धुन है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की और फिल्म का नाम है शारदा।

कार्यक्रम का अगला फरमाइशी नगमा है लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं रविंद्र जैन, फिल्म का नाम है राम तेरी गंगा मैली और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी दोस्त। दिल्ली रोहिणी सेक्टर 24 से सत्य प्रकाश सनोडिया, दतरंगी भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से नोखेलाल वर्मा, हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा और पुष्पेंद्र मणि वर्मा, दिग्रस से किरण शिंदे, जया शिंदे और अनुराग शिंदे, कुंवर कॉलोनी बुढ़वा एमपी से प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली, सेक्टर 24 कुंडलेश्वर खंडवा से योगेश गुजराती, रेखा गुजराती, महिमा हर्षिता मुस्कान और अभय गुजराती, मौताड़ा महाराष्ट्र से प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, रिसोड करडा से सानवी देशमुख, सर्वद देशमुख और समस्त राजे जाधव वायाड़ और देशमुख परिवार। साथियों लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये फरमाइशी गीत।

साथियों, आप जो खत हमें लिखते हैं उसमें साफ साफ अक्षरों में लिखें ताकि आपका नाम पता और फरमाइशें पढ़ने में हमें आसानी हो। कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए। आप सभी दोस्तों की पसंद पर पत्र लिखे हैं आपने। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, मोहम्मद रिहान, रियाज, रिफाकत, समरीन, परवीन और माहिरा नूर। श्री केदारनाथ सोसाइटी से रवि भाई सिसोदिया, मुन्ना भाई सिसोदिया, गीता बा सिसोदिया, धर्मराज सिसोदिया, करदाराज सिसोदिया और समस्त सिसोदिया परिवार। गिरिराज सोसाइटी मोरबी गुजरात से आमिर आसिफ लाखानी, आसिम अजीम लाखानी और सानिया लाखानी। जूनागढ़ गुजरात से किरिट सोलंकी और मिसेज सोलंकी। और राजकोट से नीरव की पसंद पर सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत। तर्ज है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की और फिल्म का नाम है दोस्ती।

0: साथियों, आपको बता दें, आज के मनचाहे गीत कार्यक्रम में हमें सहयोग मिला स्नेहल भी से और योगिता जाधव से। मनचाहे गीत कार्यक्रम में आज मैं थी आपके साथ सलमा सैयद, और विविध भारती से कार्यक्रम मनचाहे गीत की प्रस्तुतकर्ता हैं तेजश्री कामले।
1: मनचाहे गीत।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं इस्मत चुगताई का लिखा नाटक बांदी।
1: कौन कौन है? अरे ये मसहरी के नीचे कौन है? निकल निकल, नहीं तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। निकल। ओ ये पलंग के नीचे घुसी क्या कर रही है? कौन है तू?
2: हलीमा।
1: हलीमा, चल बाहर निकल। ला हौल वला
2: कुव्वत। नहीं
1: नहीं निकलेगी। अच्छा ठहर जा।
2: हला मेरी टांग छोड़िए।
1: तू बाहर निकल।
2: नहीं आप मारेंगे।
1: जरूर मारूंगा। निकल तो, निकल सीधी तरह।
2: आए मेरी चोटी, आपके हाथ जोड़ो छोटे सरकार, मैं मर गई। अल्लाह।
1: क्या कर रही थी ये मसहरी के नीचे दबकी? क्या कर रही थी?
2: कुछ नहीं सरकार।
1: सरकार की बच्ची, क्यों आई थी कमरे में?
2: वो छोटे सरकार, उन्होंने नया बुबू ने भेजा।
1: तुझे नया बुबू ने हमारे कमरे में भेजा था?
2: जी।
1: झूठी।
2: अल्लाह कसम।
1: क्यों भेजा था?
2: वो बस भेजा था। सच्ची छोटे सरकार, मेरी गर्दन टूटी।
1: आज मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। तू मेरे कमरे में आई कैसे?
2: सरकार कसम से बुबू ने।
1: झूठी।
2: सरकार आप सरकार।
1: मगर बुबू ने तुझे क्यों भेजा था? बोलती क्यों नहीं? बता, नायाब बुबू ने तुझे हमारे कमरे में क्यों भेजा था?
2: वो आपके आपके पैर दबाने के लिए।
1: हमारे पैरों में क्या हो गया?
2: फुटबॉल खेलकर आए होंगे ना। लेट जाइए सरकार, मैं पैर दबा दूं।
1: हमारे पैरों में दर्द नहीं
2: सरकार।
1: चल भाग यहां से, और अगर फिर आई तो जूते पड़ जाएंगे। अरे सुना नहीं, निकल हमारे कमरे से
2: सरकार।
1: अब जाती है कि
2: मुझे ना निकालिए सरकार।
1: क्या पक रही है गधी? अब हमारा हाथ छोड़।
2: मेरे अच्छे सरकार।
1: देख हलीमा, तू अभी बच्ची है, तू समझती नहीं रात को किसी लड़के के कमरे में जाना अच्छा नहीं।
2: छोटे सरकार, अपनी लौंडियों को यूं न धुतकारिए।
1: ओहो कैसी बातें कर रही है हलीमा।
2: मैं आपकी बांदी हूँ छोटे सरकार, बड़े नवाब ने मुझे आपके लिए खरीदा था। मुझे मत ठुकराइए, मैं आपकी खिदमत करूंगी आपके कदमों में।
1: खामोश बेवकूफ, तू जानती है तू क्या कह रही है? हम बांदी के रिवाज के सख्त खिलाफ हैं। हलीमा तुम बांदी नहीं, तुम्हारे माँ बाप शरीफ इंसान थे, कैद के जमाने में मजबूर होकर वो तुम्हें दे गए थे।
2: मेरे माँ बाप ने मुझे 10 सेर अनाज के बदले मुझे बेच दिया था, बड़े नवाब ने मुझे आपके लिए खरीदा था।
1: ये इंसानों की खरीदो फरोख्त से हमें घिन आती है। नहीं हलीमा, तुम बांदी नहीं बनोगी, किसी अच्छे नेक आदमी से तुम्हारा ब्याह कर दिया जाएगा।
2: नहीं सरकार, ब्याह शादी हम बदनसीबों के हिस्से में नहीं। अगर आपने मुझे ठुकरा दिया तो मुझे कैसर नवाब के हाथ बेच दिया जाएगा।
1: कैसर नवाब?
2: जी, कैसर नवाब को मालूम नहीं कौन सी बीमारी है, सर से पैर तक सड़ रहे हैं।
1: मगर ये नहीं हो सकता।
2: यही होगा, उनके शिकारी कुत्तों की जोड़ी हशमत नवाब आपके बड़े भाईजान को बहुत पसंद है। 1800 की है कुत्तों की जोड़ी, वो कई बार मुझे मांग चुके हैं।
1: नहीं ये हरगिज नहीं होगा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम पर भरोसा रखो हलीमा, हम ये गंदा व्यापार नहीं होने देंगे। हम प्यारी अम्मी से कहकर।
2: उनके हुक्म से तो नया बुबू ने मुझे भेजा है।
1: ये

0: कैसे हो सकता है? प्यारी अम्मी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हैं, तुम्हारा बड़ा ख्याल रखती हैं।
1: इसलिए कि मैं उनके लाडले की खिदमत में मुकर्रर की जाऊंगी।
0: मेरी अम्मी इतनी बेरहम नहीं हो सकती।
1: ये बेरहमी नहीं मेरे भोले नवाब, उनकी ऐन नवाजिश है। नया बुबू तो कहती थी आज सरवरी को आपकी खिदमत के लिए भेजा जाए।
0: सरवरी को? ला हौला वला कुव्वत।
1: हाँ सरकार, बूबू मुझसे खफा नहीं क्योंकि मैंने जब्बार के मुंह पर जूती मार दी। मुए ने मेरी चुटकी काटी, मैंने पैर से जूती उतार कर दी नाक पर।
0: अच्छा किया, ये हरामजादा जब्बार बड़ा चलता पुरसा है।
1: नया बूबू ने बड़े नवाब से मुझे जब्बार के लिए मांगा, मगर उन्होंने कहा हलीमा तो मेरे छम्मन की है। अच्छा सरकार।
0: नहीं नहीं हलीमा छोड़ो।
1: मेरे नवाब।
0: हलीमा जाओ हलीमा, ये गुनाह है। Get out, you stupid girl.
1: छोटे सरकार।
0: तुम मुझे गुनाह के गार में घसीटना चाहती हो? निकल जाओ। Get out. Oh my God, my God.
1: या अल्लाह।
2: अरे भाई जहांगीर साहब और समनिया। अरे भाई क्या हाल चाल है?
3: आपकी दुआ है अफजल भाई।
2: अम्मा यार क्या हर वक्त किताबों से सर मारा करते हो?
3: इम्तिहान आ रहे हैं, मुझे जरा फुर्सत कम है। कहिए क्या काम है?
2: हम आए हैं और तुम्हें फुर्सत नहीं, ये तो पुराना किस्सा है। अम्मा अम्मा ये क्या किस्सा है?
3: कौन सा किस्सा?
2: यही कि रात को तुम्हारी खिदमत में बांदी पेश की गई और तुम्हारे हाथ पैर फूल गए।
3: ऐसी तो कोई बात नहीं, दरअसल मैं लौंडियों बांदियों के रिवाज को पसंद नहीं करता।
2: वजह?
3: मैं इसे बदकारी समझता
2: हूं। ओहो, मगर मियां हमारे यहां ये दस्तूर बरसों से चला आ रहा है।
3: मैं इसे गुनाह समझता हूं।
2: अम्मा घास खा गए हो? क्या हमारे बुजुर्ग गुनाहगार थे?
3: अतई गुनाहगार थे और मुजरिम भी।
2: ला हौल वला कुव्वत, ये भूसा तुम्हारे दिमाग में ये वाहियात किताबें पढ़ पढ़ के भर गया है। किसी ने सुन लिया मियां तो पागलखाने पहुंचा दिए जाओगे।
3: ये घर कुछ पागलखाने से कम है, जमाने जहालत के रिवाज अभी तक कलेजे से लगाए बैठे हैं।
2: मैं हकीम साहब किबला के मतलब से होकर आ रहा हूं, वो एक मुकवी माजून तैयार करवा रहे हैं।
3: मुझे मुकवी माजून की नहीं अफजल भाई, तन्हाई की जरूरत है, इम्तिहान करीब आ रहे हैं।
2: अमा यार लानत भेजो साले इम्तिहानों पर।
3: आप तशरीफ ले जाइए।
2: अमा हम तो तुम्हारे ही भले को।
3: आप सीधी तरह जाएंगे या नहीं?
2: बुजुर्गों की नहीं सुनोगे तो पछताओगे छम्मन मियां। बेचारी मुमानी साहबा सर पकड़े बैठी हैं, बड़े साहबजादे तो गए काम से, अब छोटे भी चले। मियां रियासत कोरट हो जाएगी अगर औलादे नरीना ना पैदा हुई।
3: औलाद नरीना शादी के बाद ही पैदा होगी।
2: मगर बांदी से क्यों बिदकते हो? शादी वक्त आएगा हो जाएगी।
3: और बांदी?
2: बांदी काम आएगी।
3: और हुरमा खानम बर्दाश्त करेंगे।
2: तुम्हारी मंगेतर पढ़ी लिखी है तो इसका यह मतलब नहीं कि वो खानदानी रस्म रिवाज को नहीं समझती हैं।
3: यानी मेरी बांदियों पर उन्हें कोई एतराज ना हो?
2: नहीं, बांदी बांदी है और बेगम बेगम।
3: तो मैं ऐसी बेवकूफ लड़की से शादी नहीं करूंगा।
2: अमा अजीब हवनक आदमी हो।
3: अगर कोई औरत अपने मियां की बांदी को बर्दाश्त कर सकती है तो उसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो वो शोहर से मोहब्बत नहीं करती या उसमें खुददारी नहीं। मैं जिस औरत से शादी करूंगा उसे बराबर के हुकूक दूंगा। अगर मैं बांदी रख सकूंगा तो उसे भी गुलाम रखने की इजाजत।
2: ला हौल वला कुव्वत, मियां तुम्हारा भेजा तो सलामत है।
3: जब अब्बा हुजूर तवायफों के यहां जाते थे तो मैं सोचा करता था हमारी प्यारी अम्मी के दिल पर क्या गुजरती
2: होगी। ये तुम्हें क्या हो गया है साहबजादे?
3: जब्बार अब्बा हुजूर की बांदी नायाब का बेटा है। मैं जब उसे अब्बा हुजूर की मोटर चलाते देखता हूं मेरा सर शर्म से झुक जाता है। वो हमारा भाई है मगर उसके साथ गुलामों जैसा बर्ताव होता है। अब्बा हुजूर कैसे बर्दाश्त करते हैं? मैं और जब्बार नहीं पैदा करना चाहता।
2: तो एक काम करो साहबजादे।
3: क्या?
2: जाते जाते मैं मिनहारन भी को भेजे देता हूं, चूड़ियां पहन के बैठ रहो घर में।
3: शुक्र खुदा का, चले तो सही। कौन हलीमा, तुम फिर आ गई? नायब बुबू?
1: मुझे नायब बुबू ने नहीं भेजा, आज मैं खुद आई हूँ।
3: हलीमा
1: खुदा का वास्ता अच्छे नवाब, अगर मुझसे ऐसी घिन आती
3: नहीं
1: है
3: तो... हलीमा हमें तुमसे घिन नहीं, तुम छोटी सी थी, तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली गई तो तुम बहुत रोई, हमारा नन्ना सा दिल तुम्हें रोता देखकर तड़प गया। हलीमा तुम हमें बहुत प्यारी लगती हो, इतनी प्यारी कि तुम्हारी तरफ देखते हुए डर लगता है।
1: मेरे अच्छे नवाब।
3: नहीं नहीं हलीमा, हमारे इतने करीब ना हो। ये रात का सन्नाटा, इस पर तुम्हारे ये आंसू

0: हलीमा, हम इंसान हैं, फरिश्ता नहीं। हमारे अज़्म को पाश पाश न करो, तुम्हारे आंसुओं से हमारा गरेबान चल उठेगा। रहम करो हलीमा।
1: रहम की भीख तो मैं आपसे मांगने आई हूँ। कल ऐसा नवाब अपने शिकारी कुत्ते बेच रहे हैं, मैं आपकी हूँ मियाँ, अपनी हलीमा को बचा लीजिए।
0: हलीमा, मेरा एक दोस्त है, तुम उससे शादी कर लो, वो मेरा बहुत प्यारा दोस्त है।
1: मैं किसी की दुल्हन बनने से बेहतर आपकी लौंडिया बनना चाहूंगी।
0: मुझे बांदियों से घिन आती है, तो मैं तुमसे शादी करूंगा।
1: अल्लाह का वास्ता, शादी का लफ्ज भी मुंह से नहीं निकालिएगा। याद नहीं, सिकंदर नवाब ने अपने निकाह की जिद की थी, उनके दादा ने निगोड़ी को जहर पिला दिया था।
0: कौन सिकंदर नवाब? वो पगले चचा?
1: हाँ, वो उसके गम में पागल होकर गली कुचों में खाक छानने लगे।
0: हम तुम्हें मरने नहीं देंगे हलीमा।
1: आपके फरिश्तों को कुछ पता नहीं चलेगा और आपकी हलीमा खाक में मिल जाएगी। आंख खोलकर आप ही को देखा और दिल में बसा लिया, आपकी बांदी बनना मेरे लिए मेराज से कम नहीं। आपकी और आपकी दुल्हन बेगम की खिदमत करूंगी और अपने नसीब को दुआ दूंगी।
0: नायाब बुबू की तरह और जब्बार पैदा होंगे, वो ड्योढ़ी पर पहरा देंगे या मोटर साफ करेंगे,
1: ये उनकी खुशकिस्मती होगी।
0: तुम जाहिल और बेवकूफ हो।
1: मगर हूँ आपकी।
0: ओहो, जाओ हलीमा, खुदा रह चली जाओ।
1: मुझसे पीछा छुड़ाना है तो अपने हाथों से मेरा गला घोट दीजिए।
0: हलीमा, तुम्हारे हाथ कितने सर्द हो रहे हैं।
1: तो गर्म कर दो मेरे शहजादे।
0: हलीमा, हलीमा, हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे। हलीमा, हम खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर कसम खाते हैं कि तुम्हें अपनी बेगम बनाएंगे। तुम हमारी दुल्हन हो, खुदा और रसूल खुदा की कसम, तुम हमारी दुल्हन हो। हलीमा, हलीमा।
2: हर बात की एक हद होती है नायाब। लड़के को तो जैसे जुनून हो गया है, दुनिया जहान का होश नहीं। बांदी न हुई, जी का आजार हो गए, अल्लाह रखे अपने बाप पर गए हैं।
3: ऐसा ही जुनून था, मगर जब जब्बार पेट में आया तो सब चाव चौचले खत्म। तेल देखिए, तेल की थार देखिए, मुझे तो लौंडिया इन दिनों कुछ मरझिल जैसी दिखाई देती है।
2: ऐ सच, तुम्हें खुदा की कसम।
3: हाँ बेगम, भलाई नाखों से कोई बच सकता है? अब कोई दिन जाता है जो साहबजादे के सारे चाव चौचले खत्म।
2: अभी तो कुछ गर्मी में कमी नजर नहीं आती है।
3: आ जाएगी, आप देखते जाइए। जी से उतरी कि साहबजादे घिन खाने लगेंगे।
2: तो फिर निगौड़ी को गांव भिजवा दो।
0: क्या गांव जा रही हो? क्यों?
1: मेरा जी चाह रहा है।
0: हमें छोड़कर चली जाओगी?
1: जल्दी आ जाऊंगी।
0: कितनी जल्दी?
1: थोड़े दिनों बाद।
0: कितने होते हैं थोड़े दिन?
1: यही कुछ 6-7 महीने।
0: 6-7 महीने?
1: आहिस्ता बोलो।
0: हम मर जाएंगे।
1: अल्लाह न करे, आपकी बलाएं मेरे सर, मेरे नौशा, बुरी फाल मुझसे न निकाली। अल्लाह अपने रहम और करम से आपकी खदमत के लिए जरूर वापस लाएगा।
0: और जो न लाया हलीमा, तुम्हारे जाने के ख्याल से मेरी जान खींची जाती है, छाती में सांस घुट रही है। तुम क्यों जा रही हो हलीमा? जान, ऐसा चीज डरता है कि तुम चली गई तो फिर वापस ना होगी।
1: नहीं नौशा, मैं बच जाऊंगी। सभी नहीं मर जाती, सनोबर की और बात थी, बड़े सरकार ने लात मार दी थी तो पेट में बच्चा मर गया था। हाय, मैं मर जाऊं, ये क्या कह रही हूँ?
0: बच्चा?
1: नहीं नहीं छोटे सरकार, मैं
0: मेरे सर की कसम खा।
1: नहीं अल्लाह, नहीं।
0: हलीमा, तू झूठ बोल रही है, इसमें रोने की क्या बात है?
1: मैं मर गई तो सरवरी आपकी खिदमत करेगी।
0: सरवरी? नहीं हलीमा, हमें किसी की खिदमत की जरूरत नहीं। तुम गांव नहीं जाओगी हलीमा।
1: जी।
0: बच्चा कब तक होगा?
1: 6 महीने बाद।
0: अगर रोएगा तो हम बाजी को बहुत डांटेंगे।
1: गांव से इस बदनसीब के रोने की आवाज आपके कानों तक कैसे पहुंचेगी सरकार?
0: तुम गांव नहीं जाओगी।
1: ऐसी बातें नहीं कीजिए सरकार।
0: मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा।
1: लीला मेरे भोले सरकार, ये महल का दस्तूर है।
0: हम इस घिनौने दस्तूर को तोड़ेंगे
1: सरकार।
0: शट अप।
4: घोड़े बचिए हशमत नवाब।
5: ये लीजिए।
4: ये शह वो मारा।
0: भाईजान, मुझे आपसे कुछ बातें करना थी।
5: अम्मा, इस वक्त बड़े जोर की बातें जमी है, खुदा की कसम। लीजिए अफजल भाई, खा लीजिए, हमारा घोड़ा हजम ना होगा।
0: भाईजान,
5: अम्मा क्या बेवक्त सर पर नाजिल हो जाते हो।
4: शह हशमत नवाब, शह।

0: प्लीज भाईजान, मेरी मौत और जिंदगी का सवाल है।
1: ओफो, कहो क्या कहना चाहते हो?
0: जरा मैं
1: अमा, तकल्लुफ क्यों कर रहे हो? अफजल भाई से क्या पड़ता?
0: भाईजान
1: अमा कह भी चुको,
0: हलीमा को गांव क्यों भेजा जा रहा है?
2: क्यों इतना सटपटाते हो बरखुरदार? अरे तुम्हारे लिए दूसरा इंतजाम हो जाएगा।
0: मुझे दूसरा इंतजाम नहीं चाहिए।
2: सरवरी जालिम, पटाखा है पटाखा, है क्या उठान है अमा, उस चिपकली से तुम्हें कह नहीं आती?
1: अफजल भाई, अच्छा जाने दो, आगे चलो।
0: मैं उसे गांव नहीं भेजने दूंगा
1: मियां, ये महल का पुराना दस्तूर है।
0: वो गाय भैंस नहीं, वो
2: कहो कहो, शर्मा क्यों गए?
0: वो मेरे बच्चे की अमानतदार है।
1: शर्म करो मियां साहबजादे, बड़े भाई के सामने मुंह फाड़कर अपने करतूत की शेखी मार रहे हो। ला हौल वला कुव्वत।
2: महल की पॉलिटिक्स में मर्दों का दखल नहीं होता, प्यारी अम्मी जो मुनासिब समझती हैं वही करती हैं।
0: भाई जान,
2: और फिर सितंबर के महीने में हुरमा बीबी से तुम्हारा निकाह होने वाला है।
0: मैं हुरमा से शादी नहीं करूंगा, मेरी शादी हो चुकी।
1: बहुत खूब, वो कब?
0: मैंने खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर हलीमा को अपना लिया।
1: और निकाह? काजी कौन था?
0: खुदा और रसूल के बाद काजी की जरूरत नहीं।
2: वल्लाह, तुमने अपना निकाह खुद पढ़वा लिया, अच्छी दलील है।
1: जाओ मियां, क्यों वक्त जाया कर रहे हो? हाँ भाई अफजल भाई, दूसरी बाजी जमाए। ला हौल वला कुव्वत, सारा मजाक किरकिरा कर दिया।
0: मैं हलीमा के साथ वो सब कुछ नहीं होने दूंगा जो सनोबर के साथ।
2: चमन मियां, तुम जामे से बाहर हो रहे हो, अपने बड़े भाई का दिल दुखाते तुम्हें शर्म नहीं आती?
0: मेरे बड़े भाई का दिल पत्थर का है, इन्हें दुख नहीं होता।
1: दूर हो जाओ मेरे सामने से, इससे पहले कि मैं ये भूल जाऊं कि तुम मेरे छोटे भाई हो। दफा हो जाओ यहां से।
0: भाई जान, मैं
1: बदतमीज।
2: अरे अरे, ये क्या करते हो हशमत मियां? क्या
1: मैं इस मर्दूत का खून पी जाऊंगा, इसे हिम्मत कैसे हुई?
2: चले जाओ चमन मियां, खुदा का वास्ता भाई, चले जाओ यहां से।
3: बेगम साहिबा, एक बात कहूं?
4: कह भी चुको क्या कह रही हो?
3: नजम बिटिया भी तो अल्लाह रखे उम्मीद से है,
4: उसका इस वक्त क्या जिक्र ले बैठी?
3: अल्लाह सलामती से फरागत दिलाए। फरागत पाकर विलायत जाने के इरादा है?
4: हाँ हाँ, खुदा जीता रखे मेरी लाडली को।
3: आमीन। तो गोद वाले को विलायत संतुन ले जाएंगी?
4: दीवानी हुई हो, वहाँ मुई ठिठरन में गोश्त की बोटी को क्या लेके जाएगी? खैर से वो मेरे पास ही रहेगा,
3: और दूल्हा नवाब का अकेले जाना भी दुरुस्त नहीं, वो मुई फरिंगन फिर ही लग जाएगी।
4: अय है, दीवानी हो गई हो नायाब, इस वक्त उस प्यारों पीटी मेम की मैयत काहे को पीटने बैठ गई?
3: अल्लाह जानता है बेगम, आप तो जबान कतरे लेती हैं, मुंह जली की बात तो सुनिए, आपका नमक खाया है तो क्या मैं?
4: ए बुआ, तो कुछ मुंह से फूटो तो।
3: नजम बिटिया और हलीमा का बस दो चार दिन का फर्क होगा, हफ्ते भर का भी हुआ तो कोई बात नहीं, बच्चे को पाक साफ दूध मिलेगा।
4: मगर अभी 6 महीने पड़े हैं, खैर से उस वक्त मुई को बुला लेना, इस वक्त तो मुर्दार को दफा करो।
3: जो हुकुम सरकार, मगर गांव में अच्छी देखभाल न हुई तो धान पान तो है ही अल्लाह मारी, यहाँ मेरे नजरों के सामने रहेगी तो मुई को अच्छी तरह खिलाऊंगी पिलाऊंगी, और फिर साहबजादे की जिद भी पूरी हो जाएगी।
4: जिद ही तो मैं पूरी नहीं करूंगी,
3: आपकी मर्जी, मगर इतना कह देती हूँ साहबजादे भी जिद के पूरे हैं, बस कुछ दिन जाते हैं कि आप ही आप साहबजादे के दिल से नामराद उतर जाएगी, अपना काम भी निकलेगा और छुद्दा उन पर धरा जाएगा।
4: कभी सोचती हूँ नायाब, तुम न होती तो।
3: अल्लाह ने आपकी खिदमत की सआदत बख्शी, ये मेरे नसीब है बेगम साहब।
4: जरी खासदान आगे बढ़ाओ।
3: लीजिए, हुक्म हो तो आज हुरमा बीबी को जेवरात दिखा लाऊं, देखे क्या कुछ पसंद फरमाती हैं।
4: अच्छा दिखा लाओ।
3: ऐबी मतन, तुम्हारी बेगम कहाँ है? जाओ जरा अर्ज करो, नायाब खिदमत में हाजिर हुई है।
4: ओहो नायाब बहू, कहिए महल में सब कैसे हैं? अच्छे तो हैं?
3: जी हाँ, सब अल्लाह का फजल है। बैठिए बिटिया,
4: जरा नहाने जा रही हूँ, आप बैठिए, अम्मी आती ही होंगी।
3: लॉन्ड्री तो आपके पास हाजिर हुई थी।
4: क्या है?
3: ये जेवरात पसंद फरमाइए।
4: क्यों?
3: रानी बिटिया, नवाब दुल्हन ने जेवरात भेजे हैं, इनमें से जो पसंद हो वो फरमा दीजिए, बाकी के लिए बम्बई ऑर्डर जाएगा।
4: मैं क्यों पसंद फरमाऊं?
3: छोटे सरकार की जिद है कि आपकी राय के बगैर कुछ ना खरीदा जाए।
4: कौन छोटी सरकार? छम्मन मियां?
3: जी जी हाँ।
4: ओहो, हलीमा बीवी के लिए मुझसे जेवरात क्यों पसंद करवा रहे हैं?
3: क्या फरमा रही है बिटिया, छोड़िए मजाक, ये देखिए, ये विलायती जुगनू, क्या कहते हैं उसे, अल्लाह मारा, ये हाँ लाकेट।
4: इसमें मजाक की कौन सी बात?

0: मियां भी दीवाने हैं, अपनी बीबी के लिए जेवर खरीद रहे हैं तो मेरी पसंद की क्या जरूरत
1: है। हाय हाय रानी बिटिया क्या फरमा रही हैं आप।
0: क्यों क्या हलीमा उनकी दुल्हन नहीं है?
1: खुदा ना करे, हलीमा तो बांधी है।
0: बच्चा तो छम्मन मियां का है ना।
1: बच्चा? कैसा बच्चा?
0: फरखुंदा खाला कह रही थी कि
1: बस करो बिटिया, खुदा ना करे ये लौंडियां बांधियां इधर उधर का कूड़ा महल के माथे थोपना चाहती हैं।
0: बोलू बोलू जब्बार की कसम खाकर कह दो।
1: ए बिटिया आप भी गजब करती हैं, आखिर को नवाबजादे हैं, मगर वो लौंडे बांधे तो जी का बेलावा होती है, इन कमबख्तों से शादी ब्याह नहीं होता।
0: तो नवाबजादे शादियां किससे करते हैं? हम नवाबजादियों से।
1: और क्या बिटिया रानी,
0: हशमत भाई की तो एक बांधी थी, क्या नाम था, सनोबर।
1: ये वो रानी बिटिया ये जेवर तो मुलाहजा फरमाइए।
0: एक बात पूछूं, सच सच बताओगी बाबू?
1: शौक से पूछिए, मगर वो
0: नवाबजादों के लिए तो बांदियां होती हैं और नवाबजादियों के लिए गुलाम।
1: हाय हाय बिटिया रानी जरा तो शर्म कीजिए, ये आप क्या कह रहे हैं?
0: क्यों अगर छम्मन मियां को जी बहलावा चाहिए तो उनकी दुल्हन को भी तो।
1: अम्मा जान नहीं, इसलिए मुझ बुढ़िया की गत बना रहे हैं, वो होती तो मजाल न थी जो यूं मेरे मुंह पर जुतियां मारती। बेटी जान ये गत भर की जबान लेकर किसी ऊंचे खानदान में कैसे निभेगी।
0: खुदा न करे जो मैं किसी ऊंचे खानदान को निभाने जाऊं, मैं ऊंचे खानदानों को गिलाजत का ढेर समझती हूँ।
1: बस बीवी बहुत दुर्गत बना ली, बंदी चली।
0: आय हाय बुब्बू, मैंने आपको तो कुछ नहीं कहा।
1: जिन कसाई हूँ नमक खाया उनको तो कहा, तो मेरी सात बच्चों को कहा।
2: ओहो नायाब आई है, चली कहाँ, क्या हवा के घोड़े पे सवार आई हो? ये डब्बे कैसे हैं?
1: बिटिया रानी को जेवर दिखाने को भेजे हैं, खैर से बकरीद की चांद निकाह है, जेवर बंबई से बनकर आएंगे।
2: नायाब बूबू तुम खानदान से अलग नहीं, तुमसे कौन सा भेद छुपा है? समझ में नहीं आता किस मुंह से कहूँ, जमाना बदल रहा है बुआ, आजकल के बच्चे कुछ नहीं समझते।
1: मैंने तो पहले भी कहा था बेगम, ये फरखुंदा बेगम की सोहबत रंग लाएगी।
2: ऐ है कैसर नवाब कीड़ों भरा कबाब, लानत उसकी सूरत पर।
1: आप बहुत भोली हैं बेगम, नवाबों में हजार ऐब हुआ करते हैं, मगर खसम को छोड़ के दूसरा करना और वो भी बाल बच्चे वाली होकर, तौबा मेरी तौबा, बाबा ने पढ़ा लिखा के बेटी का सत्यानाश मार दिया।
2: ऐ खानदान ने उनका हुक्का पानी बंद करके क्या बिगाड़ लिया, जहाँ जाते हैं लोग उन्हें हाथों हाथ लेते हैं, नाम है इज्जत है।
1: सुना है मियाँ की कमाई पूरी नहीं पड़ती तो खुद नौकरी करती हैं, मर्दों के कॉलेज में पढ़ाती हैं बेगम, नौच यो कोई शर्म हया बेच खाए तो क्या अर्ज करूं बेगम से जाके?
2: यही कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मेरी एक नहीं चलती।
3: अम्मा हमारे सामने अपनी बदकारियों का इस झिठाई से इकरार, एक तो मोरी में मुंह देते हो और।
4: मगर प्यारी अम्मी ने हलीमा को मुझे दिया, वो मेरी है, वो मेरी जिंदगी है, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता, वो मेरे बच्चे की माँ है।
3: मियाँ तुम बिल्कुल ही बच्चे हो।
4: कुद्दूस भाई आप नहीं समझते।
3: इसमें समझने की क्या बात है साहबजादे,
4: हलीमा मर जाए।
3: मर जाने दो साली को, हम तुम्हें अपनी माँ रोक देंगे, वल्ला क्या पटाखा है।
4: कमीने पाजी।
3: छमन होश में आओ, क्या पागल हो गया?
4: हाँ हाँ मैं पागल हो गया हूँ, मैं किसी का खून कर दूंगा, चले जाइए यहाँ से। हलीमा, हलीमा।
5: जी सरकार।
4: कौन सरवरी?
5: जी।
4: तुम यहाँ क्या कर रही है?
5: आपके पाजामे में कमरबंद डाल रही हूँ, बटन कहाँ है, कुर्ते में लगा दूँ?
4: चल भाग यहाँ से और हलीमा को भेज।
5: मुझे बेगम साहब ने भेजा है, हम्माम में पानी तैयार है।
4: हलीमा कहाँ है?
5: ये लीजिए कुर्ता, नया तौलिया हम्माम में लगा दिया है।
4: ओहो हम पूछते हैं हलीमा कहाँ है और तू बकवास किए जा रही है।
5: अल्लाह हमें क्या मालूम है, उधर कहीं बैठी होगी।
4: जा बुला ला। जाती है कि मार खाएगी, चल भाग।
5: हम नहीं जाते।
4: कहाँ है हलीमा बता।
5: ओए अल्लाह मेरी छोटी तो छोड़िए, हाय मैं मर गई, हाय मेरी मैया।
4: बता, नहीं बताएगी?
5: बताती हूँ।
4: बोल।
5: वो उधर शागिर्द पेशे में।
4: क्यों?
5: वो उसका जी अच्छा नहीं है। मियाँ खुदा का वास्ता कहाँ जा रहे हैं, मर्दों के जाने का वक्त नहीं।
4: फरखुंदा बाजी, फरखुंदा बाजी, फरखुंदा बाजी।
2: अरे छमन मियां, क्या पैदल भागे चले आ रहे?
6: साइकिल पर। फरखुंदाबाद जी, वो मर रही है।
2: अहे कौन?
6: हलीमा, प्यारी अम्मी ने उसे काल कोठरी में फेंकवा दिया है। मैंने कहा डॉक्टर ने बुलवा दीजिए, तो बोली भको मत।
2: ठहरो,
6: वो मर जाएगी सनूबर की तरह।
2: नहीं मियां, तुम्हारी हलीमा नहीं मरेगी। मैं चलती हूँ, जरा हॉस्पिटल एम्बुलेंस के लिए फोन कर दूं।
5: बुबू, नायक बुबू, अस्पताल की लॉरी आई है।
1: अस्पताल की लॉरी? दीवानी हुई है ना मुराद?
5: अल्लाह कसम, चल के देख लो।
0: ये क्या किस्सा है नायर?
5: लॉरी के पीछे फरखुंदा नवाब की मोटर मैंने अपनी आंखों से उतरते देखा, साथ में छमन मियां भी हैं।
0: तो ये बात है, फरखुंदा नवाब की ये हिम्मत।
1: लीजिए, वो आ गई।
2: तस्लीम मानी जान।
0: जियो, ये मुझे अस्पताल की लॉरी क्यों आई है?
2: हलीमा को लेने।
0: तुम्हारी अकल मारी गई है फरखुंदा नवाब?
2: इस वक्त बहस ना कीजिए, पैलोठी का बच्चा है। अगर
0: तुम्हारी बला से, तुम कौन होती हो महल के मामलात में दखल देने वाली?
2: देखिए मुमानी जान, बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। अगर केस बिगड़ गया तो याद है सनोबर का किस्सा?
0: हद से न बढ़ो फरखुंदा।
2: मुझे मजबूर ना कीजिए मुमानी जान।
0: क्या मतलब?
2: मतलब ये कि फिर मुझे पुलिस को फोन करना पड़ेगा।
1: पुलिस?
5: इंशाल्लाह।
0: मामू को पुलिस चढ़ा के लाओगी? गारत हो मेरे सामने से।
2: छमन, स्ट्रेचर मंगवाओ।
7: नहीं, मैं उठा लूंगा।
2: संभाल के इस चादर में लपेट लो।
8: ये आप क्या कर रहे हैं छोटे सरकार? अल्लाह का वास्ता, मुझे मर जाने दीजिए।
7: चुप रहो बेवकूफ।
2: कमबख्त लालटेन भी तो बुझी जाती है। ओफो,
7: कोई बात नहीं, मुझे दिखाई दे रहा है। ये क्या हो रहा है?
2: आदाब मामू जान, हलीमा को अस्पताल ले जा रहे हैं।
7: हमसे पूछे बगैर?
4: ये मर जाएगी अब्बा हुजूर।
7: मर जाने दो।
4: अब्बा हुजूर,
7: इसे पलंग पर डालो और हमारे साथ आओ।
4: नहीं,
7: तुम्हारी ये हिम्मत? एक जलील बांदी के लिए हमसे गुस्ताखी कर रहे हो बेशर्म?
4: ये बांदी नहीं, मेरी बीवी है।
7: क्या बकते हो मर्दूद? हम तुम्हें आग कर देंगे, कौड़ी कौड़ी को मोहताज कर देंगे।
4: मुझे आपकी दौलत से एक पाई भी नहीं चाहिए।
7: तुम्हारे इतने दिमाग?
0: होश में आओ बेटे, मैं हुई डॉक्टर नहीं बुलवा दूंगी।
4: नहीं प्यारी अम्मी, अब ये महल मेरे और मेरी बीवी के लिए जेल से बदतर है।
0: अरे कहाँ जा रहा है छमन मेरे लाल, इस बला को लेके कहाँ जाएगा बेटे?
4: दुनिया बहुत बड़ी है प्यारी अम्मी, सभी तो इस महल में नहीं रहते। मैं भी वहां जा रहा हूँ जहाँ और करोड़ों रहते।
0: ना जाओ मेरे लाल।
4: खुदा।
0: ना जाओ मेरे लाल। छमन,
7: जाने दो बेगम, साहबजादे नाक के बल चलकर वापस आएंगे। जरा दो चार थपेड़े खा लेने दो, मिजाज दुरुस्त हो जाएगी।
0: वो नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगा। मैं उसे जानती हूँ ना मुराद, बांदी ने मेरे लाल पर जादू कर दिया।
5: नहीं बुबू, कैसे हैं छमन मियां के साहबजादे, कैसे हैं बताओ ना।
1: मेरे कान नखा, मुई छाती में सांस तो समाती नहीं, दम तो लेने दे रही।
0: अरे अब दम बाद में लेना, पहले बताओ बच्चा कैसा है?
1: अरे बेगम, बस चांद का टुकड़ा है, वो अपने दादा की सूरत।
0: घर बार कैसा है?
1: अरे बेगम, कुर्बान जाऊं ना घर ना बार, मुई तिल बराबर कोठरी है। बस अल्लाह रखे आपकी मुसहरी जितनी होगी कि उससे कुछ बड़ी। पर बेगम क्या बताऊं, मेरा तो देखकर कलेजा फट गया। मैं गई तो हलीमा अंगीठी पर कुछ पका रही थी और छमन ने वहां पलंग पर लेटे थे, एक हाथ में किताब थी और दूसरे से बच्चे का झूला हिला रहे थे।
0: या अल्लाह, खुदा समझे उस नामुराद बांदी से।
9: नाट्य तरंग में अभी आप इसमत चुगताई का लिखा नाटक बांदी सुन रहे थे। भाग लेने वाले कलाकार थे मुहाफिज हैदर, डॉली रिजवी, सैयद अहमद रिजवी, क्यू एन कश्मीरी, मुमताज बशीर, सुरैया डागर, सिकंदर जहां, रेखा गांधी, शमीम बानू, प्रकाश अरोड़ा, शाहगुल दुर्रानी और हेमांगिनी रानडे। ये आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।
10: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
11: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
10: आपके जीवन में

0: Silence. Lights. Sound. Camera. Action.
1: La la la la la la la la la la la la la la la la.
2: दोस्तों नमस्कार. एक गायिका जिनका नाम था सुषमा श्रेष्ठ.

0: पूर्णिमा के नाम से वो खूब मशहूर हुई। आज बॉम्बे टॉकीज में आपको सुनवा रहे हैं जानी मानी गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। तो आइए आज सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा भाग। सुषमा जी, आज फिर एक बार आपका हम स्वागत करते हैं और चलिए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो इतने सारे संगीतकारों के साथ आपने काम किया है, इतने बड़े महान लोग, एक बाल गायिका के रूप में ये अनुभव आपका कैसा रहा, क्योंकि आप लगभग छोटी ही थी तब?
1: हाँ, हाँ।
0: और किसके साथ ज्यादा कंफर्ट जोन में रही?
1: नहीं मंदाकिनी जी, मुझे इस बात का एहसास ही नहीं था कि मैं किन दिग्गजों के सामने खड़ी हूँ
0: जी,
1: मैं किन दिग्गजों के साथ काम कर रही हूँ, ये कौन है जो मुझे इतना प्यार कर रहे हैं। जैसे मदन मोहन जी के बारे में, उनके गुस्से के बारे में बहुत सुना था
0: जी, बिल्कुल।
1: अब उनके पास गई वो कोशिश फिल्म, उसमें दो ही गाने थे मंदाकिनी जी, एक रफी साहब का था और एक मेरा। तो मैं जब गई उनके पेडर रोड के फ्लैट में, बहुत बड़ा हॉल था उनका और सारे कोरस सिंगर्स, मैं उन्हें सहगायक कहती हूँ, कोरस सिंगर्स नहीं कहती, वो बैठे थे, कुछ म्यूजिशियंस भी थे, वो टेनिस खेलने गए थे और हम सब बैठे हैं। थोड़ी देर में आए, आते ही बोले, सब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है। वो बच्चा तो मतलब मैं इतनी छोटी सी थी तब, तो ये है वो जो मैसेंजर्स हमारे होते थे जो हमको रिकॉर्डिंग्स के मैसेज दिया करते थे, जागीरदार जी बोले, साहब जी ये इतनी छोटी, आजा बेटा गाना कौन लिखेगा, तो मौसी लिखती थी।
0: अच्छा।
1: जैसे उन्होंने गाना शुरू किया, बोला देखो अब मैं सुनाता हूँ आराम से, हाँ डरने का नहीं। अब उन्होंने शुरू किया, अगर मैं अपनी जुबानी कहूँ तो मेरा पिकअप बहुत फास्ट है मंदाकिनी जी,
0: जी
1: बहुत फास्ट। तो जैसे ही मदन मोहन जी ने गाना गाया तो मैं रुकी, क्योंकि ये तमीज सिखाई गई थी कि जब तक वो नहीं कहेंगे तुम गाओ, तुम्हें याद भी हो गया तो।
0: अच्छा।
1: तो मुझे देखा, बोले एक बार और गाऊं, कहा नहीं मैं गाऊं, तो बोले गाओगी कहाँ। तो मैंने शुरू किया, वो गाना था कुछ

0: कोशिश फिल्म का गाना था मुझे। हमसे है वतन हमारा और वतन से हम, देश है धर्म हमारा, देश है करम, तररम परम परम पतररम, ये गाना
1: जी
0: था।
1: जी
0: तो मैंने कहा मैं गाऊं, तो बोले गाओ। मैंने शुरू किया, उन्होंने बाजा बंद किया। अब सब डर गए कि भाई अब कुछ तो होगा। बोले जागीरदार, सबसे बड़ा चॉकलेट लेके आए इस बच्ची के लिए। और मुझे देखा, तुम्हारा पिकअप तो बहुत अच्छा है बेटा।
1: बिल्कुल
0: तो मौसिन को पूछा, अब सीखती है? मौसिन ने कहा, हाँ भी थोड़ा सीखने लगी है। अरे सिखाइए इसे, ये बच्चा बहुत आगे बढ़ेगा। इतना भी काफी था उनके
1: हाँ,
0: लिए, इतना कहना ही
1: बहुत
0: काफी था।
1: बड़ी बात।
0: ये मुझे लगता है मेरी जिंदगी के कॉम्प्लीमेंट्स में इसे सुनहरे अक्षरों से मैं लिखूं तो भी कम
1: कम है। जी
0: है ना।
1: जी जी
0: उनके साथ तो ये था मेरा। नौशाद साहब, उनके बंगले पे बुलाया उन्होंने, कार्टर रोड, और मैं गई। उस वक्त मेरे उस्ताद ताज अहमद खान साहब, जिनसे मैंने डैडी के बाद तकरीबन 15-16 साल मैंने उनसे
1: सीखा।
0: तालीम जी, और उनको भेजा मेरे पास कल्याण जी अंकल ने। वो भी एक अलग कहानी है, मैं बाद में बताऊंगी। तो अबू साहब, मैं उन्हें अबू साहब कहती थी।
1: जी
0: तो उन्होंने कहा कि नौशाद साहब के पास जब जा रही हो तो मैं भी चलूंगा, क्योंकि मैं उन्हें वो चीजें सुनाना चाहता हूं जो मैंने तुम्हें सिखाया है।
1: जी
0: तो हम गए, और वो भी टेनिस खेलने गए थे। वो दिलीप
1: अच्छा
0: साहब के साथ खेलते थे
1: हाँ
0: टेनिस।
1: हाँ
0: शाम को हम पहुंचे, उन्होंने, उनका म्यूजिक रूम था बंगले पे। बैठे बैठे आए, माफ कीजिए मुझे देर हो गई, चेंज करके फ्रेश होके आए। तो अबू साहब ने, हाँ हाँ खान साहब बताइए, वो तो जानते थे उन्हें, पर इस बच्ची को कुछ सिखाया है आपको? हाँ हाँ हाँ प्लीज सुनाइए सुनाइए। तो मैंने कुछ गजलें उनको सुनाई,
1: जी
0: और सुनकर मंदाकिनी जी, तकरीबन 6:30 बजे मैंने शुरू किया, एक गजल सुनाई। बोले कुछ और सुनाओ बेटा। फिर और करते करते 10 बज गए,
1: रात की।
0: आप यकीन नहीं करोगे। और बस बच्चे को कुछ खिलाओ, बच्चा और कुछ सुनाओ। और पता उन्होंने कितनी बड़ी बात वो बोले,
1: जी
0: मंदाकिनी जी बोले, बेटा काफी देर हो गई है, मैं तुम्हें थका रहा हूं, लेकिन मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। वो इसीलिए कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम ऐसा गाती हो, और मैंने जिस गाने के लिए तुम्हें बुलाया है उसमें एक दो ही लाइंस हैं, तो क्या तुम गाना पसंद करोगे?
1: अरे
0: तो
1: जी
0: अबू साहब ने कहा कि वो सुनहरा संसार आई ना, दो फिल्में आई थी उनकी उस वक्त, बिल्कुल आखिर आखिर में सुनहरा संसार का, उसमें एक गाना था, मैं बताता, वो भी रफी साहब के साथ।

0: तो क्या है खराबी,
1: अरे
0: इतना ही था
1: वाह
0: बस।
1: जी।
0: तो अबू साहब ने कहा, नौशाद जी आप क्या बात कर रहे हैं, आपने हमारी बच्ची को बुलाया जहे नसीब, हम तो सोच भी नहीं सकते कि ये इस काबिल है कि आपके सामने बैठकर आपको कुछ सुना सके। बहुत उसके बाद उत्तम भैया उनके असिस्टेंट,
1: जी जी
0: तो उत्तम भैया ने बहुत, वो तो हमेशा ही हेल्प करते थे। तो बस फिर वो गाना मैंने गाया, फिर एक दो डबिंग्स के लिए भी बुलाया उन्होंने।
1: आपकी पसंद का ये गीत सुन

0: सुषमा जी, आपकी बातें हम सुन रहे हैं और हमें लगता है कि आपने अपनी एक अलग स्टाइल बनाई, तो अलग स्टाइल बनाने का जो विचार है ये आपके मन में कैसे आया? हमारे श्रोता भी ये जानना चाहते हैं।
1: एक बात आपको आज बताना चाहूंगी।
0: जी जी।
1: मैं अपने श्रोताओं को
0: जी
1: एक गाना मैं डब कर रही थी जिसे लता जी गाने वाली थी, ठीक है। और सुनिए, हेमा मालिनी जी पर वो फिल्माया जाने वाला था। तो जब मैंने गाना शुरू किया तो अंदर तो मेरी मौसी और सब थे, तो जो फिल्म सेंटर के रिकॉर्डिस्ट हुआ करते थे कौशिक बाबा, नौशाद साहब ने उनको पूछा, कौशिक बाबा कैसा गा रही है बच्ची? क्या मैं मंदाकिनी जी 12 साल की थी? तो कौशिक बाबा ने झट से कहा कि लता वाली बात नहीं है। तो अच्छा। पता है क्या क्या कहा नौशाद साहब ने?
0: हाँ।
1: बोले मुझे लता नहीं चाहिए, मुझे सुषमा चाहिए।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: इसलिए मैं उसे उसके तरीके से गाने दे रहा हूँ।
0: जी जी जी जी जी।
1: तब मुझे ये एहसास हुआ मंदाकिनी जी, मैंने इन चीजों में बहुत, मतलब कैसे कहूँ, मैं वो पहले से ही बहुत जहनी थी मैं। तो उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि इसका मतलब मैं अपनी एक स्टाइल बना सकती हूँ।
0: बिल्कुल।
1: मतलब मैं अपनी स्टाइल बनाऊं तो उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। वो उस वक्त से ही वो दिमाग मेरा चलने लगा।
0: और इतनी छोटी उम्र में आपने इस बात को पकड़ लिया।
1: आप अगर सुनो, देखो मंदाकिनी जी, मैं आपको एक छोटा सा एक मिसाल देती हूँ। है ना बुलब पापा को मम्मी से प्यार है, पापा मम्मी मिलते हैं चुपके चुपके हंसते हैं, जाने क्या क्या कहते हैं बातें करते रहते हैं। वो ही फॉलो किया मैंने, दिल तुम मेरा तू, उस पे बात पे आ गई। पर वही
0: जी,
1: तो वो बड़ी होती गई, वो जहन में था कि मुझे अपनी एक स्टाइल बनानी।
0: जी बिल्कुल,
1: वो था बस।
0: तो, और उसे पर्दे पर देखना भी उतना ही अच्छा लगता था जब अभिनेत्री उसको उसी तरीके से अपने होठों को बनाकर गाती है, तो बड़ा मजेदार वो सीन लगता है।
1: और जहाँ तक प्रभावित होने का सवाल है मंदाकिनी जी, आपने जो सवाल किया, प्रभावित तो मैं एक ही इंसान से जिंदगी में हुई, एक इंसान बतौर एक इंसान और बतौर एक म्यूजिक कंपोजर, और वो है वन एंड ओनली मिस्टर आर डी बर्मन
0: जी,
1: मेरे पंचमदा
0: जी।
1: इतनी प्रभावित कि मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती कि मैं उन्हें अपनी जिंदगी में कौन सी जगह देती हूं।
0: जी,
1: तो
0: होता है जब एक कलाकार दूसरे कलाकार के साथ संगीत विधा को जीता है तो आप कहीं ना कहीं इतने प्रभावित हो जाते हैं कि आप उनमें खो जाते हैं। इस तरह की
1: उन्होंने मुझे परफ्यूम कैसे लगाना वो भी सिखाया। इतना मतलब हमारा एक बहुत ही अनूठा रिश्ता था,
0: बॉन्डिंग
1: बहुत
0: जो थी।
1: बहुत बहुत अलग।
0: तो क्यों ना पंचमदा का ही गीत सुन लिया जाए, जिसमें आपने अपनी आवाज
1: दी। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई।
0: थोड़ा सा गाएंगी तो हमें भी अच्छा लगेगा, आज सामने सुनने का मौका मिला है हमें भी।
1: कोशिश करूंगी, गला बंद है पर कोशिश करूंगी। जी बिल्कुल। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, तेरा मुझसे है पहले।

0: वाह वाह, बहुत खूब सुषमा जी। और इसमें आप जब कुछ वर्डिंग्स भी बोलती हैं जो
1: जी,
0: वो बच्चा अपने
1: वो मुझे पंचमदा ने सिखाया पता जी, है उन्होंने कहा वो शर्मिला जी का बेटा है वो
0: जी, डैडी
1: शर्मिला हाँ। जी कैसे बोलती हैं
0: हाँ।
1: मैं मिमिक्री अच्छा करती हूँ तो मैंने थोड़ा सा बोले यही चाहिए मुझे हाँ आगे क्या है डैडी
0: हाँ।
1: मैं तो भूल ही गया मुझे वो चाहिए बहुत यादें आपने ताजा की
0: जी,
1: आज
0: जी, जी।
1: मैं इसी बात पे आऊंगी। कुदरत जब किसी को बनाना चाहता है ना तो वो उस वक्त वो एक ऐसा माया जाल फेर देता है फैला देता है कि उस वक्त वो इंसान जो उस सिचुएशन में रहता है ना जैसे मैं
0: जी
1: मुझे खुद को भी इस बात अगर आप मुझे आज पूछेंगी कि उस रिकॉर्डिंग के दौरान क्या हुआ क्या नहीं हालांकि ये गाना मेरे लिए नहीं था मंदाकिनी जी
0: अच्छा
1: इस गाने को लता जी गाने वाली थी
0: अच्छा
1: जी मुझे तो वो पंचमदा तो कोशिश वो उसमें लगे ही रहते थे कि कहां से इसको मैं कौन सा एक मौका दूं एक लाइन ही दे दूं एक डायलॉग ही दे दूं तो वो तो रुके हुए थे कि कब मैं क्योंकि बर्मन चाचा बोल चुके थे कि मैं तुझे नहीं दे पाया
0: जी,
1: कोई भी गाना अच्छा पर तेरा दादा तुझे तेरी जिंदगी का सबसे प्यारा गाना गवाएगा ना पंचम गवाएगा ना पंचम
0: अरे
1: तो उन्होंने फोन करके ये कह के बुलाया कि ये गाना डबिंग के लिए प्रॉक्सी तो अगर तुम गा गई तो भाई रख सकते हैं नहीं तो मुश्किल है। तो ये दो पार्ट्स में है गाना आपको भी याद होगा एक किशोर काका का सोलो है वो सोलो पार्ट गाकर वहीं फिल्म सेंटर में किशोर काका आराम कर रहे थे दो शिफ्ट्स में काम होता था तब 9 से 1 और फिर 3 से आगे
0: अच्छा
1: और फिर ओवर टाइम तो वहीं सोए थे वो उन्हीं का गाया हुआ मुझे पोर्शन पंचमदा ने बोला सुनो लास्ट अंतरा लिखो और देखो लर्न द सॉन्ग तब मुझे भूपी अंकल और उत्तम भैया ने ही मदद मेरी की
0: जी
1: बहुत ज्यादा
0: जी
1: गाना सीखा मैंने फिर रिहर्सल हुई जब माइक पे गए हालांकि किशोर काका काफी कॉन्फिडेंट थे
0: वो गाएगी
1: हाँ बोले गाएगी गाएगी पंचम वो गाएगी गाएगी छोड़ यार डब वब का छोड़ वही गाएगी तो वो बोले देखता हूँ डायरेक्टर मनमोहन देसाई जी
0: जी
1: जब वो आए उन्होंने सुना फिर उन्होंने अप्रूवल दिया कि नहीं डब करने की जरूरत नहीं है ये आवाज ये बच्चा इतना अच्छा गा रहा है और इसका जो इसकी आवाज जो है वो मेरे फिल्म के कैरेक्टर को बिल्कुल
0: सूट करती है
1: इस करके ये गाना मुझे मिला।
0: चलिए एक गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का बताइए तेरा मुझसे है पहले का नाता
1: बिल्कुल
0: आप ही का गाया हुआ सुन
1: जी

0: था मेरी जिंदगी का, मैं कैसे कहूँ, मेरी जिंदगी की पहचान,
1: जी
0: ये
1: जी
0: गाना बन गया।
1: जी बिल्कुल
0: तेरा मुझसे है पहले का
1: नाता
0: नाता
1: कोई।
0: कोई। कोविड के वक्त कितने लोगों ने मुझे मैसेजेस भेजे, फोन, जब उनके घर में कोई बीमार हो, कितना ऐसा हुआ है कि ये हमारा फेवरेट गाना
1: क्या
0: है।
1: बात है।
0: एक कोई बेटा अपनी माँ के लिए गा रहा है, कोई पत्नी अपने पति, ये मतलब, और मुझे वीडियोस बना बना के भेजे हैं
1: जी
0: लोगों ने,
1: जी जी
0: किसी किसी के थ्रू। लेकिन मंदाकिनी जी, इस फिल्म का एक और गाना था, मेरे बेटे सुन, उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए, पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना कि रखना भरोसा उस पे सदा जिसने है सबको

0: लाना तो वो ही रखवाला है, उसी को बुलाना तो आजा।
1: ये जो वो बोलते थे ना मंदा की, मैं डायनामिक्स की जहां बात कर रही।
2: जी जी
1: देखिए, मैं जो बच्चे सुन रहे हैं अगर उनके लिए ये है सिर्फ यू नो कि तारा रा रा रा, ये हुआ एक खुले गले का, फिर
0: कहा ना भुलाना तो ये रा रा रा,
1: और सॉफ्ट
0: उसी को बुलाना तो आजा आजा।
2: क्या बात है, क्या तो बात है।
1: ये मैंने
2: ये आधार का जी, ये पंचम धाम में ही ये गुण थे।
1: ये उतार चढ़ाव डायनामिक समझे से
2: जी, जी, जी।
1: कहां कितना आपको जोर देना
2: है,
1: कहां आपको कितना सॉफ्ट करना है,
2: वाह,
1: कहां आपको कितना फेड इन फेड आउट करना है,
2: वाह।
1: ये वो हमेशा मेरा हाथ पकड़ के पता नहीं यही अंतरा गाते।
2: जी जी जी, मतलब आप कितनी भाग्यशाली रही कि आपको इतने बड़े लोगों का प्यार मिला, स्नेह मिला,
1: बहुत,
2: उस छत्र छाया में आपने
1: बिल्कुल
2: सुषमा श्रेष्ठ का जीवन जिया है।
1: जो ये मेरा भाग्य ही,
2: नसीब नहीं मिलता है, अच्छे अच्छों को नहीं मिला
1: नहीं
2: है। अभी भी ऐसी बाल गायिकाएं नहीं है
1: ना,
2: जिनको
1: ना,
2: हम उंगलियों पे गिने या उनका नाम ले सके सुषमा श्रेष्ठ के अलावा।

0: तो इसके बाद फिर मैंने देखिए ना कैसे दिग्गजों के साथ काम किया। लता जी, उनके साथ पहले तो मैंने गाया था फिल्म, एक जॉय बांग्लादेश आई थी, आईएस जौहर साहब की फिल्म
1: हाँ,
0: थी,
1: हाँ,
0: है
1: हाँ,
0: ना,
1: हाँ, जी
0: बांग्लादेश वॉर के
1: जी
0: ऊपर वो
1: जी
0: था। वो पहली बार मैं उनसे मिली थी। हाँ, उसके बाद मैंने गाया उनके साथ यादों की बारात।
1: बारात, वाह।
0: ये गाना मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये बहुत ही, मतलब मैं समझती हूँ, एक और मेरे दिल के करीब का गाना
1: बिल्कुल, ये हमारे दिल के
0: है
1: भी
0: ना।
1: करीब उतना ही।
0: और इसका ऐसा है ना मंदाकिनी जी, वो तीन तीन बच्चे बताए हैं ना, सबसे छोटा जो बच्चा वो आमिर खान
1: हाँ हाँ बिल्कुल जी।
0: है तो मुझे क्या मालूम कि आगे चल के ये इतना बड़ा स्टार बनेगा और मैं इसके लिए मिस्टर लोवा लोवा तेरी आंखों का जादू
1: जी
0: गाऊंगी
1: बिल्कुल,
0: तो वो गाना मैंने, और ये गाना मेरे साथ गाया पद्मिनी, पद्मिनी
1: कोल्हापुरी
0: कोल्हापुरी।
1: ने जी।
0: लेकिन इसके क्या होता, वहां प्रोडक्शन कंट्रोलर्स आते थे जो गाने के पूरी डिटेल्स, मतलब लिरिक्स के साथ शूटिंग के लिए, वो नागरा क्या बोलते हैं ना, नागरा वो लेकर
1: जी
0: आते
1: जी
0: थे।
1: जी जी
0: तो वहां एक गलती प्रोडक्शन वालों की ये हुई कि उन्होंने जैकेट, मतलब उस गाने में मेरा नाम नहीं दिया,
1: अच्छा,
0: जिसको लेकर नासिर साहब ने खुद मुझे फोन किया, मंदाकिनी जी
1: नासिर हुसैन साहब
0: जी,
1: ने।
0: कि मैं बेटा मैं बहुत शर्मिंदा हूं, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, पर अब
1: अरे
0: सब कुछ चला गया है, अब वो टाइटल्स सब कुछ हो गया, अब
1: हाँ
0: क्या
1: हाँ
0: नहीं। मैंने
1: हाँ
0: कहा अंकल आप प्लीज ऐसा मत कहिए, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि एक तो मैं आपके प्रोडक्शन में गा रही हूं और मैं लता जी के साथ गा रही हूं,
1: सबसे बड़ी
0: वही
1: बात
0: मेरे लिए काफी है।
1: जी।
0: इतनी दुआएं दी उन्होंने, बोला मैं तुझे फिर गवाऊंगा, नहीं मैं तुझे गवाता रहूंगा। फिर ये तो यादों की बारात, वो गाना बजाए,
1: यादों की
0: यादों
1: बारात
0: की
1: निकली
0: बारात
1: है अब,
0: निकली है
1: पर
0: आज।
1: आपको गाना
0: हाँ
1: होगा, शर्त यही है।
0: प्लीज मैं कोशिश करूंगी।

0: सपनों की शहनाई बीते दिन। देखिए मैं जो कह रही हूं ना, फेड इन फेड आउट, पुश बैक, वो इनकी ये स्टाइल मैंने पंचम दास से सी।
1: जी
0: डा रा रा रा रा रा रा, आप समझी?
1: वो खुद भी ऐसे ही गा देते हैं।
0: हाँ बिल्कुल।
1: जी।

0: बात कर रहे हैं हम आपके बचपन की
1: जी।
0: और अब सुषमा श्रेष्ठ के उस आखिरी मोड़ पर हम आ गए हैं जहां हम कहना चाहेंगे कि कुछ गाने ऐसे थे जैसे कि क्या हुआ तेरा वादा, तेरी है जमी तेरा आसमान, और सबसे बड़ी बात धर्म करम की फिल्म
1: धर्म करम भी था, धर्म एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल मुकेश अंकल के साथ,
0: और एन चंद्रा की फिल्म अंकुश का इतनी शक्ति हमें देना दादा जिसमें आपने पुष्पा पाकधरी के साथ गाया है।
1: बिल्कुल,
0: तो ये गीत बड़ा भावनात्मक गीत था उस उम्र में, वो भावनात्मक दृष्टिकोण कैसे आपके भीतर आया, इस गीत को गाना आसान नहीं था?
1: मंदाकिनी जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बचपन से ही वैसी थी। देखिए ना, मैंने पहला गाना जो उठाया गाने के लिए बचपन में भी वो था रोतड़ू गाना, कांटो की दुनिया है तुझसे, फिर मैं गाती थी एक तो ना, ये मेरा चॉइस रहा
0: जी,
1: है
0: जी।
1: सिर्फ मैं ना वर्ड्स का गड़बड़ करती थी, तो एक तू ना मिला को मैं चूना मिला बोलती।
0: अच्छा।
1: और डैडी बहुत हंसते थे और बार बार गवाते थे और करेक्ट नहीं करते थे कि उसको चूना मिला बोलने दो। तो चॉइस मेरा यही रहा है। ये अलग बात है कि आगे चल के मुझे अलग स्टाइल के गाने गवाए गए, वो एक अपनी कहानी है, लेकिन चॉइस तो मेरा यही रहा है। तो वो जो एक मैं बोलूंगी कि भाव से गाना जिसे कहते हैं, प्लेबैक सिंगिंग जिसे हम कहते हैं, हम माफी चाहूंगी सारे दिग्गजों से, मैं माफी चाहूंगी
0: जी,
1: लेकिन प्लेबैक सिंगिंग एक बहुत ही अलग गेम है,
0: विधा है।
1: बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कोई भी इसे ठीक तरह से विस्तार में समझा पाएगा कि ये क्या है, लेकिन प्लेबैक सिंगर्स जो है ना, वो खास एक ढांचे में वो उनको ढाल के भेजता है, ऐसा मेरा मानना है। तो वो मेरे में, मुझे लगता है बचपन से था प्लेबैक सिंगिंग। तो ये सब गाने भी जब मैंने गाए, जैसे एक दिन बिक जाएगा माटी के, मैं ठीक समझ जाती थी कि क्या सिचुएशन है, क्योंकि वो गाना भी पंचमदा ने जबरदस्ती मुझे गवाया है। राज साहब की फिल्म बन रही है तो आर के बैनर में इसका एक गाना होना ही चाहिए। राज साहब प्लीज, आप तो आप ही की फिल्म है, एक सिचुएशन बनाओ। फिर तेरा मुझसे है पहले का, उनको सुनाया, देखिए क्या गाती है, क्या गाती है, कर दो ना। अच्छा अच्छा ठीक है, ऐसे करके उन्होंने वो सिचुएशन बनाई, मुकेश अंकल के साथ मुझे गवाया। तो मुझे ठीक मालूम था कि उनको वो तरम पम कैसे चाहिए, तरम पम। उसमें राज साहब ने कहा भी मुकेश अंकल को,
0: जी
1: ए मुकेश चंद, वो बच्चा बोल रहा है वैसा तरम पम नहीं आ रहा है तुम्हारा।
0: अरे
1: पर उनका बड़प्पन देखिए। हाँ, हाँ। ये पहले भी एक बार मैं मुकेश झट से बताती हूँ।
0: हाँ।
1: मुकेश अंकल के साथ मैंने जो पहला गाना गाया वो बाप्पी दा की पहली फिल्म थी
0: जी,
1: नन्हा शिकारी।
0: अच्छा।
1: हाँ, ये मुखर्जी ब्रदर्स यानी काजोल के चाचा पिताजी, काजोल के पिताजी उसके डायरेक्टर थे, तो वो बाप्पी दा की पहली फिल्म थी। और उसमें जब हम रिहर्सल कर रहे थे तो बाप्पी दा की मम्मी ने मुकेश अंकल से कहा कि तुम ना ऊपर के सुर को, क्योंकि उसका अंतरा था, चाहे मझधार में नैया हो, वो उसको तुम ज्यादा मत खेचो, तोड़ दो, नहीं तो तुम बेसुरा हो जाता है, ऐसे बोली वो। अब सब साइलेंस के, अब तो गदा पड़ी। लेकिन मुकेश अंकल की बढ़ाई देखिए, बड़प्पन उनका देखिए, वो बाजा बजा कर गाते थे। हा?
0: हाँ,
1: इवन
0: हाँ,
1: रिकॉर्डिंग्स में।
0: हाँ,
1: वो हंसने लगे और बोले ठीक कह रही हैं आप।
0: अरे
1: बड़प्पन देखिए
0: क्या बात है।
1: वहां मैंने ये एक और, मैं बहुत नोट करती थी ये सब बातें,
0: ये नम्रता भी,
1: ये नम्रता होना, अपनी कमजोरी को समझना, जानना और एक्सेप्ट करना, उसके लिए भी बहुत हिम्मत लगती है।
0: और एक बच्चे के सामने जब कहा जा रहा हो उसको अप्रिशिएट करते हुए,
1: और वही बात इस गाने में भी हुई कि मुकेश चंद वो तरम पम बच्चे की तरह तो हंसने लगे, बोले अरे बच्चा तू तो हमेशा फंसाती है मुझे।
0: अरे
1: राज, बच्चा तरम पम बोलेगा और मैं बोलूं, उसमें फर्क तो होगा। अरे फिर भी मुकेश चंद देख वो कह, अच्छा भाभी बता बेटा कैसे बोल रही है, तरम पम तरम पम, नहीं मेरे से नहीं होगा राज, उसी से बोलो, उसी से बुलवाओ,
0: क्या
1: नहीं तुम्हारे अंतरे में तुम बोलोगे, चलो ठीक है मुकेश चंद बोल दो जैसे बोल रहे हो। तो ये जो मैंने सब देखा, ये माहौल, एक वो जो कॉमरेडशिप, एक एक्सेप्टेंस,
0: बिल्कुल
1: कि नहीं मैं नहीं कर सकता, जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करूंगा, जो मैं नहीं कर सकता वो मैं नहीं करूंगा,
0: बिल्कुल इसको स्वीकार कर लेना,
1: ये ईमानदारी
0: जी
1: है
0: जी,
1: ना
0: जी,
1: ये सब मैंने सीखा मंदाकिनी जी।
0: जी
1: वो अगर चाहे तो थोड़ा सा गाना प्लीज बजा दीजिए
0: जी,
1: क्यों, मैं समझती हूँ हर कलाकार के लिए ये वो है
0: फिल्म धर्म कर्म का
1: वो जो अंतरा है कि हाँ। ना हो बस में तेरे कुछ भी माना, तेरा धर्म है अपना कर्म निभाना, तेरे पीछे मतवाले सब सोचे।

0: लिख दिन बिक
1: क्या
0: जाएगा,
1: बात है,
0: एक दिन बिक जाएगा माटी
1: माटी
0: के
1: के
0: मोल,
1: मूल
0: ये
1: में।
0: हर कलाकार के लिए है। अगर आप बजा सकें तो प्लीज मेरे लिए ये
1: बिल्कुल
0: गाना
1: बिल्कुल, ये
0: बजाइएगा।
1: गाना हम बजाएंगे और हमारे
0: जी
1: श्रोता सुनना भी चाहेंगे, तो चलिए सुनते हैं
0: जी
1: ये गीत।

0: इस गीत को सुनने के बाद तो देखिए रोंगटे खड़े से हो गए हैं, और हर वक्त जब इस गीत को हम सुनते हैं तो वाकई जीवन की सच्चाई हमें समझ आती है कि किस तरह से जीवन को जीना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे एन चंद्रा की फिल्म अंकुश की, इतनी शक्ति हमें देना दाता, ये आपका शायद अंतिम गाना था,
1: सुषमा श्रेष्ठा के नाम से गाया हुआ मेरा अंतिम गीत था।
0: जी जी।
1: और क्या होता था मंदाकिनी जी, मैं अगर थोड़ा सा जल्दी से आपको बताऊं,
0: जी,
1: जैसे मैंने क्या हुआ तेरा वादा रफी साहब के साथ गाया था, तो उसमें तो मैंने शिवांगी कोल्हापुरे,
0: जी शिवांगी,
1: जो शक्ति कपूर जी की बीवी और श्रद्धा कपूर
0: की बहन,
1: और श्रद्धा कपूर की
0: मम्मी है,
1: तो उसके साथ गाया था ये गाना। तो वहां भी जब वो अंतरे में भूलेगा दिल, अब मैं ये किस्मत की बात जहां करती हूँ, लेकिन उस गाने से मेरी पहचान बनी
0: जी।
1: मैं जहां जाती हूँ मुझे वो गाना गाने के लिए मजबूर करते हैं लोग, वो गाना मेरा है नहीं वैसे, लेकिन इट्स हम डुएट ही बोलेंगे उसे, है ना। तो भाग्य ने मेरा बहुत साथ दिया मंदाकिनी,
0: और उस गाने के बगैर पूर्णिमा जी अधूरी लगती हैं।
1: और नासिर साहब, नासिर अंकल ने कहा, मैं तुझे बोला था ना बेटा, मैं बार बार बुलाऊंगा तुझे, मुझे तू बहुत अच्छी लगती है, फोन करके माफी, क्या मतलब वो कौन थे वो, मैं क्या थी उनके आगे और क्या हूं, इज नासिर हुसैन। और मेरी किस्मत देखिए, एक के नडियाड वाला फिल्म्स, आगले लग जा, तेरा मुझसे है पहले, आज मैंने उनके पोते के लिए, वो हम पूर्णिमा पर जब आएंगे तो वो गाना जरूर बजवाऊंगी आपसे, साजिद के साथ उनके पोते के साथ काम किया
0: जी,
1: इतनी मतलब
0: बड़ी बात है, और
1: मैं
0: ताउम्र याद रहने वाली बात,
1: और ये आखिरी गीत इतनी शक्ति, हमने सोचा ही नहीं था मंदाकिनी जी, कुलदीप सिंह जी ने ऑफ कोर्स गाना कंपोज किया, मैं उनको पापा जी कहती हूँ, और लिखा है उसको अभिलाष जी ने, फिर बहुत बदकिस्मत इतने बेहतरीन राइटर लिरिसिस्ट एन चंद्रा जी की शायद पहली फिल्म, पता है मंदाकिनी जी, मैं अगर मैं बोलूं आपको, मैं बहुतों के लिए बहुत लकी हूं, देखिए मैंने सबकी जो करियर्स की जो शुरुआत हुई है, काफी जैसे रमेश सिप्पी जी, सलीम जावेद जी, फिर एन चंद्रा जी
0: उनके शुरुआती दौर में,
1: काजोल और रानी मुखर्जी, तो हाँ मैं लकी हूँ सबके लिए शायद, यस यस यस,
0: आप हमारे लिए लकी हैं।
1: तो ये हमने सोचा ही नहीं
0: जी,
1: था
0: जी,
1: कि ये गाना एक दिन इस देश, मैं बोलती हूँ देश विदेश में तो पॉपुलर हुआ, पर इस देश का एक नेशनल एंथम बन जाएगा,
0: बिल्कुल
1: है ना। आज देखिए मतलब क्या, किस स्तर पे वो गाना पहुंच
0: बिल्कुल,
1: गया,
0: बिल्कुल। और पुष्पा जी जैसी गायिका जो कि बहुत ही जहीन एक गायिका है, उनके साथ गाना आपको मिला,
1: बिल्कुल। और मैं, मुझे पता ही नहीं कि पापा जी ने उनको क्यों चुना इस पर, मैंने जब फिल्म देखी तो वो उस कैरेक्टर के साथ जो उनकी आवाज,
0: वो वही थी,
1: ये उन लोगों की ग्रेटनेस थी,
0: वो पुष्पा जी की ही आवाज हो सकती थी।
1: मुझे जब ये सवाल करते हैं, वो आप कीजिएगा जरूर, कि तब के संगीत और अब के में क्या फर्क,
0: जी कीजिएगा जरूर, है
1: तब मैं आपको बताऊं,
0: जी मेरा ही सवाल है,
1: क्या फर्क है, बस वो इतनी शक्ति हमें देना दाता, मतलब कितने लोग फोन करके कहते हैं कि एक किसी बैंक के मैनेजर ने मुझे कॉल किया, वहां कोई हमारा एक सिंगर गया था, स्टेज पे गाता है बच्चा, तो वो गाना बज रहा था, और सब, वो जब गया तो सब बिल्कुल खड़े होकर विनम्र तरीके से
0: खड़े हो गए,
1: बस वो गाना
0: जी
1: वो बंद हुआ, फिर सब बैठ गए, चलो अब काम। तो वो बोले, पता है ये मेरी दीदी ने तो बोले हाँ सुषमा, अरे वही पूर्णिमा दीदी, उन्होंने गाया है। तो मैनेजर ने मुझसे बात किया और बोली कि आपके गाने से हम दिन की शुरुआत करते हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं, प्लीज आइएगा हमारे बैंक में, सिर्फ आइएगा तो हमको ऐसा लगेगा कि हमने बहुत कुछ पा लिया।
0: जी।
1: मैंने सुना है स्कूल्स में गाते हैं, इवन बच्चों के शायद सिलेबस में शायद, मैंने सुना है, मुझे पता नहीं।
0: और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जब आकाशवाणी की दुनिया में हम कई बार, जब हमें देशभक्ति गीत बजाने होते हैं या मोटिवेशनल सॉन्ग बजाने होते हैं, तो ये गाना नंबर 1 पर होता है।
1: देखिए
0: मतलब हर आकाशवाणी से ये गाना बजा है, हर आकाशवाणी से, और विविध भारती में भी कितनी बार इस गाने को हर घोषक ने बजाया है।
1: और अफसोस कि जिन लोगों ने जो जुड़े हैं इस गाने के साथ, पापा जी कुलदीप सिंह जी, अभिलाष जी, तो बेचारे उनका तो निधन हो गया, उनको वो कैसे कहूँ, हाँ, वो पहचान, वो स्थान नहीं मिला जिसके वो काबिल हैं, जिसके वो हकदार हैं।
0: कुलदीप सिंह जी के तो म्यूजिक की अगर हम बात करने चलें तो एक लंबा समय निकल जाएगा।
1: कितने गुणी, बाप रे,
0: बिल्कुल।
1: तो
0: चलिए ये गीत हम सुनते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।

0: देखिए, इस गीत को सुनने के बाद हम भी वैसे ही हो गए जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि ये गीत हमें कितनी गहराई की ओर ले जाता है ना। तो पूर्णिमा जी, हम आपसे आज बातचीत कर रहे हैं बचपन से अभी तक का जो आपका सफर है गायिका बनने का, उस विषय पर। और ये बातचीत तो हमारी बहुत ही रोचक और शानदार हो रही है, हमारे श्रोता भी ऐसा महसूस कर रहे होंगे यकीनन। लेकिन सुषमा से पूर्णिमा आप कैसे बनी, ये जो सफर है ये भी हम जानना चाहते हैं कि सुषमा से पूर्णिमा बनने तक का ये सफर कैसा रहा। तो चलिए, ये बातचीत हम करेंगे अब अगले अंक में।
1: बॉम्बे टॉकीज, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की ये बातचीत। अभी आप सुन रहे थे इस बातचीत का दूसरा भाग। ये बातचीत यहीं खत्म नहीं हुई, इसका तीसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिद्धल, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: ऊपर है अपना बॉम्बे टॉकीज।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
4: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
4: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
4: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
5: FM 102.5 MHz और न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन का आपका अपना युवा कार्यक्रम युववाणी FM 102.5 MHz, साथ ही न्यूज ऑन मोबाइल एप्लीकेशन पर। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट प्रतिभा।
1: और मैं हूं आपका दोस्त ऋषि। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आज के युववाणी प्रोग्राम में।
0: तो ऋषि, सितंबर का महीना धीरे धीरे अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहा है और मौसम में भी अब बदलाव महसूस होने ही लगा है। ऐसे में आज की हमारी मुलाकात भी कई अलग अलग रंगों और विषयों से सजी हुई है।
1: बिल्कुल प्रतिभा, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे मुद्दों की जो सीधे हमारे जीवन और हमारे आसपास की दुनिया से जुड़े हुए। कुछ बातें हमें अपने पर्यावरण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करेगी, तो कुछ हमें इतिहास और समाज में आए बदलाव की याद दिलाएगी।
0: जी हाँ, आज है वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे, यानी विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। इस मौके पर हम समझेंगे कि हमारा पर्यावरण और हमारी सेहत एक दूसरे से कितने गहराई से जुड़े हुए हैं। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं और जिस वातावरण में हम रहते हैं, इन सब का हमारी सेहत पर सीधा असर पड़ता है।
1: और इसी के साथ आज इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, यानी विश्व परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस। इस मौके पर हम बात करेंगे परमाणु हथियारों के खतरे, वैश्विक शांति और एक ऐसे विश्व की जरूरत जहां मानव सुरक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाए।
0: आज का दिन इतिहास के एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को याद करने का भी दिन है। आज है महान समाज सुधारक, शिक्षाविद और विचारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जयंती।
1: बिल्कुल, जिन्होंने शिक्षा के प्रसार और सामाजिक सुधार के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज हम जानेंगे उनके जीवन, उनके विचारों और समाज में बदलाव लाने के उनके प्रयासों के बारे में।
0: और ऋषि, आज के युववाणी में इतिहास और गंभीर सामाजिक मुद्दों के साथ साथ सिनेमा का रंग भी खूब चढ़ने वाला है।
1: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आज हम याद करेंगे हिंदी सिनेमा के उस सदाबहार सितारे को जिनका अंदाज ही उनकी पहचान बन गया था।
0: जी हाँ, बात हो रही है देवानंद जी की। आज उनकी जयंती के मौके पर हम उनकी फिल्मी सफर, उनकी खास अदाकारी, उनके अंदाज और उन यादगार फिल्मों की बातें करेंगे जिन्होंने उन्हें हिंदी सिनेमा का एक अलग मुकाम दिया।
1: और युववाणी में युवाओं की बात हो रही हो और रोजगार की जानकारी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और जब इतने सारे विषय हो तो बातचीत का सिलसिला भी उतना ही खूबसूरत होना चाहिए।
0: बिल्कुल, तो हमारी बातों का सिलसिला शुरू होगा, लेकिन उससे पहले पेश है आज का पहला खूबसूरत गीत।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दीप,
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
2: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा,
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: संदेश से पहले आप सुन रहे थे फिल्म वीर का बहुत खूबसूरत गीत, जिसे अपनी आवाज दी थी राहत फतेह अली खान ने, गीतकार थे गुलजार और संगीत दिया था साजिद वाजिद ने। श्रोताओं, अगर आजकल के मौसम की बात करें तो लगता है जैसे बारिश भी अब धीरे धीरे अपनी विदाई की तैयारी कर ही चुकी है। कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां कम हुई हैं तो कहीं अभी भी बारिश थोड़ी बहुत देखने को मिल ही रही है।
6: हाँ जी, वैसे भी सितंबर का आखिरी सप्ताह चल रहा है, कई जगहों पर लोगों को अब बारिश के बाद वाली साफ हवा और थोड़ी खुली धूप महसूस होने लगी है, जबकि कुछ हिस्सों में मौसम अभी भी करवट ले रहा है।
5: और मौसम में बदलाव सिर्फ हमारे कपड़ों या हमारी दिनचर्या को ही नहीं बदलता, बल्कि इसका सीधा असर हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। यही वजह है कि आज का हमारा पहला विषय बहुत रेलिवेंट है। आज यानी 26 सितंबर को मनाया जा रहा है वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस।
6: बिल्कुल दोस्तों, अब यहाँ एक सवाल आता है, एनवायरमेंटल हेल्थ आखिर होता क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ साफ सफाई रखना

0: और पेड़ लगाना है?
1: नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एनवायरमेंटल हेल्थ का दायरा इससे कहीं बड़ा है ऋषि। हम जिस हवा में सांस लेते हैं, जो पानी पीते हैं, जिस भोजन का सेवन करते हैं, हमारे आसपास की सैनिटेशन व्यवस्था, कचरा प्रबंधन, इंडोर और आउटडोर एयर क्वालिटी, ये सभी हमारे पर्यावरणीय स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं।
0: यानी बहुत आसान भाषा में कहे तो हमारा एनवायरमेंट कैसा है, उसका असर हमारी हेल्थ पर कैसा पड़ेगा, इसी रिश्ते को समझना एनवायरमेंटल हेल्थ का एक अहम हिस्सा है।
1: बिल्कुल, और बारिश का मौसम इसका एक अच्छा उदाहरण भी है। बारिश अपने साथ ठंडक और हरियाली तो लेकर आती ही है, लेकिन अगर पानी कहीं जमा हो जाए, ड्रेनेज की व्यवस्था ठीक ना हो या आसपास सफाई ना हो, तो मच्छरों और दूसरे वेक्टर बॉर्न डिजीजेस का खतरा और भी बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल, और बारिश खत्म होने के बाद भी हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। घर के आसपास कहीं पानी जमा है, कूड़ा खुले में पड़ा है या नालियां साफ नहीं है, तो छोटी सी लापरवाही आगे चलकर बड़ी समस्या बन सकती है।
1: बिल्कुल, और एनवायरमेंटल हेल्थ सिर्फ बीमारियों से बचने की बात नहीं करता। स्वच्छ हवा, सुरक्षित पेयजल, बेहतर सैनिटेशन और स्वस्थ रहने योग्य सराउंडिंग्स, ये सभी हेल्दी कम्युनिटीज के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं।
0: तो एनवायरमेंटल हेल्थ की बात करते हुए हम एक बात याद रखनी चाहिए, स्वस्थ जीवन की शुरुआत सिर्फ अस्पताल से नहीं बल्कि स्वस्थ एनवायरमेंट से भी होती है।
1: और इस साल वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे की थीम भी काफी मीनिंगफुल है, एनवायरमेंटल हेल्थ स्टैंडिंग विद साइंस टू प्रोटेक्ट कम्युनिटीज। इसके लिए हमेशा एक बहुत बड़ा काम करने की भी जरूरत नहीं है हमें एनवायरमेंट के प्रति, शुरुआत अपने घर और अपने आसपास से भी की जा सकती है।
0: घर के आसपास पानी जमा ना होने देना, पानी की बर्बादी रोकना और जहां संभव हो पेड़ पौधे और हरियाली को बढ़ाना।
1: और हाँ, जैसे कूड़ा इधर उधर ना फेंकना, गीले और सूखे कचरे को अलग अलग करके ही फेंकना। और एक छोटी और बहुत जरूरी बात भी है कि सिर्फ खुद जागरूक होना काफी नहीं है, अपने परिवार, दोस्तों और आसपास के लोगों को भी इन छोटी छोटी बातों के लिए एनकरेज करना ही चाहिए।
0: बिल्कुल, और छोटी छोटी आदतें लेकिन बड़ा असर।
1: और इसी संदेश के साथ अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की ओर। इसके बारे में हम बात करेंगे विश्व शांति और मानव सुरक्षा से लेकर। उससे पहले सुनते हैं खूबसूरत गीत।

0: आप सुन रहे थे फिल्म मुंजिया का गीत, जिसे अपनी आवाज़ दी थी अरिजीत सिंह और सचिन जिगर ने। गीतकार थे अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत दिया था सचिन जिगर ने। पर्यावरण और हमारे स्वास्थ्य की बात के बाद अब एक ऐसे विषय की ओर बढ़ते हैं जो सिर्फ किसी एक देश या किसी एक समाज से नहीं बल्कि पूरी मानवता से जुड़ा हुआ है।
1: बिल्कुल प्रतिभा, और अगर हम दुनिया के इतिहास को देखें तो विज्ञान ने इंसान की जिंदगी को बहुत आसान बनाया, लेकिन इसी विज्ञान ने ऐसी तकनीकें भी विकसित की है जिनका इस्तेमाल बेहद विनाशकारी हो सकता है,
0: और परमाणु हथियार इसी का एक उदाहरण है। इनका प्रभाव सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं रहता बल्कि इंसानों, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों तक इसका असर पहुंच सकता है।
1: इसलिए हर साल 26 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, यानी परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है।
0: इस दिन का उद्देश्य लोगों को परमाणु हथियारों के खतरे के बारे में जागरूक करना और परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देना है।
1: प्रतिभा, जब हम न्यूक्लियर वेपन्स की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में युद्ध और विस्फोट की तस्वीर आती है, लेकिन इसका असर उसे कहीं ज्यादा व्यापक हो सकता है।
0: बिल्कुल हो सकता है। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से होने वाला नुकसान तत्काल जानमाल की हानि तक सीमित तो नहीं रहता है, रेडिएशन का प्रभाव लंबे समय तक रह सकता है और इसका असर एनवायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ पर भी पड़ सकता है।
1: बिल्कुल सही कहा, यानी एक ऐसा खतरा जिसका असर सिर्फ वर्तमान पीढ़ी पर नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक महसूस किया जा सकता है।
0: और शायद इसलिए न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट की चर्चा में सिर्फ हथियारों की संख्या कम करने की बात तो नहीं होती है बल्कि विश्वास, संवाद और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी उतने ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
1: सही कहा, अलग अलग देशों के बीच संवाद और डाइप्लोमेसी का महत्व ऐसे मुद्दों पर और बढ़ जाता है क्योंकि न्यूक्लियर वेपन का सवाल ग्लोबल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है।
0: यूनाइटेड नेशंस भी इस दिन के माध्यम से न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट की आवश्यकता और परमाणु हथियारों से जुड़े मानवीय और सुरक्षा संबंधी खतरों पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करता है।
1: और आज की युवा पीढ़ी के लिए भी यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाली दुनिया कैसी होगी, इसमें युवाओं की सोच और उनकी जागरूकता भी बड़ी भूमिका है।
0: बिल्कुल, शांति सिर्फ युद्ध ना होने का नाम बिल्कुल नहीं है। शांति का मतलब है ऐसा माहौल जहां लोग सुरक्षित महसूस करें, बातचीत के जरिए विवादों को सुलझाने की कोशिश हो और आने वाली पीढ़ियां भय के बजाय संभावनाओं के साथ आगे बढ़ सके।
1: बिल्कुल, कितनी खूबसूरत बात है। विज्ञान हमें शक्ति देता है, लेकिन उस शक्ति का इस्तेमाल मानवता की सुरक्षा के लिए कैसे किया जाए, ये हमारी जिम्मेदारी है।
0: और इसी खूबसूरत सोच के साथ हमारी बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अब बात होगी इतिहास के एक ऐसे व्यक्तित्व की जिन्होंने शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा खूबसूरत गीत।

0: आप सुन रहे थे फिल्म बत्ती गुल मीटर शालू का गीत, जिसे अपनी आवाज़ दी थी आतिफ असलम ने, बोल लिखे थे नुसरत फ़तेह अली खान ने और संगीत दिया था रोचक कोहली और नुसरत फ़तेह अली खान ने।
1: दोस्तों, अब जिस शख्सियत की बात हम करने जा रहे उनके नाम के साथ कुछ शब्द अपने आप जुड़ जाते हैं, शिक्षा, समानता, सुधार और मानवता।
0: बिल्कुल, आज 26 सितंबर है और आज ही के दिन 1820 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का जन्म हुआ था। उनका मूल नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था और अपनी विद्वता के कारण उन्हें विद्यासागर की उपाधि मिली।
1: लेकिन उन्हें सिर्फ एक विद्वान या शिक्षाविद के रूप में याद करना पर्याप्त क्यों नहीं होगा?
0: क्योंकि उन्होंने अपने ज्ञान को समाज में बदलाव का माध्यम बनाया। उनके लिए शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने का साधन नहीं, बल्कि समाज को बेहतर बनाने की ताकत थी।
1: और खास तौर पर महिला शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान बेहद महत्वपूर्ण रहा।
0: बिल्कुल, उस दौर में लड़कियों की शिक्षा को लेकर कई रूढ़ियां थीं। विद्यासागर जी ने बालिकाओं की शिक्षा और स्कूलों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: बिल्कुल, और उन्होंने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी आवाज उठाई, खासकर विधवा पुनर्न विवाह के समर्थन में।
0: बिल्कुल, उन्होंने शास्त्रों और तर्क के आधार पर विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और उनके प्रयासों के बाद हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट 1856 के जरिए इसे कानूनी मान्यता भी मिली।
1: यानी उन्होंने सिर्फ बदलाव की बात नहीं की बल्कि उसके लिए लगातार प्रयास भी किए।
0: और यही आज की युवा पीढ़ी के लिए बड़ी सीख है, बदलाव के लिए नॉलेज, करेज और कंसिस्टेंट एफर्ट।

0: बहुत जरूरी है।
1: विद्यासागर ने शिक्षा को सरल और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश भी की।
0: हाँ, बंगाली भाषा और साहित्य में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा और बच्चों की शुरुआती शिक्षा के लिए उन्होंने वर्ण परिचय जैसी पुस्तक भी लिखी।
1: आज टेक्नोलॉजी का दौर है, ऐसे में क्या उनकी सोच आज भी रिलेवेंट है?
0: बिल्कुल है। शिक्षा महिलाओं की शिक्षा हो, सामाजिक समानता हो और कई रूढ़ियों पर सवाल उठाने की जरूरत आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है और ऐसे कई विषय हमारे सामने मौजूद भी हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि शिक्षा सिर्फ परीक्षा पास करना नहीं बल्कि समझना, सवाल करना और सही गलत के बीच फर्क करना भी है।
0: बिल्कुल सही कहा। विद्यासागर का जीवन हमें सिखाता है कि एक व्यक्ति की सोच, उसके प्रयास समाज पर लंबे समय तक असर डाल सकते हैं।
1: तो आज उनकी जयंती पर उन्हें याद करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम उनके विचारों से कुछ सीखें।
0: खासकर युवा शिक्षा को सिर्फ करियर का माध्यम न माने बल्कि अपने आसपास पॉजिटिव बदलाव लाने का जरिया भी बनाए।
1: बिल्कुल, तो आज ईश्वरचंद विद्यासागर को याद करते हुए यही कहेंगे, ज्ञान तभी मीनिंगफुल है जब वह दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाए।
0: और बदलाव तब खूबसूरत होता है जब उसमें इंसानियत और समानता दोनों शामिल हों। ईश्वरचंद विद्यासागर की जयंती पर हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और युवाणी के श्रोताओं से बस इतना ही। पढ़ते रहिए, सवाल पूछते रहिए और सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करते रहिए।
1: अब आगे बढ़ते हैं हिंदी सिनेमा की उस दुनिया में जहाँ अंदाज, रोमांस और संगीत का खूबसूरत संगम था। जी हाँ, अगला सेगमेंट होगा देव आनंद जी के नाम।
0: उनकी जिंदगी, उनके फिल्मी सफर, उनकी यादगार फिल्मों की बातें होंगी। उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा खूबसूरत गीत।

0: आप सुन रहे थे फिल्म भाग मिल्खा भाग का गीत, जिसे अपनी खूबसूरत आवाज दी थी श्रेया घोषाल और जावेद बशीर ने। बोल लिखे थे प्रसून जोशी ने और संगीत दिया था AR रहमान ने। तो श्रोताओं, अब युवाणी के सफर में थोड़ा रंग सिनेमा का, थोड़ी मिठास संगीत की और कुछ खूबसूरत यादें जोड़ने का वक्त है। और आज जिस सितारे की हम बात करने वाले हैं, उनके नाम के साथ ही हिंदी सिनेमा का एक पूरा दौर आंखों के सामने आ जाता है।
1: बिल्कुल, बात हो रही है देवानंद जी की। आज उनकी जयंती के मौके पर हम याद कर रहे उस सदाबहार अभिनेता को, जिन्होंने कई दशकों तक अपनी फिल्मों, अपने अंदाज और अपनी खास स्क्रीन पर्सनालिटी से दर्शकों के दिलों पर राज किया।
0: 26 सितंबर 1923 को जन्मे देवानंद जी की कहानी सिर्फ एक अभिनेता बनने की कहानी नहीं थी। इसमें सपने थे, संघर्ष था और कुछ अलग करने का जुनून था। उनका अंदाज इतना खास था कि उनकी चाल, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका फैशन और चेहरे पर हमेशा बनी रहने वाली खूबसूरत मुस्कान तक उनकी पहचान बन गई।
1: और यही वजह थी कि उस दौर के युवा उनसे खुद को कनेक्ट कर पाते थे। उनका स्टाइल सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनका ड्रेसिंग सेंस और हेयर स्टाइल भी युवाओं के बीच खूब लोकप्रिय हुआ।
0: लेकिन सिर्फ पर्सनालिटी के दम पर कोई कलाकार इतने लंबे समय तक ऑडियंस के दिल में नहीं रह सकता। उसके पीछे मजबूत काम और लगातार कुछ नया करने की कोशिश भी जरूर होती है।
1: बिल्कुल, देवानंद जी

0: ने खुद को सिर्फ एक्टिंग तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया और नवकेतन फिल्म के जरिए हिंदी सिनेमा को नई कई यादगार फिल्में दी।
1: उनकी फिल्मों में रोमांस और म्यूजिक तो था ही, लेकिन साथ ही युवा मन, बदलती जिंदगी, रिलेशनशिप्स और उस दौर के समाज की झलक भी देखने को मिलती थी। यही वजह है कि उनकी फिल्मों को आज भी सिर्फ एंटरटेनमेंट के तौर पर नहीं बल्कि उस दौर के सिनेमा की एक खूबसूरत तस्वीर के रूप में याद किया जाता है।
0: और अगर दोस्तों देवानंद जी की बात हो रही हो और उनके गानों की बात ना हो तो कहानी थोड़ी अधूरी सी लगेगी। उनके फिल्मों के संगीत ने उनकी स्क्रीन पर्सनैलिटी को और खास बना दिया।
1: बिल्कुल, उनके गानों में रोमांस था, सफर था, जिंदगी का उत्साह था और कई बार एक ऐसी मासूमियत भी थी जो आज भी सुनने वाले को अपनी ओर खींच लेती है।
0: और यही तो खासियत है सदाबहार कलाकारों की, समय बदलता है, जनरेशन बदलती है, लेकिन उनका काम लोगों की यादों में बना रहता है।
1: तो आज देवानंद जी की जयंती पर उनकी जिंदगी और उनकी फिल्मी सफर को याद करते हुए क्यों ना उनकी इस खूबसूरत विरासत को एक सदाबहार गीत के साथ महसूस किया जाए। तो पेश है उनका एक खूबसूरत दौर के आंखों के सामने आने वाला वह बहुत खूबसूरत गीत फिल्म गाइड से।

0: आप सुन रहे थे फिल्म गाइड का खूबसूरत गीत, जिसे अपनी आवाज दी थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने, बोल लिखे थे शैलेंद्र ने और संगीत दिया था SD बर्मन ने। कुछ गीत वक्त के साथ पुराने जरूर होते हैं, बल्कि हर बार सुनने पर एक नई खूबसूरत याद दे जाते हैं। कुछ धुनें ऐसी होती हैं जिन्हें सुनने से ही लगता है जैसे हम अचानक अपने अतीत के किसी खूबसूरत पल में पहुंच गए हों।
1: बिल्कुल प्रतिभा, और देवानंद जी के साथ तो ये बात और भी खास है। उनके गानों में सिर्फ संगीत नहीं था बल्कि उनके अंदाज और उनकी पर्सनालिटी की भी एक झलक होती थी।
0: और शायद यही वजह है कि उनके गाने सिर्फ उस दौर के लोगों तक सीमित नहीं रहे। आज की पीढ़ी भी जब उन गीतों को सुनती है तो उनमें वही फ्रेशनेस और वही चार्म महसूस करती है।
1: बिल्कुल, और देवानंद जी की फिल्मों की बात करें तो उनका सफर भी कई अलग अलग रंगों से भरा हुआ था, जैसे जाल, टैक्सी ड्राइवर, CID, काला पानी, गाइड और जॉनी मेरा नाम जैसी फिल्मों में उन्होंने अलग अलग तरह के किरदार निभाए और हर किरदार में अपनी एक अलग पहचान बनाई।
0: कभी वो एक चार्मिंग और रोमांटिक अंदाज में नजर आए, कभी उनके किरदार में मिस्ट्री और एक्साइटमेंट दिखाई दी, तो कभी वो ऐसे इंसान बने जो अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहता है। उनके किरदारों में एक अलग ही अक्सर एक अलग बात देखने को मिलती थी, एक तरह की बेचैनी, आगे बढ़ने की चाह और जिंदगी को पूरी तरह महसूस करने का जज्बा।
1: और यही शायद उनके युवाओं से

0: ने की सबसे बड़ी वजह में से एक थी। देवानंद जी सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो एक स्टाइल आइकन भी बन गए थे।
1: हाँ, और उनका स्टाइल सिर्फ फैशन तक सीमित नहीं था, उनके पूरे व्यक्तित्व में एक तरह का कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी नजर आती थी।
0: और उनके सिनेमा की एक और खासियत थी, उनकी फिल्मों में सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, प्यार, रिश्ते, सपने, संघर्ष, जिंदगी को लेकर बदलती सोच और अपनी पहचान बनाने की कोशिश भी थी।
1: बिल्कुल, और खासकर गाइड जैसी फिल्म को देखें तो वहाँ कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की जिंदगी तक सीमित नहीं रहती है, उसमें रिश्ते, फैसले, बदलाव और अपनी जिंदगी को नए तरीके से देखने की बात भी सामने आती है।
0: और फिर जब इन कहानियों के साथ संगीत जुड़ता था तो फिल्म का असर और गहरा हो जाता था। उनके कई गाने कहानी को आगे बढ़ाते थे, किरदारों की भावनाओं बताते थे और कभी कभी बिना या ज्यादा शब्दों के भी बहुत कुछ कह जाते थे।
1: यही तो खासियत है सदाबहार गीतों की, वो सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। कभी कोई गीत हमें किसी पुराने दोस्त की याद दिला देता है, कभी किसी सफर की, कभी किसी रिश्ते की, और कभी बस यूं ही चेहरे पर मुस्कान ले आता है।
0: वो देवानंद जी के गीतों की भी यही जादू देखने को मिलता था। उनकी फिल्मों के संगीत में रोमांस भी था, जिंदगी का उत्साह भी था और कहीं ना कहीं आगे बढ़ते रहने का संदेश भी था।
1: तो आइए इस खूबसूरत सफर को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक और बेहद खूबसूरत गीत।

0: आप सुन रहे थे फिल्म काला बाजार का खूबसूरत गीत, जिसे अपनी आवाज दी थी मोहम्मद रफी ने, बोल लिखे थे शैलेंद्र ने और संगीत दिया था एसडी बर्मन ने। श्रोताओं, किसी कलाकार की सबसे बड़ी पहचान सिर्फ ये नहीं होती कि उन्होंने कितनी फिल्में की हैं या कितने किरदार निभाए हैं। असली पहचान तो तब बनती है जब वक्त गुजरने के बाद भी लोग उसे उसी प्यार और सम्मान के साथ याद करते हैं। देवानंद के साथ भी कुछ ऐसा ही है।
1: बिल्कुल, उनका फिल्म में सफर कई दर्शकों तक चला, लेकिन उनके व्यक्तित्व में हमेशा एक फ्रेशनेस और एनर्जी दिखाई दी। शायद यही वजह है कि उन्हें देखने वाली अलग अलग पीढ़ियों के लोग उनसे किसी न किसी रूप में जुड़ाव महसूस करते हैं।
0: और उनकी एक खूबसूरत बात थी उनका जिंदगी को देखने का अंदाज। वो हमेशा आगे बढ़ने, कुछ नया करने और अपनी पहचान बनाए रखने की कोशिश करते रहे।
1: आज की जनरेशन के लिए भी ये बात काफी मायने रखती है। हम अक्सर करियर और जिंदगी में जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन देवानंद जी का सफर बताता है कि किसी भी क्षेत्र में लंबी पारी खेलने के लिए लगातार काम करते रहना, खुद को समय के साथ बदलना और अपने काम के प्रति उत्साह बनाए रखना कितना जरूरी है।
0: और शायद इसी वजह से उनका नाम सिर्फ हिंदी सिनेमा के इतिहास में दर्ज होकर नहीं रह गया। उनका स्टाइल, उनका कॉन्फिडेंस, उनका ऑप्टिमिज्म और उनका काम, इन सब ने मिलकर एक ऐसी पहचान बनाई जिसे लोग आज भी याद करते हैं।
1: उनकी फिल्मों के गाने आज भी रेडियो पर बजते हैं, उनके डायलॉग्स आज भी याद किए जाते हैं और उनकी तस्वीरें देखते ही उसका वो खास अंदाज आंखों के सामने आ जाता है। यही किसी कलाकार की वो विरासत होती है जिसे समय भी आसानी से मिटा नहीं पाता।
0: और सिनेमा की दुनिया में शायद यही खूबसूरत बात होती है कि एक कलाकार पर्दे से चला जाता है, लेकिन उसके किरदार, उसकी कहानियाँ और उसकी कला लोगों के साथ बनी रहती है। कभी किसी गीत के रूप में, कभी किसी फिल्म की याद के रूप में, या कभी बस एक मुस्कान के साथ।
1: तो आज देवानंद जी की जयंती पर उन्हें याद करते हुए हम उनके लंबे और शानदार फिल्मी सफर को सलाम करते हैं। एक ऐसा सफर जिन्हें हिंदी सिनेमा को सिर्फ फिल्म ही नहीं दी बल्कि कई खूबसूरत यादें भी दी।
0: और इन यादों में उनके गीतों की अपनी एक खास जगह है। कुछ धुनें ऐसी होती हैं जो हमें सिर्फ सुनाई नहीं देती बल्कि हमारे साथ चलती हैं। शायद इसलिए इतने सालों बाद भी देवानंद से जुड़े गीत सुनते ही मन में एक अलग ही एहसास जाग उठता है। तो आइए उनकी इस खूबसूरत विरासत को याद करते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म हम दोनों का गीत, जिसका संगीत दिया था जयदेव और बोल लिखे थे साहिर लुधियानवी ने। अब वक्त है उन श्रोताओं के लिए जो अपने करियर और रोज़गार से जुड़ी नई संभावनाओं की तलाश में हैं। सबसे पहले बात NIT गोवा की। संस्थान में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2026 है, जबकि ज़रूरी दस्तावेज़ों की हार्ड कॉपी 7 अक्टूबर तक भेजनी होगी। अधिक जानकारी के लिए nitgoa.ac.in वेबसाइट पर जाकर देखें।
1: दूसरा अवसर ट्रेडमार्क पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन 2027 से जुड़ा है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2026 है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ipindia.gov.in पर जाकर परीक्षा और रजिस्ट्रेशन से जुड़ी पूरी जानकारी देख सकते हैं।
0: और अगर आप रिसर्च या प्रोजेक्ट बेस्ड अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में हैं तो ICAR IARI न्यू दिल्ली में यंग प्रोफेशनल के पदों पर भी अवसर हैं। इसके लिए 28 सितंबर 2026 को वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। अधिक जानकारी iari.res.in पर उपलब्ध है।
1: तो श्रोताओं, अगर इनमें से कोई अपॉर्चुनिटी आपकी क्वालिफिकेशन और करियर प्लान से मैच करती है तो आखिरी तारीख का इंतजार ना करें, समय रहते ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़ ले।
0: बिल्कुल, और आवेदन करने से पहले एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन प्रोसेस को ध्यान से चेक करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी जानकारी के लिए सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पर ही भरोसा करें।
1: तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण रोजगार जानकारियाँ। उम्मीद है इसमें से कोई अवसर आपके करियर के लिए एक नई शुरुआत लेकर आए।
0: तो प्यारे श्रोताओं, आज के युववाणी में हमने पर्यावरण और स्वास्थ्य से लेकर विश्व शांति, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रेरणादायक जीवन और देवानंद जी के सदाबहार फिल्मी सफर तक कई खूबसूरत बातें की। साथ ही रोजगार समाचार के जरिए आपके लिए रोजगार से जुड़ी जरूरी जानकारियां भी लेकर आए।
1: उम्मीद है आज की हमारी ये मुलाकात आपको जानकारी देने के साथ साथ कुछ नई सोच, कुछ खूबसूरत यादें और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान भी दे गई होगी।
0: और अब खड़ी की सुइयां वे हमें इशारा कर रही हैं आपसे विदा लेने का। वक्त भले ही हमें आज की इस मुलाकात से आगे ले जा रहा हो, लेकिन उम्मीद है हमारी ये बातें आपकी यादों में कुछ देर और ठहरी रहेंगी।
1: इसी के साथ आज की युवाणी में हमें दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात।

0: होगी एक नई सुबह, नई बातों और नए गीतों के साथ।
1: तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलेंगे कोई अगली शाम में। अपने सपनों की ओर आगे बढ़ते रहिए। मैं थी प्रतिभा
0: और मैं ऋषि,
1: आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। शाम के 6 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या।

नमस्कार। आकाशवाणी उज्जैन से भजन संध्या के इस पावन कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का मैं दुर्गाशंकर सूर्यवंशी बहुत बहुत स्वागत करता हूं।

कहते हैं कि माँ की महिमा अपरंपार है। जो भी सच्चे मन से माँ के द्वार पर आता है उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। माँ की अनुकंपा जब बरसती है तो जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए इसी भक्ति भाव में थोड़ा और डूबते हैं और सुनते हैं माँ जगदम्बा की महिमा में रचा बसा ये अगला भजन।

सुंदर और भावपूर्ण प्रस्तुति माँ के दरबार की यही तो खासियत है। यहाँ पहुंचकर हर मन शांत हो जाता है और हृदय में श्रद्धा की ज्योत जल उठती है। श्रोताओं, भक्ति की यह अविरल धारा इसी तरह बहती रहे। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर और सुनते हैं माता रानी का अगला भजन।

श्रोताओं, आकाशवाणी उज्जैन के माध्यम से प्रसारित इस भजन संध्या में आज हम माँ शेरावाली के विभिन्न स्वरूपों का स्मरण कर रहे हैं। माँ के एक एक मनमोहक स्वरूप, उनके जयकारे हमारे भीतर एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार करते हैं। इसी भक्ति रस को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं आज का अगला भजन।

अद्भुत भक्तिमयी आनंद माँ के भजनों का यह प्रवाह मन को कितना सुकून देता है, इसका एहसास तो बस वही कर सकता है जो भक्ति में लीन हो जाए। समय का पहिया निरंतर चल रहा है और अब हमारी इस भजन संध्या की घड़ी भी अपने अंतिम चरण में पहुंच रही है। लेकिन कार्यक्रम का समापन हो उसके पहले क्यों ना माँ के चरणों में एक अंतिम भजन पुष्प और अर्पित किया जाए। तो आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं आज की भजन संध्या का अंतिम भजन।

इसके साथ ही आकाशवाणी उज्जैन के आज के इस विशेष कार्यक्रम भजन संध्या का समय यहीं पर पूर्ण होता है। आशा है माता रानी के इन भक्तिमय भजनों ने आपकी इस शाम को शांति और सकारात्मकता से भर दिया होगा। माँ जगदम्बा से यही प्रार्थना है कि वे आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और आपके जीवन को सुख समृद्धि से आलोकित करें। अब समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। अपने मित्र दुर्गा शंकर सूर्यवंशी को दीजिए अनुमति। आप सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन। नमस्कार।

0: FM 102.5 MHz और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। इस वक्त शाम के 6:30 होने को हैं और ये समय है प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी का।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
3: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना।
2: किसान वाणी कार्यक्रम सुन रहे हमारे सभी भैयन को सभी बहनों को आपकी अपनी पूनम बहन की दोई दोई हाथ जोड़ के राम राम पहुँचवे। हम उम्मीद करते हैं कि सभी जने खूब भाई नौने हुए। सो देखो आज बहुत सारी बातें आपसे करने हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ड्रिप सिंचाई की और स्प्रिंकलर से सिंचाई प्रणाली की। भैया बहना हरों, लगातार होत पानी की कमी और बढ़त भई खेती की लगत से ई दौर में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियां किसानन के लाने वरदान साबित हो रही है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली आधुनिक कृषि के लाने कम पानी में अधिक पैदावार सुनिश्चित करत है। ड्रिप सिंचाई में पानी बूंद बूंद करके सीधे पौधन की जड़न में जात है, जिसे 60 से लेकर 70% तक को पानी बच जात है। उतने खरपतवार भी कम उगत है और खाद भी सीधे जड़न तक पहुंचत है। सो जो प्रणाली फलदार सब्जियों, बाग बगीचों, कतार में बोई जावे वाली फसलन के लाने सबसे ज्यादा फायदेमंद है। पौधन के बीच की खाली जगह सूखी रहत है, जिसे खरपतवार बहुत ही कम उगत है। पौधन को नियंत्रित नमी मिलवे से पैदावार बढ़ जात है, माने पैदावार में वृद्धि हो जात है। दूसरी बात, स्प्रिंकलर प्रणाली बारिश की तरह फब्बारे के रूप में पानी देत है, जो गेहूं, चना, सोयाबीन जैसी फसलन में असमतल जमीन के लाने भी बेहद उपयोगी है। इसे उबड़ खाबड़ और ढलान वाली जमीन पर भी आसानी से खेती करी जा सकत है और इसे पूरे खेत में एक समान सिंचाई होत है और जमीन की उर्वरता भी बनी रहत है, जो वर्षा की तरह पानी को छिड़काव करत है, जिसे खेत के हर हिस्सा में पानी समान रूप से पहुंच जात है। इन दो प्रणालियों से बिजली की बचत होत है, कम मजदूरी लगत है और पैदावार में वृद्धि सोई हो जात है और सरकार इन पर 70% तक की सब्सिडी देत है, जैसे जे कम लागत में ज्यादा मुनाफा देवे वाली आधुनिक खेती की सबसे अच्छी विधियां हैं। इके पाइप और नोजल बहुत ही हल्के होते हैं, जिन्हें एक खेत से दूसरे खेत में जल्दी से लेके जा सकते हैं। सो जो तो हती बातचीत और इके अलावा भी आज हम अपन के लाने बड़ी ही अच्छी जानकारी लेके आए हैं। देखो काहे के पारंपरिक फसलन की तुलना में फूलन की खेती माने फ्लोरिकल्चर किसानन को कम लागत और कम समय में कई गुना अधिक आर्थिक मुनाफा दे सकत है और गेंदा और गुलदावदी जैसी फसलें मात्र 60 से लेकर 70 दिन में तुड़ाई के लाने तैयार हो जाते हैं। पारंपरिक गेहूं और धान की तुलना में जे फूलन की खेती प्रति एकड़ बहुत ही ज्यादा कमाई को साधन बन सकते हैं। सो चलो इके संबंध में अपन और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सुनत है जो भेंट वार्ता, किसान फूलों की खेती से आर्थिक लाभ कमाए, विशेषज्ञ हैं डॉक्टर कृपाल सिंह वर्मा। इनसे बातचीत करी है मनोज सक्सेना भैया ने।
3: किसान भैया, जैसा कि आप जानते हैं कि खेतों से आय कमाने के लिए हम लगातार आपके लिए कुछ न कुछ ऐसी जानकारियां लेकर आते हैं जिन्हें सुनकर सीख कर आप बहुत अधिक लाभ कमा सकते हैं। बात हम अगर फूलों की करें तो फूलों की मांग हमेशा बाजार में रहती है और ऐसे में किसान अगर फूलों की खेती करते हैं तो निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं। जी हाँ, हमारा आज का विषय भी यही है, फूलों की खेती से आर्थिक लाभ कैसे कमाएं। वर्तमान समय में फूलों की खेती को लेकर बहुत सारे शोध किए गए हैं, बहुत सारे नए नए तरीके निकाले गए हैं जिनसे कि किसान अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कृपाल सिंह वर्मा जी, जो कि सहायक निदेशक हैं उद्यानिकी मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम भोपाल में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं फूलों की खेती की, वर्तमान समय में फूलों की खेती को आप किस तरीके से देखते हैं, इसका क्या महत्व है?
4: देखिए, वर्तमान समय में आज हम देखते हैं कि खेती का जो स्वरूप है वो भी कहीं ना कहीं बदला है। आज हम उस दौर में हैं कि हम परंपरागत और तकनीकी जो खेती है उसके बीच में हम कैसे एक सेतु बनाए, कैसे उनमें आपस में संबंध बनाए, वो कहीं ना कहीं टूटता जा रहा है। तो ये जो फूल है ये एक विकल्प के रूप में हमारे पास है कि इसकी खेती करके हम निश्चित रूप से जो परंपरागत हमारी चीजें हैं और हमारी जो आधुनिक तकनीकें हैं उनके दोनों के बीच में हम लोग एक सेतु का निर्माण कर सकते हैं। और जैसा कि विदित है कि जो पुष्प की अभिलाषा हमारे जो रेखांकित किए हमारे माखनलाल चतुर्वेदी जी ने
3: जी।
4: कि जो पुष्प की जो अभिलाषा है तो उसको कहीं ना कहीं यदि हमारे किसान भाई भी पुष्प की खेती करते हैं तो निश्चित रूप से आज के परिवेश में, क्योंकि आज का जो दौर है वो सीमित ना रहकर वैकल्पिक विश्व के रूप में उभर कर आ रहा है, तो निश्चित रूप से ये जो पुष्प की खेती है किसान के लिए लाभदायक है।
3: हम बात करते हैं जैसे फूलों की, जब खेती की बात होती है तो निश्चित ही आज बहुत मांग है खेतों में फूलों, माफ कीजिए, आज बहुत मांग है फूलों की। पर अगर फूलों की खेती से किसान की आर्थिक प्रगति को अगर हम देखें, उसकी प्रगति कैसे संभव है?
4: देखिए, हम इसको वृद्ध रूप में यदि देखें वर्तमान समय में, तो सबसे जो महत्वपूर्ण है, आज खेती का जो स्वरूप बदला है, तो हमें उसकी उपयोगिता देखना है कि हम जो काम कर रहे हैं, जो फसल लगा रहे हैं, उसकी मांग क्या है। तो हम पुष्प को कई रूप में देख सकते हैं कि इसकी जो मांग है वो हमारे स्थानीय स्तर से लेके हमारे वैश्विक स्तर तक कहाँ कहाँ पर है। तो इसके हम उपयोग यदि देखते हैं, नंबर एक तो जैसे हम बात करते हैं कि जो फूलों की खेती है ये अधिक मुनाफा देती है। जी हाँ किसान भाइयों, फूलों की खेती जो सामान्य फसलें हैं उनसे लगभग 3 से 4 गुना अधिक जो है लाभ किसान भाइयों को प्रदान करती है। इसी तरह हमारी जो फूलों की फसलें होती है ये कम अवधि की फसलें होती है। कम अवधि की फसलें होने से हम साल में अधिक से अधिक फसलें एक खेत से ले सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी जो भूमि के आकार छोटे होते जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ये हमारे एक विकल्प के रूप में। इसी तरह हमारे रोजगार के अवसर, फूलों की यदि खेती करते हैं तो ये रोजगार के अवसरों का विसर्जन करती है, क्योंकि इसमें पैकिंग और कटिंग्स, हार्डनिंग्स बहुत प्रोसेस रहती हैं फूलों की खेती में। और अब हम देखते हैं कि हमारे जो समय में है, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से यदि देखते हैं, तो धार्मिक पर्यटन की यदि बात करते हैं, तो जैसे मैं उज्जैन की बात करता हूँ, ओरछा की बात करता हूँ, और भी जो दूसरे हमारे पर्यटक स्थल हैं, वहाँ पर धार्मिक पर्यटन का एक बहुत बड़ा महत्व होता जा रहा है। तो उसमें वर्ष भर जो फूल हैं उनकी मांग बनी रहती है। ऐसे में यदि हम देखें तो फूलों की खेती उन क्षेत्रों में और अधिक लाभकारी हो सकती है। विभिन्न स्थानों पर आजकल वर्ष भर सजावट का काम चलता रहता है, विभिन्न आयोजन होते हैं, तो उनमें फूलों की मांग बनी रहती है। इसी प्रकार हमारे जो सुगंध उद्योग है, हमारे इत्र उद्योग है, उसका भी ये एक कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी है जिससे कि हम उत्पादन कर सकते हैं।
3: वाकई सर, अब जैसे कि किसानों ने मन बनाया कि अब हम फूलों की खेती करना चाहते हैं, तो शुरुआत किस तरीके से करना चाहिए?
4: देखिए, जैसा कि विदित है कि जैसे मैं बात करता हूँ कि हमारा जहाँ हम फूलों की खेती करना चाह रहे हैं, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा, बाजार की स्थिति का आकलन करना होगा। किसान भाई अधिकांश देखते हैं कि कई बार इन चीजों में चूक कर जाते हैं कि बाजार की स्थिति का आकलन किए बिना ही वो फसलों की जो वो तैयारी है वो नहीं कर पाते। तो सबसे पहले हम यदि फूलों की खेती चालू करना चाहते हैं तो हमें बाजार की स्थिति का आकलन ये करना होगा कि वो फूल हम उगाएंगे, किस प्रकार के फूल उगाएंगे, कहाँ बिकेंगे, ये सारी जो है इसकी स्थिति का आकलन करना होगा। इसी प्रकार किसान भाइयों को अपने पास जो उपलब्ध संसाधन है उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा कि उसके पास जो फूलों की खेती है उसके लिए कौन कौन से संसाधन की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि फूलों की गुणवत्ता उत्पादन के लिए पॉली हाउस, नेट हाउस, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं और उसमें अच्छी गुणवत्ता प्राप्त होती है, प्रति इकाई अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। उपलब्ध तकनीक कौन कौन सी हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं पुष्प उत्पादन में, उनका भी उनको ज्ञान होना चाहिए। इसी के साथ साथ कितनी पूंजी उस जो फूल की खेती है उसमें लगा सकते हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए यदि किसान भाई शुरुआत करते हैं तो निश्चित रूप से उसका एक सकारात्मक परिणाम निकल कर आएगा।
3: सर देखिए ना, अब जैसे फूल उगाना शुरू करते हैं तो दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं कि कौन कौन से फूल उगाए जाएं। गेंदा भी है, गुलाब भी है, जरबेरा भी है, मोंगरा भी है, नाना प्रकार के फूल हैं, और जब फूल की बात आती है तो दिल खुश हो जाता है, कौन कौन से उगाए जाएं समझ में नहीं आता, बताइए ना।
4: तो फूल जो हैं, जैसे किसान भाई खेती करना चाहते हैं तो फूलों में अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, उन कैटेगरीज के हिसाब से फूलों की खेती की जा सकती है। जैसे कट फ्लावर्स के रूप में यदि किसान भाई खेती करना चाहते हैं तो इसमें गुलाब है, जरबेरा है, लिली है, आर्किड है, कार्नेशन है, ट्यूब रोज है, ग्लेडियोलस है, इनकी नाना प्रकार की रंगों वाली किस्में आज हमारे पास उपलब्ध हैं। और ये कट फ्लावर्स आसानी से ओपन जो एरिया है उसमें भी इनका उत्पादन किया जा सकता है। इसी के साथ साथ जो संरक्षित संरचनाएं हमारी जैसे पॉली हाउस है, नेट हाउस है, इनमें भी इनका उत्पादन किसान भाई कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि खुले पुष्प की बात करते हैं तो खुले पुष्प में गेंदा, चमेली, मोगरा, गुलदावदी, ग्लेडियोलस, इस तरह के फूल उगाए जा सकते हैं। और इनकी जो वर्ष भर मांग, जैसा मैंने आपको बताया था कि जो धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं हमारे, पूजा में उपयोग होने के लिए, सजावट के लिए उपयोग होने रहते हैं, तो इस तरह के जो फूल रहते हैं खुले फूल, इनकी वर्ष भर मांग बनी रहती है। इसी प्रकार हमारे जो गमले और क्यारियों में भी हम उगाकर सजावटी जो फूल हैं उनके द्वारा भी अच्छा हम लाभ कमा सकते हैं। फूलों का हम बीज उत्पादन भी कर सकते हैं, ये एक बहुत अच्छा विकल्प हमारे किसान भाइयों के पास है कि हमें जो गुणवत्ता युक्त बीज हैं कई बार नहीं मिलते हैं, तो ऐसे में हम अच्छी गुणवत्ता के जो बीज हैं उनको बनाकर और उनको हम विक्रय कर सकते हैं।
3: अब सर, जैसे अच्छी गुणवत्ता अधिक फूल उत्पादन लेने के लिए अगर समसामयिक कार्यों की बात करें, ऐसे कौन कौन से काम किसानों को करने की जरूरत है कि भरपूर उत्पादन

0: गार्डन फूलों का मिल जाए।
1: इसके लिए हमें जो हमारी संरक्षित संरचनाएं हैं
0: जी,
1: उनका हमें निर्माण करना होगा, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि हमारा जो परिदृश्य है
0: वो
1: लगातार बदलता जाता है, कभी भी बारिश हो रही, कभी भी ओले गिर रहे हैं, कभी भी कीड़े। तो ऐसे में जो फूलों की खेती है, ये भी चूंकि फूल यदि दिखने में सुंदर नहीं होगा तो उसकी बाजार में कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो हमें फूलों की सुंदरता और उसके उत्पादन दोनों के लिए हम संरक्षित संरचनाएं जैसे नेट हाउस, पोली हाउस, इस तरह की संरक्षित संरचनाओं का निर्माण करा सकते हैं। शासन स्तर पर भी इसमें वृद्ध रूप पे हमारे उद्यानिकी विभाग द्वारा सब्सिडी दी जाती है, तो हम उसका भी शासन से संपर्क करके उसका भी उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो अक्सर हम ध्यान नहीं रखते, कि हमें उन्नत किस्मों के बीज और पौधों का रोपण करना है। इसमें कई बार हम चूक कर जाते हैं कि हमारे पास जो हम खेती कर रहे हैं, फूलों की खेती कर रहे हैं, उसमें उन्नत किस्म के पौधे का रोपण नहीं करते हैं, तो इसके परिणाम स्वरूप जो हमारे फूलों की गुणवत्ता है और उसका उत्पादन है वो प्रभावित होता है। सिंचाई प्रबंधन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है फूलों में। तो सिंचाई के लिए हम विभिन्न प्रकार के ऐसे टपक विधि सिस्टम आ गए हैं, पानी कम लगता है, पानी देना आसान होता, तो इस तरह की चीज़ों का हम सिंचाई प्रबंधन का उपयोग कर सकते हैं। पौधों को पोषण देने के लिए हमें नाना प्रकार के आज हमारे पास खाद उपलब्ध है, जिनका उपयोग करके हम पौधों को जो है फूल है उसमें और चमक बढ़ा सकते हैं, उसकी गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं। पौधों में खरपतवार नियंत्रण करना जरूरी है, पौधों को विभिन्न प्रकार के कीटों और रोगों से बचाना जरूरी है। कुछ विशेष क्रियाएँ होती है जैसे डिसूटिंग, डिसबडिंग, पिंचिंग, ये क्रियाएं करके हम अच्छी गुणवत्ता के बड़े फूल उपलब्ध कर सकते हैं। समय समय पर हम निंदाई गुड़ाई कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, यदि हम समय पर हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे तो हमारा फूलों का उत्पादन कम हो जाएगा। परिवहन और पैकिंग, ये सारी चीजों का यदि किसान भाई ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा।
0: सर आखिरी सवाल, फूलों की खेती करने में सबसे ज्यादा सावधानियां कौन कौन सी रखना पड़ती हैं?
1: दो तीन चीजों की, जो जैसे मैंने पूर्व में बताया था कि हमें जो बीज ले रहे हैं, जो पौधे ले रहे हैं, वो हम प्रमाणित जो संस्थाने हैं उनसे ही हम अच्छी गुणवत्ता के पौधे प्राप्त करें। कई बार ऐसा होता है कि हम पौधे या बीज प्रमाणित संस्थानों से, प्रमाणित जगह से नहीं लेते हैं, तो उसका जो उत्पादन पे और उसकी गुणवत्ता पे प्रभाव पड़ता है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। इसी प्रकार जो हमारी जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है, जब हम फूल को तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद उसका जो रखरखाव है, वो बाजार तक जाना, ग्राहक तक जाना, तब तक उसका एक चैनल है, तो उसमें पूरे फूलों को सही तरीके से हम कैसे रख सकते हैं, कैसे उनका प्रबंधन कर सकते हैं, इन सब सारी चीज़ों का यदि ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से किसान भाई फूलों की खेती से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
0: धन्यवाद कृपाल सिंह वर्मा जी, आपने बहुत उपयोगी जानकारी हमारे किसानों को दी है, आपका बहुत बहुत आभार।
2: अभी अपन ने सुनी जो भेंट वार्ता, किसान फूलों की खेती से आर्थिक लाभ कमाए, विशेषज्ञ हते डॉक्टर कृपाल सिंह वर्मा, इनसे बातचीत करी हती मनोज सक्सेना भैया ने। और चलो अब कछु मनोरंजन हो जाए, सो चलो आप और उनको सुनवात है जो गणेश वंदना नवनीता श्रीवास्तव की गाई भई।

0: अब अपन ने सुनी जो गणेश वंदना, आवाज हती नवनीता श्रीवास्तव की। भैया बहनों देखो का है कि आजकल बाजार में नकली बीज और नकली कीटनाशक दवाओं को कारोबार सोई बहुत ही बढ़त जा रहा है। इसे किसानन की पूरी मेहनत और फसल दो ही चीजें बर्बाद हो जाते हैं। और जैसे सावधानी रखना बहुत ही जरूरी है, हमेशा बीज और दवाएं विश्वसनीय और लाइसेंस वाली दुकानन से ही खरीद में, दुकानदार से पक्को बिल जरूर ले लेवे जी पे लॉट नंबर एक्सपायरी की डेट सोई लिखी हो। अनजान व्यक्ति या सस्ते दाम के लालच में खुले में बिकवे वाले बीजन को कभी ना लेवे। बीज खरीदत समय पैकेट पे कंपनी को नाम मार और हरे रंग को ISI मार्क देख पसोई ना भूलें। अगर बीज को रंग या आकार एक जैसा ना हो या दवा की बोतल की सील टूटी भई लगे तो तुरंत समझ जाएं कि वो नकली है। जो सोई याद रखने हैं कि नकली बीज से अंकुरण नहीं हुए और नकली दवाई से कीड़ा ना मर है बल्कि फसल को नुकसान नहीं पहुंचे। शक होवे पे अपने नजदीकी कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र से अपन संपर्क कर सकते हैं। थोड़ी सी समझदारी से आप अपनी फसल और अपनी लागत दो ही बचा सकते हैं। नकली खाद बीज कीटनाशकन से बचवे के लाने हमेशा प्रमाणित दुकान से पक्को बिल लेवे और पैकेट पर सील और लाइसेंस नंबर की जांच कर वो सुई बहुत ही जरूरी है। सो जो हती बड़ी ही अच्छी जानकारी।
1: भैया बहनहरो, खरीफ को मौसम खत्म हो पे है और अब रबी फसलन की बुआई को समय नजदीक आ रहा है। ई किलाने सबसे पहलो चरण होत है बीजन को उपचार और तैयारी। सो चलो इसे ही जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको सुनवाते हैं। सुनत है जो लघु वार्ता रबी फसलों में बीज उपचार एवं बीज प्रबंधन विशेषज्ञ है डॉक्टर अरविंद कौर।
2: बीज जो होते हैं वो फसल उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। तो जब भी हम कोई भी फसल बोए कोशिश करें कि जो भी हम बीज लें वो प्रमाणित हो किसी हमारी मान्यता प्राप्त संस्था, विश्वविद्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र जहाँ पर बीज का उत्पादन होता हो वहाँ से बीज लें। प्रायः किसान देखने में आता है ऐसे कि वो जल्दी में मंडी से खुला बीज ले लेते हैं, तो ऐसे में वो कोशिश करें कि पैकेट बंद बीज लें और जो प्रमाणित संस्था है वहाँ से बीज लें और साथ ही जरूरी है कि उसका पक्का बिल भी जरूर लें, क्योंकि कई बार जब वो बीज लेते हैं तो उसमें मिक्सचर की प्रॉब्लम आती है ना, मिक्सण होता है कई प्रजातियों का, तो उनकी पकाई में भी अंतर होता है, रोग के प्रति संवेदनशीलता उनका और उत्पादन भी प्रभावित होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि एक ही वैरायटी का बीज जो है वो प्रमाणित संस्था से लें। अगर आपका बीज अच्छा होगा तो आधे से ज्यादा समस्या तो आपकी वहीं निकल जाती। जब भी आप बीज लें हमारी कोशिश ये होती है कि हम बीज का उसका उपचारित करें, क्योंकि बीज जो है वो अलग अलग किसानों के यहाँ से अलग अलग जगह से आया होता है, तो संभावना होती है कि वहाँ कोई बीमारी या कोई समस्या तो नहीं है। क्योंकि बीज में जो बीमारी होती है वो दो तरीके से होती है, एक तो उसके वाह्य स्तर पे भी उसका जो आवरण होता है वहाँ पे भी रोग के रोगाणु रह सकते हैं और कई बार उसके अंदर भी रहते हैं, उसके भ्रूण में या उसके अंदर बीज के अंदर भी बीमारी रहती है। तो इसके लिए जरूरी है कि जो किसान बीज लेके आए पहले देख लें कि वो जो संस्था जहाँ से ले रहे हैं उनसे पूछ लें कि ये उपचारित तो नहीं है। और प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जो उपचारित बीज होता है वो उसका रंग अलग होता है, क्योंकि जो दवा उसके ऊपर मिली होती है उसका रंग होता है नीला हो गया, सफेद हो गया ना, इस तरीके से अनुमान लगा सकते हैं। और जो पैकेट होता है जो उसमें लिखा भी होता है कि ये फफूंदनाशक दवा से उपचारित, कीटनाशक से उपचारित ना, या जैविक तरीके से उपचारित है, तो इसको भी वो लोग पढ़ लें ना, तो अगर वो ऐसा पढ़ लेंगे तो उनकी समस्या का समाधान आसान हो जाएगा। और हम अंकुरण के बाद किसानों के यहाँ देखते हैं कि बीज जो है वो अंकुरित नहीं होता या अंकुरित होता है कुछ समय बाद, उसकी पत्तियां सूख जाती हैं, तना सूख जाता है, जड़ें भी सूख जाती हैं, काली पड़ जाती है और पूरा का पूरा जो फसल जो है वो पौधा सूख जाता है। उसका कारण ये है कि जो हमने संक्रमित बीज बोया, बीज बोने के साथ साथ जब उसको उचित वातावरण मिलता है तो जो हमारा रोग उत्पन्न करने वाला रोगाणु होता है वो भी पौधे के साथ साथ, जब उसका लेवल नुकसान पहुंचाने के लेवल तक आ जाता है तो वहां पर ही क्या होता है, हमारा पौधा जो है वो सूख जाता है और हमारा अंकुरण प्रभावित होता है। तो इसके लिए यही जरूरी है कि अगर हम रोग के लिए देख रहे हैं तो हम किसी भी फफूंदनाशक से उपचारित करें। बाजार में इसके हमारे जैविक भी हैं, प्राकृतिक तरीके भी हैं और रासायनिक तरीके भी हैं। तो बीजामृत है ना, किसान बीजामृत का भी प्रयोग कर सकता है बीज उपचार के लिए। जैविक फफूंदनाशक में जैसे ट्राइकोडर्मा आता है, ट्राइकोडर्मा की दो स्पीसीज आती है, हर्जियानम और विरिडी, उसका प्रयोग भी वो कर सकता है उपचारित करने के लिए। इसके साथ साथ रासायनिक भी बाजार में कई दवाइयां हैं, आजकल मिक्सण भी बहुत अच्छे अच्छे आ गए हैं, तो उनका प्रयोग करके भी वो बीज उपचार कर सकते हैं। आजकल बीज का किसान बाजार से बीज लेता है और बीज की जो आजकल गुणवत्ता युक्त बीज बहुत आ गया है, आप देख रहे हैं वैरायटी भी अलग अलग कलर के, आप कॉलीफ्लावर, ब्रोकली ना, कैबेज, आपकी पर्पल कैबेज भी, बैगनी रंग की भी आ गई, बंद हरी गोभी भी कई आ गई है और बीज की बहुत अच्छी अच्छी आजकल बाजार में उपलब्ध है किसानों के लिए। तो जो हाइब्रिड बीज होता है, कंपनियों का जो बीज होता है या सरकारी जो भी विश्वविद्यालयों से मिलता है, वो उपचारित करके मिलता है ना। अगर वो उपचारित नहीं है तो किसान क्या कर सकते हैं, उसको उपचारित भी कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, किसान को छोटी में अपनी बगिया बनानी है ना, घर का किचन गार्डन बनना है, तो बीज की मात्रा बहुत कम होती है उसमें। आप 5 ग्राम 2 ग्राम बीज को उपचारित करना बहुत मुश्किल सा होता है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि बीजामृत का जैसे प्रयोग कर सकते हैं, या जो बेड बना रहे नर्सरी बेड, उसमें क्या करें, आप गोबर की खाद में ट्राइकोडर्मा को मिला के उसमें मिला दें, फिर उसके बाद बीज की रोपाई करें ना। या फिर इसके बाद आप भी ये भी कर सकते हैं कि पौध जो आपकी तैयार हो जाएगी, तो पौध तैयार करने के बाद आप 20 दिन बाद या 30 दिन बाद उसकी रोपाई करते हैं, तो रोपाई करते वक्त जो उसकी जड़ें हैं, उन जड़ों को क्या करें, फफूंदनाशक के घोल से या फिर जैविक फफूंदनाशक के घोल से डुबो के 20-25 मिनट डुबोना है। उसके बाद उसको क्या करना है, रोपाई के लिए खेत में लगाना है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो जड़ें हैं सब्जियों की, जो जड़ें हैं, चाहे आप टमाटर ले रहे हैं, मिर्ची ले रहे हैं, बंद गोभी, फूल गोभी, अब सीजन आ ही गया है सब्जियों का, तो ऐसे में क्या होगा, जो पौध की जड़ें हैं वो उसमें क्या होगा, आपका ये जो दवाएं हैं, जो जैविक और ये रासायनिक दवाएं हैं, पौधे तक पूरे सिस्टम में चली जाती हैं। जब आप रोपाई करते हैं तो रोपाई के कुछ समय बाद प्लांट जो होता है बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता है, क्योंकि वो नई जगह पे जाता है ना, खेत में जा रहा है, खुले खेत में जा रहा है छोटी सी नर्सरी से, तो वहां पर अगर मिट्टी में कोई मृदा जनित रोग है या रोगाणु है ना, या पौधे के सिस्टम में भी अगर अंदर है, तो वो क्या करेंगे, उनको बचाने का करेंगे, क्या करेंगे, पौधोपचार करेंगे या बीजोपचार करेंगे, तो आगामी जो पौधा है वो कुछ समय तक क्या रहेगा, इससे सुरक्षित रहता है। बट अगर आपको लगता है कि वातावरण रोग के अनुकूल है ना, या कोई ऐसी समस्या दिखती है, तब उसके बाद आपको पानी छिड़काव करना है। तो 20-25 दिन तक जो है आपका पौधा क्या रहता है, बीजोपचार से और इन सब चीजों से सुरक्षित रहता है। बट आगामी मौसम को देखते हुए और संभावनाओं को देखते हुए हम क्या करते हैं, पानी छिड़काव। हाँ, उसका तरीका यही है कि जब भी हम बीज लें, क्योंकि अगर आप घर का अपना बीज ले रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उस बीज को छटाई कर लीजिए, देख लीजिए, जिसमें अगर आपको धब्बे दिखते हैं ना, जैसे काले धब्बे दिख रहे हैं या सिकुड़न भी आपको दिखाई दे बीज में, जो सामान्य ना हो, ऐसे बीजों को आप बीज के लिए इस्तेमाल ना करें। जो स्वस्थ हैं, जिनमें चमक हो, जिनकी ऊपर का आवरण अच्छा हो, उन्हीं बीजों का क्या करें, आप चयन करें। फिर उसके बाद अगर आप जैविक फफूंदनाशक का प्रयोग करना चाह रहे हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा वीरिडी हो गया, ट्राइकोडर्मा हर्जियानम हो गया, तो उसके लिए आप 5 ग्राम मात्रा रहती है 1 किलोग्राम बीज के हिसाब से, हम क्या करते हैं उसको उपचारित। या फिर आपने बीज लगा दिया, बीज लगाने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि जो आपकी बेड है, नर्सरी बेड है, या आप पॉलिथीन में किसी में भी लगा रहे हैं, तो आप पानी तो देना पड़ता है हमें अपनी नर्सरी में, तब आप जैसे लौकी और कद्दू, ये जो सब्जियां लग रही हैं आपकी, अगर आप टमाटर की, तो आप जिसमें पानी दे रहे हैं हजारा से, जिस माध्यम से दे रहे हैं, तो उसमें आप लगभग 10 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से या 5 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से डोज उसकी बना के आप क्या करें, वहाँ छिड़काव कर सकते हैं। या जो आपका चैनल है जिससे पानी जा रहा है खेत में, तो वहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें कोई बड़े से मटके में घोल बना के उसको रख सकते हैं, या ड्रिप का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो ड्रिप में भी जो टैंक होता है उसमें आप डाल के इसको प्रयोग कर सकते हैं। बट एक चीज़ का विशेष कर ध्यान देना चाहिए, जब भी आप जैविक यूज फफूंदनाशक का प्रयोग करें, तो ये देखना, ध्यान देना जरूरी है कि हमारे खेत में ऑर्गेनिक मैटर अच्छा होना चाहिए। अगर आपके खेत में जीवाश अच्छा नहीं है, तो इनका आगे भी जो है वृद्धि जो है वो रुक जाती है। तो इसके लिए जरूरी है कि जब भी हम इनका प्रयोग करें, तो हमारे खेत में जो जीवाश है उसकी मात्रा अच्छी होनी चाहिए। और सब्जियों में तो प्रायः किसान भाई इसका ध्यान देते हैं, किसान भैया अधिकतर डीलर्स के या बाजार में ध्यान देते हैं, और वो कीटनाशकों का, रासायनिक कीटनाशकों का और फफूंदनाशक का प्रयोग करते हैं। तो उनको रसायनों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, और उनको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वो एकीकृत प्रणाली का प्रयोग करें, एकीकृत रोग प्रबंधन या एकीकृत कीट प्रबंधन पर ध्यान दें। इसके लिए जैसे अगर आप किसान भाई सब्जियां लगाते हैं या चने की फसल लगाते हैं, तो इल्लियों का प्रकोप होता है, तो उसके लिए वो टीकी आकार की गूटी गाड़ देना। और किसान भाई ये ध्यान रखें कि वो गूटी ना ज़्यादा ऊंची हो ना ज़्यादा नीची हो, 1 फुट रहे, क्योंकि ज़्यादा ऊंची हो जाएगी तो वो भी पक्षियों के लिए सही नहीं रहता। तो हम जो जैविक प्रणाली या प्राकृतिक प्रणाली का प्रयोग कर रहे हैं, उसके क्या नियम है, उसका भी थोड़ा सा हमें ध्यान देना है, तभी उसका हम ज़्यादा प्रयोग कर सकेंगे। और समय समय पर बीज की बुआई के बाद समय समय पर अपने खेत की, अपने पौधों की निगरानी जरूर करें, क्योंकि समस्या रोग की हो या कीड़े की, वो एकदम से नहीं आती, वो धीरे धीरे समय लेती है बढ़ने के लिए। तो अगर हम शुरू से ही इसकी रोकथाम करेंगे, तो कभी भी हमें रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, और हम प्राकृतिक तरीके से सब्जियों को और फलों को और फसलों को उगा कर अपना स्वास्थ्य लाभ ले ही सकते हैं अपने, और अपना भी बजट जो है उनका एक्सपेंडिचर है, जो उनकी लागत है, उसको भी कम करके अधिक लाभ ले सकते। और ये इंसान के लिए, मनुष्य के लिए ही लाभदायक नहीं है, हमारे जो अन्य जीव जंतु हैं या पक्षी हैं, उनके लिए भी विशेषकर लाभकारी होगा।

0: अब अपन ने सुनी जो लघु वार्ता, रवि फसलों में बीज उपचार एवं बीज प्रबंधन, विशेषज्ञ हती डॉक्टर अरविंद कौर।
1: और अब आप और उनको बता देते हैं मंडी के भाव। मिल क्वालिटी के गेहूं को भाव है न्यूनतम 2408 रुपया, अधिकतम है 3020 रुपया। सोयाबीन को न्यूनतम भाव है 2655 और अधिकतम भाव है 4030 रुपया। कॉमन धान को भाव है 2040 रुपया से लेकर अधिकतम 2580 प्रति क्विंटल। अरहर मने तुअर को भाव है 6420 और 6530। सरसों को न्यूनतम भाव है 4720 और अधिकतम भाव है 5410। चना को भाव है 4061 और अधिकतम भाव है 5340। मसूर की दाल को न्यूनतम भाव है 5280 और अधिकतम भाव है 5600। प्याज को भाव है 2050 रुपया और अधिकतम भाव है 2350। लहसुन को न्यूनतम भाव है 1480 रुपया और अधिकतम भाव है 9440। मक्का को न्यूनतम भाव है 2170 और अधिकतम भाव है 2240। सो हम उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में जो भी जानकारियां हमने अपने भैया बहनों को दी, वे उनके काम में आए और वे खेती किसानी के लाने इन सभी बातन को उपायन को अमल में लाए भी और ई को फायदा सोई उठाए। ई के संग आज को किसान वाणी कार्यक्रम हमें तय समाप्त करते हैं। स्वीकार करो पूनम बहन की, राम राम।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे?
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब?
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहा,
3: पर हम तो सभी डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच
2: है? बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सरकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत श्री मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं।
2: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
1: श्री अमित शाह ने सहकारी क्षेत्र के उत्पादों वाले मंडप का भी दौरा किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी, राज्य सरकार के मंत्री एम लीजू, पी

0: कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनिसंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल केरलम के एक दिन के दौरे पर जाएंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृता नंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम समूचे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग लेंगे। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश को विमानन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कुर्नूल को विमानन और ड्रोन गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल हवाई अड्डे पर एक कार्यक्रम में श्री नायडू ने कहा कि उनका ध्यान केवल हवाई अड्डों पर नहीं बल्कि पायलट प्रशिक्षण, रखरखाव, जमीनी संचालन और हवाई अड्डा प्रबंधन को शामिल करते हुए संपूर्ण विमानन इकोसिस्टम के निर्माण पर है। जापान एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में तरजिंदर पाल सिंह तूर और पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में सावन बरवाल ने रजत पदक हासिल किया। उधर तिलोत्तम्मा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। प्राची चौधरी ने महिला 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। स्क्वॉश में जोशना चिनप्पा और वन संथल कुमार की मिक्स डबल्स जोड़ी ने कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य समेत 30 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.5 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आइए आपको संध्याकालीन सभा के शेष कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। शाम 7:21 पर गांव की चौपाल से होगा कार्यक्रम मालवी गीतारी गूंज, जिसमें आप सुनेंगे ग्रामीण जीवन की उपयोगी बातें और मालवी लोकगीत। रात्रि 8 बजे पेश करेंगे विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा के। 8:35 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत। कार्यक्रम विज्ञान भारती का प्रसारण होगा रात 9:30 पर। रात 10 बजे आप सुनेंगे 20वां एडिशन ऑफ एशियन गेम्स 2026 पर विशेष कार्यक्रम डेली हाईलाइट कैप्सूल। अखिल भारतीय संगीत कार्यक्रम लेकर आएंगे 10:20 पर। श्रोताओं, अब आपको कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की भी जानकारी देते हैं। कल सुबह 5:52 पर हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी। सुबह 6:05 पर सुनिएगा विविध भारती मुंबई से वंदन वार। सुबह 6:35 पर विविध भारती से ही अनुप्रसारित होगा श्री रामचरित मानस गान। संगीत सरिता का अनुप्रसारण होगा सुबह 6:45 पर। सुबह 7 बजे आकाशवाणी उज्जैन से होगा भक्तिमय कार्यक्रम महाकाल वंदन। 7:20 पर उज्जैन की रोचक जानकारियां आपके लिए लेकर आएंगे सुप्रभात उज्जैन में। उज्जैनी आरजे कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर। सुबह 9:30 पर सुनिएगा फिल्मी गीतों

सुबह 10 बजे प्रस्तुत करेंगे आपकी फरमाइश सुबह 11 बजे से माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात के 138वें एपिसोड का प्रसारण होगा। कार्यक्रम यादों की महफिल आप सुन सकेंगे दोपहर 12:05 पर। दोपहर 1 बजे सुरीला सफर कार्यक्रम होगा। दोपहर 2 बजे आपके लिए लेकर आएंगे फिल्म संगीत। कार्यक्रम विविधा का प्रसारण होगा दोपहर 2:30 पर। नाट्य तरंग आप सुन सकेंगे दोपहर 3:30 पर। शाम 4 बजे खुलेगा पिटारा, जिसमें आप सुनेंगे उजाले उनकी यादों के। शाम 5 बजे आकाशवाणी उज्जैन से सुनिएगा युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। भजन संध्या का कार्यक्रम होगा शाम 6 बजे और शाम 6:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। शाम 7:21 पर गांव के चौपाल से होगा कार्यक्रम मालवी गीतारी गूंज। 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत। रात 8:15 पर आपको सुनाएंगे डगर विकास की। 8:30 पर फिल्म संगीत का प्रसारण होगा। 9:30 पर आप सुनेंगे आपकी फरमाइश। रात 10 बजे आप सुनेंगे 20वां एडिशन ऑफ एशियन गेम्स 2026 पर विशेष कार्यक्रम डेली हाईलाइट कैप्सूल। और रात 10:20 पर पेश करेंगे विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा के। ये थी आज के शेष कार्यक्रमों और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। शाम के 7:10 होने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 1 अप्रैल 2026 से लागू है। अब अपने घर से ही कचरे को अलग अलग करके शहर को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें।
2: घर से ही गीला, सूखा, सैनिटरी और स्पेशल केयर कचरा अलग अलग करके दें।
1: गीला कचरा हरे डस्टबिन में डालें, जैसे फल, सब्जियों के छिलके, बचा भोजन, चाय पत्ती वगैरह।
2: सूखा कचरा नीले डस्टबिन में रखें। कागज, प्लास्टिक, कांच, धातु, कपड़ा और गत्ता।
1: सैनिटरी और स्वास्थ्य संबंधी कचरा लाल डस्टबिन में डालें। सैनिटरी पैड, डायपर, बैंडेज, मास्क, ग्लव्स और पीपीई किट।
2: स्पेशल केयर काले डस्टबिन में डालें। पुराने मोबाइल, चार्जर, बैटरी, बल्ब, रिमोट, तार, इलेक्ट्रॉनिक सामान और घरेलू खतरनाक कचरा।
1: याद रखिए, सही पृथक्करण से रिसाइकलिंग आसान होगी और शहर स्वच्छ रहेगा।
2: नियमों का उल्लंघन करने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति एवं दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। स्वच्छता अपनाएं, शहर को स्वच्छ बनाएं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के तहत कल देशवासियों को करेंगे संबोधित। भोपाल विकास योजना 2047 मास्टर प्लान को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया विकास का आधार। सेवा संकल्प अभियान के तहत झाबुआ कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने छात्राओं को दी करियर सलाह। और मध्य प्रदेश की आशी चौकसे को एशियन गेम्स में मिला रजत पदक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी प्रसारित किया जाएगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत शी मार्ट पहल कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद इस दिशा में कदम उठाए गए जो किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुए।
4: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
3: भोपाल विकास योजना 2047 मास्टर प्लान का प्रारूप प्रकाशित कर दिया गया है। इस पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यह योजना भोजताल, वन क्षेत्रों और बाघ भ्रमण क्षेत्र जैसे प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण के साथ साथ नागरिकों को बेहतर सुविधाएं और आर्थिक विकास के अवसर देने के उद्देश्य से तैयार की गई है। योजना में हरित TDR का प्रावधान है, जिससे हरित क्षेत्र की भूमि स्वामियों को क्षतिपूर्ति और विकासकर्ताओं को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल मंडल में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित राजभाषा पखवाड़ा 2026 के तहत पुरस्कार वितरण समारोह और हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन नर्मदा क्लब ऑडिटोरियम हबीबगंज में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि पंकज त्यागी, मंडल रेल प्रबंधक भोपाल, सीनियर DCM सौरभ कटारिया और अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर वर्ष 2025-26 के दौरान राजभाषा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले रेल अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मंडल रेल प्रबंधक पंकज त्यागी सहित रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग का लोक शिक्षण संचालनालय DPI इन दिनों प्रमुख प्रयासों और नवाचारों का केंद्र बना हुआ है। करीब 10 वर्षों से लंबित 600 से अधिक अनुकंपा नियुक्ति महज 48 घंटे में पूरी कर ली गई। DPI आयुक्त अभिषेक सिंह ने स्वयं प्रतिदिन सुबह 9:30 पर कार्यालय पहुंचकर ई अटेंडेंस दर्ज करने की अनूठी पहल की, जिसके सकारात्मक असर से आज प्रदेश के 99% शिक्षक नियमित रूप से डिजिटल हाजिरी लगा रहे हैं। ऑन द स्पॉट सुनवाई के तहत आयुक्त सीधे 15 मिनट में समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। अभिषेक सिंह के अनुसार सरकारी स्कूलों में फ्रेंच, जर्मन भाषा और AI पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। 4,000 शिक्षकों का संलग्नीकरण समाप्त कर उन्हें मूल कक्षाओं में वापस भेजा गया है। विभाग द्वारा हाल ही में 14,000 से अधिक नए शिक्षकों की नियुक्ति पूरी की गई है।
5: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
3: समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर झाबुआ कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने छात्राओं को रुचि व क्षमता के आधार पर करियर चुनने की सलाह दी। रीवा में खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई, वहीं ग्वालियर के अंबेडकर पॉलिटेक्निक में चित्रकला प्रदर्शनी आयोजित हुई। नीमच जिले के कुक्कड़ेश्वर व जावद के आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के विकास पर चर्चा हुई। बैतूल में केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने पौधारोपण किया। मंदसौर की प्रभारी मंत्री निर्मला भूरिया और सांसद बंशीलाल गुर्जर ने चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उधर बड़वानी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने पौधारोपण कर ग्रामीणों और हितग्राहियों से सीधा संवाद किया। शिवपुरी विधायक देवेंद्र जैन ने आंगनवाड़ी में बच्चों को फल और मिठाई बांटी। राजगढ़ के नरसिंहगढ़ में लोगों को हेलमेट बांटे गए। छिंदवाड़ा पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्वच्छ भारत और नशा मुक्त समाज विषय पर रंगोली प्रतियोगिता आयोजित हुई। गुना में मेरे सपनों का भारत प्रतियोगिता हुई। रायसेन जिले में सांची विधायक डॉ. प्रभुराम चौधरी ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश

0: सेवा के मंत्र के साथ शुरू हुआ ये सफर आज भी जारी है। इसी क्रम में सीहोर जिले के बुधनी में सेवा संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वोकल से लोकल का सबसे सटीक उदाहरण है सीहोर जिले के बुधनी में दूधी की लकड़ी से निर्मित मनोहारी खिलौना उद्योग। बुधनी के खिलौने पर्यावरण के अनुकूल इको फ्रेंडली माने जाते हैं क्योंकि इनमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं होता। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र के जिला महाप्रबंधक श्री अनुराग वर्मा ने बताया कि
2: बुधनी के जो परंपरागत शिल्पी है उनके द्वारा दूधी लकड़ी से खिलौना का निर्माण किया जाता है जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी फेमस है। उनके लिए शासन ने एक खिलौने क्लस्टर का बुधनी में निर्माण किया क्योंकि हमारे जो परंपरा का शिल्पी हैं एक ही जगह सभी लोग आए जिससे कि इनको बड़ा मार्केट मिलेगा।
1: ये उद्योग लगभग 100 से 200 वर्ष पुराना माना जाता है और यहाँ की विश्वकर्मा समुदाय की कई पीढ़ियां इस कला को आगे बढ़ा रही है।
3: मेरा नाम सुनीता विश्वकर्मा है। सरकार की मदद से अब मैं और मेरा परिवार इन लकड़ी के खिलौनों का व्यवसाय कर रहे हैं। आज हमारा यह व्यवसाय हमें आर्थिक सम्बल प्रदान कर रहा है।
4: मेरा नाम रमेश है। पहले तो पारंपरिक उपकरणों से हम ये खिलौने बनाते थे लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लकड़ी के खिलौने उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया है जिसके चलते अब हम नवीनतम उपकरणों का प्रयोग खिलौने बनाने में कर रहे हैं।
1: आकाशवाणी समाचार के लिए सीहोर से प्रदीप सिंह चौहान।
0: भोपाल के संत निरंकारी संत सत्संग भवन संत हिरदाराम नगर में शनिवार को शासकीय हमीदिया ब्लड बैंक के सहयोग से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आशीर्वाद से आयोजित शिविर में एक दिन में 518 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। बात खेल की। एशियन गेम्स 2026 की महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम स्पर्धा में भोपाल की आशी चौक से तिलोत्तमा सेन और वृद्धशा विनोद कोचलुमकल ने रजत पदक जीता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खिलाड़ियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि निशानेबाजी में मिला यह पदक युवा खिलाड़ियों के लिए अत्यंत प्रेरणादायी है। एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों को लगातार मिल रही इन ऐतिहासिक उपलब्धियों से संपूर्ण देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। अब बात मौसम की। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। रीवा, जबलपुर, शहडोल और सागर संभाग के जिलों में अधिकांश स्थानों पर मूसलाधार बारिश दर्ज की गई। मंडला, डिंडोरी तेज बारिश वाले जिलों में शामिल रहे। मौसम विभाग ने दतिया, भिंड, सीधी, रीवा सहित कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। ग्वालियर जिले के आंतरी में आयोजित मुख्यमंत्री जन विश्वास शिविर में 300 से अधिक ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं रखी। खंडवा में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत स्वास्थ्य शिविरों में 417 हाई रिस्क गर्भवतियों को परामर्श दिया गया। मुरैना जिले के जौरा के गुना, चंबल और खांडोली में आयोजित कार्यशाला में ग्रामीणों को HIV एड्स से बचाव के उपायों और जांच की जानकारी दी गई। शहडोल जिले में बीते 48 घंटे से जारी मूसलाधार बारिश के चलते बाणसागर बांध के 12 गेट खोले गए और मंडला जिले के नैनपुर के हीरापुर गांव में गणेश पंडाल हादसे में हुए 4 की मौत पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: मीडियम वेव 188.3।
2: ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। इस वक्त शाम के 7:21 हो रहे हैं और ये समय है कार्यक्रम मालवी गीतारी गूंज का।

नमस्कार का साथ राम राम मारा किसान साथी हूँ। तो एक बार फिर हाजिर है यो तुम्हारा भाई सुमित कुमार तुम्हारा सबका बीज में। तो मु आशा करूँ कि तुम सब चकाचक होगा। अपना आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र पे एक बार फिर तुम सबको स्वागत है, वंदन है, उनका साथ घनो घनो अभिनंदन भी है। आज का तिथि की बात करा तो आज अपना भादवा महीना का उजाड़ा की पूर्णम वही गई है। और यह कोई मामूली पूर्णम नहीं है, एक है श्राद्ध की पूर्णिमा बोले, मतलब आज थी श्राद्ध चालू हो गई है। ने आज तारीख है 26 सितंबर ने वार शनिवार। अब बात करा आज का दिन पे तो आज भी घनसारा दिन मनाया जाए। पहले विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, विश्व गर्भ निरोधक दिवस और यूरोपीय भाषा दिवस मनाया जाए है। तीन दिवस अपना जीवन में स्वास्थ्य जागरूकता और आपसी समझ के बनाए महत्व के बताए है। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस जीवन में स्वास्थ्य जागरूकता हमारे याद दिलावे है कि स्वस्थ जीवन का लिए साफ सुथरा पर्यावरण जरूरी है। हवा, पानी, मिट्टी और आसपास की सफाई रखनो, कचरों सही जगह डालनो, पानी बचानो और पेड़ पौधा की देखभाल करना हम सबकी जिम्मेदारी है। पर्यावरण स्वस्थ रहेगा तो समाज भी स्वस्थ रहेगा। उसका बाद विश्व गर्भ निरोधक दिवस परिवार नियोजन और प्रजनन स्वास्थ्य का बारे में सही जानकारी तक पहुँचने को महत्व बतावे है। परिवार नियोजन से जुड़े कोई भी निर्णय आपसी सहमति, जिम्मेदारी और स्वास्थ्य कर्मी की सही सलाह का आधार पर लेना चाहें। सही जानकारी थी, सही व्यक्ति थी, अपना स्वास्थ्य और परिवार का भविष्य में समझदारी थी फैसला ले सका। हाँ, यूरोपीय भाषा दिवस अलग अलग भाषा और संस्कृति का सम्मान के बढ़ावा देवे है। तो अनिसाब से देखे जाए तो घन सारा दिन मनाया जाए है आज। अब आई जाए आज का मुख्य विषय पे, तो आज अपन बात कर अपना कार्यक्रम में बात करवा वाला हाँ श्राद्ध पे। भारतीय जीवन परंपरा में परिवार खाली साते रेवा को या लोक को समूह नहीं है, बल्कि परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती याद, संस्कार, अनुभव और जिम्मेदारी भी शामिल है। अपना घर आंगन में जो बुजुर्ग दिया है, जिन्हें परिवार संभालियो, जो जीवन में अपना अनुभव के सही दिशा बताई, उनकी याद के सम्मान से याद करवा की परंपरा भी अपनी संस्कृति में पुरानी रही है। तो आज आगे इपेज बात करने वाला हाँ अपन ने आए देखा तो अपना सोयाबीन भी कहन जगह कटवा लगी गया, जो जल्दी वेराइटी का था अभी तो कटवा लगी गया है। और जिका ही नहीं कटी था इनका भी दो चार दिन में क्यारे क्यारे पानी आई जाएगा। और इन बार किसान थोड़े सोयाबीन के लेने खुश नगे ही रहे, क्योंकि सोयाबीन की जो बैठक है वह बंपर हुई रही है। इन बार 4 से 5 क्विंटल प्रति बीघा की बैठक देखवा को मिली रही है। हाँ, या एरिया वाइज थोड़ी अलग अलग हुई सकती है, पर गंज इलाका में अभी यह सुनने को आई है कि 4 से 5 क्विंटल प्रति बीघा तक बैठक मिली रही है। तो इन्हीं पे तो अपन बात जितनी करा खेती पे उतनी कम पड़े। आई जाए अपन आज का विषय पे, आज अपन जो बात करवा रहा हूँ और एक बीच में अपन सुनवा वाला हाँ अपना सिद्धवट का आचार्य गुरु पंडित श्याम पंचोली जी की भेंटवार्ता, और उनसे जानेंगे कि श्राद्ध को महत्व कही है। पर उका पहला जैसो कि तुम्हारे मालूम है कि अपन कार्यक्रम के शुरू करवा का साथ मुख्य रूप से मालवी समाचार सुना हाँ। तो आज भी उन्हें श्रृंखला के थोड़ा आओ अपना कार्यक्रम में आगे बढ़वा के साथ ले चला तुम्हारे मुख्य रूप से मालवी समाचार पे। आकाशवाणी उज्जैन की प्रस्तुत है मालवी समाचार।

तो नमस्कार, समाचार का साथ हूँ तुम्हारो भाई सुमित कुमार। सबसे पहला बुलेटिन का मुख्य समाचार सुनना। पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काले मन की बात का जरिए देशवासी से साझा करेगा अपना विचार। उसका बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल विकास योजना 2047 मास्टर प्लान का प्रारूप प्रकाशित होने को ऐतिहासिक बतायो है। DPI बनियो नवाचार का केंद्र, कई वर्ष बाद दिखियो सकारात्मक बदलाव। अब आओ समाचार विस्तार से सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पे मन की बात कार्यक्रम का जरिए देश और विदेश का लोग का साथ अपना विचार साझा करेगा। यो अनिमासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होएगा। यो कार्यक्रम समूचे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पे प्रसारित किया जाएगा। इके AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय का यूट्यूब चैनल पे भी प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण का तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषा में भी इन्हीं को कार्यक्रम को प्रसारण किया जाएगा।

बात करें भोपाल की तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज घोषणा करी है कि गणेश अनंत चतुर्दशी का पावन अवसर पे एक लंबा अंतराल का भारत भोपाल विकास योजना 2047 को मास्टर प्लान का प्रारूप प्रकाशित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने अनि समृद्ध सुगम और विकसित भोपाल का संकल्प की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया है। यह योजना भोजताल वन क्षेत्र का भाग भ्रमण जैसी प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण का साथ साथ नागरिकों के बेहतर सुविधा सुगम मोबिलिटी और आर्थिक विकास का अवसर देने का उद्देश्य से तैयार करी गई है। अनि में हरित TDR का प्रवेश प्रावधान रखा गया है जिनकी हरित क्षेत्र की भूमि का स्वामियों को क्षतिपूर्ति और डेवलपर्स का अतिरिक्त सुविधा मिलेगा और नागरिक अब अनि प्रारूप पर अपना सुझाव और आपत्तियां भी प्रस्तुत कर सकता है। एशियाई खेल में भारतीय एथलीटों का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। अनि क्रम में भोपाल का होनहार निशानेबाज आशीष चौकसे ने शानदार प्रदर्शन करता हुआ निशानेबाजी में रजत पदक हासिल करियो है। अनि उपलब्धि पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर आशीष चौकसे और उनकी टीम के सदस्य तिलोत्तमा सेन व विस्ता विनोद को विशेष रूप से बधाई दी। अनि का साथ राष्ट्रपति ने मिश्रित युगल स्वेकेंस में कांस्य पदक विजेता जोड़ी और स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला कबड्डी टीम के भी शुभकामना दी है। अनंत चतुर्दशी का दूसरा दिन भी आज प्रदेश भर में गणेश प्रतिमाओं को विसर्जन को क्रम जारी है। श्रद्धालु ने ढोल नगाड़ा तथा गणपति बप्पा मौर्या का जयघोष के साथ अपना आराध्य देव के भावभीनी विदाई दी है। धार जिला में रात भर झांकिया और अखाड़ा का प्रदर्शन का उत्सव चलतो रियो लेकिन बदनावर में विसर्जन का दौरान गहरे पानी में जाने से 3 युवक की डूबने से दुखद मौत भी हुई गई है। दूसरी ओर खंडवा जिला का नगर निगम द्वारा बनाए गए कृत्रिम कुंडों में शांतिपूर्ण विसर्जन संपन्न हुए। हालांकि यहाँ का नहालदा क्षेत्र में 2 सग्गा भाई की पानी में डूबना थी मौत हुई गई है। यह भी दुखद घटना सामने आई है अपने साथ। आज को धार्मिक है। आज से धार्मिक परंपरा का अनुसार पितृपक्ष का शुभारंभ हो गया है और भोपाल की बड़ी झील स्थित शीतलदास की बागिया सहित नर्मदा ताप्ती बेतवा जैसी प्रमुख नदियां व धार्मिक स्थल पर श्रद्धालु द्वारा अपना पितृ का तर्पण कराया जा रहा है। 15 दिन का अनि पवित्र समय में पितृ की आत्मा की शांति के लिए सात्विक रहता हुआ दोपहर का समय में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तर्पण और पिंडदान करे हैं। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग का लोक शिक्षण संचालन DPI ने इन दिनों प्रमुख प्रयास और नवाचार का केंद्र बना हुआ है। अनुकंपा नियुक्ति मामला की समीक्षा में महज 48 घंटा का भीतर लगभग 800 अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र जारी कर दिया है जबकि 4000 शिक्षकों का अनुचलित संलग्नीकरण समाप्त कर उन्हें मूल कक्षा में वापस भेजे गए हैं। 6000 कर्मियों का पदोन्नति दी गई जबकि 14000 नया शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। सरकारी स्कूल में फ्रेंच जर्मन भाषा और AI पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है। DPI आयुक्त अभिषेक सिंह ने स्वयं प्रतिदिन सवेरे 9:30 बजे कार्यालय पहुंची के ई अटेंडेंस दर्ज करने की अनूठी पहल करी है जितनी सकारात्मक असर थी। आज प्रदेश का 99% शिक्षक नियमित रूप से डिजिटल हाजिरी लगाई गया है। जन समस्याओं का त्वरित समाधान का लिए ऑन द स्पॉट सुनवाई शुरू करी गई है जहां लोग ने सीधा मिली के महज 15 मिनट में समस्या का निराकरण कर दिया है। तो दोस्तों ये था आज का मुख्य मालवी समाचार।

हाँ तो समाचार का पहले अपन बात कर जाता कि अपनी फसल का कई हाल चाल है। तो अभी कहीं नहीं किसान लाई देने खेत में लगे हुए है या? अच्छा एक बात मालूम है तुम्हारे, यो एक ऐसो टेम है किसान के या चिंता भी सताई है कि कभी पानी नहीं आई जाए, क्योंकि अनी बार सोयाबीन की फसल थोड़ी अच्छी दिखी रही है। और यो कारण है कि किसान जल्दी जल्दी फसल एवेरवा में लगे अंतर है जिसे जल्दी जल्दी काम हुई जाए ने खत्म, नहीं तो अगर कटिया हुआ खेत में पानी पड़ी गयो तो मालूम पड़े दो चार दिन में हाँ हारो पानी कम पड़ी हो तो सोयाबीन खेत में सड़वा लगी जाए। तो इकाले आने समय तो किसान रिस्क नहीं लेगा, किसान को एकच लक्ष्य रहे है कि कैसे भी करके बस फसल के सही साठ घरे पहुंचाना है। तो या तो ऐसे थोड़ी जानकारी का लिए बताई दी क्योंकि किसान को कई हलचल ही रहे। तो अभी चला अपना आज का मुख्य विषय पे, पर उका पहला क्यों नहीं अपन एक गीत सुन ला, क्योंकि अपनो कार्यक्रम है आज मालवी गीतारी गुंज। तो आओ इन्हीं संदर्भ में सुना अपने आज को एक पहलो और प्यारो सो गीत।

तो सुन लो गीत। अब तुम्हारे नी मालूम हो तो मैं तुम्हारे बताई दूं कि अपन सुनी रहा हाँ FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पे ओका साथे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पे आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र के। और उज्जैन केंद्र थी अपनो विशेष कार्यक्रम मालवी गीतारी गुज जिमें हम लाई के आए हैं तुम्हारा बीच में एक ती एक जानकारी जो सीधी अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई रहे। तुम्हारे कहीं नहीं करना है, बस सुनता रहो ने अपने लेता रहो एक ती एक जानकारी। हाँ तो अपन बात करवा वाला हाँ

0: श्राद्ध पूर्णिमा और प्रीत स्मरण पे। तो राम राम मारा किसान साथियों, आज अपन बात जो करवाना है एक ऐसा अवसर की है जिसको संबंध अपनी पारंपरिक परंपरा, बुजुर्गों की याद और परिवार में आपसी सम्मान की जुड़ी हुई अंतर है। यह अवसर है श्राद्ध पक्ष की शुरुआत को और श्राद्ध पूर्णिमा को। श्राद्ध पक्ष ऐसो ही समय माना जाए है जब परिवार अपना दिवंगत परिजन ने के याद करे है। कहीं परिवार अन्य समय अपना अपना रीति रिवाज अनुसार पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करे है, कोई पारिवारिक धार्मिक विधि करे है, कोई जरूरतमंद के भोजन करावे है, कोई दान पुण्य करे है, तो कोई केवल परिवार का साथ बैठी के अपना दिवंगत बुजुर्ग के याद करे है। इनका सबका पीछे मूल भावना श्रद्धा, स्मरण और कृतज्ञता की है। पूर्णिमा का दंत श्राद्ध पक्ष की शुरुआत होने की बात कई पंचांग और पारंपरिक मान्यता में मिले हैं। अलग अलग क्षेत्र में तिथियां और विद्या के लेके भी स्थानीय परंपरा के अंतर देखी जा सकता है। इकाले कहीं भी एक पद्धति का सबका लिए अनिवार्य मानने के बजाय अपना परिवार की परंपरा और स्थानीय पंचांग का अनुसार आचरण करना उचित माने जाए है। अपना मालवा में तो परिवार और रिश्तेदार की बात में अपनोपन खूब दिखाई दे है। गांव में कोई अगर बुजुर्ग गुजरी जावे तो उनकी याद लंबा समय तक परिवार की बातचीत में बनी रहे। उनका कहा किस्सा, काम करने का तरीका, खेत कल्याण का अनुभव, परिवार के जोड़ी के रखने की सीख, ये सब अपनी अगली पीढ़ी तक पहुँचाए है। सात पक्ष के अन्य दृष्टि से देखे जाए तो यह खाली एक धार्मिक अवधि भरना नहीं है बल्कि परिवार की स्मृति के सहेजवा को अवसर भी है। आजकल परिवार का जीवन शैली में काफ़ी बदलाव आ गया है। पढ़ाई, रोजगार और कामकाज का कारण परिवार का सदस्य अलग अलग शहर में स्थान में रहवा लगी गया है। ऐसा में साल भर में मिलने जुलने का अवसर भी कई बार कम हुई जावे है। सात पक्ष परिवार का दिवंगत सदस्यों के याद करके का बहाने परिवार के अपनी जड़ोती जोड़ने का अवसर दे है। इपे आगे बात करवा का पहला आउट हमारे सुनाए अपना तीर्थ गुरु उज्जैन का सिद्धवट का पुजारी श्याम पंचोली जी श्राद्ध पूर्णिमा के लिए विशेष भेंट वार्ता हो। इनमें उन्हें बतायो है कि श्राद्ध कहीं हो, श्राद्ध को महत्व कहीं है। तो आओ सुनो पहला यो कार्यक्रम या भेंट वार्ता उसका बात अपन पे बात कराएंगे।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी उज्जैन में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय।
1: सर्वप्रथम हमारे श्रोताओं को आपका परिचय दीजिए।
2: मैं आदरणीय पंडित श्याम गुरु पंचोली, तीर्थ पुरोहित पंडा लाल घोड़ी वाला उज्जैन से हूँ। हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत तीर्थ के अधिकृत पुरोहित रहे हैं। हम लोग हरिद्वार महासभा से भी जुड़े हुए हैं और यहाँ के स्थायी पुरोहित।
1: गुरु जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज पूर्णिमा है और आज से श्राद्ध शुरू हो गए हैं, तो हमें बताइए कि हिंदू धर्म में श्राद्ध का क्या महत्व रहता है?
2: आदरणीय, श्रद्धा इति श्राद्धम पितृ प्राणी निमित्तार्थेन, कि प्राणी का जब मृत्यु होती है, मृत्यु के उपरांत प्राणी सतगति की प्राप्ति निमित्तार्थेन, मृत्यु के उपरांत प्राणी के निमित्तार्थ उनके जो परिजन होते हैं वो दशा, एकादशा, द्वादशा, सपिंडन इत्यादि कर्म करते हैं। और इस मृत्यु लोक में भगवान ने सभी को एक अपनी अपनी एक व्यवस्था दी है। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत अभी जैसा हाल ही में हमने गणेश उत्सव मनाया 10 दिवसीय और पितृ पक्ष प्रारंभ हुआ है, तो श्रद्धा के अंतर्गत ऐसे यात्री या ऐसे व्यक्ति जो अपनों को खो चुके हैं, है ना, समय पे ये ऐसा अवसर होता है जब भगवान की कृपा से वो लोग दिवंगत हुए अब इस मृत्यु लोक की ओर अग्रसर होते हैं, क्योंकि पृथ्वी, उसके ऊपर चंद्र और उसके ऊपर पितृलोक होता है जो कि करीब यहाँ से 58 कोस की संज्ञा दी हुई है शास्त्र के अंतर्गत, इतनी दूरी पर है। और उस समय से पितृ जो है इस मृत्यु लोक धरा की ओर अग्रसर होते हैं, तो अपने दिवंगत पितरों की तृप्ति के लिए इस महालय महाश्राद्ध के अंतर्गत व्यक्ति अपने घर पर श्राद्ध कर्म करता है, जिसके अंतर्गत श्राद्ध में दिवंगत पितरों के निमित्तार्थ अन्न जल दे करके उनकी तृप्ति कर।
1: गुरु जी, ये बताइए श्राद्ध पक्ष की शुरुआत पूर्णिमा से क्यों मानी जाती है? इस दिन से जुड़ी धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यता क्या है?
2: देखिए आदरणीय, श्राद्ध विशेष करके 16 दिन का होता है। हम लोग तिथियों की अगर गणना करें तो प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक 15 तिथियां आती है, पर एक दिन पूर्णिमा को जोड़ करके ये 16 तिथि बनती है और इसी के लिए बना हुआ है ये 16 श्राद्ध, है ना, जो 16 दिन का होता है। वो 16 ही दिन अलग अलग तिथियों पर अलग अलग पितरों के निमित्त

0: एक ऐसी व्यवस्था दी हुई है शास्त्र के अंतर्गत, जिसमें हम गरुड़ पुराण ले लें, पितृ पुराण ले लें, प्रेत पुराण ले लें, स्कंद पुराण ले लें, इसके अंतर्गत एक ऐसी व्यवस्थाएं दी गई है कि जिसमें जैसे प्रतिपदा से लगा करके अमावस्या और उसके पूर्व पूर्णिमा, तो पूर्णिमा से पितरों का हम आगमन मानते हैं। वो तिथि ऐसी होती है कि अगर किसी कोई दिवंगत प्राणी शांत हुआ है तो उनको जब हमें आमंत्रित करना है तो उनको प्रथम यानी पूर्णिमा तिथि से ही उनका आमंत्रण किया जाता है, उनका आह्वान किया जाता है।
1: अच्छा एक बात ये बताइए, हमारे समाज में पितरों का स्मरण करने और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने की परंपरा कब से चली आ रही है?
0: आदरणीय, अगर हम इस विषय को देखें तो आप इसका वैसे तो परंपरागत है ये चीजें, आदि अनादि समय से है, पर परमारकालीन जहां अगर हम देखें आज भी महाकाल मंदिर के आसपास अगर हम कोई खुदाई इत्यादि करते हैं तो परमारकालीन उस समय के मंदिर के अवशेष हमें यहाँ प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब अवंतिका उज्जैनी में पढ़ने के लिए आए थे तो यहाँ पर भगवान ने अपने मित्र सुदामा जी के साथ में गुरु सांदीपनि जी से 64 कलाएं सीखी थी, और गुरु सांदीपनि जी के पुत्र जिनका आकस्मिक निधन हुआ था, जब गुरु माता ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मेरे पुत्र के लिए मुझे श्राद्ध इत्यादि तर्पण इत्यादि करना है, तो उन्होंने उज्जैन में गया कोठा एक तीर्थ है जहां पर यात्रियों की आज से भीड़ रहेगी और वो अपने दिवंगत पितरों के लिए इस तीर्थ में आकर के पूजन करेंगे, तो भगवान श्री कृष्ण ने गुरु माता की आज्ञा से और गुरु भक्ति के अंतर्गत यहाँ पर फल्गु नदी का उद्गम किया था और यहाँ पर जो है उज्जैनी में श्राद्ध का विषय प्रारंभ हुआ था। अगर एक तरह से देखा जाए तो ये भगवान श्री कृष्ण के समय से है ना श्राद्ध का महत्व चलन में है।
1: अच्छा एक जानकारी के लिए बताइए, श्राद्ध और तर्पण में क्या अंतर है, एक आम आदमी इसको किस तरह समझ सकता है?
0: देखिए आदरणीय, श्रद्धा इति श्राद्धम, श्रद्धा पूर्वक अपने दिवंगत पितरों के निमित्त जो भी किया गया कार्य श्राद्ध कहलाता है। तर्पण का अर्थ होता है जल दे करके संतुष्ट करना। हमारे यहाँ परंपरा रही है प्रारब्ध से कि अतिथि देवो भव, है ना, तो इस परंपरा के अंतर्गत जब हमारे यहाँ कोई अतिथि आता है तो हम उन्हें बैठने के लिए आसन देते हैं, जल इत्यादि अर्पित करते हैं। तो जब हमारे पितृ देवस्य स्वरूप आए इस मृत्यु लोक के ऊपर अवतरित होते हैं या आते हैं या सूक्ष्म रूप में अदृश्य रूप में हमारे इर्द गिर्द होते हैं, है ना, पितृ दो तरीका से संतुष्ट होते हैं, एक स्वाहा और एक स्वधा, ठीक है। इसके निमित्तार्थ आप अगर मंत्र भी देखेंगे माँ भगवती के अंतर्गत भी, है ना, तो हम देवी महत्व भी अगर देखें तो मंत्र आता है कि कर्म अंतर्गत नायह नित्यार्थेन जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा समा शिवा धाती स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो भगवती के अंतर्गत भी पितरों का एक तरह से देखा जाए तो स्मरण होता है। अब जब पितर हमारे समीप होते हैं अदृश्य रूप में तो उनकी प्रसन्नता के लिए जो एक देवतुल्य, जो एक पुराणों के अंतर्गत एक परिपाटी बताई गई है, जो एक व्यवस्था बताई गई है, उसके अंतर्गत पितरों को अंजनी मतलब तर्पण करके उन्हें तृप्त किया जाता है ताकि वो हमसे तृप्त हुए और इस जल को ग्रहण करते हुए अपने शुभ आशीर्वाद हमें प्रदान करते हुए अपने धाम में वापस जो है उनका प्रस्थान हो।
1: अच्छा जैसा कि आपने बताया कि तर्पण करके पितरों को खुश करते हैं, तो श्राद्ध कर्म में जल अर्पित करने यानी तर्पण करने का क्या महत्व माना गया है?
0: देखिए आदरणीय, तर्पण तीन प्रकार से मुख्य होता है। देव ऋषि पुत्र तर्पण के अंतर्गत एक पात्र में जल लेकर के दूध कुशा तिल इत्यादि अर्पित करते हैं और पितरों के निमित्त तर्पण किया जाता है, जिसे तिलांजलि भी कहते हैं, जलांजलि भी कहते हैं, और ये पितरों के प्रति सरल शब्दों में देखा जाए तो एक आदरांजलि है जिसमें हम हमारे दिवंगत हुए पितरों को प्रसन्नता के लिए, उनके आशीर्वाद प्राप्ति के लिए, उनकी सदगति संतुष्टि मोक्ष के लिए शास्त्रों में वर्णित, अगर यूं देखा जाए एक मंत्र आता है कि प्राणी प्रेता या प्रेतस्य प्रेतत्व योनि निवारणार्थम दुर्मरण दोष निवारणार्थम यम यातना यम कष्ट यम भय यम दंड निवारणार्थम प्राणी असदगति सदगति पुण्य फल प्राप्त्यर्थम, तो हमारे प्राणी को उत्तम पुण्य फल की प्राप्ति मिले, हमारे पितृ हमसे प्रसन्न होकर के तृप्त होकर के इस धरा से पितृलोक वैकुंठ लोक स्वर्ग लोक की प्राप्ति करे, इसके अंतर्गत इस तर्पण और जल दान का महत्व है जो की किया जाता है तीर्थ में।
1: अच्छा गुरु जी, हम अक्सर देखते हैं कि कई परिवार

0: के अवसर पर ब्राह्मण ब्राह्मण भोजन, दान और जरूरतमंदों की सहायता करते हैं, इसके पीछे की क्या भावना है?
1: देखिए आदरणीय, महालय श्राद्ध में देखिए सीधा सा विषय है कि देवी देवता मंत्र के अधीन है, मंत्र ब्राह्मण के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण पूजनीय है ना। तो इस श्राद्ध के अंतर्गत जब हम ब्राह्मणों को आमंत्रित करते हैं हमारे दिवंगत पितरों के निमित्त, तो शास्त्र में वर्णित है कि ब्राह्मण के रूप में पित्र उन पदार्थों को जो है सरल शब्दों में देखें तो हव्य के रूप में उस चीज को ग्रहण करते हैं। इसीलिए तीर्थ में ब्राह्मणों का पूजन अत्यधिक महत्व माना गया है और तीर्थ के अंतर्गत इसी प्रकार से घर पर ब्राह्मणों को आमंत्रित करके दिवंगत पितरों के निमित्त भोजन करा करके यथाशक्ति वस्त्र पात्र इत्यादि दान करते हुए जो है ब्राह्मणों को सेवा करके पूजा करके पितरों को प्रसन्न किया जाता है।
0: अच्छा गुरुजी, यदि कोई परिवार अपने पूर्वजों की श्राद्ध तिथि भूल जाता हो तो ऐसी स्थिति में परंपरा के अनुसार क्या किया जाता है?
1: देखिए आदरणीय, महालय महाश्राद्ध के अंतर्गत विभिन्न विभिन्न प्रतिपदा से लेकर के सर्वपित्र अमावस्या तक की तिथि दी हुई है। इसी के अंतर्गत जब अगर किसी व्यक्ति को अपने किसी दिवंगत पूर्वज या पितृ की मृत्यु की तिथि की जानकारी नहीं हो तो उस परिस्थिति में सर्वपित्र अमावस्या तिथि होती है, जिस दिन आकर के व्यक्ति अपने दिवंगत पितरों की आत्म शांति मोक्ष सदगति संतुष्टि और उनकी कृपा प्राप्ति के लिए सर्वपित्र अमावस्या पर तीर्थ में आकर के जलांजलि तर्पण पिंड इत्यादि कर सकता है। उस पितर को वही पुण्य फल प्राप्त होगा जो उसकी तिथि पर क्षय होने जो उसकी तिथि पर उसकी मृत्यु के अंतर्गत प्राप्त होता है। तो एक सर्वपित्र अमावस्या शास्त्र के अंदर वर्णित है, जिसमें जो है दिवंगत प्राणी को जिनकी तिथि याद नहीं है उस दिन आप करेंगे तो वो सभी पितरों के लिए मान्य होती है।
0: अच्छा गुरु जी, एक बात और बताइए, कोई व्यक्ति अगर किसी तीर्थ स्थल पे जाके श्राद्ध का तर्पण वगैरह नहीं करवा सकता, वो ऐसे में वो घर पे क्या विधि कर सकता है?
1: देखिए आदरणीय, जो व्यक्ति सबसे पहले तो प्राथमिकता ये है कि आप तीर्थ में आकर के विधि पूर्वक पूजन करें, क्योंकि तीर्थों का अपना एक अपना महत्व होता है। तीर्थ में देवी देवता जागृत अवस्था में होते हैं और हम तीर्थ में ही आकर के विधि पूर्वक हमारे दिवंगतों के निमित्त पिंडदान जलदान इत्यादि करते हैं। पर अगर कोई परिस्थिति ऐसी बनती है कि नहीं आ पाते हैं तो घर पर ही एक पटिया लगा करके उसके ऊपर दिवंगत प्राणी की तस्वीर फोटो रख करके एक दीपक लगा करके कलश जल का भरने के उपरांत उन्हें जो पसंद था उस व्यंजन का भोग बनाए भोग लगाए, साथ में ब्राह्मणों को अगर ब्राह्मण नहीं मिले तो कन्याओं को और कन्याओं का भी व्यवस्था करनी हो पाए तो छोटे बटुकों को बहुत सारे लोग अपने भानेज को भी जिमाते हैं, ठीक है, आप इनको भोज करा सकते हैं। उनके निमित्त सीधा एक थाली में सीधा सामान आटा और दाल घी गुड़ इत्यादि का दान करके किसी मंदिर में भी आप दान करेंगे तो आपको वही पुण्य मिलेगा जो आपने तीर्थ में आकर के पूजन के माध्यम से प्राप्त किया है।
0: बिल्कुल सही बात है गुरु जी। अंत में आप हमारे आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: सबसे पहले मैं आपकी सक्रियता को नमन करता हूँ। आपके माध्यम से हमारे जो श्रोतागण हैं जिन तक ये जानकारियां पहुंच रही है और हमने जो जानकारी दी सरल शब्दों में दी है ताकि व्यक्ति आसानी से चीजों को समझ सके, आसान आसान तरीके से अपने कार्य को संपादित कर सके। अब सरल शब्दों में और भी अगर मैं कहना चाहूं तो आपके श्रोताओं से यही निवेदन करूंगा कि श्रद्धा के साथ पितरों के प्रति आदर व्यक्त करते हुए उनके निमित्त जो है तर्पण इत्यादि का कर्म करें। मुगल बादशाह हुए थे जिनको कैद कर दिया था, वो जानकारी आपको सबको है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में और अंत में डायरी में भी लिखा है कि तुमसे अच्छे तो काफिर हैं, जो अपने लिए प्रयोग होता है हिंदुओं के लिए कि वो तो अपने मरे हुए व्यक्ति को भी तर्पण जल दे करके संतुष्ट करते हैं और तुम मुझे जीते जी परेशान कर रहे हो, है ना। तो मैं आपके श्रोताओं को इसके माध्यम से ही निवेदन करूंगा कि पितरों के प्रति देखो वो थे तो हम हैं, अगर वो नहीं होते तो हमारी कल्पना नहीं थी। तो जो बने यथा सामर्थ्य अनुसार अगर आप उनके निमित्त श्रद्धा भाव से तर्पण पिंड इत्यादि करें और अगर नहीं कर पाए तो घर पर ही उनकी फोटो को माला करते हुए उनके निमित्त यथा संभव जो बने भोज इत्यादि करवाएं और नहीं तो सिर्फ गौ माता को चारा ही डालें उनके नाम से। पर निवेदन जरूर करूंगा कि पितृ भक्ति अपने हृदय में बरकरार रखें।
0: बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। तो जैसो कि अपना गुरु जी ने बताया कि कैसे श्राद्ध को महत्व अपना हिंदू धर्म में रहे। अब पुराना समय के ले लो, पुराना समय की याद करा तो घर का बुजुर्ग बच्चा ने अपना माता पिता और दादा दादी का किस्सा सुनाया करता था। कई प्रकार ती परिवार कठिन समय में एक दूसरा के काम आयो है, कई तरीका ती खेती बाड़ी संभाली है, कई प्रकार ती गांव में लोग एक दूसरा की मदद करता था। ऐसी बात खाली कहानी नहीं हुई बल्कि अगली पीढ़ी तक अनुभव पहुंचाने का माध्यम हुई है। आज भी परिवार का छोटा सदस्य अगर अपना बुजुर्ग थी उनके जीवन का बारे में पूछे तो कई महत्वपूर्ण बात सामने आई सके है। उनका पास स्थानीय इतिहास है, खेती का पुराना तरीका है, गांव की परंपरा है, पुरानी परिवार की घटनाओं है और जीवन का अनुभव को बड़ो भंडार भजंतर है। श्राद्ध पक्ष में हम दिवंगत परिजना के याद करता समय यह भी सोच सका हाँ कि उनने अपना लिए कई कई कजो है, उनकी मेहनत त्याग संघर्ष और परिवार का प्रति जिम्मेदारी के याद करता अपना आप कृतज्ञता का भाव आई जाए है। या 16 दिन की चलवा वाली एक बड़ो पर्व है तो इस पे तो 16 दिन बात करवा तो कम पड़ी जाए क्योंकि इतरो में ज्ञान भजो अंतर है। पर भूलो मत कि आज अपना कार्यक्रम है मालवी की तारीखों से, तो आओ ये तो बात होती रहेगा, पहला सुना अपन एक और प्यारो सो गीत क्योंकि फिर समय भी होने वालों है अपनों, तो आओ सुनो ये गीत।

देखो मालवा में एक कहावत के है, जिन्हें अपनो घर संभाल्यो अपन उनकी याद के संभाला, अर्थात जिन लोग ने अपनो परिवार के संभाल्यो उनकी स्मृति के भी संभाल के रखनो इतना जरूरी है। और श्राद्ध का अवसर पे अपने याद श्राद्ध अपने यो सिखाए हैं कि अपना जो पूर्वज होने उनकी याद के कैसे संभालना है, उनकी जो धरोहर है उनके कैसे संभालना है। तुम्हारा हिसाब थी मैंने जो तुम्हारी जानकारी दी है श्राद्ध के लिए, जो श्राद्ध को महत्व बताया वो तुम्हारे अच्छा लगे होगा। तो आज अपन ने मुख्य रूप से अपनी मालवी गीतारी गूंज कार्यक्रम में आज का दिवस पे उका बात वर्तमान की फसल अवस्था पे उका बात मुख्य रूप से श्राद्ध पूर्णिमा यानी पूरा सात श्राद्ध पर्व पे खूब बात करी, नच्चिका से जानकारी भी ले ली। तो हमारा हिसाब से हमारे जो मिली जानकारी सब अच्छी लगी होगा, मतलब पूरा योग कार्यक्रम ही अच्छा लगे होगा। तो अभी अपना समय होने वालों है, अंत में मैं हमारे योज कहना चाहूँगा कि खुश रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो और सुनता रहो अपने आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र के। और दो हमारे यहाँ से इजाजत जिसे मैं जाऊँ, आज को नमस्कार, राम राम का साथ, शुभ रात्रि।

ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। रात के 8 बजने को है। अब आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा के। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा।
1: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 10वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा नारी से नारायणी तक। इसमें भाग ले रहे हैं शिक्षाविद प्रोफेसर सुशीला रामास्वामी और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: नमस्कार। एक बेटी जो कभी स्कूल की दहलीज तक पहुंच ही नहीं पाई, एक माँ जिसके लिए रोजमर्रा के जीवन में रसोई का धुआं एक अहम स्थान बन गया था, एक ग्रामीण महिला जिसकी मेहनत परिवार की ताकत तो थी लेकिन उसकी पहचान सिर्फ चार दीवारी तक सिमट कर रह गई थी। महिलाओं की ये बेरंग तस्वीर साल 2001 साल 2002 के आसपास बहुत ज्यादा नजर आने लगी थी। उसी समय अपनी रचनात्मक सोच और दूरदर्शिता से तब के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने महिलाओं की इस बेरंग तस्वीर में रंग भरने की शुरुआत की। गुजरात से शुरू हुई कन्या केलावणी और शाला प्रवेश उत्सव जैसी योजनाएं आगे चलकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला, लखपति दीदी, सेल्फ हेल्प ग्रुप और ड्रोन दीदी तक पहुंच गई। और यही नहीं रुकी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात करें या तीन तलाक से जुड़ा सुधार, सबकी कोशिश यही थी कि बेटियों को शिक्षा मिले और महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सके। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने जब बेटियों और महिलाओं को बेहतर करने की सोची तो उसके पीछे की सोच बिल्कुल स्पष्ट थी कि एक नारी की प्रगति से सिर्फ एक नारी का विकास नहीं होता बल्कि एक परिवार, एक समाज और एक राष्ट्र की तरक्की की शक्ति प्रदान होती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों पर आधारित आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के आज के एपिसोड की थीम है नारी से नारायणी। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान

0: 99% ड्रॉप आउट रेट कम हुए।
1: गुजरात में ड्रॉप आउट रेट कम करने के लिए शुरू की गई योजना का नाम था शाला प्रवेश उत्सव। क्या थी योजना, किस सोच के साथ शुरू हुई और क्या रहे इसके परिणाम, आइए सुनते हैं इस विशेष रिपोर्ट में।
2: गुजरात में शिक्षा को घर घर तक पहुंचाने और बच्चों का स्कूल में दाखिला सुनिश्चित करने के लिए हर साल शाला प्रवेशोत्सव का आयोजन किया जाता है। शाला प्रवेशोत्सव की शुरुआत वर्ष 2002 में हुई थी। इसके तहत राज्य के मंत्री, अधिकारी और स्थानीय प्रशासन गांवों और दूर दराज के इलाकों तक पहुंचते हैं और बच्चों को स्कूल में दाखिला लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस पहल के साथ बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कन्या केलवड़ी कार्यक्रम भी चलाया जाता है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सिर्फ बच्चों का नाम स्कूल में दर्ज कराना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे नियमित रूप से शिक्षा से जुड़े रहें। खास तौर पर पहली कक्षा में दाखिला लेने वाले बच्चों और स्कूल से बाहर रह गए बच्चों पर ध्यान दिया जाता है। शाला प्रवेशोत्सव के दौरान जन प्रतिनिधि और अधिकारी बच्चों और उनके परिवारों से सीधे संवाद करते हैं। इससे अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करने और स्कूल में दाखिले को लेकर उनकी झिझक दूर करने की कोशिश की जाती है। गुजरात के समग्र शिक्षा पोर्टल के अनुसार राज्य में सरकारी और निजी स्कूलों की बड़ी संख्या मौजूद है। अगस्त 2026 तक राज्य में 40,554 सरकारी और 13,905 निजी स्कूल दर्ज हैं। वहीं सरकारी स्कूलों में करीब 61,15,000 लड़के और 52,35,000 लड़कियां दर्ज हैं। शिक्षा से वंचित बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए विशेष प्रयास भी किए जा रहे हैं। गुजरात के वर्ष 2024-25 के समग्र शिक्षा वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार दिव्यांग बच्चों की पहचान और उनके नामांकन के लिए घर घर सर्वे किया गया। इसी वर्ष 68,629 दिव्यांग बच्चों को उनकी उम्र के अनुरूप कक्षाओं में नामांकन कराया गया। इनमें 2,770 बच्चे बाल वाटिका और 4,201 बच्चे पहली कक्षा में दाखिल हुए। राष्ट्रीय स्तर पर भी स्कूलों में नामांकन और बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखने को प्राथमिकता दी जा रही है। शिक्षा मंत्रालय की समग्र शिक्षा योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूलों में सार्वभौमिक पहुंच, बुनियादी ढांचे, मुफ्त पाठ्य पुस्तकों और पात्र बच्चों के लिए मुफ्त यूनिफॉर्म जैसी सुविधाओं के लिए सहायता दी जाती है। इसमें नामांकन और बच्चों को स्कूल में बनाए रखने के लिए विशेष अभियान भी शामिल है। यानी शाला प्रवेशोत्सव सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि बच्चों को स्कूल की दहलीज तक लाने और उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने की एक सामुदायिक कोशिश है, क्योंकि किसी भी बच्चे के लिए स्कूल का पहला कदम उसके भविष्य की दिशा तय करने वाला कदम हो सकता है।
0: यही योजना आगे चलकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में तब्दील हुई और हमने देखा कि किस तरीके से लैंगिक अनुपात भी भारत में बेहतर होता नजर आया। सुशीला जी, आपके साथ ही शुरुआत करते हैं, कैसे देखती हैं इस पूरे सफर को आप?
3: आप जो कह रहे हैं कि जो गुजरात में जब मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे तब उन्होंने जो महत्वपूर्ण कदम उठाए जिसकी वजह से बहुत फर्क आया, ये अगर हम एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए आधुनिक भारत का, तो दो चीज कहूंगी मैं और फिर हमारी जो विशेष टॉपिक है उसके कॉन्टेक्स्ट में बताना चाहूंगी कि आधुनिक भारत जो हम पढ़ाते हैं, जो पढ़ते हैं, ये इसकी शुरुआत राजा राममोहन रॉय से हुआ था, जब उनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन थॉट कहा जाता है, इंडियन रेनेसां, उस टाइम से ये शुरुआत हुई थी कि नारी की जो स्थिति है जब तक उसमें सुधार नहीं होगा तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकते। फिर उनके बाद जो राणा डे, फिर विवेकानंद और ईश्वरचंद्र विद्यासागर, इतने सारे महारथी थे जो उन्होंने इस पे बहुत गहराई से सोच के कदम उठाए। जब स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुई थी, गांधी जी का जो योगदान था वो सबसे महत्वपूर्ण था। उन्होंने अहिंसा का जो मार्ग चुना स्वतंत्रता के लिए, उससे जो है बहुत सारे परिवारों में एक तरह का कॉन्फिडेंस आ कि अगर हमारी बेटियां, हमारी जो माएं हैं, अगर पब्लिक स्पेस जो कहते हैं वहां पे जाएंगे, गांधी जी है तो सुरक्षित है। और महिलाओं का बहुत योगदान था और गांधी जी खुद कहते हैं उनकी माँ और साउथ अफ्रीका के जो नारी शक्ति थी उसके वजह से उनको वो समझ आई क्वालिटीज लाइक टॉलरेंस, किस तरह जब एंगर और जो गुस्सा कैसे एक नारी जो है बिना रिएक्ट करे उसको कैसे अब्सॉर्ब करके उसको कैसे चेंज करती है, तो ये सारे उन्होंने कहा कैसे उन्होंने अपने सत्याग्रह पे इनकॉर्पोरेट किया। जब संविधान बनी, भारत ऐसा एक संविधान है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो नारी को भी एक समान हक दिया गया था, हम लोगों को लड़ाई ज्यादा नहीं करना पड़ा राइट टू वोट के लिए, सबको समान रूप से मिला। और खासकर एक चीज बताना चाहूंगी, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है इंडिया में उनको इक्वल पे इक्वल वर्क, जो हमें और

0: जगह और कंट्रीज में भी नहीं मिलता। अभी भी आप अगर यूएन रिपोर्ट पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इतना फर्क है एक पुरुष की जो पे स्केल और एक औरत। ये हमारा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। फिर मैं ये कहना चाहूंगी 1970 में जब यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमन का जो घोषणा किया
1: जी।
0: तब 1969 में एक कमेटी की स्थापना करने की कोशिश हुई थी जो वीना मजूमदार उन्होंने हेड करा और उस कमेटी ने एक रिपोर्ट तैयार करी थी टुवर्ड्स इक्वालिटी। उसके लिए जो गाइडलाइंस दिए गए थे वो यही था कि हम नारी को कैसे उनकी जो स्थिति है उसको कैसे सुधार सकते हैं, क्योंकि नारी पीड़ित ही नहीं है पर उनके वजह से इतने सारे लोग भी पीड़ित है, उसमें पुरुष भी माने जाते हैं और अल्पसंख्यक और जो कमजोर वर्ग। तो ये जो ढांचा है जो बिल्कुल एक कहते हैं ना पेट्रियोकल, जो बड़ा ओप्रेसिव एक्सप्लॉयटेटिव, इसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं। जैसे आपने बताया नारी के लिए शिक्षा, नारी के लिए एक आर्थिक सेफ्टी नेट जो बोलते हैं, ताकि वो जो कमा सकती है वो अपने हाथ में रखे डिसाइड कर सकती है। तो इस लेगेसी को एक बहुत अच्छा दिशा नरेंद्र मोदी जी ने दिया है कि उन्होंने एज अ चीफ मिनिस्टर एंड देन एज अ प्राइम मिनिस्टर, ये उनका एक विजन रहा है शुरू से कि हमें जो नया भारत का निर्माण करना है उसमें महिलाओं की इक्वल भागीदारी देना है। उन्होंने जब आई थिंक 2014 या 15 मुझे याद नहीं है, रेड फोर्ट से जब उन्होंने एक आजादी के पर्व में जो प्राइम मिनिस्टर की जो भाषण होती है, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम हर वक्त कहते हैं कि नारी की शिक्षा, नारी की स्थिति में कैसे फर्क लाए, ये तो हम ध्यान देते हैं पर हम अपने बेटों के बारे में सोचते नहीं है, उनकी जो सोच है, उनकी जो परवरिश है, उनको कैसे सिखाया जाए कि अपने घर में जो बहन है, माँ है, बाद में बीवी आएंगी, उनके प्रति कैसे समान रूप से उनको हक, उनकी डिग्निटी, उनकी रिस्पेक्ट, ये जो सोच था ना ये की थी। क्योंकि हम हर वक्त फोकस करते हैं विमेन के ऊपर और मेन जो है आदमी को सोचते हैं कि जैसे वो अपने आप सुधर जाएगा। तभी तो कहते हैं एक नारी को शिक्षा दो पूरा परिवार शिक्षित होती है, वो सही है पर सोच में जो फर्क लाना चाहिए वो बहुत जरूरी है। और मैं ये मानती हूँ मोदी जी ने जब ये बात उठाई और फिर उनके जो जितने भी कार्यक्रम हैं और जितनी भी योजनाएं हैं ये इसी पे जो एक तरह का केंद्र बिंदु कह सकते हैं ना, ये मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है उनके योगदान में।
1: जी, थोड़ा सफर आगे बढ़ाते हैं आदि जी। 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान प्रधानमंत्री ने शुरू किया और तब हरियाणा जैसे राज्यों की स्थिति अच्छी नहीं थी, वहां बेटियों को लेकर एक अलग सोच थी। अगर उस समय के लैंगिक अनुपात की बात करें तो 918 के आसपास पूरे राष्ट्रीय लैंगिक अनुपात था, जो बाद में बढ़कर इस समय 937 पर पहुंच गया है, जो ये बताता है कि बेटियों को लेकर पिछले 25 वर्षों में उनकी दूरदर्शिता से सोच बदली है। बतौर पत्रकार जमीनी स्तर पर क्या बदलाव आप महसूस करती हैं?
2: देखिए, जो सबसे बड़ा बदलाव नजर आता है ना सिर्फ पत्रकार के तौर पर बट एक जनरल आम सिटीजन के तौर पर, वो ये आता है कि जो अप्रोच है महिलाओं को लेकर, कि जैसे पहले था कि एक वेलफेयरिस्ट अप्रोच थी कि महिलाओं को सशक्त किया जाए, सशक्तिकरण का जो प्रकरण है वो हर सरकार के टाइम चला है, सबने कोशिश की है। इस सरकार में जो बदलाव देखने को मिला वो ये था कि एक महिला लेड डेवलपमेंट की तरफ पॉलिटिकल सोच का बदलाव, जैसा कि अभी सुशीला जी ने कहा कि एक पॉलिटिकल लीडर का सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है, समाज को कैसे बदला जा सकता है, वो सिंबोलिज्म से बदला जा सकता है। आप किस तरीके का मैसेज समाज को दे रहे हैं, महिलाओं के प्रति आप क्या सोच रख रहे हैं। गवर्नेंस का पूरा मॉडल जो है वो विमेन वेलफेयर से बदल कर विमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है और वो एक कॉन्टिन्यूम है, वो आप पॉलिसी में भी देख सकते हैं। आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जिक्र किया, वो एक बहुत मेजरेबल आउटकम हमें अब नजर आने लगा है, जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो स्टैटिस्टिक्स अभी आया है और हमने देखा कि जो ओवरऑल सेक्स रेशो है वो पहली बार 1000 से ऊपर भी चला गया, 1020 भी हो गया, 1000 पुरुषों के प्रति 1020 महिलाएं हो गईं। तो इन इंडिकेटर्स में ये जो माइंडसेट अप्रोच बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से बदलने की कोशिश की गई है, समाज को ये मैसेज देने का प्रयास किया गया है कि जो महिलाएं हैं वो ड्राइवर्स हैं इकोनॉमी की, वो ड्राइवर्स हैं ग्रोथ की, वो विकसित भारत की यात्रा में एक म्यूट स्पेक्टेटर्स नहीं हैं, वो इक्वल पार्टिसिपेंट्स हैं। उसी तरफ हर स्कीम अगर आप उठा के देखें सरकार की, महिलाओं के प्रति जो भी स्कीम्स लागू की गई हैं उनका मोटा मोटा पर्पस ये है कि महिला को, मतलब ऐसा नहीं कि हमें उनको डोल देना है, कि हमने ये दे दिया, हमने वो दे दिया कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके, बल्कि उनको डिसीजन मेकिंग

0: टेबल पर इक्वल भागीदारी देने का एक मकसद है। वही रिफ्लेक्ट हो रहा है सेक्स रेशो में, वही रिफ्लेक्ट हो रहा है अगर आप स्कूली स्तर पर देखें, प्राइमरी लेवल पर ड्रॉप आउट रेट काफी कम हो गया है। जो नेशनल लेवल पर अगर आप ड्रॉप आउट रेट देखें इस वक्त शायद 1.9% है, जो काफी एनकरेजिंग है। इट्स नॉट इनफ, वो बिल्कुल जीरो होना चाहिए, लेकिन काफी हद तक सुधार हुआ है। ये जो आपने पॉलिसीज का जिक्र किया, जैसे आपने कहा शाला प्रवेशोत्सव, गुजरात में नरेंद्र मोदी जी ने अपने चीफ मिनिस्टर काल में लागू की थी मेरे ख्याल से 2003 में,
1: बिल्कुल ठीक।
0: और वो अब बढ़कर उसका रिजल्ट ये हुआ है कि एक आम तौर पे पूरा का पूरा समाज ये मानने लगा है, गरीब समाज भी, कि लड़कियों को स्कूल भेजना एक रूटीन है, यू नो एक्सेप्शन नहीं है, नॉर्म है। जो पहले एक्सेप्शन था वो अब नॉर्म है, ये बदलाव है।
2: 2015 से शुरू हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने अपने 11 वर्षों के अब तक के सफर में कई मील के पत्थर स्थापित किए हैं। आइए सुनते हैं इस पर एक रिपोर्ट।
3: किसी भी समाज की प्रगति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहाँ बेटियों को कितने अवसर मिलते हैं। बेटी का जन्म, उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता, ये केवल एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे समाज के विकास से जुड़े सवाल हैं। इसी सोच के साथ 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य था लड़कियों के प्रति समाज की सोच में बदलाव लाना, लिंग आधारित भ्रूण चयन को रोकना और बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना। समय के साथ यह अभियान केवल एक सरकारी कार्यक्रम न रहकर बेटियों के अधिकार और उनके भविष्य को लेकर जागरूकता का एक व्यापक प्रयास बना। इसमें परिवार, स्कूल, स्थानीय समुदाय और अलग अलग सरकारी विभागों की भागीदारी पर जोर दिया गया। अगर आंकड़ों की बात करें तो माध्यमिक स्तर पर लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात 2014-15 के करीब 75% से बढ़कर 2025-26 में 83.4% हो गया। यानी सवाल सिर्फ यह नहीं है कि बेटी का जन्म हो रहा है या नहीं, सवाल यह भी है कि क्या उसे पढ़ने, आगे बढ़ने और अपने फैसले खुद लेने का अवसर मिल रहा है। अब बात गुजरात की। गुजरात में बेटियों की शिक्षा और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए गए हैं। सुकन्या समृद्धि योजना इसका एक उदाहरण है। जनवरी 2026 तक गुजरात डाक परिमंडल में बालिकाओं के नाम 16,35,000 से ज्यादा सुकन्या समृद्धि खाते खोले जा चुके थे। इन खातों में 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा थी। उत्तर गुजरात में भी इस दिशा में विशेष अभियान चलाया गया। 2024 में क्षेत्र के 487 गांवों को संपूर्ण सुकन्या समृद्धि ग्राम घोषित किया गया। इन गांवों में पात्र बालिकाओं के सुकन्या समृद्धि खाते खोलने पर विशेष ध्यान दिया गया। लेकिन किसी बेटी के भविष्य को सुरक्षित करने का मतलब सिर्फ उसके नाम पर बचत खाता खोलना नहीं है। उसे स्कूल तक पहुंचाना, पढ़ाई जारी रखने के लिए परिवार को प्रोत्साहित करना, बाल विवाह जैसी चुनौतियों से बचाना और आगे चलकर कौशल तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना भी उतना ही जरूरी है। गुजरात में कन्या केलवड़ी और शाला प्रवेशोत्सव जैसे अभियानों ने भी बालिकाओं को स्कूल से जोड़ने और शिक्षा के महत्व को घर घर तक पहुंचाने पर जोर दिया है। इन पहलों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की व्यापक सोच के साथ देखा जा सकता है, जहां बेटी के जन्म से लेकर उसकी शिक्षा और आत्मनिर्भरता तक हर चरण को महत्व दिया जाता है। क्योंकि जब एक बेटी पढ़ती है तो उसका असर सिर्फ उसकी जिंदगी तक सीमित नहीं रहता। शिक्षा उसे अपने अधिकार समझने, बेहतर फैसले लेने और आर्थिक रूप से मजबूत बनने का रास्ता देती है। इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश सिर्फ इतना नहीं है कि बेटी को बचाना है और पढ़ाना है, संदेश यह भी है कि बेटी को अपने सपने देखने और उन्हें पूरा करने का समान अवसर देना है। और यही सोच आगे बढ़कर महिला नेतृत्व वाले विकास की मजबूत नींव तैयार करती है।
1: सुशीला जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और शिक्षा से हम आगे बढ़ें तो एक योजना जिसने बहुत ज्यादा ध्यान खींचा वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। आप सभी ने घरों में खाने बनाए और हमने अपने बचपन में देखा कि हमारी माँ लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाया करती थी, धुआं बहुत निकलता था, आंखों से आंसू निकलने लगते थे। इस सोच को और इस समस्या को दूर करने के लिए उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई और आज तकरीबन भारत में 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को इस योजना से रसोई गैस उपलब्ध कराई गई है, जिससे उनका सेहत बेहतर हुआ है, सामाजिक सुरक्षा के स्तर पर बेहतरी देखने को मिली है और जिसे कहते हैं कि महिलाओं का समग्र विकास हुआ है। कितना बड़ा गेम चेंजर मानती हैं आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को?
4: देखिए, जो आपने कहा ना, हम सब ने देखा है अपनी माँ को, मेरे तो अपनी माँ को नहीं देखा, क्यों कहते हैं ना इंडिया वर्सेस भारत
1: जी।
4: शुरू से था, जो रूरल अर्बन डिवाइड, रूरल एरियाज में ये सब जो आप डिस्क्राइब कर रहे हो वो जरूर था, अभी भी शायद होगा, पर परसेंटेज कम है, क्योंकि जो हमारा हिंदुस्तान है एक तो बहुत विशाल देश है, समस्याएं बहुत थी, 300 साल का जो राज था अंग्रेजों सरकार का, जो कलोनियलिज्म, आप जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि कितना कुछ लूटा गया इस देश से, तो उस सबको जो बदलने के लिए बहुत टाइम भी लगता है और प्रयत्न भी होते हैं, और हिंदुस्तान में ना 10 सेंचुरी जो है 100,000 साल एक साथ जीता है, हमें ये भी मान के चलना पड़ता है। तो शहरी इलाकों में खासकर गैस चूल्हा ही देखा है हमने, मेरे परिवार, मेरे मित्रों के परिवार, हम लोगों ने, हाँ टाइम लाइक जब युद्ध हुआ, बांग्लादेश युद्ध हुआ, तब हम सब ने जैसे आप कह रहे हो चूल्हा में खाना बना के देखा हुआ है, बट रूरल इंडिया में ये नहीं था। जो फर्क जो आया है उसके वजह से वो डेफिनेटली एक गेम चेंजर है, और इंक्रीजिंग एक और जो कॉन्शियसनेस देश में ही नहीं पूरा विश्व में, एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस, कि ये जो कार्बन एमिशन है, ये चूल्हा जलाने की वजह से जो कार्बन एमिशन है उसका भी एक टैकलिंग दैट प्रॉब्लम। सो यस, जो खाना बनाते हैं घरों में उसके वजह से उनका जो हेल्थ है, सुविधा है, और देखिए घर का खाना हर वक्त कहा जाता है इट्स अ वेरी हेल्थी वन, सो द एम्फेसिस कि घर में खाना बना के टाइम जो है उसको एक अच्छी तरह यूज करिए, टाइम जो है 24 घंटा हर एक के पास होता है, उस टाइम का हम कैसे उपयोग करें, अगर चूल्हा में ही सारा टाइम निकल जाता है, कितनी सारी कहानियां पहले पढ़ते थे, एक औरत का जो टाइम है सिर्फ चूल्हा चौके में गुजरता है, अब तो वो टाइम भी बचत होती है, और उस टाइम की जो सेविंग की वजह से लोग बहुत कुछ जो सीख सकते हैं। बहुत बार मैं देखती हूँ कि रूरल इंडिया का जो एक साइड है जो सोशल मीडिया में नजर आती है कि इनके पास टाइम की वजह से ये कितने अपने जो हुनर है, अपनी जो कला है, वो अपना सोशल मीडिया में रील्स बना के फैलाती हैं। तो ये जो टाइम की बचत से ये सब जो कर पाते हैं ये भी तो एक बहुत गेम चेंजर है कि खाना भी बन जाता है सुविधा के अनुसार, कार्बन एमिशन इन अ वे लेस, एंड एट द सेम टाइम इतना टाइम मिलता है फॉर देम टू लिव अ गुड लाइफ, बिकॉज आधुनिक समाज का जो एक बहुत खास बात है, हमारे पास जो है सुविधा है जो जिससे हम एक अच्छा लाइफ गुजार सकते हैं, पर उस सुविधा को सबके लिए देना ये मोर चैलेंजिंग है। आई थिंक ये जो प्रयास रहा है इस सरकार का कि इतने सारे लोगों को जितने मैक्सिमम लोगों को दे सकते हैं, ये भी तो एक बहुत बड़ा, आई वुड से इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट। इट्स नॉट कन्फाइंड टू स्मॉल सेगमेंट्स, द प्रिविलेज्ड वन, इट इज फॉर एज लार्ज अ सेगमेंट, तो इसमें आप नॉट वेरी वेल ऑफ उनको भी जोड़ देते हैं, ये इन अ वे इट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट।
1: जी हाँ, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं दीदी जी, एक और योजना जिसने महिलाओं को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाई, जब भी हम बात स्टार्टअप की करते हैं, जब भी बात हम कहते हैं कि आत्मनिर्भरता की, पुरुषों का जिक्र होता है, लेकिन लखपति दीदी जैसी जो योजनाएं हैं उन्होंने ग्रास रूट लेवल पर महिलाओं को प्रेरित किया कि आप भी हर महीने 1,00,000 रुपए तक कमा सकती हैं, और इनका आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और प्रधानमंत्री ने कहा भी कि महिलाओं को किसी दूसरे पर निर्भर रहने की अब इस विकसित भारत की यात्रा में जरूरत नहीं है। लखपति दीदी को कैसे देखती हैं?
0: देखिए, लखपति दीदी प्रोग्राम जो है वो एक बहुत सारे बाकी प्रोग्राम्स के नींव पर रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर देखेंगे जो जन धन अकाउंट्स खोले गए पहले, हम उसको जैम ट्रिनिटी के नाम से जानते हैं, जन धन अकाउंट्स, आधार आइडेंटिफिकेशन और मोबाइल एक्सेस, ये तीन चीजें जब महिलाओं के हाथ में दी गई, उसका पर्पस ये था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का, वो होता है कि आपको बैंकिंग और क्रेडिट का एक्सेस मिलता है कि नहीं। सबसे पहले हमने देखा कि जैम ट्रिनिटी के माध्यम से बहुत सारे अकाउंट्स खोले गए। हम सब जानते हैं कि आज की डेट में करीब 60 करोड़ अकाउंट्स खोले जा चुके हैं, और जो बैंकिंग की सुविधा है वो बहुत तेजी से बढ़ी है, और इन 60 करोड़ में से, अगर आंकड़े मैं सही कह रही हूँ, मेरी याददाश्त यही बताती है कि करीब 50% से ज्यादा महिलाओं के नाम पे हैं। आपने सबसे पहले उनके अकाउंट्स खोल दिए, उसके बाद आपने मुद्रा योजना लागू की, मुद्रा योजना के माध्यम से आपने इजी क्रेडिट महिलाओं को देना शुरू किया, उनके अकाउंट्स ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं, उसमें पैसे आने लगे, महिलाओं को क्रेडिट मिलने लगा छोटे छोटे कामों के लिए, तो महिलाएं अपनी अपनी जगह कोई रेडी लगा सकती है, कोई अपनी दुकान चला सकती है, कोई खाना बना सकती है, टिफिन की सर्विस शुरू कर सकती है, छोटा छोटा क्रेडिट उनके हाथ में आने लगा, सशक्तिकरण का ये जो सिलसिला है ये वहां से शुरू हुआ। तो नेक्स्ट स्टेज क्या है? नेक्स्ट स्टेज ये है कि जब महिलाएं एक लेवल पर आकर सेटल हो गईं, तो आप उनको और फिलिप कैसे देंगे? उस फिलिप के लिए अब ये लखपति दीदी योजना का इम्पोर्टेंस है। ये इसलिए

0: ज्यादा महत्वपूर्ण योजना है क्योंकि ये संगठित तरीके से महिलाओं को सशक्त करने का एक माध्यम है कि एक साल में हर महिला 1,00,000 रुपए कमाने का सामर्थ्य रखे। उसके लिए क्या किया गया है, बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स इवॉल्व किए गए हैं। पहले तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का एक पूरा नेशनल नेटवर्क क्रिएट हुआ है, एक पूरा मूवमेंट चल रहा है। मुझे लगता है कि जिस तेजी से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बढ़ रहे हैं हमारे देश में, ऑर्गेनाइज तरीके से महिलाएं एक दूसरे की मदद कर रही हैं, पैसा कमा रही हैं, आज की डेट में 95,00,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भारत में हैं और इन 95,00,000 ग्रुप्स में करीब 10 करोड़ महिलाएं मेंबर्स हैं। तो आप संगठित तरीके से SHGs के माध्यम से जुड़ चुके हैं। इन SHGs को अब लखपति दीदी प्रोग्राम में क्या इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप नमो द्रोण दीदी प्रोग्राम ले लीजिए। वो प्रोग्राम क्या है, उस प्रोग्राम का जो फाउंडेशन है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप ही है
1: जी।
0: कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 2023 से 2026 तक की ये स्कीम है जो बढ़ाई जाएगी, आई एम श्योर 1,200 करोड़ इसका आउटले रखा गया। 15,000 SHGs को आप ड्रोन सप्लाई करेंगे। ड्रोन किस लिए सप्लाई करेंगे कि आप उनको ट्रेनिंग देंगे SHGs की महिलाओं को, कुछ चोजन महिलाओं को जिनका उस चीज में इंटरेस्ट होगा। हर कोई महिला का इंटरेस्ट भी नहीं होगा, तो ड्रोन के माध्यम से आप उनको ये सिखाएंगे कि फार्मिंग की प्रैक्टिसेस, आप एग्रीकल्चरल फार्मलैंड्स पर पेस्टिसाइड्स कैसे स्प्रे कर सकते हैं, आप सीड्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ड्रोन के माध्यम से। तो ये एक माध्यम बन जाता है सशक्तिकरण का और इससे पैसा बनते बनते फिर वो लखपति दीदी के प्रोग्राम में ऐड होता रहता है। जैसे पहले लखपति दीदी प्रोग्राम के तहत मुझे लगता है 3 करोड़ महिलाओं को रीच करने का टारगेट था, जो अब बढ़ा के शायद 6 करोड़ या 5 करोड़ कर दिया गया है। बहुत एम्बिशियस टारगेट है पर पुराने प्रोग्राम्स ने दिखाया है कि ये अचीवेबल है
1: जी। हाँ अदिति जी, एक और योजना की बड़ी चर्चा रही वो नीतिगत सुधार देखने को हमें मिला, मुस्लिम महिला अधिनियम के तहत 3 तलाक का जो सुधार हुआ उसमें एक बहुत ही सामाजिक परिवर्तन देखने को मिला। आंकड़े बताते हैं कि 80% तक तलाक की दर कम हो गई। एक सामाजिक परिवर्तन को लेकर जो ये निर्णय लिया गया और प्रधानमंत्री की जो इसके पीछे की सोच थी, जमीनी स्तर पर कितना बदलाव आपको नजर आया?
0: देखिए, मुस्लिम महिलाओं की जो आम तौर की जिंदगी में इस लॉ का बहुत बड़ा महत्व है और ये बहुत ज्यादा अगर ओपनली वो बोल भी नहीं पाती होंगी तो भी उनकी जिंदगी में जो इसका असर है वो आई एम श्योर हर लेवल पर नजर आता होगा। क्योंकि इस लॉ से ये हुआ है कि एक तो डिग्निटी मैरिज में बरकरार हुई है, एक एश्योरेंस मिला है मुस्लिम महिला को कि उसके साथ जिसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन, जो हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन होता था कुछ प्रैक्टिसेस की वजह से, और ऐसा भी नहीं है कि इस्लाम में ये प्रैक्टिसेस मान्य हैं और बहुत सारी डिस्टॉर्शंस रिलीजन के माध्यम से आ जाती हैं आमतौर के डिबेट्स में, जिसकी वजह से ये एक आम चर्चा में हो गया था कि ये चलता है। उस चलता है एटीट्यूड को तोड़ने के लिए जो ये 3 तलाक के कानून को लाया गया, क्रिमिनलाइज किया गया इस प्रैक्टिस को। हम सबको पता है कि शाह बानो का केस कितना फेमस हुआ था और फिर उस वक्त की राजीव गांधी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की एलमनी का जो डिसीजन, इतने जंदोजहद के बाद शाह बानो ने एक एलमनी का डिसीजन जीता था सुप्रीम कोर्ट से और फिर उस वक्त की सरकार ने उसको ओवरटर्न कर दिया था लॉ लाकर। तो वो एक हिस्टोरिकल इनजस्टिस, बहुत लोगों ने ऐसा माना कि 3 तलाक के कानून से करेक्ट किया गया क्योंकि आपने फाइनली ये बोला कि आप इस तरीके का बिहेवियर मुस्लिम महिला तो क्या किसी भी महिला के साथ नहीं होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि कुछ रिलीजन स्पेसिफिक इशू है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। इनफैक्ट जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिबेट हमारे देश में चल रही है, अगर एक कॉमन पर्सनल लॉ पूरी कंट्री के लिए होगा तो ये जो कुरीतियां हैं किसी भी समाज में हो वो उनसे लड़ने की ताकत महिलाओं को मिलेगी। तो जो सबसे बड़ा जस्टिफिकेशन यूनिफॉर्म सिविल कोड का है, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भी ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के वक्त कहा था और ये उम्मीद की थी कि आने वाली सरकारें इनैक्ट करेंगी ऐसा एक लॉ, तो इसी उम्मीद से की थी कि हम आने वाली सरकारों पे छोड़ते हैं कि उस वक्त की सामाजिक स्थिति क्या होगी, उस वक्त की राजनीतिक इम्पेरेटिव्स क्या होंगे, उन सबको ध्यान में रखते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड की पहल कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने की थी और कहा था कि आने वाली सरकारें इस चीज को देखेंगी। तो ये जो मुस्लिम महिला की आपने बात की, ये एक तरीके से पर्सनल लॉ की ही रिफॉर्म की तरफ कवायद है कि आप किसी भी महिला को, वो किसी भी रिलीजन में हो, इस तरीके से तो ट्रीट नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो फिर गवर्नमेंट को अपनी साख दिखानी होगी। गवर्नमेंट इसीलिए है कि उसमें एक पावर है चीजों को बदलने की, और ये एक बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन है जिससे मुस्लिम महिलाओं को सशक्त करने का एक मौका मिला है।
1: सुशीला जी, चर्चा को अगर थोड़ी आगे बढ़ाएं तो घर की

0: चार दीवारी में तो महिलाएं काफी समय से सक्रिय रहीं, लेकिन नेतृत्व के मेज तक उनको लाना अपने आप में एक बड़ी बात थी, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में लाना। हमने देखा कि जब भारत में G20 की अध्यक्षता की भारत में और नई दिल्ली में जो सम्मेलन हुआ, वहां पर महिला नेतृत्व को प्रमुखता दी गई। साथ ही साथ जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो हमने देखा कि महिलाओं ने किस तरह फाइटर जेट के माध्यम से दुश्मनों को नेस्त नाबूद करने में अहम भूमिका निभाई। युद्ध के मैदान से देखें या अंतरिक्ष तक देखें या फिर खेल के मैदान में देखें, महिलाएं न सिर्फ आगे आ रही हैं बल्कि निर्णायक स्थिति में भी पहुंच रही हैं। ये परिवर्तन जो पिछले 25 वर्षों में हुए हैं और इसके पीछे नरेंद्र मोदी की एक अहम सोच रही है, कैसे देखती हैं आप?
1: मैं इसको अगर एक रेफरेंस दूंगी, 1968 में गुणल मुरल की एक किताब आई थी, एशियन ड्रामा। उसमें मुरल साहब लिखते हैं, वेरी फेमस इकोनॉमिस्ट, कहते हैं कि पूरा साउथ एशिया का एक सर्वे था, हिंदुस्तान के बारे में कहते हैं कि इट इज अ कंट्री वेयर इट हैज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ वुमेन इन डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। mid-60s बीच में कहीं गायब हो गई, तो शुरुआत जो था कहीं जो गायब हो गई थी उसको पिकअप किया गया, और कि वुमेन शुड बी फाउंड इन इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग बॉडीज इन प्लेसेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों पीछे रह गया उसकी एनालिसिस करिए और उसको रेक्टिफाई कैसे करना चाहिए। और खासकर हम जब नारीवाद पढ़ाते हैं, हर वक्त कहते हैं कि नारीवाद जो है ना एक मिडिल क्लास मूवमेंट रह गया, ये सिमोन द बोअर का क्रिटिसिज्म है, सिर्फ मध्यम वर्ग के जो वीमेन है उन्हीं के बारे में चर्चा है, उन्हीं की कंसर्न्स है, इसीलिए आम महिला जो है उसके साथ जुड़ती नहीं है, क्योंकि वीमेन एज अ कैटेगरी वो जो है ना ऐसा है ही नहीं। उसमें जेंडर आप देखोगे इम्पोर्टेंट है, पर उसके साथ आपको क्लास, कास्ट, रिलीजन, रीजन ये सब भी देख के चलना पड़ता है। मेरा जो कहने का मतलब है कि आपकी जो प्रोग्राम्स, उसकी जो विजन ऐसी होनी चाहिए कि आप जितना ये प्रोग्राम्स एक शिक्षित, हाईली वेल प्लेस्ड वुमेन अपील करती हैं, उसी तरह एक ऑर्डिनरी वुमेन को भी, जब तक आप उस तरह का एक ब्रॉड स्वीप नहीं रखोगे, कैच ऑल जो बोलते हैं, तब तक जो है ना सारे वुमेन जुड़ेंगे नहीं। जो मध्यम वर्ग की वुमेन के जो कंसर्न, स्त्री के जो कंसर्न है और आपके घर में जो डोमेस्टिक हेल्प है उसके जो कंसर्न है, वो बहुत हटके होते हैं। कहने को दोनों महिला हैं, यही मैं कहना चाह रही हूँ, पर उनके जो कंसर्न है बहुत, उनकी जो फिक्र होती है वो बहुत अलग होती है। आपका जो लीडरशिप क्वालिटी ये है कि आप इन दोनों को ब्रिज कैसे करें, अगेन ये जो एम्फोसिस है ऑर्डिनरी लोगों को कैसे आप आगे बढ़ाएं, उनकी जो प्रॉब्लम्स, उनकी जो समस्याएं, उनको आप कैसे टैकल करें, और इससे जो है बाकी लोग भी जो फायदा उठा सकते हैं, ये जो बॉटम अप टू टॉप जा रहा है वो ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो आप जो कह रहे हो ना कि इतने सारे महिलाएं देखे, और ये ऑर्डिनरी महिलाएं, ये दे आर नॉट फ्रॉम वेरी यू नो इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज, दीज आर ऑर्डिनरी पीपल हुम वी कैन सी इन द स्ट्रीट्स, right? I mean, they've come up from humble backgrounds but made it to the top because they've got the opportunities. This is what is the achievement of a good society, a equal society.
0: Aditi ji, to mahila netritva ki jo baat Narendra Modi ji kehte hain ki mahila

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

FM 102.5 MHz और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। लीजिए, प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

कलंक फिल्म का ये सुमधुर गीत आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल की आवाज़ में। गीतकार थे अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत दिया था प्रीतम ने। आइए सुनते हैं अगला गीत।

0: मर्डर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे अमीर जमाल की आवाज़ में। गीतकार थे सईद कादरी और संगीत दिया था अनु मलिक ने। FM 102.5 MHz और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। अब समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।
1: थोड़ी ही देर में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। निर्वाचन आयोग ने फिर स्पष्ट किया, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश सर्वसम्मति से जारी किया गया। आयोग ने कहा, SIR के दौरान जिन मतदाताओं को नोटिस मिला, BLO उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने केरलम में सहकारिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, बच्चों में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को बाल संरक्षण के मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण, तजिंदर पाल सिंह तूर ने रजत पदक जीता। भारत के 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित 30 पदक। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनके घरों पर बूथ स्तर के अधिकारी BLO जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है।
3: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर SIR के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: भारतीय जनता पार्टी ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बारे में निर्वाचन आयोग पर विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस के आरोपों की कड़ी निंदा की है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया।
4: इसी SIR को केरला की कांग्रेस ने सही माना कि उनके कारण हमको जीत मिली है, क्योंकि वामपंथियों ने जो इलीगली नाम घुसवाए थे वो निकले, फेक वोटर्स, और हम जीते। चुनाव आयोग ने आज दूध का दूध और पानी का पानी विषय स्पष्ट कर दिया है।
2: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत शी मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि शी मार्ट कॉन्सेप्ट महिला उद्यमियों को बाजार से जुड़ने के लिए बेहतरीन मंच देगा।
5: NCCF द्वारा 2500 से अधिक रिटेल आउटलेट्स के साथ साथ केरलम, तमिलनाडु और कर्नाटक में 300 से अधिक सी मार्ट स्टोर भारत ब्रांड उत्पाद और लोकल उत्पाद इसके लिए उपलब्ध हो जाएंगे, जिसके कारण प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डायरेक्ट रिटेल मार्केट इस सभी का फायदा किसानों को और इसके साथ साथ महिला उद्यमियों को मिलेगा।
2: श्री अमित शाह ने सहकारी क्षेत्र के उत्पादों वाले मंडप का भी दौरा किया। गृह मंत्री अमित शाह केरलम के कोल्लम में माता अमृता नंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि माता अमृता नंदमयी ने सेवा को मिशन में बदलकर मिसाल कायम की है।
5: 10 लाख से ज्यादा वृक्षारोपण, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका की भावना और इसके साथ साथ 101 गांवों को पूर्णतया से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अम्मा ने बहुत बड़ा काम किया है। संयुक्त राष्ट्र के मिलेनियम विश्व शांति सम्मेलन और विश्व धर्म संसद जैसे कई मंचों में हिंदुत्व का, सेवा का संदेश अम्मा ने पहुंचाया।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल केरलम के एक दिन के दौरे पर जाएंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृता नंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष में हम बात कर रहे हैं कि परीक्षा पे चर्चा पहल के जरिए इस सपने को कैसे वास्तविकता में बदला गया है।
3: परीक्षा पे चर्चा एक वार्षिक संवाद कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत करते हैं और परीक्षा के तनाव को कम करने के साथ साथ पढ़ाई को आनंददायक बनाने के तरीकों पर चर्चा करते हैं। 2018 में एग्जाम वॉरियर्स अभियान के तहत शुरू की गई यह पहल युवाओं को तनाव के बजाय आत्मविश्वास के साथ परीक्षा का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। इस पहल ने परीक्षा को डर या दबाव के बजाय सीखने पर जोर दिया है। परीक्षा पे चर्चा के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें खुद को मजबूत बनाने और हर तरह के दबाव का सामना करने में सक्षम बनने की सलाह दी।
6: किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनाना चाहिए। रोते बैठना नहीं चाहिए, मान के चलना चाहिए कि जीवन में आता रहता है, दबाव बनता रहता है, तो खुद को तैयार करना पड़ता है। दबाव को हमने अपने तरीके से मन से एक बार इस स्थिति से जीतना है, एक तो संकल्प करना।
3: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए मध्य प्रदेश की छात्रा कृतिका सेन ने बताया कि परीक्षा पे चर्चा से उन्हें प्रेरणा मिली और परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद मिली।
7: पीएम नरेंद्र मोदी जी बहुत सरल स्वभाव के हैं। उन्होंने हमें बताया कि एग्जाम्स की तैयारी से लेकर फाइनल एग्जाम तक हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। हमें डरना नहीं चाहिए, हमें एग्जाम्स के एकदम वॉरियर्स की तरह लड़ना चाहिए। फिर वहां से आके हमने बहुत अच्छे से एग्जाम्स दिए और हमने बहुत अच्छा स्कोर किया।
3: इस कार्यक्रम में सिर्फ अच्छे अंक लाने पर नहीं बल्कि छात्रों के समग्र विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। यह परीक्षा से जुड़े तनाव को कम करने के साथ साथ छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान केंद्रित करता है। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
8: आपको हर खबर से रखें।

0: अपडेट एक्स पर @AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि न्याय प्रणाली को नागरिकों से मदद मांगने की प्रतीक्षा के बजाय खुद ही जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। मुख्य न्यायाधीश आज पटना में बचपन की पुनर्स्थापना, नशे की रोकथाम और देखभाल तथा संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के पुनः एकीकरण विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बच्चों में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को बाल संरक्षण के मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए।
2: जब कोई बच्चा नशीले पदार्थ के संपर्क में आता है तो उसकी शिक्षा बाधित होती है, परिवार के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं, उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वो शोषण, हिंसा, मानव तस्करी और अन्य प्रकार के कई दुर्व्यवहारों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। इसलिए बच्चों में नशीले पदार्थों का सेवन केवल जन स्वास्थ्य की चिंता के रूप में नहीं बल्कि समान रूप से बाल संरक्षण से जुड़ी चिंता के रूप में भी समझा जाना चाहिए।
1: विदेश मंत्री एस जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क करने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 10% से अधिक की आर्थिक वृद्धि दर हासिल कर सकता है। उन्होंने अधिक से अधिक प्रौद्योगिकी और नवाचार को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। आईआईटी मद्रास के कार्यक्रम में सुश्री सीतारामन ने कहा कि उच्च विकास दर आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की दिशा में प्रगति को गति देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण चार धाम यात्रा को कल तक के लिए रोक दिया गया है। तीर्थयात्रियों को सलाह दी गई है कि वे मौसम पर नजर रखें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। इस बीच राज्य में कई स्थानों पर कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। उधर ओडिशा के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के 10 जिलों में 73,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं।
3: उड़ीसा के 10 जिलों में लगातार बारिश से 80 ब्लॉक, 325 ग्राम पंचायतों और 1071 गांव के 73,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। लगभग 4,480 हेक्टेयर खेती की जमीन भी प्रभावित हुई है। उत्तरी ओडिशा में जड़का और बैतरणी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जबकि सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों पर खतरा मंडरा रहा है। पानी का बहाव बढ़ने के कारण हीराकुद बांध के 20 गेटों से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भी आज दोपहर से बारिश जारी है। मौसम विभाग ने 29 सितंबर तक राज्य में बारिश की संभावना व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
4: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज अचानक बर्फबारी होने से ठंड बढ़ गई है। प्रदेश के अन्य उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भी हल्के हिमपात की खबर है। राजधानी शिमला में दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही, जिससे मौसम ठंडा हो गया है। वहीं निचले इलाकों में बारिश के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने कल 27 सितंबर को प्रदेश के 8 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सिरमौर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला,

0: और किन्नौर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: इस बीच मौसम विभाग ने समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका के कारण 28 सितंबर तक केरलम, माहे, लक्षद्वीप और दक्षिणी तमिलनाडु के तटीय इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। केरलम तट पर 1 से 1.5 मीटर ऊंची लहरें उठने की आशंका है। पर्यटन सहित समुद्र तट पर सभी प्रकार की गतिविधियों से पूरी तरह बचने की सलाह दी गई है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
2: जापान एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने 2 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स में पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में तजिंदर पाल सिंह तूर और पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में सावन बरवाल ने रजत पदक हासिल किया। प्राची चौधरी ने महिला 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। निशानेबाजी में तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। स्कॉश में जोशना चिनप्पा और वेलवन सेंथिल कुमार की मिक्स डबल्स जोड़ी ने कांस्य पदक देश के नाम किया। वहीं अभय सिंह पुरुष सिंगल्स और अनाहत सिंह महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य समेत 30 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने फिर स्पष्ट किया, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश सर्वसम्मति से जारी किया गया। आयोग ने कहा, SIR के दौरान जिन मतदाताओं को नोटिस मिला, BLO उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने केरल में सहकारिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का उद्घाटन किया। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। भारत के 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित 30 पदक। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Election Commission reiterates that order for SIR issued for all states and UTs with its unanimous approval. Says booth level officers will visit homes of electors issued notice during SIR to collect required documents. Union Minister Amit Shah inaugurates several NCCF initiatives in Kerala to boost women's empowerment through cooperatives. Chief Justice of India Suryakant says drug abuse among children must be seen as child protection issue. External Affairs Minister S. Jaishankar to address United Nations General Assembly in New York tonight. And in Asian Games, Indian men's and women's kabaddi teams clinch gold medals in Japan. Tajinder Pal Singh Toor wins silver in men's shot put. India's medal tally reaches 30 with 4 gold, 12 silver and 14 bronze. The Election Commission has reiterated that the decision of the Special Intensive Revision, SIR, of electoral rolls issued for all the states and UTs was taken unanimously. Addressing a press conference in New Delhi, Director General Media Ashish Goyal said, a meeting of the Commission was held today where Chief Election Commissioner Ganesh Kumar and Election Commissioners Dr. Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi were present. He said the order for the SIR issued on the 24th of June last year for all the states and UTs, starting with Bihar, was issued with the unanimous approval of the Commission.
4: A meeting of the Election Commission of India was held today. The Chief Election Commissioner, Shri Gyanesh Kumar, and Election Commissioners, Dr. Sukhbir Singh Sandhu and Dr. Vivek Joshi, were present in today's Commission meeting. The Commission unanimously took a number of decisions in today's meeting, which are being shared through today's ECI press note.
3: The Election Commission today said booth-level officers, BLOs, will visit the homes of individuals who have been issued notices during the ongoing special intensive revision to collect the required documents. The BLOs will subsequently upload the documents on the ECI Net platform. The Commission clarified that such persons will not be called for hearing by Electoral Registration Officer. It said that hearings will be conducted only in exceptional circumstances.

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। इंतखाबी कमीशन ने एक बार फिर कहा है कि तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के लिए एसआईआर का हुक्म उसकी इत्तेफाक राय से तय पाई मंजूरी के बाद जारी किया गया। उसने कहा कि बूथ लेवल अफिसर एसआईआर के दौरान उन घरों का दौरा करेंगे जिन वोट दहिंदगान को नोटिस जारी किए गए हैं ताकि दरकार दस्तावेजात जमा कर सकें। मरकजी वजीर अमित शाह ने केरलम में एनसीसीएफ की कई स्कीमों का इफ्तिताह किया ताकि इमदाद बाहमी के इदारों में खवातीन की शराकत दारी को फरोग दिया जा सके। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत का कहना है कि बच्चों के माबैन मनशियात के इस्तेमाल को बच्चों की हिफाजत से मुतालिक मामले के तौर पर देखा जाना चाहिए। वजीर खारजा एस जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहदा जनरल असेंबली से खिताब करेंगे और एशियाई खेलों में भारत की खवातीन और मर्दों की कबड्डी टीमों ने जापान में सोने के तमगे जीते हैं। तेजेंद्र पाल सिंह तूर ने मर्दों की शॉट पुट में चांदी का तमगा जीता। तमगों की फहरिस्त में भारत सोने के 4, चांदी के 12 और कांसे के 14 तमगों के साथ 30 तमगों तक पहुंच गया है। और अब खबरें तफसील से। इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि बूथ लेवल अफिसर बीएलओस इंतखाबी फहरिस्तों की खसूसी नजरसानी की मुहिम एसआईआर के दौरान उन घरों का दौरा करेंगे जिन अफराद को नोटिस जारी किए गए हैं ताकि दरकार दस्तावेजात जमा कर सकें। इसके बाद बीएलओज उन दस्तावेजात को ईसीआई नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। नई दिल्ली में इंतखाबी कमीशन की मुनाकिदा एक मीटिंग के दौरान यह फैसला किया गया। कमीशन ने वजाहत की कि इस तरह के अफराद को इलेक्ट्रोल रजिस्ट्रेशन अफिसर की जानिब से समात के लिए तलब नहीं किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि समात सिर्फ गैर मामूली हालात की सूरत में ही की जाएगी और वो भी तरजीहन ऑनलाइन होगी। इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के लिए एसआईआर का हुक्म उसकी इत्तेफाक राय से तय पाई मंजूरी के बाद जारी किया गया। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: बिहार और मगरबी बंगाल समेत 20 रियासतों मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में वोटर फहरिस्तों की खसूसी तफसीली नज़र सानी का काम मुकम्मल हो चुका है। इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि एसआईआर के दौरान अगर किसी शख्स का नाम शामिल नहीं हो पाता और वो अपना नाम शामिल कराना चाहता है तो मुतालिका इंतखाबी रजिस्ट्रेशन अफसर को दरख्वास्त दे सकता है। चीफ इंतखाबी अफसर, ज़िला इंतखाबी अफसर, इंतखाबी रजिस्ट्रेशन अफसर इन वोटरों के इंदराज के लिए खसूसी मुहिम का आगाज करेंगे। दिल्ली के चीफ इंतखाबी अफसर की दरख्वास्त के पेश नज़र दावे और एतराज़ात दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 अक्टूबर कर दी गई है। नोटिसों, दावों और एतराज़ात को निपटाने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दिल्ली से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मोहम्मद आजम खान।
0: नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डायरेक्टर जनरल बराए मीडिया आशीष गोयल ने कहा कि आज कमीशन की एक मीटिंग हुई जिसमें आला इंतखाबी कमिश्नर और इंतखाबी कमिश्नर डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष 24 जून को तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के लिए जारी किया गया एसआईआर का हुक्म कमीशन की इत्तेफाक राय पर मबनी मंजूरी के साथ जारी किया गया था जिसका आगाज बिहार से हुआ। कमीशन ने यह वजाहत भी की कि काबीना सेक्रेटरी को भेजा गया खत इंतखाबी कमीशन के किसी पॉलिसी

0: मैटर या उसके आईटी डिवीजन से मुतालिक नहीं था, बल्कि यह खत इंतखाबी कमीशन में डिपुटेशन पर आए एक ऑफिसर के कामकाज से मुतालिक था। बीजेपी ने अपोजिशन पार्टियों बिलखसूस कांग्रेस की जानिब से एसआईआर के सिलसिले में इंतखाबी कमीशन पर आयद किए गए इल्जामात की मजम्मत की है और इसे इंतहाई अफसोसनाक करार दिया है। नई दिल्ली में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इंतखाबी कमीशन प्रेस के लिए एक नोटिस जारी कर चुका है, जिसमें उसने कहा है कि इंतखाबी फेहरिस्तों की खसूसी नजरसानी, एसआईआर से मुतालिक फैसले आला इंतखाबी कमिश्नर और दोनों इंतखाबी कमिश्नरों की रजामंदी से किए गए हैं। जनाब प्रसाद ने कहा कि केरलम कांग्रेस ने एतराफ किया है कि उसकी जीत की एक वजह एसआईआर था, क्योंकि इस अमल के सबब उन जाली वोटरों को हटा दिया गया जो गैर कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड थे।
1: इसी एसआईआर को केरला की कांग्रेस ने सही माना कि उनके कारण हमको जीत मिली है, क्योंकि वामपंथियों में जो इलीगली नाम घुसवाए थे वो निकले फेक वोटर और हम जीते। चुनाव आयोग ने आज दूध का दूध और पानी का पानी विषय स्पष्ट कर दिया है।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 138वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क, एआईआर न्यूज़ की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी नशर होगा। इसे एआईआर न्यूज़, डीडी न्यूज़, वज़ीर आज़म के दफ्तर और इत्तलाआत और नशरियात की वजारत की यूट्यूब चैनलों पर बराह रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में भी नशर किया जाएगा। वज़ीर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वज़ीर अमित शाह ने आज केरलम के कोल्लम के नज़दीक कुंदरा में सारिफीन से मुतअल्लिक भारतीय कौमी इमदाद बाहमी फेडरेशन NCCF के तहत मुख्तलिफ तरक्याती इकदामात का आगाज किया। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि ब्लू इकोनॉमी के सिलसिले में केरलम के मुस्तकबिल की खातिर बेपनाह इम्कानात मौजूद हैं और इमदाद बाहमी के शोबे को इसे बरूए कार लाना चाहिए। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि आज़ादी के बाद से लोगों की हमेशा ये मांग रही है कि मरकज में इमदाद बाहमी से मुतालिक एक अलहदा वजारत हो। नरेंद्र मोदी हुकूमत के इख्तदार संभालने के बाद इस सिलसिले में इकदाम किए गए।
2: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
0: केरलम के कोल्लम में माता अमृता नंदमयी की 73वीं सालगिरह तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर मुनक़िदा एक दीगर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि माता अमृता नंदमयी ने खिदमत को एक मिशन में तब्दील करके एक मिसाल कायम की और लोगों की खिदमत के जज्बे को एक तहरीक में बदला जो दुनिया भर में लोगों तक पहुंची।
2: 10 लाख से ज्यादा वृक्षारोपण, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका की भावना और इसके साथ साथ 101 गांवों को पूर्णतया से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अम्मा ने बहुत बड़ा काम किया है। संयुक्त राष्ट्र के मिलेनियम विश्व शांति सम्मेलन और विश्व धर्म संसद जैसे कई मंचों में हिंदुत्व का, सेवा का संदेश अम्मा ने पहुंचाया।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि बच्चों के दरमियान मनशियात के इस्तेमाल को एक अवामी सेहत के मामले के तौर पर ही नहीं बल्कि बच्चों के तहफ्फुज़ के एक मामले के तौर पर भी देखा जाना चाहिए। वो पटना में आज बचपन की बहाली, मनशियात के इस्तेमाल की रोकथाम और देखभाल और तहफ्फुज़ के जरूरतमंद बच्चों को असर नौ मरबूत करना के मौजू पर होने वाले सेमिनार से खिताब कर रहे थे। चीफ जस्टिस ने इस बात को यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर दिया कि मनशियात के इस्तेमाल से मुतासरा बच्चों को तहफ्फुज़, इलाज, काउंसलिंग, आजादकारी और तालीम, नेज खानदानी जिंदगी के बहाली के मौके फराहम किए जाएं। जस्टिस सूर्यकांत ने तालीमी तसलसल, महफूज खानदानी माहौल और बाज आबादकारी के अमल में देखभाल की अहमियत को उजागर किया। चीफ जस्टिस ने पटना में मुल्क का अव्वलीन मुतासरीन के हकूक के मरकज का भी इफ्तिताह किया। अपनी नौयत का ये अव्वलीन मरकज बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की इमारत में कायम किया गया है। यह मरकज मुख्तलिफ जराइम के मुतासरीन को एक ही मकाम

0: पर कानूनी हकूक और जरूरी तआवुन फराहम करेगा, जिसमें वो मुतासरीन भी शामिल हैं जो नजर नहीं आते। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल के हमरा गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र सिंह पटेल ने आज कच्छ जिले में दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी में 150 टन योमिया सलाहियत वाले ई मेथनॉल प्लांट का संग बुनियाद रखा। इज्तम से खिताब करते हुए जनाब सोनोवाल ने उजागर किया कि इस प्लांट के आगाज से मुल्क भर में रोजगार के मुतअद्दिद इम्कान पैदा होंगे।
1: हमारे कांडला पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, महाराष्ट्र की JNPA और बंगोपसागर में बचे हुए हमारे उड़ीसा के पारादीप पोर्ट, सार पोर्ट को आज मेगा पोर्ट का इस्तेदास मिला। इसका मतलब है एक पोर्ट ने 150 मिलियन मेट्रिक टन कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी करने में सफलता प्राप्त की है। जितना भी कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ेगा, हमारा उपार्जन बढ़ेगा, उपार्जन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा।
0: वजीर खारजा एस जयशंकर न्यूयॉर्क में आज 81वीं अक़वाम मुत्तहदा जनरल असेंबली के हाई लेवल इजलास से खिताब करेंगे। अक़वाम मुत्तहदा जनरल असेंबली का 81वां इजलास इस मौजू पर मुनक़िद किया जा रहा है, एतमाद की बहाली, काया पलट के लिए इंतजाम करना, ऐसा अक़वाम मुत्तहदा जो सबके लिए हो। जनरल असेंबली में तमाम 193 अक़वाम मुत्तहदा मेंबर मुल्कों के सदूर हजरात, वज़राए आज़म और सीनियर नुमाइंदगान यकजा हो रहे हैं, जो बड़े बैनुल अक़वामी मामलात पर अपनी तरजीहात और मौक़िफ़ पेश करेंगे। अक़वाम मुत्तहदा के मुताबिक इस इजलास में आलमगीर तआवुन को नई जिंदगी अता करने, पायदार तरक्याती अहदाफ में पेशरफ्त और अमन वक़ार और मसावात के लिए इज्तिमाई कार्रवाई को फ़रोग़ देने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल कर रहे हैं, जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस पुख्ता अहद का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नज़रिए के तहत हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के हदफ को हासिल करने की खातिर अनथक काम कर रही है। आज अपनी खसूसी सीरीज में हम इस बात का तस्करा करेंगे कि परीक्षा पे चर्चा पहल के जरिए इस नज़रिए को इस तरह बरूएकार लाया जा रहा है।
2: परीक्षा पे चर्चा सालाना बातचीत का एक प्रोग्राम है, जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी इम्तिहानात के दबाव से निमटने और खुशी के साथ सीखने के अमल के बारे में तलबा, असातजा और वालदेन से बात करते हैं। एग्जाम वॉरियर्स तहरीक के तहत 2018 में इस मुल्कगीर मुहिम पहल का आगाज हुआ, जिसने नौजवानों को इम्तिहानात बगैर दबाव के साथ एतमाद से देने में मदद की। इस पहल ने इम्तिहानात को बोझ के बजाय मौके के तौर पर पेश किया। परीक्षा पे चर्चा पहल के तहत मुनक़िदा एक प्रोग्राम में तलबा से बातचीत में वज़ीर आज़म ने उन्हें मशवरा दिया था कि वो किसी भी तरह के दबाव से निमटने की खातिर खुद को मजबूत और बासलाहियत बनाएं।
3: किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनाना चाहिए, रोते बैठना नहीं चाहिए, मान के चलना चाहिए कि जीवन में आता रहता है, दबाव बनता रहता है, तो खुद को तैयार करना पड़ता है। दबाव को हमने अपने तरीके से मन से एक बार इस स्थिति से जीतना है, एक तो संकल्प करना होगा।
2: इस प्रोग्राम ने करोड़ों भारतीय नौजवानों की सिर्फ कारकर्दगी से तवज्जो मजमूई तरक्की की जारी मुंतकिल की, जिससे इम्तिहान का दबाव कम हुआ और उनकी जहनी सेहत को अव्वलीन तरजीह दी गई। दिल्ली से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: वजारत खजाना ने ऐलान किया है कि सरकारी सेक्टर के तमाम बैंक और इलाकाई देही बैंक सारिफिन की सहूलत के लिए कल इतवार के रोज खुले रहेंगे। वजारत ने कहा है कि यह कदम इस माह की 28 तारीख से 30 तारीख तक यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियनों की जानिब से 3 रोजा मुजवजा मुल्कगीर बैंक हड़ताल के तनाजुर में उठाया गया है। इस हड़ताल से कबल 26 और 27 सितंबर को हफ्तावार छुट्टियां थीं। उधर सरकारी सेक्टर के कई बैंकों ने 3 रोजा बैंक हड़ताल के दौरान ATM से किए जाने वाले लेन देन पर माहाना मुफ्त हद के बाद आयद होने वाले चार्जेस को खत्म करने का फैसला किया है। भारत के महकमे मौसमियात ने कल उत्तराखंड में कुछ मकामात पर तेज से बहुत तेज बारिश और दूर दराज के मकामात पर इंतहाई तेज बारिश के सिलसिले में रेड कलर वार्निंग जारी की है। महकमे मौसमियात ने कल हिमाचल प्रदेश और मगरबी उत्तर प्रदेश के दूर दराज के मकामात पर तेज से बहुत ज्यादा तेज बारिश की पेशगोई की है। भारत ने जापान में आइची नगोया एशियाई खेल 2026 में आज तमगों की फहरिस्त में अपना मजबूत मकाम बना लिया और उसने कबड्डी, खेलकूद और निशानेबाजी जैसे खेलों में 7 मजीद तमगे जीते हैं। भारत के मर्दों और खवातीन की कबड्डी टीमों ने आज सोने के तमगे जीते। मर्दों की कबड्डी टीम ने फाइनल में ईरान को 34-40 से हराकर सोने का तमगा जीता। खवातीन की टीम ने भी ईरान को एक सनसनीखेज फाइनल में 34-37 के फर्क से कामयाबी हासिल करके

का तमगा जीता। एथलेटिक्स में तजिंदर पाल सिंह तूर ने 20.64 मीटर की दूरी पर शॉर्ट पुट फेंक कर चांदी का तमगा जीता। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और नायब सदर सीपी राधा कृष्णन ने एशियाई खेल 2026 में जीत हासिल करने पर खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी है। आखिर में खास खास खबरें एक मरतबा फिर। इंतखाबी कमीशन ने एक बार फिर कहा है कि तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के लिए SIR का हुक्म उसकी इतफाक राय से तय पाई मंजूरी के बाद जारी किया गया। उसने कहा कि बूथ लेवल ऑफिसर SIR के दौरान उन घरों का दौरा करेंगे जिन वोट दहिंदगान को नोटिस जारी किए गए हैं ताकि दरकार दस्तावेजात जमा कर सकें। मरकजी वजीर अमित शाह ने केरलम में NCCF की कई स्कीमों का इफ्तिताह किया ताकि इमदाद बाहमी के इदारों में खवातीन की शराकत दारी को फरोग दिया जा सके। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत का कहना है कि बच्चों के मावैन मनशियात के इस्तेमाल को बच्चों की हिफाजत से मुतालिक मामले के तौर पर देखा जाना चाहिए। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: नमस्कार, विज्ञान भारती के इस अंक में मैं शिबा राकेश
1: और मैं सुरेंद्र राजेश्वरी
0: आप सभी का स्वागत करते हैं। विज्ञान भारती के इस अंक में आप सुनेंगे संपादकीय, जिसका विषय है निजी नवाचार के पंख लगा अनंत आकाश नापता भारत।
1: वर्ष 2047 तक विकसित भारत और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय पर प्रोफेसर उमेश वाघमारे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव से भेंटवार्ता।
0: ब्रह्मा मिशन लैब, अतीत से भविष्य का सफर, विषय पर डॉक्टर अंजलि त्रिवेदी, अध्यक्ष ब्रह्मा मिशन, बीरबल सहानी पुरा विज्ञान संस्थान लखनऊ से बातचीत।
1: CSIR नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट की वरिष्ठ वैज्ञानिक पूनम अरोड़ा से भेंटवार्ता, विषय होगा भारत का अपना टाइमिंग सिस्टम।
0: स्वच्छ और स्वस्थ नदी, पारिस्थितिकी तंत्र के सूचक, गांगेय डॉल्फिन विषय पर जीव विज्ञानी डॉक्टर गोपाल शर्मा से भेंटवार्ता।
1: कुछ विज्ञान जगत की बातें, विज्ञान समाचार, महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों की जयंती, निधन, विज्ञान और पर्यावरण से जुड़े प्रमुख दिवस।
0: आज हम विज्ञान भारती की शुरुआत निजी नवाचार के पंख लगा अनंत आकाश नापता भारत विषय से कर रहे हैं। निजी नवाचार के पंख लगा अनंत आकाश नापता भारत, ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के लिहाज से एक क्रांतिकारी अध्याय है। भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र आज स्वतंत्र, आधुनिक और बेहद आक्रामक निजी विजन के साथ वैश्विक मंच पर अपनी धाक जमा रहा है। सरकार द्वारा वर्ष 2020 में किए गए नीतिगत सुधारों और भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी इन स्पेस के गठन ने वो ठोस धरातल तैयार किया जिस पर आज नए भारत के स्पेस प्रोनियर्स अपनी कामयाबी की इमारत खड़ी कर रहे हैं। आंकड़ों के झरोखे से देखें तो ये बदलाव किसी चमत्कार से कम नहीं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में वर्ष 2014 तक मात्र एक पंजीकृत स्पेस स्टार्टअप था, जिसकी संख्या अगस्त 2026 तक बढ़कर 440 से अधिक हो चुकी है। ये आंकड़ा ये दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि भारत के युवाओं में अंतरिक्ष तकनीक को लेकर कितनी उत्सुकता और प्रतिभा है। इस नीतिगत और वित्तीय प्रोत्साहन का परिणाम पृथ्वी से आकाश तक साफ दिख रहा है। स्काई रूट एरोस्पेस ने निजी रॉकेट विक्रम एस लॉन्च कर इतिहास रचा, तो वहीं जुलाई 2026 में विक्रम एक की सफल उड़ान ने देश को लो अर्थ ऑर्बिट में निजी उपग्रह स्थापित करने की पूर्ण क्षमता, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन विकसित करना, ये साबित करता है कि भारतीय स्टार्टअप्स अत्याधुनिक नवाचार का नेतृत्व कर रहे हैं। हाल ही में सरकार द्वारा घोषित 1,000 करोड़ रुपए का स्पेस वेंचर कैपिटल फंड और 500 करोड़ रुपए का टेक्नोलॉजी अडॉप्शन फंड इस रफ्तार को और तेज करेगा। फिलहाल भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था यानी स्पेस इकोनॉमी का आकार 8.4 से 9 बिलियन डॉलर के बीच आंका गया है, जो वैश्विक अंतरिक्ष बाजार का लगभग 2-3% है। भारत सरकार का लक्ष्य इस अर्थव्यवस्था को वर्ष 2035 तक 40 से 45 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है, जिससे वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर 8% हो जाएगी।

0: स्पष्ट है कि भारत का स्पेस सेक्टर अब सिर्फ अकादमिक शोध या सरकारी गौरव का विषय नहीं रह गया। ये एक आत्मनिर्भर, अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और वाणिज्यिक रूप से व्यावहारिक उद्योग बन चुका है। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के उपग्रह भारत के निजी लॉन्च पैड से अंतरिक्ष की सैर पर निकलेंगे।
1: जब हम वर्ष 2047 की कल्पना करते हैं तो आंखों के सामने एक ऐसे भारत की तस्वीर उभरती है जो आत्मनिर्भर हो, आर्थिक रूप से सशक्त हो और विश्व पटल पर ज्ञान विज्ञान का नेतृत्व कर रहा हो। इस महासंकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का सबसे सशक्त माध्यम है विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार, और इसे साकार करने में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। तो आइए सुनते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर उमेश वाघमारे से प्रवीण कुमार की बातचीत।
2: देश को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए क्या कुछ खास किया जा रहा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा?
3: द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देयर वी आर वर्किंग इन वेरियस लेवल्स। इन वन प्रोग्राम वी फोकस ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग, जहाँ पे स्कूल चिल्ड्रन से लेकर कॉलेज स्टूडेंट्स, पीएचडी स्टूडेंट्स, उसके बाद में फैकल्टी मेंबर्स, सबको सपोर्ट किया जाता है। इसको इंस्पायर स्कीम कहते हैं। दूसरे एफर्ट में मिशन लेवल में काम चल रहा है, यानी एक मिशन है नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी, जिसके थ्रू क्वांटम बिट्स, क्वांटम कंप्यूटर्स बना सकते हैं, क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क बना रहे हैं और क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसकी वजह से सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी जिसको कहते हैं, वो अचीव कर सकते हैं। और एक एफर्ट है क्वांटम सेंसिंग पर, कि जिसके थ्रू बहुत टाइनी चेंजेस जो होते हैं एनवायरमेंट में, मैग्नेटिक फील्ड हो, वो डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे सेंसर्स कैन ऑल्सो बी यूज इन बायोटेक्नोलॉजी, दे कैन बी यूज इन डिफेंस, दे कैन बी यूज इन ड्रोन्स। लॉट्स ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजीज आर बीइंग डेवलप्ड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे और एक मिशन है जो MIT का है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें हमारा भी एफर्ट जारी है, जिसमें एक है कि हमारे देश का फाउंडेशनल मॉडल बनाने जा रहे हैं, यानी जिसको लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहते हैं, जो आप टेक्स्ट का टेक्स्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, इमेज में कन्वर्ट सकते हैं मल्टी मॉडल में, वैसा मॉडल डेवलपमेंट जो करना है हमारी लैंग्वेजेस के लिए, हमारे नॉलेज के लिए, तो जो है इंडिजिनस वो डेवलप हो रहे हैं।
2: और आए दिन सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स की चर्चाएं होती रहती हैं, इसके लिए क्या कुछ खास किया जा रहा है?
3: सो सेमीकंडक्टर इज अगेन अ मिशन, नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन, जिसमें फोकस इंडस्ट्री पर, नॉट रिसर्च बट मोस्टली ऑन डेवलपमेंट कैपेबिलिटी टू फैब्रिकेट चिप्स on a large scale. Designing was already done in India. In fact, most semiconductor chips design is done in by our colleagues. But actual manufacturing capability is being developed now by involving industry and also government funding for national semiconductor mission. Critical minerals ek naya initiative hai, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी काफी सारे हाथ मिलाकर काम कर रहे हैं उस पर, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ऐसे है ना कि एक होता है एक्सट्रैक्शन फ्रॉम माइंस इज वन टाइप ऑफ थिंग, सेकंड इज रिसाइकलिंग, जो अपने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होती है, बैटरीज होती है, बैटरीज में लिथियम होता है, उसका लिथियम एक बार बैटरी डाई हो गई तो कैसे एक्सट्रैक्ट करें, वो काफी सारी टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही है कि जिसकी वजह से सस्टेनेबिलिटी सपोर्ट हो जाए। इनोवेशन इंडेक्स अभी वो 39 जो था हमारा ना, तो वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज नाउ पोस्टिंग व्हाट इज कॉल्ड एज RDIF, रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन फंड, जिसमें 1,00,000 crore रुपीज हैव बीन इन्वेस्टेड फॉर 5 years, एंड ईच ईयर दे विल गिव 20,000 crore, एंड दिस इज यूज बाय सेकेंड लेवल फंड मैनेजर्स टू गिव अ लोन टू अ स्टार्टअप कंपनी और अ डीप टेक कंपनी। डीप टेक कंपनी ये होती है कि साइंस के प्रिंसिपल बहुत क्रूशियल करके वो टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, स्केलिंग अप करते हैं, टेक्नोलॉजी रेडीनेस अप करते हैं, टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल 4 से ऊपर जाने के लिए ये फंडिंग है खाली इंडस्ट्रीज के लिए, लेकिन इंडस्ट्री को 50% फंडिंग खुद को लेके आना पड़ता है, और ये 50%, हाँ ये 50% बहुत लो इंटरेस्ट लोन होता है, लंबा पीरियड का लोन होता है
4: जी। और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है?
3: वो भी मिशन जैसा ही एफर्ट चल रहा है, जिसमें एक बड़ा एफर्ट है CCUS, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वो जो ग्रीन हाउस गैस है उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है एटमॉस्फेयर का, उसको कैप्चर करके स्टोर करना है और कन्वर्ट करना है कि जो यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जो कि मिथेनॉल हो, मिथेनॉल इज अ फ्यूल यू कैन यूज इन कार्स, सो इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बन रिसाइकल।

0: You use solar energy to reduce carbon dioxide using hydrogen to generate methanol. Clean energy, एक आपने सुना होगा गवर्नमेंट में अभी न्यूक्लियर पॉलिसी रिलैक्स कर दी है जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी आ सकते हैं. न्यूक्लियर एनर्जी इफ यू लुक एट इट इट्स वन ऑफ द क्लीनेस्ट एनर्जीज. और इसमें अगर माइक्रो साइज रिएक्टर सेट कर सकते हैं छोटे छोटे गांवों के लिए, ये बहुत इफिशियंट सॉल्यूशन होगा. दूसरा डेवलपमेंट है फ्यूजन बेस्ड एनर्जी भी आ रही है. बाकी जो रिन्यूएबल एनर्जीज है जो सोलार हो वो ऑलरेडी बहुत इकोनॉमिक हो गई है उसमें, और मैन्युफैक्चरिंग का ही काम बाकी है. हाइड्रोजन स्टिल एक्सपेंसिव. सी जनरेटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एट लो कॉस्ट इज स्टिल अ चैलेंज.
1: और युवा श्रोताओं के लिए आपकी क्या सलाह होगी?
0: वन इज बी वेरी एम्बिशियस एंड करेजियस. Not to be scared of failures. दूसरी चीज है कि hard work के सिवा कुछ नहीं होता है. अगर आपको बड़ा कुछ accomplish करना है तो दो चीजें करनी पड़ती है. एक है लोगों के साथ काम करो selflessly, और दूसरा है hard work करना चाहिए.
2: देश में एक राष्ट्र एक समय को लागू किया जा रहा है. इसके लिए भारत सरकार ने लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स 2026 को नोटिफाई कर दिया है. ऐसा क्यों किया जा रहा है इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए सुनते हैं CSIR नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट यानी भारत का राष्ट्रीय माप विज्ञान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक पूनम अरोड़ा से दिलीप झा की बातचीत. भारत का अपना टाइमिंग सिस्टम,
3: एक देश एक समय को लेकर के अधिसूचना जारी की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
4: हम भारत का माप विज्ञान केंद्र है, सो CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, और हम सभी प्रकार की जो मानक इकाइयां हैं सभी के स्टैंडर्ड हम मेंटेन करते हैं. टाइम भी उनमें से एक है. तो हम देश का जो भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है, हम देश का समय रखते आ रहे हैं काफी दशकों से. 1950-55 से हम लोग ये कार्य कर रहे हैं. अभी हम ये भारत का मानक समय बनाते हैं, इसको इंटरनेशनल रेफरेंस टाइम जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय रेफरेंस टाइम है जिसको कि कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम UTC के नाम से जाना जाता है, हम उसके साथ इसको बिल्कुल फॉलो करके चलते हैं. तो कुछ नैनो सेकेंड्स के साथ हमारा भारतीय मानक समय UTC को ट्रैक करता है. ये कार्य हम कर रहे हैं जो कि एक हमें कॉन्स्टिट्यूशन की एक जिम्मेदारी है जो हम निभा रहे हैं, और इसको हम डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, डिसेमिनेट भी करते हैं, आम जनता तक हम समय को पहुंचाते हैं. अलग अलग तरह के माध्यम हैं. बहुत ज्यादा जिसको जरूरत है एक्यूरेसी की, जैसे कि इसरो है, उसको नैनो सेकेंड से चाहिए, तो हम सैटेलाइट के माध्यम से देते हैं. आम जनता को हम इंटरनेट के जरिए टाइम देते हैं. अब ये जो अधिसूचना है इसका महत्व ये है कि अभी तक हमारे देश में जो समय है इसका एक रेफरेंस, सेंट्रल एक नेशनल रेफरेंस, वो अभी तक लीगल स्टेटस समय को नहीं मिला था. कई देशों में ये बहुत टाइम से पहले से चला आ रहा है कि वहां का जो राष्ट्रीय माप विज्ञान संस्थान है जो वो समय को रखता है उसी समय को उस देश का लीगल समय माना जाता है. तो ये जो अभी अधिसूचना जारी हुई है ये हमारे भारतीय मानक समय को वो लीगल स्टेटस दे रहा है. इसका ये मतलब है कि हर पर्पस से, जैसा इसमें मेंशन किया गया है कि चाहे वो कानूनी हो या प्रशासनिक हो या जो भी हो, अब यही एक रेफरेंस रहेगा. उसकी ज्यादा जरूरत क्रिटिकल सेक्टर्स को. आजकल हम लोग बहुत डिजिटल काम कर रहे हैं, सब डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आ गए हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं. हम पैसा पे करते हैं, हम UPI ट्रांजेक्शन करते हैं, मोबाइल बैंकिंग करते हैं. फिर हमारी जो आजकल की आधुनिक सुविधाएं हैं, आजकल हम 4G 5G 6G वीडियो स्ट्रीमिंग करते हैं, हम कनेक्टेड रहते हैं. तो ये जो सारा कुछ हम कर पाते हैं इसमें टाइम स्टैम्प की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है. और अगर आप किसी चीज के बारे में कुछ जानकारी करना चाहें, छानबीन करना चाहें, अगर कुछ गलत हो जाता है तो वो जो छानबीन तभी अच्छे से हो सकती है कि अगर सभी टाइम स्टैम्प्स मैच हो. अगर उसमें मिसमैच होता है, और वो मिसमैच कब होगा? अगर सभी लोग अलग अलग सोर्स से टाइम लेंगे. अगर ये अधिसूचना को फॉलो करा जाएगा और सभी लोग एक ही मानक समय को फॉलो करेंगे, उसी सोर्स से कनेक्टेड रहेंगे, तो ऐसी समस्याएं हैं जो आती हैं, ज्यादातर की जो फाइनेंशियल फ्रॉड, साइबर सिक्योरिटी, साइबर फ्रॉड की बात की जाती है, वो फ्रॉड्स कंट्रोल में आएंगे, वो कम होंगे. तो देश की सिक्योरिटी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है. और ज्यादातर क्रिटिकल सेक्टर्स जैसे कि बैंकिंग है आपका, फाइनेंशियल सेक्टर है आपका, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, नेविगेशन ऑफकोर्स हमारी स्पेस एजेंसी है, स्मार्ट अगर हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, पावर ग्रिड्स हैं, ये जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, अगर ये सब कर लेंगे, भारतीय मानक समय को फॉलो करेंगे, तो काफी हद तक जो एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, देश की सिक्योरिटी भी बेहतर होगी. तो ये इस अधिसूचना का अभी पर्पस है.
2: सितंबर का महीना विज्ञान के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस महीने में भौतिकी, रसायन, औषधि और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में युगांतरकारी योगदान देने वाले कई दिग्गज वैज्ञानिकों का जन्म हुआ. आइए उनके योगदान को याद करें. भारत के महान सिविल इंजीनियर और राजनेता सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर को हुआ था. उनकी दूरदर्शी जल प्रबंधन और बांध तकनीकों के सम्मान में भारत प्रतिवर्ष 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाता है।
5: महान वैज्ञानिक माइकल फैराडे का जन्म 22 सितंबर 1791 में हुआ। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस के नियमों का जनक इन्हें माना जाता है। इनके आविष्कारों ने आधुनिक इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर और ट्रांसफार्मर की नींव रखी। जॉन डाल्टन का जन्म 6 सितंबर 1766 को हुआ था। इन्हें आधुनिक परमाणु सिद्धांत यानी एटमिक थ्योरी के प्रणेता और वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस या डाल्टोनिज्म पर पहला वैज्ञानिक शोध पत्र प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक के तौर पर याद किया जाता है। श्रोताओं, हमारी पृथ्वी और प्रकृति अपने गर्भ में लाखों करोड़ों वर्षों का इतिहास समेटे हुए हैं। प्राचीन जीवाश्म, पुरानी तलछट, पेड़ पौधों के सूक्ष्म अवशेष और बदलते मौसम के निशान। लेकिन ये केवल अतीत की धूल नहीं बल्कि हमारे भविष्य की कुंजी हैं। आज हम आपको ले चलते हैं लखनऊ स्थित ऐतिहासिक बीरबल सहानी पुराविज्ञान संस्थान BSIP में, जहां आधुनिक तकनीक और प्राचीन रहस्यों का संगम हो रहा है एक बेहद महत्वाकांक्षी पहल में, जिसका नाम है ब्रह्मा मिशन। इस मिशन और प्रयोगशाला में क्या कुछ होगा और इससे कौन कौन से हमें लाभ होंगे, इसे जानने के लिए सुनते हैं ब्रह्मा मिशन की प्रमुख वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अंजलि त्रिवेदी से प्रवीण कुमार की बातचीत।
1: डॉक्टर त्रिवेदी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि ब्रह्मा मिशन है क्या और इसका नाम ब्रह्मा क्यों रखा गया है।
6: ब्रह्मा मिशन एक ऐसा मिशन है जो पहली बार भारतवर्ष में शुरू किया गया है। इसका पूरा नाम है बीरबल सहानी रिपोजिटरी फॉर AI एनेबल्ड फॉसिल हेरिटेज मॉडलिंग एंड आर्काइव। ऐसी वैज्ञानिक पहल है जिसमें हमारे पास उपलब्ध फॉसिल जैसे पॉलन, स्पोर्स, लीव्स, वुड, फ्रूट और अन्य जितने भी साइंटिफिक रिकॉर्ड्स हैं, उनको डिजिटली व्यवस्थित करना और संरक्षित करना है। इसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और आधुनिक मॉडलिंग टेक्निक्स को भी जोड़ा जाएगा। हमारा उद्देश्य है पृथ्वी के अतीत को समझना, वर्तमान को बेहतर ढंग से देखना और भविष्य के लिए वैज्ञानिक ज्ञान तैयार करना। पृथ्वी का इतिहास बहुत लंबा है, लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पुराना है और इस इतिहास की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां प्राकृतिक अभिलेखों में सुरक्षित हैं। हमारे पास जीवन की उत्पत्ति से लेकर आज तक जैविक और पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रमाण फॉसिल, सेडिमेंट और पोलन एक्सेट्रा के रूप में रिकॉर्ड के रूप में मौजूद हैं। समस्या ये है कि जितने भी रिकॉर्ड हैं, वो अलग अलग कलेक्शंस और अलग अलग लेबोरेटरीज और रिसर्च प्रोजेक्ट में बिखरे हुए हैं। इसीलिए ब्रह्मा मिशन का प्रयास है कि इन वैज्ञानिक अभिलेखों को डिजिटाइज, स्टैंडर्डाइज किया जाए और भविष्य में रिसर्चर इनके प्रभावी ढंग से उपयोग कर सके। ब्रह्मा मिशन की खास बात यही है कि इसे मल्टी प्रॉक्सी साइंटिफिक रिकॉर्ड्स के रूप में बनाया गया है। पॉलन और स्पोर्ट्स के साथ बाकी और भी जो रिकॉर्ड्स हैं, जैसे पत्तियां हैं, लकड़ियां हैं, सीड्स हैं, फ्रूट्स हैं और भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो होते हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना है। इसके अलावा जियोकेमिकल रिकॉर्ड्स, पेलियोमैग्नेटिक रिकॉर्ड, सेडिमेंट्स और अन्य जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हर प्रॉक्सी अपने अतीत के पर्यावरण का अलग अलग पहलू बताते हैं। जब हम इन सभी रिकॉर्ड्स को एक साथ देखेंगे तो पेलियो एनवायरनमेंट की इंटरप्रिटेशन अधिक मजबूत और वैज्ञानिक बन जाएगी।
1: अभी आपने जीवन उत्पत्ति की बात की, तो इतने छोटे छोटे फॉसिल्स यानी जीवाश्म जीवन की कहानी कैसे बताते हैं?
6: यह वास्तव में पेलियो साइंस की सबसे रोचक बात है। एक छोटा सा फॉसिल भी अपने समय में बहुत बड़ी कहानी बता सकता है। फॉसिल से हमें पता चलता है कि अतीत में कौन कौन से जीव और पौधे मौजूद थे, उनका विकास किस प्रकार हुआ और समय के साथ बायोडाइवर्सिटी में क्या परिवर्तन आया। जैसे पॉलन और स्पोर्ट्स हमें अतीत की वेजिटेशन को समझा सकते हैं, इसी तरह अलग अलग रिकॉर्ड्स को हम एक साथ देखने पे जीवन के विकास, बायोडाइवर्सिटी और एनवायरमेंट के साथ जीवों का क्या संबंध था, वो हम ज्ञात कर सकते। क्लाइमेट चेंज आजकल एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल इशू है, लेकिन क्लाइमेट को समझने के लिए केवल वर्तमान के डेटा को देखना पर्याप्त नहीं है। हमें यह भी जानना होगा कि अतीत में क्लाइमेट और एनवायरनमेंट किस प्रकार बदलते रहे हैं। जो भी हमें मिलता है, जैसे पॉलन है, पत्तियां हैं, लकड़ियां हैं, सेडिमेंट्स हैं, जो भी हमें मिलता है वो हमें पास्ट एनवायरनमेंट की जानकारी देते हैं। जब हम इन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को मॉडर्न रिकॉर्ड्स डेटा के साथ मॉडलिंग के साथ जोड़ते हैं तो हमें क्लाइमेट वेरिएबिलिटी और इन्वायरमेंटल चेंजेस की बहुत लंबी जानकारी मिल जाती है। इससे हम फ्यूचर रिसर्च और इन्वायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बता सकते हैं। आज रिसर्च तेजी से इंटरडिसिप्लिनरी हो रही है। एक युवा साइंटिस्ट केवल एक सब्जेक्ट तक सीमित नहीं है, वो बहुत सारे विषयों को एक साथ लेकर के आगे बढ़ रहा है। तो एक युवा साइंटिस्ट के लिए ये जरूरी है कि उसको AI, पैलियंटोलॉजी के साथ साथ डेटा साइंस, पैलिनोलॉजी और क्षेत्र में जिसमें वो काम कर रहा है उसमें AI की वजह से उसको मदद मिले। ब्रह्मा मिशन ऐसे इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्लेटफॉर्म बन सकता है।
2: और अब कुछ विज्ञान समाचार।
5: देश की सबसे बड़ी ऑयल एक्सप्लोरेशन और महारत्न कंपनी ONGC ने ओडिशा तट के पास महानदी ऑफशोर बेसिन में एक गहरे पानी वाले कुएं में गैस की खोज की है। समुद्र मंथन पहल के तहत ये कुआं खोजा है। कोणार्क से लगभग 43 किलोमीटर दूर स्थित ये कुआं इस अभियान के तहत ONGC द्वारा महानदी बेसिन में खोदा गया पहला कुआं है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने अपने अंतरिक्ष सहयोग समझौते को 8 जनवरी 2032 तक बढ़ा दिया है। पुराने सहयोग के अलावा इस समझौते में कुछ नए क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है, जैसे मानव और रोबोटिक अंतरिक्ष अन्वेषण, अंतरिक्ष मौसम और बाहरी अंतरिक्ष गतिविधियों की स्थिरता। भारतीय वैज्ञानिकों को अंटार्कटिका के इर्द गिर्द समुद्री बर्फ में बार बार दिखाई देने वाले खुले पानी के एक रहस्यमय इलाके के 250 वर्ष तक के इतिहास का पता लगाने में सफलता मिली है। इससे ये जाहिर होता है कि अतीत में इस तरह की घटनाएं कई बार हुई, इनमें से कुछ बड़ी घटनाओं को देखा भी जा चुका है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र NCPOR के शोधकर्ताओं की अगुवाई में ये अध्ययन किया गया है। इसमें डेनमार्क और नॉर्वे के वैज्ञानिक भी शामिल रहे। शोधकर्ताओं की टीम ने मॉडराइस पोलिना समुद्री बर्फ से घिरे खुले समुद्र का एक बड़ा इलाका के इतिहास का पता लगाने के लिए अंटार्कटिक आइस कोर का उपयोग किया। असम के मुख्यमंत्री ने 21 सितंबर को गुवाहाटी के पास चंद्रपुर में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के एडवांस्ड रडार रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखी। प्रोजेक्ट नेत्रा के तहत विकसित होने वाली ये सुविधा अंतरिक्ष में मौजूद वस्तुओं और कक्षीय मलबे की निगरानी तथा ट्रैकिंग में भारत की क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से स्थापित की जा रही है। आइए अब उन महान वैज्ञानिकों को याद करते हैं जिनकी पुण्यतिथि सितंबर माह में है। सितंबर का महीना न केवल महान वैज्ञानिकों के जन्म के लिए जाना जाता है, बल्कि इस महीने में विज्ञान जगत ने कई ऐसी विभूतियों को खोया है जिन्होंने दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। भारत के प्रख्यात परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर राजा रमन्ना का निधन 24 सितंबर 2004 को हुआ। वे 1974 में भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के मुख्य रणनीतिकारों और सूत्रधारों में से एक थे। उन्होंने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के महानिदेशक के रूप में भी अपनी सेवाएं दी।
2: सूक्ष्म जैविकी के जनक लुई पाश्चर का निधन 28 सितंबर 1895 को हुआ था। उन्होंने दूध और पेय पदार्थों को जीवाणु रहित रखने की पाश्चरीकरण विधि खोजी और रेबीज एंथ्रेक्स के जीवन रक्षक टीकों का आविष्कार किया। डीजल इंजन के आविष्कारक रुडोल्फ डीजल का निधन 29 सितंबर 1913 को हुआ था। उनके द्वारा तैयार किए गए उच्च दक्षता आंतरिक दहन इंजन ने औद्योगिक उत्पादन, भारी परिवहन और समुद्री जहाजरानी के क्षेत्र में क्रांति ला दी।
5: नदियों की अविरल धारा केवल पानी का बहाव नहीं, बल्कि जीवन का एक पूरा संसार अपने भीतर समेटे हुए है। और जब बात हमारी पावन गंगा, घाघरा, चंबल या ब्रह्मपुत्र जैसी सदानीरा नदियों की हो, तो जल की गहराई में एक ऐसा अद्भुत जीव तैरता है जिसे प्रकृति ने दृष्टि तो सीमित दी, लेकिन संवेदनाएं और बुद्धिमत्ता अपार बख्शी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव गांगेय डॉल्फिन यानी गैंजेटिक डॉल्फिन की। गांगेय डॉल्फिन इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? इसे समझने के लिए आइए सुनते हैं जीव विज्ञानी डॉक्टर गोपाल शर्मा से अल्पी कुमारी की ये बातचीत।
7: ये पूरे विश्व के लिए एक अद्वितीय प्राणी है जो हमारे गंगा में है, और गंगा में रहते हुए पूरे विश्व के वैज्ञानिकों को अपने ओर आकर्षित किया है। ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली रिवर सिस्टम में मिलता है, जिसमें इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश आते हैं। पूरे इसके जो भी वितरण क्षेत्र हैं, वो चाहे गंगा हो, चाहे ब्रह्मपुत्र हो, चाहे मेघना हो, सभी जगहों पर इसकी हत्या बहुत ही तेजी से हो रही थी और मछुआरों को पता नहीं था कि हमारे जल तंत्र में, हमारे जलीय जो सिस्टम है उसमें इसकी उपयोगिता क्या है। इसलिए हम लोगों ने जा करके लोगों को बताया और खास करके मछुआरों को बताया कि आप गंगा के डॉल्फिन को नहीं मारें, इनको बचाएं, इससे आपको मछली भी ज्यादा मिलेगा और ये जो विचित्र प्राणी है जो हमारे गंगा के रिवर सिस्टम में मिलता है
6: जी,
7: ये और कहीं पर नहीं मिलता है, इसलिए इसको बचाना भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये हेरिटेज एनिमल जैसा है। ये प्रस्ताव आया वैज्ञानिकों की तरफ से कि गंगा के डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित कर दिया जाए, तो इस पर विशेष संरक्षण का प्रभाव रहेगा और लोग इस पर ध्यान देंगे। जब गंगा के डॉल्फिन और समुद्री डॉल्फिन दोनों के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत की 2020 में, तब से राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाने लगा है। गंगा के डॉल्फिन को सोंस इसलिए बोलते हैं कि एक मिनट से लेकर के तीन मिनट के बीच में पानी के ऊपर आकर के इनको सांस लेना पड़ता है, तो ये बार बार सांस लेने के लिए ऊपर आते हैं और जब सांस छोड़ते हैं और सांस लेते हैं उस समय सू की आवाज निकलती है, इसीलिए इसका नाम सूसू या सोंस बोलते हैं। गंगा के डॉल्फिन अगर नहीं रहेगी हमारे इकोसिस्टम में तो पूरी की पूरी जो खाद्य श्रृंखला है, जो फूड चैन है, वो समाप्त हो जाएंगी, वो परेशान हो जाएंगी और वो पूरे रिवर तंत्र को प्रभावित करेगा। गंगा का डॉल्फिन और जो समुद्र का डॉल्फिन है, सभी का फिजियोलॉजी एक ही है। डॉल्फिन रेस्क्यू वैन या गंगा रेस्क्यू वैन के नाम से आप एक एम्बुलेंस चलाइए और एम्बुलेंस बनाइए जिसमें 24 आवर्स ये सारी व्यवस्थाएं रहनी चाहिए, जिसमें हम गंगा के डॉल्फिन को एक जगह से दूसरे जगह रेस्क्यू करें। ये बातें प्रधानमंत्री जी तक गया और पर्यावरण मंत्रालय में भी इसकी चर्चा हुई और आज ये कंसेप्ट आया कि हम एक गंगा रिवर डॉल्फिन एम्बुलेंस, और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। बिहार की नदियों में लगभग 2220 डॉल्फिन है, उत्तर प्रदेश में लगभग 2300 के आसपास डॉल्फिन है। गंगा के डॉल्फिन का असल गार्जियन मछुआरे ही हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा करीब और सबसे ज्यादा समय 24 घंटा में मछुआरे ही उसके साथ देते हैं और रहते हैं। तो अगर घाटों पर आप जाते हैं तो आप प्लास्टिक ना ले जाएं, या वैसे वेस्ट, वैसे धातु या वैसे कोई भी प्लास्टिक या कोई भी कपड़ा या कोई भी सामान ना ले जाएं जो गंगा में आप सीधे फेंकते हैं। बहुत लोगों की मान्यता ये है कि हम जो भी घर में पूजन सामग्री जब हम को डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं तो शुरू से धारणाएं हैं कि गंगा में ले जाकर इसे प्रवाहित कर दिया जाए, लेकिन प्रवाहित करने से गंगा प्रदूषित होती है, इसलिए आप गंगा के तरफ ले जाएं। गंगा के हरेक घाटों पर एक जगह बनाया गया है, नियत जगह है, उन जगहों पर आप फेंकिए, आपकी आस्था बरकरार रहेगी कि गंगा की डॉल्फिन घड़ियाल और मगर नहीं है, ये बहुत ही ह्यूमन फ्रेंडली है, आपसे गंगा के डॉल्फिन प्यार करती है, गंगा के डॉल्फिन से आपको कोई खतरा नहीं है। गंगा के डॉल्फिन अगर आपको नहाते वक्त मिल जाए तो आप डरे नहीं, आप खूब आराम से स्नान करिए, क्योंकि आपको किसी तरह का कोई हार्म या कोई भी इससे खतरा नहीं पहुंचेगा।
2: और अब बात करेंगे विज्ञान और पर्यावरण से जुड़े खास दिवसों की, जिन्हें भारत सहित विश्व भर में सितंबर महीने में उत्साह पूर्वक मनाया जा रहा है।
5: 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया गया। हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण, जैव विविधता की सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे मनाया गया। भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पर इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक नवाचार और राष्ट्र निर्माण में तकनीकी योगदान के सम्मान में इस दिवस को मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। वर्ष 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की याद में ये दिवस मनाया जाता है। ये पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करने वाली ओजोन परत के संरक्षण का संदेश देता है।
2: 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया गया। तेजी से बढ़ने वाले और पर्यावरण अनुकूल बांस के सतत उपयोग कार्बन अवशोषण और हरित आजीविका को रेखांकित करता है। 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया गया। विश्व भर में गैंडों की सभी 5 प्रजातियों, विशेषकर भारत में एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण और अवैध शिकार पर रोक का संकल्प लिया गया।
5: तो ये थी आज की हमारी विशेष प्रस्तुति। अगली बार फिर मिलेंगे नए उत्साह और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: नमस्कार।

वाचन स्वर शिबा राकेश और सुरेंद्र राजेश्वरी के थे। आकाशवाणी दिल्ली और आकाशवाणी पटना के सहयोग से तैयार किए गए इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे प्रवीण कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र पर रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया। कुछ मुकाबले सिर्फ स्कोर बोर्ड पर दर्ज होते हैं और कुछ मुकाबले किसी खेल की पहचान बन जाते हैं। आईची नगोया के एशियन गेम्स में आज भारत के लिए ऐसा ही एक दिन रहा। कहीं मैट पर दांव पेस थे, कहीं शूटिंग रेंज पर सांसों को थाम देने वाला सन्नाटा, कहीं दौड़ती हुई सड़क पर एक एथलीट 42 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर रहा था, तो कहीं स्क्वॉश कोर्ट पर हर पॉइंट इतिहास के और करीब ले जा रहा था। और इन तमाम तस्वीरों के बीच भारत ने आज सिर्फ पदक नहीं जीते बल्कि अपनी खेल विरासत की कई कहानियों को एक साथ आगे बढ़ाया। तो आईची नगोया में आज भारत ने कितने मौके बनाए, कितने मकाम हासिल किए, किसने तिरंगा पोडियम तक पहुंचाया और किन मुकाबलों ने बढ़ाई कल की उम्मीद, इन सब की पूरी तस्वीर अब आपके सामने है। एशियन गेम्स 2026 में आज क्या कुछ हुआ, पूरे रोमांच को समेटे डेली हाइलाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। सबसे पहले नजर डालते हैं दिन की हेडलाइंस पर। कबड्डी में भारत का स्वर्णिम डबल धमाका, महिला टीम के बाद पुरुष टीम ने भी ईरान को हराकर जीता गोल्ड मेडल। 42 किलोमीटर की दूरी, 44 साल का इंतजार खत्म। सावन बरवाल ने मैराथन में सिल्वर मेडल जीतकर बनाया नया नेशनल रिकॉर्ड। शूटिंग में आया एक और पदक, आशी चौकसी, तिलोत्तमा सेन और विदर्शा विनोद ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में जीता सिल्वर मेडल। स्क्वॉश कोर्ट पर कामयाबी भरा दिन, ज्योश्ना चिनप्पा और वेलावन सेंथिल कुमार ने जीता ब्रॉन्ज, जबकि अनाहत और अभय सिंह ने सिंगल्स फाइनल में जगह बनाकर दो और पदक किए पक्के। शुरुआत करते हैं कबड्डी से। आज मैट पर हर रेड में रोमांच था, हर टैकल में ताकत और अंत में तिरंगा रहा सबसे ऊपर। कबड्डी के डबल गोल्ड की पूरी कहानी बता रही हैं मेघा अपनी रिपोर्ट में।
1: इंडिया कंप्लीटेड अ गोल्डन डबल इन कबड्डी विद बोथ द मेंस एंड वुमेन्स टीम्स ओवरकमिंग ईरान इन देयर रिस्पेक्टिव फाइनल्स। द वुमेन वर फर्स्ट टू स्ट्राइक इन अ टेंस गोल्ड मेडल कॉन्टेस्ट। इंडिया हेल्ड देयर नर्व टू डिफीट ईरान 37-34 एंड सक्सेसफुली डिफेंड द टाइटल दे वन एट हांगझो। इट इज इंडियाज फोर्थ Women's Kabaddi Gold since the event entered the Asian Games program in 2010. A few hours later, the men made it 2 out of 2. India defeated Iran 40-34 to retain their crown and underline their extraordinary dominance of the sport at the Asian Games. Men's Kabaddi has featured at the Asian Games since 1990 and India have now won 9 gold medals in 10 editions.
0: निशाने लगाने के लिए आंखों से ज्यादा जरूरी होता है उस एक पल में खुद को बिल्कुल स्थिर रखना। शूटिंग रेंज में आज भारत ने कैसे साधा पोडियम का सफर, बता रहे हैं दर्पण टिकिया।
2: शनिवार को एक बार फिर शूटिंग रेंज में भारत की चांदी हुई। महिलाओं की 50 मीटर थ्री पोजीशन राइफल टीम स्पर्धा में तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिगड़ी ने रजत पदक हासिल किया। तीनों ने कुल मिलाकर 1763 पॉइंट हासिल किए और दूसरा स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही 20वें एशियन गेम्स में भारत शूटिंग के खेल से 11 पदक हासिल कर चुका है। 2023 में बनाए अपने खुद के एशियन गेम्स रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए चाइनीज तिगड़ी ने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। इन परिणामों के आधार पर विदर्शा और तिलोत्तमा को इंडिविजुअल प्रतियोगिता के फाइनल में भी जगह मिली। हालांकि स्टैंडिंग पोजीशन में कुछ खराब शॉट्स के बाद पिछली बार इसी प्रतिस्पर्धा में एशियन गेम्स का ब्रॉन्ज मेडल लेने वाली आशी चौकसी

0: by 21 seconds. Later in the day, Tejinder Pal Singh Tour added another Asian Games medal to his collection. The two-time defending champion registered a best throw of 20.64 meters to take silver in the men's shot put. There was a bronze on the track as well. Prachi Chaudhary finished third in the women's 400 meters, clocking 53.21 seconds, while Kiran Pehel missed out on the podium. National record holder Vishal TK finished fifth in the men's 400 meters final. Vishal had impressed in qualification, clocking 45.27 seconds to win his heat, the fastest time across all three heats. In the men's triple jump, Karthik Unnikrishnan finished 6th, while Praveen Chitravel's challenge ended early after he suffered an injury on his opening attempt. In the women's 1500 meters, Paral Chaudhary came agonizingly close to a medal, finishing 4th in a personal best 4 minutes 9.46 seconds. Pooja finished 6th. India also set up several possibilities for the days ahead. Animesh Kajur qualified for the men's 200 meters final after finishing second in a semi-final in 20.81 seconds, while Harita Bhadra and Unnati Ayappa progressed to the women's 200 meters final. And in the decathlon, Tejaswin Shankar ended day one on the top of the standings with 4,338 points after 5 events, keeping himself firmly in contention as the remaining 5 disciplines take place on Sunday.
1: बॉक्सिंग रिंग में हर राउंड के साथ रणनीति बदलती रहती है, लेकिन लक्ष्य वही रहता है, यानी अगले दौर में जगह। भारतीय मुक्केबाजों के लिए कैसा रहा आज का दिन, सुनते हैं शाहिद आजमी की ये रिपोर्ट।
2: एशियन गेम्स में बॉक्सिंग रिंग से भारत के लिए दोहरी खुशी की खबर है। प्रिया घंघास और कपिल पोखरिया ने शानदार जीत दर्ज करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला 60 किलोग्राम वर्ग में प्रिया घंघास का सामना दक्षिण कोरिया की ओह योन जी से हुआ था। प्रिया ने यह मुकाबला 5-0 से जीतकर अंतिम 8 में जगह पक्की कर ली है। वहीं पुरुषों के 90 किलोग्राम वर्ग में कपिल पोखरिया ने भी शानदार प्रदर्शन किया। राउंड ऑफ 16 में कपिल के सामने ईरान के सैम एस्टाकी थे। कपिल ने पूरे मुकाबले में बेहतरीन नियंत्रण दिखाया और जजों ने 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से उन्हें विजेता घोषित किया। इस जीत के साथ कपिल ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। हालांकि 55 किलोग्राम वर्ग में जादू मनीष सिंह को निराशा हाथ लगी। राउंड ऑफ 16 में उनका मुकाबला फिलीपींस के कार्लो पालम से हुआ। कड़े मुकाबले में जादू मनी को 0-3 से हार का सामना करना पड़ा और उनका एशियन गेम्स में अभियान समाप्त हो गया।
1: पुरुष हॉकी में भारत ने जापान को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। भारत की ओर से अभिषेक ने 15वें मिनट में फील्ड गोल किया, जबकि कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 40वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील किया। ये पूल ए में भारत की लगातार चौथी जीत थी और टीम ने 12 अंक के साथ सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। एक तीर, एक निशाना और पदक की ओर बढ़ता भारत। दर्पण टिकिया की रिपोर्ट में जानते हैं कि आर्चरी रेंज में आज कैसा रहा भारतीय तीरंदाजों का दिन।
3: शनिवार को एशियन गेम्स 2026 में तीरंदाजी का भी आगाज हुआ। पुरुषों की रिकर्व प्रतिस्पर्धा के क्वालिफाइंग राउंड में ही उन्होंने कुल संभव 720 में से 698 अंक हासिल करते हुए एक नया गेम्स रिकॉर्ड सेट किया। रैंकिंग राउंड में धीरज पहले पायदान तो उनके साथ ही नीरज चौहान 20वें और यश भोगे 25वें पायदान पर रहे। बतौर टीम भारत दूसरे स्थान पर रहा। महिलाओं की प्रतिस्पर्धा में भारत की टीम रैंकिंग छठी रही, तो वहीं बतौर इंडिविजुअल्स कुमकुम मोहद को 10वां, कीर्ति को 20वां तो अंकिता भकट को 26वां स्थान प्राप्त हुआ। महिलाओं की टीम प्रतिस्पर्धा में पहले स्थान के लिए भारत और चीन में टाई रहा। हालांकि टाई ब्रेकर में चीन ने बाजी मारी। इंडिविजुअल स्टैंडिंग्स में चिकिता तानीपारथी पहले, पिछली बार की स्वर्ण पदक विजेता ज्योति वेनम 13वें और प्रतिका प्रदीप 20वें स्थान पर रही। तो वहीं मेंस टीम तीसरे और इंडिविजुअल प्रतिस्पर्धा में साहिल जाधव 5वें, मणिरत्नम गणेश 14वें और कुशाल दलाल 16वें स्थान पर रहे। आपको याद दिला दें कि क्वालिफिकेशन या रैंकिंग राउंड से केवल ड्रॉ का फैसला होता है और असली प्रतियोगिता का अभी शुरू होना बाकी है। इसके साथ ही रिकर्व मिक्स्ड टीम प्रतियोगिता में धीरज और कुमकुम, तो वहीं कंपाउंड मिक्स्ड टीम प्रतिस्पर्धा में साहिल और चिकिता भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।
1: एशियन गेम्स में भारतीय घुड़सवारों की आज की चुनौती पर शाहिद आजमी की रिपोर्ट।
2: घुड़सवारी से भारत के लिए अच्छी खबर है। एशियन गेम्स के पदक विजेता हृदय छेदा और जय सूद ने शानदार प्रदर्शन करते हुए व्यक्तिगत रेसेस के फाइनल में जगह बना ली है। दोनों भारतीय खिलाड़ियों ने 2 क्वालिफाइंग राउंड के बाद टॉप 15 में स्थान हासिल कर लिया है। हृदय छेदा 135.059 अंकों के साथ 11वें स्थान पर है, जबकि जय सूद ने 133.559 अंक हासिल कर 13वां स्थान हासिल किया। वहीं श्रुति बोरा 129.94 अंकों के साथ 24वें स्थान पर रही। व्यक्ति

0: ड्रेसेस का फाइनल कल खेला जाएगा, जहां हृदय और जय की नजर पदक पर होगी।
1: रुख करते हैं अब बैडमिंटन कोर्ट का। आज बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ियों के लिए मिला जुला दिन रहा। मेघा बता रही हैं अपनी रिपोर्ट में कि कौन बढ़ा आगे और किसका सफर हुआ समाप्त।
2: A day of contrasting fortunes for India in the individual badminton competition at the Asian Games. Lakshya Sen's singles campaign came to an early end against former world champion Lokeen Yu. The Indian fought back after losing the opening game, but the Singaporean prevailed 21-12, 15-21, 21-14 in a contest that lasted over an hour. It meant an individual Asian Games medal continues to elude Lakshya, although he has already won a bronze from the men's team event at these games. Ayush Shetty began with a commanding 21-7, 21-7 victory over Kazakhstan Maksud before being stretched by the experienced Chao Tin Chen. Ayush pushed the third seed to three games but went down 16-21, 21-19, 17-21 in the pre-quarterfinals. The standout performance though came from 19-year-old Unnati Huda. After surviving a three-game battle against Malaysia's Wong Ling Ching, Unnati stunned world number 6 Putri Kusuma Vardhani 21-19, 21-13 to book her place in the quarterfinals, where she faces Japan's Akane Yamaguchi. PV Sindhu also began her individual campaign with a straight games win over Chinese Taipei's Chiu Pingqian before overcoming Japan's Tomoka Miyazaki 21-9, 21-13 in the round of 16 to book her place in the women's singles quarterfinals.
1: कैनो में भारत की चुनौती का क्या रहा नतीजा? दर्पण टिकिया की ये रिपोर्ट।
3: शनिवार को भारत के लिए कनू स्प्रिंट की अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में हर्षवर्धन सिंह शेखावत, पार्वती गीता, प्रसन्ना कुमार सत्यप्रकाश की जोड़ी तो वहीं राजू रावत और नेहा देवी लिचुनबाम की जोड़ी शिरकत कर रही थी। इनमें से कोई भी भारत के लिए पदक नहीं दिला सका।
1: स्क्वॉश में आज भारत के लिए कहानी सिर्फ एक पदक की नहीं रही। एक तरफ अनुभव ने पोडियम छुआ तो दूसरी तरफ नई पीढ़ी ने फाइनल में जगह बनाकर इतिहास के दरवाजे पर दस्तक दी। स्क्वॉश कोर्ट का पूरा रोमांच मेघा के साथ।
2: इंडियन स्क्वॉश एंजॉयड वन ऑफ इट्स बिगेस्ट डेज एट दीस एशियन गेम्स विद टू सिंगल्स फाइनलिस्ट एंड अ मिक्स्ड डबल्स ब्रॉन्ज। द परफॉर्मेंस ऑफ द डे केम फ्रॉम 18-year-old अनाहत सिंह अप अगेंस्ट होम फेवरेट एंड वर्ल्ड नंबर 6 सतोमी वतानबे। अनाहत फाउंड हरसेल्फ टू गेम्स डाउन एंड देन टू मैच points down in the third, but the Indian produced a remarkable turnaround, saving both match points and winning 4 consecutive points to take the third game. From there, the momentum completely shifted. Anahat registered a stunning comeback, winning 9-11, 11-13, 12-10, 11-6, 11-3 to reach the women's singles final. It was also the biggest win of her young career by ranking. Abhay Singh then ensured India would have representation in both singles finals. He beat Pakistan's Mohammad Irfan in straight games 11-3, 12-10, 11-6 to move within one victory of gold. Earlier, Joshna Chinnappa and B. Senthil Kumar had claimed bronze in the mixed doubles after an agonizing semi-final defeat to Hong Kong. The Indians had match points in the deciding game but eventually went down 10-11, 11-2, 10-11. For the veteran Joshna, it is a 6th Asian Games medal. And there is history on offer on Sunday. India has never won an Asian Games singles gold in squash. Both Anahat and Abhay now have the opportunity to change that with Olympic qualification also at stake.
1: टेबल टेनिस में आज भारतीय खिलाड़ियों को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पॉइंट दर पॉइंट चली इस जंग में भारत का सफर कहां तक पहुंचा? बता रहे हैं शाहिद आजमी।
4: एशियन गेम्स में आज खेले गए महिला और पुरुष एकल मुकाबलों में भारतीय खिलाड़ियों को हार का सामना करना पड़ा। महिला एकल के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में भारत की यशस्विनी घोरपड़े का सामना जापान की मीवा हरिमोटो से हुआ। यशस्विनी ने मुकाबले में अच्छा संघर्ष किया लेकिन जापानी खिलाड़ी ने बेहतर खेल का प्रदर्शन करते हुए भारतीय खिलाड़ी को 4-1 से शिकस्त दे दी। इस हार के साथ यशस्विनी घोरपड़े का महिला एकल में अभियान समाप्त हो गया है। मीवा हरिमोटो ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं पुरुष एकल के राउंड ऑफ 32 में भारत के शाह के सामने चीन के लिन शिंदोंग की चुनौती थी। लिन शिंदोंग ने शुरुआत से ही मुकाबले पर पकड़ बनाए रखी और मानुष शाह को 4-0 से हराकर अगले दौर में जगह बना ली। इस हार के साथ मानुष शाह भी पुरुष एकल स्पर्धा से बाहर हो गए। इस तरह आज खेले गए टेबल टेनिस के दोनों मुकाबलों में भारत को निराशा हाथ लगी। हालांकि टेबल टेनिस में भारत के लिए इस एशियन गेम्स में पदक का खाता खुल चुका है। कल मिश्रित युगल में दिया चितले और मानुष शाह की भारतीय जोड़ी ने कांस्य पदक जीतकर भारत को टेबल टेनिस में इस बार का पहला और एकमात्र पदक दिलाया था।
1: फेंसिंग में मुकाबले पलक झपकते बदलते हैं, एक टच जीत और हार का फैसला कर सकता है। भारतीय फेंसर्स ने आज किस तरह पेश की अपनी चुनौती, मेघा बता रही है एरिना का हाल।
2: India's campaign in the team fencing events came to an end at the quarterfinal stage. The men's saber team of Karan Singh, Gisho Nidhi, Lakshya Batser and Vishal Thapar began strongly, beating Philippines 45-27 in the round of 16. That set up a much tougher quarterfinal against Asian powerhouse South Korea. India could not repeat their opening round performance and went down 25-45, ending their medal challenge. There was a similar story in the women's foil. Joyce Ashishtha, Stalin Raj, Sonia Devi Vaikom, Kanu Priya Chawla and Meena Devi Narim registered a convincing 45-24 victory over Indonesia to reach the last eight, but host Japan proved too strong in the quarterfinal, bringing India's campaign to an end.
1: एशियन गेम्स के सातवें दिन यानी आज 22 गोल्ड मेडल दांव पर थे। आइए मेघा से जानते हैं मेडल टैली का लेटेस्ट अपडेट।
2: With 2 gold medals in Kabaddi, India have moved up to the 10th in the medals tally, ending the day with 30 medals, 4 gold, 12 silver and 14 bronze. China continue to lead the standings, followed by host Japan in 2nd and South Korea in 3rd.
1: कल का दिन आईची नागोया में भारत के लिए सिर्फ एक और दिन नहीं होगा, क्योंकि सुबह की पहली लहर से लेकर शाम के आखिरी ट्रैक तक भारत की उम्मीदें एक के बाद एक कई मैदानों पर उतरेंगी। सुबह करीब 4 बजे समंदर की लहरों के बीच कमाली मूर्ति और उसके कुछ देर बाद शुगर शांति बनार से सर्फिंग के विमेंस शॉर्ट बोर्ड में अपनी चुनौती पेश करेंगी। यानी भारत का दिन मैदान से नहीं लहरों से शुरू होगा। इसके साथ ही एथलेटिक्स में प्रियंका गोस्वामी और मंजू रानी महिला मैराथन रेस वॉक के फाइनल में उतरेंगी। तीरंदाजी में ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रीतिका प्रदीप और तनी पर्थी चिकिता की कंपाउंड टीम मंगोलिया के खिलाफ उतरेगी, जबकि पुरुष टीम का सामना यूएई से होगा। और अगर ये टीमें आगे बढ़ती हैं, तो कुछ ही देर के बाद क्वार्टर फाइनल का रास्ता भी खुल सकता है। बैडमिंटन कोर्ट पर त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की महिला डबल्स जोड़ी क्वार्टर फाइनल में मलेशियाई जोड़ी का, जबकि मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनीषा कास्त्रो की जोड़ी चीन की चुनौती का सामना करेगी। महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में उन्नति हुडा के सामने जापान की अकाने यामागुची होंगी। शूटिंग रेंज में मनु भाकर, ईशा सिंह और राही सरनोबत 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में पदक पर निशाना साधने उतरेंगी। वहीं ट्रैप में कायनन चनाई, अहवर रिजवी और शपथ भारद्वाज पुरुष वर्ग में, जबकि नीरू, मनीषा कीर और आशिमा अहलावत महिला वर्ग में निशाना लगाएंगी। दोपहर तक एथलेटिक्स ट्रैक भी पूरी तरह भारतीय रंग में नजर आएगा। डिकैथलन में तेजस्विन शंकर और तौफीक नौशाद एक्शन में होंगे। 400 मीटर हर्डल्स में संतोष कुमार, तमिला रासन, यहास पलाक्षा, विद्या रामराज और अनु राघवन चुनौती पेश करेंगे। लॉन्ग जंप में नजरें रहेंगे मुरली श्रीशंकर और डेविड सोलोमोन पट्टूराज पर। और फिर आएगा दिन का एक बड़ा पदक सत्र। वेटलिफ्टिंग में हरजिंदर कौर महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में उतरेंगी। कुराश में संगीता भारती, यश कुमार चौहान और विशाल पदक की दौड़ में होंगे। दोपहर बाद स्क्वॉश कोर्ट पर निगाहें टिकेंगी। महिला सिंगल्स में अनाहत सिंह और पुरुष सिंगल्स के फाइनल में अभय सिंह शानदार प्रदर्शन कर इतिहास बनाने की तरफ कदम बढ़ाएंगे। बॉक्सिंग रिंग में भी एक्शन होने वाला है। अंकुश 80 किलोग्राम, परवीन 65 किलोग्राम, सचिन 60 किलोग्राम और नरेंद्र 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में क्वार्टर फाइनल में विनिंग पंच जड़ने की कोशिश करेंगे। और फिर शाम ढलते ढलते नागोया का एथलेटिक्स स्टेडियम एक बार फिर भारतीय उम्मीदों का केंद्र होगा। एनसी सोजन और शैली सिंह लॉन्ग जंप के फाइनल में उतरेंगी। सर्वेश कुशारे और आदर्श राम हाई जंप के फाइनल में होंगे। नंदनी कोंगान 100 मीटर हर्डल्स के फाइनल में होंगी। अनिमेश कुजूर 200 मीटर में पदक जीतने का जोर लगाएंगे और 3000 मीटर स्टीपल चेज में पारुल चौधरी और अंकिता पदक के लिए दौड़ेंगी। और इसी बीच हॉकी के मैदान पर भारतीय महिला टीम के सामने होगी सिंगापुर की चुनौती। वॉलीबॉल में पुरुष टीम वियतनाम से भिड़ेगी। फेंसिंग में भवानी देवी और भारतीय महिला सेबर टीम की चुनौती जारी रहेगी। और दिन का अंत होगा एथलेटिक्स में महिला 4x100 मीटर रिले के साथ। एक दिन, इतने सारे मैदान और ढेर सारी उम्मीदें। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। इस कार्यक्रम के एडिटर थे विशाल कुमार और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे शाहनवाज खान। आईची नागोया से भारत की उम्मीदों और उपलब्धियों का ये सफर यहीं जारी रहेगा। कल फिर मिलेंगे खेल के नए रोमांच और तिरंगे की नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी आनंद श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार। एशियन गेम्स 2026 आईची नागोया।

0: की वाणी आकाशवाणी।
1: श्रोतो, अभी आप सुन रहे थे एशिया गेम्स 2026 पर आधारित डेली हाइलाइट्स का कार्यक्रम, जिसे हमने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का। सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, जिसे हमने लिया है खामोशी फिल्म से। इस गीत को आवाज़ दी है किशोर कुमार ने, गीत के बोल लिखे हैं गुलजार ने और संगीत निर्देशन है हेमंत कुमार का।
2: कुछ

श्रोतो, अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में खामोशी फिल्म का गीत। आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में हसरत जयपुरी का लिखा हुआ गीत, जिसे संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन ने। फिल्म का नाम है दुनिया।

श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश। कार्यक्रम का अगला नगमा लीजिए, सुनिए शंकर हुसैन की फिल्म में लता मंगेशकर की आवाज़ में, जानिसार अख्तर के बोल हैं और संगीत बनाया है खय्याम ने।

से सवारा है सलिल चौधरी ने और फिल्म है रजनीगंधा। मैं नदियों की चंचलता सी, तुम सागर का गहरापन हो, मैं तो केवल भाषा भर हूँ, तुम कविता का अंतर्मन हो।

कार्यक्रम में अगला गीत अयुब आपको सुनवाते हैं, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है अनजान ने और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। बदलते रिश्ते इस फिल्म से इस गीत को लिया है। रूह की आवाज़ को सुन भी लिया करो, धड़कनों के साज को सुन भी लिया करो। कह ना सकूंगा उतना जितना गहरे में हो छाए, अनकही सौगात को सुन भी लिया करो।

श्रोताओ, आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला नगमा, जिसे गाया है किशोर कुमार ने। योगेश ने इस फिल्म गीत को लिखा है और संगीतबद्ध किया है SD बर्मन ने। फिल्म है मिली। उनका ख्याल मेरे ख्याल से गुफ्तगू करता है, उनका ख्याल मेरे ख्याल से गुफ्तगू करता है, बात रूहानी सी है, कुछ मसला ये अजब सा है। ख्यालों में छाते हैं जब यादों के साए, सांसें कभी तेज कभी मध्यम से होती हैं, बैठ जाते हैं पहलू में आके वो आग जब अक्सर दिल मेरा जोर से धड़कता है।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं। मजरूह के लिखे हुए गीत को लता मंगेशकर की आवाज़ में दस्तक फिल्म में मदन मोहन का संगीत है। आया था चला भी गया, तू भी ख्याल सा हो गया है। आया था यूं चला भी गया, तू भी ख्याल सा हो गया है। बिछड़ बिछड़ कर मिलता है, मिलकर फिर बिछड़ता है। कितने जवाब दूं इस दिल को, मुश्किल सवाल सा हो गया है। ना उलझती हूँ ना सुलझती हूँ, खुद के जज्बातों पर हंसती हूँ। बातें करती हूँ तुमसे ख्यालों में, गुफ्तगू में बवाल सा हो गया है।

कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं रेशमा और शेरा फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। बाल कवि की शब्द रचना है और संगीत से सवारा है जयदेव ने। तेरे लफ्जों में आके ठहरी, तेरे लफ्जों में आके ठहरी, उस इबादत का क्या करूं, वो जो तेरी आंखों से छलकती उस मोहब्बत का क्या कहूं। कतरा कतरा पिघल रहे हो तुम, जल रही हैं तुम्हारी सांसें, राजे दिल तुम ना कह सकोगे कभी प्यार की उस इंतहा का क्या कहूं।

0: श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे फिल्म संगीत का। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित कर रहे हैं। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनके घरों पर बूथ स्तर के अधिकारी BLO जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECINET प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है।
2: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर SIR के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सारणी में निर्वाचन आयोग ने संशोधन किया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब महाराष्ट्र की संशोधित मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 16 नवंबर को किया जाएगा। पहले अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित होनी थी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत श्री मॉर्ट पहल सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं।
3: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
1: गृहमंत्री अमित शाह केरलम के कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि माता अमृतानंदमयी ने सेवा को मिशन में बदलकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कल केरलम के एक दिन के दौरे पर जाएंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि न्याय प्रणाली को नागरिकों से मदद मांगने की प्रतीक्षा के बजाय खुद की जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। जापान एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण, 3 रजत और

दो कांस्य पदक जीते। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में तजिंदर पाल सिंह तूर और पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में सावन बरवाल ने रजत पदक हासिल